ओम शांति। हमें बाप समान बनना है, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है और शिव बाबा के समान निराकार बनना है। ब्रह्मा समान निर्विकारी, निरहंकारी, कल्याणकारी, शुभ भावनाओं से भरपूर, संपूर्ण पवित्र बनना है। तो बाबा ने जिस तरह जीवन में समर्पण भाव अपनाया, उसी तरह हमें भी समर्पण भाव अपनाना है। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि हम सब कुछ कैसे छोड़ दें अपना। समर्पण भाव, सब कुछ तेरा, मन में जो मेरापन है, जो पदार्थों में आसक्ति है, जो ये फीलिंग है सब कुछ मेरा है, बच्चे भी मेरे, धन भी मेरा, मकान भी मेरा, बिजनेस भी मेरा, इससे अपनी बुद्धि को निकाल कर सब कुछ तेरा, ऐसी गुड फीलिंग कर देनी है। इसमें एक बहुत अच्छा अभ्यास आज सारा दिन करेंगे, मेरा हर कर्म तेरे लिए, मेरा संपूर्ण जीवन तुम्हारे लिए, मैं हर कर्म भी तुम्हारे लिए करूंगा करूंगी, मेरा हर संकल्प भी तुम्हारे लिए होगा। सबसे सूक्ष्म समर्पणता तो मन बुद्धि की समर्पणता है, अपनी भावनाओं की समर्पणता है, हमारा प्यार भी बाबा के लिए संपूर्ण रूप से समर्पित, हमारा संपूर्ण आकर्षण एक में, जो कुछ हमें लेना है वो उस एक से ही लेना है। तो मेरा हर संकल्प वही हो जो बाबा को प्रिय है, ऐसा सोचें कि मुझे हर संकल्प और बोल ऐसा करना है अपना जिसे बाबा स्वीकार करे, जिसका भोग बाबा को लगाया जा सके, जिसे सुनकर, जिसे देखकर भगवान प्रसन्न हो जाए। ये है मन की समर्पणता। और इसको अगर सहज भाव से करना है तो हमें बोल वही बोलने हैं जो बाबा की आज्ञा है, हमें संकल्प वही करने हैं जो बाबा की इच्छा है। तो तन को भी समर्पित करेंगे, मन को भी समर्पित करेंगे, बुद्धि को भी समर्पित करेंगे, देह के संबंधों को भी समर्पित करेंगे, अपने कर्म को भी समर्पित करेंगे और कर्म के परिणाम को भी समर्पित करेंगे। ये बहुत सूक्ष्म और सुंदर बात है कि कर्म हमने किया, उसका परिणाम चाहे कैसा भी निकला हो, हमारी इच्छा के अनुकूल या प्रतिकूल, हमारी एक्सपेक्टेशंस के अनुकूल या प्रतिकूल, जो भी परिणाम निकला उसे भी बाबा को अर्पित करके अपने को निरसंकल्प कर देना चाहिए। मान लो हमारी प्रशंसा हुई, वो भी बाबा को अर्पित, हमारी ग्लानि हो गई, वो भी बाबा को अर्पित, हमें बहुत सफलता मिली, वो भी प्रभु अर्पण, हमें सफलता न मिली, वो भी प्रभु के हवाले। इससे हम बहुत निश्चिंत रहेंगे और कर्मों के परिणाम के प्रभाव से आत्मा मुक्त हो जाएगी। ये निर्लिप्त अवस्था है, जो बहुत सुंदर स्थिति है अध्यात्म की। इसका हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते चलना है। तो आज सारा दिन मेरा हर कर्म तुम्हारे लिए है, ये संकल्प। दूसरा, मेरा ये तन तुमको अर्पण। देखो जैसे बाबा हमारे सामने खड़ा है, बाप दादा, और हम अपना तन बाबा को दे रहे हैं, तो बच गई मैं चमकती हुई आत्मा। और फिर अभ्यास करें, तन बाबा को देकर मैं आत्मा उड़ चली अपने प्राणेश्वर के पास और पहुंच गई परम धाम में, उसको टच कर दिया, उसकी संपूर्ण शक्तियां मुझ में समाने लगी, उसकी शक्तियों को स्वयं में भर कर मैं आत्मा पुनः आ गई नीचे
ये देह है मेरा जो मैंने बाबा को दे दिया था, फिर से मैंने इसमें प्रवेश कर लिया, अब ये देह बाबा ने मुझे वापिस दिया है कि लो बच्चे इसमें प्रवेश करके तुम विश्व कल्याण का कार्य करो, इस संसार में निर्लिप्त भाव से विचरण करो। फिर मैं आत्मा ये देह बाबा को देकर चली परम धाम, स्वयं में उसकी शक्तियां भरकर नीचे वापिस आ गई। ये ड्रिल करेंगे और बहुत सुंदर आज इसको एंजॉय करेंगे। ओम शांति।

सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर। बहुत से लोग कठोर परिश्रम से दिन भर कार्य करते हैं, परंतु वे इतने परिश्रमी होते हैं कि रात के समय भी काम को एक तरफ नहीं रख सकते हैं। बहुत से लोग इतनी फाइलों का बोझा घर ले जाते हैं मानो सारा दफ्तर ही उठा लिया हो। सायंकाल भी वे समस्याओं से जूझते रहते हैं। अपने परिवारों को वह समय देने की अपेक्षा जिसका कि उन्हें पूरा अधिकार है, वह उन कामों में परिश्रम करते और सिर खपाते रहते हैं जिनको कार्यालय में ही रखाना उचित था। जब तक मस्तिष्क थकावट से चूर नहीं हो जाए और आगे काम करने से इनकार न कर दें, जब तक थकी हारी सामर्थ्य विद्रोह न कर दे, निर्णय की विवेक शक्ति अपनी पराजय न मान ले, तब तक काम करना कितनी बड़ी मूर्खता है। ऐसी दशा में व्यक्ति जो कार्य करता है उसके पीछे न शक्ति होती है और न विचारों की उर्वरता। जिस समय दिमाग की मशीनरी बिगड़ी हुई हो उस समय काम करना कितनी मूर्खता है। जब शरीर के कालपुर्जे थकावट के कारण कराह रहे हों, मस्तिष्क अड़ियल घोड़े की तरह हो गया हो और तंत्रिका तंत्र थक कर चूर हो गया हो, उस समय जो काम किया जाएगा उस पर थकावट की गहरी छाप अवश्य होगी। दफ्तर का काम और अपने मस्तिष्क में थकावट के विचार, थकान के चित्र छोड़ना कार्य कुशलता के लिए घातक है। जिस प्रकार आप अपने शरीर के वस्त्र बदलकर शरीर को तरोताजा करते हैं, उसी प्रकार मानसिक चित्रों को बदलते रहना चाहिए ताकि मस्तिष्क तरोताजा रहे। कार्यालय का समय समाप्त हुआ तो काम को एक तरफ रख दीजिए। अब अपने मन में सर्वोत्तम विचार लाइए। जब आप घर पर पहुंचे तो आपको अल्पाहार की आवश्यकता है, मन के पुनर्नवीनीकरण की आवश्यकता है और शरीर को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है।

आवश्यक है कि दूसरे दिन कार्यालय जाने के लिए अपने शरीर को स्वस्थ और ठीक ठाक कर लें। इसके लिए आपको मनोरंजन की आवश्यकता है, अपने परिवार के सदस्यों के बीच आनंद मनाने की आवश्यकता है। परंतु यदि आप कार्यालय की चिंता को घर ले जाते हैं तो आप मनोरंजन नहीं कर पाते, आनंद नहीं मना सकते। एक विधवा थी, उससे बातचीत करने पर पता चला कि पति के साथ उसका बहुत ही कष्टमय जीवन व्यतीत हुआ था। उसने बताया, मेरा पति हर समय धन कमाने में ही लीन रहता था, धन दौलत के विचार में ही सदा डूबा रहता था। मौज मजे और मनोरंजन की तो बात ही क्या, उसे जीवन की आवश्यक सुख सुविधाओं की भी परवाह न थी। मैं और बेटा बेटी संतान जब इसमें हस्तक्षेप करते थे तो वह क्रोधी हो जाता था। हमारा घर सच्चे अर्थों में घर ही न था। जब वह घर आता था तो व्यापार को बढ़ाने की योजनाओं में व्यस्त रहता था, धन कमाने के लिए नई स्कीमें बनाया करता था। धन कमाने की लालसा उसके सिर पर सनक की तरह सवार थी। जब वह घर आता था तो प्रायः इतना थका हुआ होता था कि बड़ी कठिनाई से अपना सिर सीधा रख

पाता था, परंतु फिर भी विश्राम करने की अपेक्षा तुरंत काम में लग जाता था और व्यापार के बारे में सोचता और योजनाएं बनाता रहता था। इस प्रकार वह अपने को सदा ही थकावट की स्थिति में रखता था। व्यापार उसे दफ्तर में ही छोड़कर आना चाहिए था, परंतु वह हर समय उसे साथ लिए फिरता था। इसके बाद दिन के बाद रात आती और वह कुर्सी पर बैठा काम करता रहता था, अपने बही खातों को देखता रहता था और अपने व्यापार से संबंध रखने वाले पुस्तकों में डूबा व्यापार बढ़ाने की योजनाएं बनाता रहता था। मैं उसके बादल की गर्जन जैसे खांसी की आवाज सुनती और दौड़ी दौड़ी सीढ़ियां उतरकर नीचे आती। मैं उससे तर्क और आग्रह करती कि वह अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए इस प्रकार की बुरी तरह मेहनत करना छोड़ दे, परंतु वह हठी था। कई बार वह मुझे कोरा जवाब दे देता था, साफ कह देता था कि मेरी प्रार्थना का उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। जब तक उसका हिसाब ठीक नहीं मिलेगा, तब तक वह काम को एक तरफ नहीं रखेगा। यद्यपि वह व्यक्ति लखपति था, इसके बावजूद उसका कोई पारिवारिक जीवन नहीं था, घर का आनंद उसे प्राप्त न था। अन्य व्यक्तियों की भांति वह घर में हंसने बोलने, मनोविनोद करने और आनंद मनाने से वंचित था। हर समय वह अपने व्यापार व्यवसाय के बारे में सोचने, हिसाब जोड़ने और योजनाएं बनाने में ही लगा रहता था। वह तब तक इस तरह श्रम करता रहा जब तक कि मृत्यु ने आकर सब समाप्त न कर दिया। जब आप अपने कारखाने या कार्यालय को शाम को ताला लगा दें, तो काम धंधे की सारी चिंता उसी के भीतर बंद रहने दें, उसे घर न ले जाएं, उससे अपने मनोविनोद को, खेल को, मनोरंजन को न बिगड़ने दें। संकल्प करें, व्यापार व्यवसाय की चिंताएं घर में नहीं है, कार्यस्थान पर काम करने के उपरांत मन को समझा लें, अपनी सामर्थ्य में जितना था उतना काम आज मैंने कर लिया, अब मेरा समय परिवार के साथ मनोविनोद में और विश्राम में लगेगा, घर में व्यापार की कोई बात नहीं होगी। इस प्रकार आप अपने मन को समझाकर अपने आप को थोड़ा मनोरंजन की ओर ले जाएं और फिर से दूसरे दिन के लिए वही ऊर्जा, वही शक्ति प्राप्त कर लें जो आपको सारे दिन में अपना कार्य करने के लिए उपयोगी होगी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: सीखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ बुक, जीवन एक बहुत सुंदर किताब है। रीड इट, उसको पढ़ो, है ना। कुछ एक अच्छी अच्छी किताबें आपको पढ़नी चाहिए। एक किताब रिसेंटली जो मैंने पढ़ी है और वो है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। और एक और किताब मुझे अभी रिसेंटली बहुत अच्छी लगी थी, एंड दैट वाज हु वुड क्राई व्हेन यू वुड डाई। जब हमारी मृत्यु होगी ना तो कौन कौन लोग रोएंगे। जब मैं किताब पढ़ने लगा तो मुझे ये एहसास हुआ, मृत्यु के नजदीक जब हम हैं और अगर हमने अपने लाइफ को रिवाइंड करके देखा, अगर हमारे जीवन के प्रति हमारी बहुत अच्छा पॉजिटिविटी आया तो मींस माय लाइफ इज अ वेरी रियल सक्सेस। हमें इस जीवन को देखकर खुशी में रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ एक बातों को फॉलो करना है। हो सके ना तो बीच बीच में उपवास करने का। कौन सा उपवास करना है, कोई शरीर को कष्ट देने की बात नहीं है, लेकिन उपवास करना है दो बातों का, और एक है न्यूज़पेपर्स का। हफ्ते में एक दिन न्यूज़पेपर को थोड़ा बंद करो, हफ्ते में एक दिन टीवी को थोड़ा बंद करो, और हो सके तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। मैं आपको कुछ एक अच्छे और किताबों का सजेशन करूंगा, अगर हो सके तो वो किताबों को जरूर पढ़ना। एंड दैट इज नंबर वन इज इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा, जो आपको ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से मिलेगा। इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा रिटन बाय आदरणीय जगदीश भाई जी, बहुत अच्छी किताब है। एक और किताब मैं आपको सजेस्ट करूंगा और वो है साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। ये भी किताब हो सके तो आप जरूर खरीदना और पढ़ना। और एक जो सबसे अच्छी किताब मुझे लगी है वो आप जरूर पढ़ना, और वो है आदिदेव ब्रह्मा। हिंदी में अवेलेबल है और वो है ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। और जैसे जैसे आप ये किताबें पढ़ेंगे आपको ये समझ में आएगी कि यस, दुनिया जो है किस तरफ बढ़ रही है और कैसे ये दुनिया परिवर्तन हो रहा है और कैसी एक सुंदर दुनिया की स्थापना होगी।

पेट्रोल समाप्त होने पर जैसे मोटर जहां की तहां रुक जाती है, ठीक उसी प्रकार यदि मेरे शरीर की ऊर्जा समाप्त हो गई तो मेरा शरीर बेकार हो जाएगा। फिर व्यापार का काम कौन करेगा? मनोविनोद और विश्राम से ही मुझे ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए मैं उनकी उपेक्षा नहीं करूंगा। यह संकल्प आप अपने मन में पक्का कर लें। नींद न आने का उपचार करने के लिए जितनी मूर्खतापूर्ण दवाइयां बनाई जाती हैं, उतनी शायद ही किसी अन्य रोग के लिए बनाई जाती होंगी। इनमें से कुछ तो ऐसी हैं जो उन्मूत्र रोग को बढ़ा देती हैं, क्योंकि इनके द्वारा मस्तिष्क में और अधिक रक्त पहुंचता है, जबकि गाढ़ी नींद के लिए मस्तिष्क में रक्त का आवेग रुकना, रक्त का मस्तिष्क से बाहर जाना आवश्यक होता है। अनिद्र के इलाज के केवल दो प्रभावी उपाय हैं। पहला, इस कष्ट के कारण को रोका जाए। दूसरा, नींद लाने की कोशिश बंद कर दी जाए। जितना ही आप सोने का प्रयत्न करते हैं, नींद लाने के लिए मानसिक प्रयास करते हैं, उतना ही आप अपने मस्तिष्क में रक्त रोके रखते हैं, उसे मुक्त होकर बाहर नहीं जाने देते। नींद के लिए रक्त का मस्तिष्क से बाहर जाना सर्वथा आवश्यक है। मस्तिष्क यदि रक्त से भरा हो तो आप सो नहीं सकते। मानसिक सक्रियता द्वारा रक्त को मस्तिष्क के भीतर रोक कर रखा जाता है। जिस क्षण हमें प्रगाढ़ निद्रा आती है, उस समय मस्तिष्क में बहुत ही कम रक्त होता है। हम रुचिकर भोजन से तृप्त होते हैं तो हमें तंद्रा आने लगती है, क्योंकि रक्त मस्तिष्क से चलकर पाचन तंत्रों के अंगों तक पहुंचकर उनका सहयोगी बनकर पाचन कार्य में मदद करता है। उसी के अनुरूप मस्तिष्क की ओर रक्त का प्रवाह और आवेग कम होता है। इसलिए जो व्यक्ति अनिद्र यानी कि नींद न आने के कष्ट से पीड़ित हो, उसके लिए सबसे त्वरित उपाय यही है कि वह फिक्र चिंता करना छोड़ दे। फिक्र चिंता मानसिक प्रयत्न है जो नींद आने में बाधक है। कुछ लोग पत्रिका, उपन्यास आदि पढ़ने के द्वारा निद्रा को प्रोत्साहित करते हैं और पढ़ते पढ़ते उन्हें नींद आ जाती है। कुछ लोग कुरमुरी चीजें खाकर या दूध का गिलास पीकर नींद को बुलाया करते हैं। यह सब अप्राकृतिक बनावटी कृत्रिम उपाय है। उन्निद्र से बचने के लिए इनका सहारा लिया जाता है, जबकि ये उन्निद्र अनिद्र का कारण ही बन जाते हैं। पुराने उन्निद्र से पीड़ित व्यक्ति के लिए सबसे हानिकर यह चिंता है कि उसे कभी नींद नहीं आएगी। बार बार प्रयत्न करने के बहुत से उन्निद्र रोगी त्रस्त हो जाते हैं। रात को वे पहले ही आतंकित हो जाते हैं कि उनकी रात बहुत बुरी बीतेगी। फिर वे जितना ही सोने का प्रयत्न करते हैं, निद्रा उतनी ही दूर भागती है। तो कहने का भाव यही है कि जितना हम चिंताओं में डूबे रहते हैं, उतना हम नींद को अपने से दूर धकेल देते हैं। तो अगर शांति से सुख चैन की नींद सोना चाहते हैं, तो आप अपने मन से

0: हेलो, हाँ हाँ पहुँचा दूंगा, समय से पहुँचा दूंगा।
1: ओए इधर इधर इधर, क्या पहुँचा दोगे है? कहाँ पहुँचा दोगे? मुझे तो लगता है ऐसे ही बीच रोड पे मोबाइल लेकर घूमोगे तो तुम ही ऊपर पहुँच जाओगे। सड़क क्रॉस करते समय मोबाइल जेब में रखो और जहाँ मन किया वहीं से रोड क्रॉस कर लोगे हैं? कोई ये जेबरा क्रॉसिंग क्या जेबराओं के चलने के लिए बनाई है? कोई जब भी रोड क्रॉस करना है तो जेबरा क्रॉसिंग से ही करना, क्या समझे? हाँ, मुझसे गाड़ी वाले तो क्या पैदल वाले भी नहीं बच सकते, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: पैदल यात्री सड़क क्रॉस करते समय हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

चिंता और भय के कारण मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह और अधिक वेग से होता है। भय के कारण मस्तिष्क में तनाव पैदा होता है। उस तनाव के कारण रक्त मस्तिष्क से बाहर नहीं जाने पाता और इससे नींद दूर हो जाती है। लेटते ही अपने विचारों से फिक्र, चिंता, भय और आशंका के विचारों को आतंकित करने वाली कल्पनाओं को निकाल फेंकिए। मन में कहिए, इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं यहाँ आराम से लेटा हुआ हूँ, लगता है नींद आ रही है। तब आपको पता नहीं चलेगा कि कब प्रगाढ़ निद्रा ने आपको घेर लिया। मन में कहिए, इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं यहाँ आराम से लेटा हूँ, लगता है कि नींद आ रही है। तब आपको पता नहीं चलेगा कि कब प्रगाढ़ निद्रा ने आपको घेर लिया। बहुत से लोग उन्निद्र से बचने के लिए शयन से पूर्व व्यायाम या स्नान करते हैं, क्योंकि इससे रक्त मस्तिष्क से नीचे उतर जाता है, वह मांसपेशियों में आ जाता है। मानसिक प्रयत्न के द्वारा नींद लाने की कोशिश के बजाय व्यायाम और स्नान द्वारा नींद लाने का उपाय अधिक अच्छा है। उन्निद्र से पीड़ित अधिकांश व्यक्ति इससे होने वाली हानियों का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया करते हैं, क्योंकि दूसरे दिन प्रातः थकान से चूर होते हैं। इसका कारण यह होता है कि शरीर के विभिन्न अंगों के स्रावों के कारण रक्त में जो विषैले तत्व आ मिलते हैं, तरोताजा बनाने वाली नींद द्वारा वे विष दूर कर दिए जाते हैं। उन्निद्र रोगी के शरीर में इन विषों का समन नहीं हो पाता। यदि आप इस विश्वास को लेकर लेटते हैं कि आपने कॉफी पी ली है या कोई ऐसी वस्तु खा ली है जिसके बाद आपको नींद नहीं आया करती, तो पूरी संभावना है कि जिससे आप डरते हैं वही बात होगी। यह भय की भावना ही आपको नींद नहीं आने देगी। इससे विपरीत यदि आपके मन में विधेयात्मक सक्रिय भावना होगी कि आपको खूब बढ़िया नींद आने वाली है और सुबह आप तरोताजा होकर उठेंगे, तो वास्तव में आपको सुखद निद्रा आ जाएगी। मन को पूरा आश्वस्त कर दीजिए कि आपको निद्रा अवश्य आएगी। नींद आना आपकी प्राकृतिक अवस्था है, कुदरती बात है। इसके विपरीत होना अप्राकृतिक है, कुदरत के नियमों के विरुद्ध है। रातों को कई बार जागना अधिकतर आदत के ही परिणाम है। अपने सोने की योग्यता पर विश्वास करना लाभकारी है, उस पर अविश्वास मत कीजिए। यह सोचने का अपना स्वभाव ही बना लीजिए कि आपको सुखदायी निद्रा आएगी। शयन कक्ष सोने का स्थान है, वह सोचने या चिंता करने की जगह नहीं। यहाँ चिंता और भय के लिए कोई स्थान नहीं, ईर्ष्या या जलन के लिए कोई स्थान नहीं। चिढ़ाने, घायल करने वाले, आक्रामक और अप्रिय विचारों के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं। शयन कक्ष तो वह स्थान है जिसमें जाकर दिन के कार्य की हलचल और चिंताओं से मुक्ति मिलती है और दिन भर की शारीरिक टूट फूट की मरम्मत होती है। यहाँ हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विश्राम प्राप्त होता है। यह ऊर्जा को पुनः संचित करने का स्थान है। अतः आप रात्रि को चिंतन और निद्रा के बीच में नहीं बिता सकते। चिंता ही नहीं, चिंतन, सोच विचार को भी छोड़िए। तो इस प्रकार आज के सुप्रभात में हमने आपको विश्राम की बात बताई, रात को सोने की बात बताई कि किस प्रकार हम निश्चिंत होकर शांति से सोएं, ताकि हम सुबह फिर से नए दिन की शुरुआत करने के लिए तरोताजा हो जाएं, वही ऊर्जा स्फूर्ति फिर से हम में आ जाए। अगर हम रात को सही नहीं सो पाते हैं, हमारी नींद पूरी नहीं होती है, तो हमारा सुप्रभात, हमारी नए दिन की शुरुआत अच्छी नहीं हो सकती। तो इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में।
रेडियो मधुबन पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आए हम।
1: रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री। दोस्तों, सहज स्वास्थ्य में जब स्वास्थ्य को सहज बनाने के बारे में चिंतन किया जाता है तो अक्सर ये चीज पाया जाता है कि स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा वरदान है जो मनुष्य को मिला हुआ है। अगर काया निरोगी है तो फिर बाकी सारी चीजें आसानी से मनुष्य कर सकता है। शरीर को कहा ही गया है कि सब कुछ साधने का माध्यम शरीर है। शरीर के न होने पर या शरीर स्वस्थ न हो तो व्यक्ति अपने कार्य को ठीक ढंग से नहीं कर सकता। न वो अंदर से खुश हो सकता है, न बाहर से खुश रह सकता है, और किसी भी कार्य और कर्म में भी वो सफलता हासिल करने में उतना सक्षम नहीं होता जब तक वो स्वस्थ नहीं बन जाता। ऐसे में स्वस्थ रहना क्यों आवश्यक है ये हम सभी जानते हैं, मगर स्वास्थ्य को क्या सहज रीति से अपने जीवन का हिस्सा बनाया जा सकता है, सहजता से स्वस्थ कैसे रहा जाए, इसी विषय पर हम चिंतन कर रहे हैं। आज हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी। पेशे से एक ऑस्टियोपैथ हैं, पढ़ाई इन्होंने एलोपैथी मेडिसिन में की है, स्पोर्ट्स मेडिसिन के जाने माने विशेषज्ञ हैं। भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्र आरोग्य मंदिर गोरखपुर में ये फील्डवर्क प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर इनके परिवार की अनेक पीढ़ियों ने प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा लोगों को शफा दी है। डॉक्टर साहब, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार, ओम शांति।
2: डॉक्टर साहब, जब हम प्रकृति चिकित्सा की बात करते हैं तो लोग ये समझते हैं कि प्रकृति के भिन्न भिन्न तत्वों से हम अपने शरीर की बनावट को देखते हैं। अपने शरीर में ये पांच तत्वों का बना हुआ शरीर कहते हैं तो उसमें भी पांच तत्वों की भूमिका को देखते हैं। हम ये बात समझते भी आए हैं आपसे बातचीत करते हुए कि कैसे प्रकृति के अलग अलग तत्व, पानी और मिट्टी, धूप, ये सारी चीजें कैसे हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं, ये चीज सुनते आए। एक और चीज जो अक्सर कहा जाता है कि लोग बातों बातों में कह देते हैं, आहार विहार अच्छा होना चाहिए। अब विहार की जब बात कही जाती है तो बहुत समय पर ये चीज कही जाती है कि वायु विहार के लिए जाना चाहिए, और लोग वॉकिंग के लिए खुली हवा में निकल जाते हैं, सैर करने जाते हैं और हर दिन करने जाते हैं। तो प्रश्न उठता है कि क्या ये स्वास्थ्य के लिए वायु की भी कोई ऐसी भूमिका है जो हम समझे, क्योंकि लोग यही कहते हैं कि हर दिन तो हम सांस ले ही रहे हैं, उसमें मतलब वायु विहार की क्या बात है, लोग ये पूछते हैं अक्सर।
3: प्रकृति ने हमें भोजन दिया और अगर हम उस भोजन को ग्रहण न करें तो हम दिनों तक जीवित रह सकते हैं। प्रकृति ने हमें पानी दिया, अगर हम पानी का ग्रहण करना बंद कर दें तो हम कुछ घंटों तक चल सकते हैं, पर अगर प्रकृति ने जो हमें श्वास दी है, वायु दी है, अगर हम उसका सेवन बंद कर दें तो हम कुछ ही मिनटों के मेहमान इस धारा पे रह जाएंगे। तो वायु का इतना महत्व है कि वो हमें हर क्षण चाहिए। वायु प्रकृति का सबसे अनमोल तत्व है। कहते ना, हम लोग ने हवा पानी के बारे में हम सोचते ही नहीं क्योंकि वो हमें मुफ्त में मिलती है। आपने भैया बात करी वायु विहार की, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि रूम इन द एयर इज मोर पोल्यूटेड देन द एयर आउटसाइड। एक बंद कमरे की हवा ज्यादा नुकसानदायक होती है वनस्पत एक खुले वातावरण की हवा से, और वायु विहार की अब बहुत जरूरत है क्योंकि हम सब बंद कमरों में, बंद घरों में, बंद ऑफिस के केबिनों में पड़े हुए हैं। तो हम जब बाहर निकलेंगे तो हमें स्वच्छ वायु मिलेगी और स्वच्छ वायु से हम स्वच्छ सोच पाएंगे। वायु प्राकृतिक चिकित्सा में मैं पहले भी बोल चुका हूं, मिट्टी पानी धूप हवा सब रोगों की एक दवा। आयुर्वेद में पृथ्वी जल आकाश पवन इसके बारे में बात किया जाता है, वात पित्त कफ करके बात की जाती है। तो वायु हमारे लिए सबसे जरूरी है। योग में इसी वायु को हम लोग प्राण वायु बोल देते हैं क्योंकि इसी वायु से हमें प्राण मिलता है, और हम इसी को पांच भागों में भी बहुत सारी योगा की किताबों में आपको मिल जाएगा कि प्राण अपान सम्मान उद्यान व्यान करके इसको पांच भाग में बांटा गया है। और जो सबसे कॉमन लोग बात करते हैं कि आसन और प्राणायाम कर रहे हैं, उसमें प्राणायाम में भी वायु पे ही कंट्रोल करने की बात की गई है। मुझे ये बात कहने में जरा भी असहजता नहीं है कि लोग कहते हैं कि हमने योगा की प्रैक्टिस की और आई एम प्रैक्टिसिंग योगा, बट दे आर ओनली प्रैक्टिसिंग टू पार्ट्स ऑफ योगा विच इज आसन एंड प्राणायाम। एंड आसन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फिजिकल वेलबींग एंड प्राणायाम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। जब आप परेशान हो तब एक गहरी सांस लीजिए, उससे क्या होगा, आपके शरीर में एकाएक ऑक्सीजन अंदर तक जाएगा, आप बुरी हवाओं को या कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे, और आपके ब्रेन में जब ऑक्सीजन जाएगा तो आप अच्छा सोचने लगेंगे।
2: ये बात समझ में आती है कि वायु के बारे में लिटरेचर इतनी सारी चीजें कहता है, हम भारत के प्राचीन पद्धतियों में, योग में, आयुर्वेद में इन सब चीजों को समझते आए हैं। अब आजकल क्योंकि हम बहुत ज्यादा मॉडर्न हो रहे हैं, हम तो सोचते हैं हम वातानुकूलित कमरे में रह रहे हैं, एयर कंडीशनड है, और तो और जैसे आपने कहा कमरे की हवा ज्यादा प्रदूषित है, बहुत सारे लोग तो ये कहेंगे नहीं हमारे कमरे में तो हमने एयर प्यूरिफायर लगा रखा है, वातावरण से बेहतर हवा तो हमारे घर के अंदर है कहेंगे।
3: भैया हम जब भी अगर वातावरण की बात करेंगे तो हम एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, और एटमॉस्फेयर में करीब 77 to 78% तक नाइट्रोजन होता है और 20 to 21% तक ऑक्सीजन होता है, बाकी 1% में अन्य गैसें जैसे हीलियम, आर्गन, वाटर वेपर, ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं भैया, तो हमें ओजोन की बात करनी चाहिए। O2 इज ऑक्सीजन, O3 इज ओजोन। ओजोन वो लेयर है वातावरण में, वायु की वो लेयर है जो हमें यूवी रेस से बचाती है। तो सोचिए हमारा जो हवा है, जो ऑक्सीजन है, वो हमको यूवी रेस से भी बचा रहा है और हमें प्राणदायक हवा भी दे रहा है जिसकी वजह से हम जीवित हैं। अगर जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारी धरती के चारों तरफ की हवा है, वो हमारे ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हमारे धरती पे रहती है, हम जो जो ऊपर जाते हैं हवा पतली होती चली जाती है, इंग्लिश में कहते हैं द एयर गेट्स थिनर। और इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल आपको मिलता है जब आप पहाड़ पे जाते हैं तो आपको सांस लेने में थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि आप थोड़ा सा एल्टीट्यूड पे जाते हैं और वहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम हो जाता है ग्राउंड लेवल के वजह से, तो हमको सांस लेने में थोड़ी सी परेशानी होती है। अब इस एटमॉस्फेयर की हवा हमारे लिए सबसे अच्छी कब है, ये सबसे अच्छी है सुबह के समय। अगर रेनफॉल

0: बाल हैं हमारे शरीर पे उनको मूव कराती है, जिससे हमारी स्किन का सेंसिटिविटी बनी रहती है। जो जो दिन बढ़ता चला जाता है त्यों त्यों पॉल्यूशन और व्हीकल्स सड़क पे मूव करना शुरू कर देती हैं, तो द क्वालिटी ऑफ एयर गोस डाउन। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको मौका मिले तो सुबेरे की हवा का जरूर प्रयोग कीजिए। और सुबेरे की हवा का प्रयोग करने का सबसे अच्छा तरीका भी श्री भाई ने बताया है कि बाहर निकलिए, वॉक करिए।
1: एक मजेदार चीज जो अक्सर सुनने को मिलती है, जैसे आप अभी ये बात बता रहे थे कि हवा के बिना जीवन संभव नहीं है, हवा पानी दोनों बहुत ही आवश्यक है। और खैर पानी तो आजकल बाजार में बॉटल में बंद करके बिकता है, मगर अभी वो नौबत नहीं आई कि हवा हमें मतलब खरीदना पड़े। अभी भी साफ हवा हमें मिलती है, बाहर हम निकलते हैं, सुबह निकलते हैं तो वो ताजी हवा मिलती है, तो हमें भी ताजगी की फीलिंग देती है। जो सुबह मॉर्निंग वॉक जाते हैं, अगर वो एक दिन मॉर्निंग वॉक पे ना जाए तो उनको ऐसा लगता है कि हमने आज बहुत कुछ मिस कर दिया, ये फीलिंग होती है उन लोगों।
0: भैया सुबेरे की हवा सबसे शांत रहती है, हमारा बॉडी पूरा रिलैक्स रहता है। सुबेरे के समय एक अच्छी बात और रहती है कि हमारा जो ब्रेन है वो भी शांत रहता है, उसमें विचार बहुत सारे नहीं चल रहे होते हैं क्योंकि हम सो के उठे रहते हैं। सो द बॉडी इज रिलैक्स्ड, द माइंड इज रिलैक्स्ड। कहते ना सो के उठे हैं तो ऊर्जा जो हमारी है वो हमने उसको खर्च नहीं किया है, और उस समय जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। और अगर हम सुबेरे खुले वातावरण में टहल रहे हैं तो हमारे शरीर को पूर्ण ऑक्सीजन मिलता है। रात भर में थोड़ी ठंडक की वजह से नमी बढ़ी रहती है, तो वो हवा हमारी नाक और लंग्स को भी बहुत अच्छी लगती है, और वो हमारी जो बॉडी है उसमें ऑक्सीजनेटेड एयर उसकी हीलिंग में भी बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करती है। सुबेरे के समय अगर हम वॉक करते हैं तो वॉकिंग करने से हमारे मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ना शुरू होता है, और जब हम ऑक्सीजनेटेड एयर जो लंग्स हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे पूरे शरीर में भेजता है तो वो हमारे बॉडी को बहुत अच्छा लगता है। और जब ऑक्सीजनेटेड एयर हमारे ब्रेन को मिलती है तो वो भी बहुत रिलैक्स होती है और फ्रेशन अप होती है। आपने भैया अभी एक बात करी इंडोर एयर और एयर प्यूरिफायर की, इसमें मैं एक चीज और जोड़ूंगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने अपने घर में एयर फ्रेशनर भी हम बहुत रेगुलरली यूज करते हैं। भाई आप इससे गलत चीज आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ केमिकल है, वो सिर्फ आपको एक केमिकल सुंघा रहे हैं। तो अगर आपको एयर फ्रेशनर की जरूरत है तो प्लीज उसकी जगह कोई भी नेचुरल ऑयल का इस्तेमाल कर ले, नहीं तो आप कपूर होता है, कैम्फर होता है, वो रख लीजिए, वो बहुत अच्छा फिटकरी पानी में डाल के रखिए, उससे भी भैया बहुत अच्छा कमरे में दुर्गंध खत्म होती है। कुछ बड़े शहरों में लोगों ने अपने घर में एयर प्यूरिफायर रखना शुरू किया है। ये इसको अगर आपको हवा अच्छी नहीं मिल रही है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो ये पार्टिकल्स को जो है वो एयर में से निकालने का काम करता है। घर में जितनी भी मोटी कारपेट्स हैं, मोटे कर्टन्स हैं, उसमें बहुत डस्ट इकट्ठा होती है, तो प्लीज अपने घर में मैं सबको बोलता हूं इफ यू कैन नॉट गो आउट ओपन योर विंडो लेट द एटमॉस्फेयर कम इन, क्योंकि अगर हवा सर्कुलेट करेगी तो आपके लिए वो ज्यादा अच्छी होगी और आपके फेफड़ों के लिए भी वो ज्यादा अच्छी होगी। और अगर खिड़कियां खुली होंगी, दरवाजे खुले होंगे, तो आपको किसी भी एयर प्यूरिफायर और एयर फ्रेशनर की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: जैसे आप ये बात कह रहे हैं, ये बात समझ में आती है कि वातावरण के अंदर की हवा उसका एक अपना स्वरूप है जो शुद्ध स्वरूप में है। ठीक है, आज प्रदूषण बढ़ता है, शहरों में ज्यादा है, वो दिखाई देता है, मगर सुबह की हवा जो ताजी है, वो फ्रेश एयर है, उसको घर के अंदर आने देना चाहिए, उस हवा में सांस लेने की हमें आवश्यकता है, ये चीज समझ में आती है। क्या यही एक वजह रही है जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि नहीं सुबह उठ के सैर पे निकलो, सैर पे जाओ, मॉर्निंग वॉक करो, स्ट्रोल करो?
0: भैया जैसा मैंने पहले बोला कि सुबेरे के समय पॉल्यूशन सबसे कम होता है, हल्का सा मॉइस्चर होता है और वातावरण शांत रहता है, हमारा शरीर भी शांत रहता है। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, आजकल तो लोग एकदम टाइट फिट कपड़े पहन के, सर पे बैंड लगा के, हाथ में बैंड लगा के वो वॉक करने निकल रहे हैं,

0: कि भैया आप देख हमारे ओम शांति परिवार में ढीले कुर्ते कुर्ता पैजामा पहने, साड़ियां लूज साड़ी थोड़ा पहने लोग निकलते हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारे शरीर को हमको पकड़ के नहीं रखना है, और अगर टाइट कपड़ा रहेगा तो वो हवा कैसे लगेगी। तो सुबेरे के समय मॉडरेट गति से चलना चाहिए, थोड़े हल्के कपड़े पहनने चाहिए, थोड़े लूज कपड़े पहनने चाहिए कि आपके शरीर को वो हवा लग पाए। किसी भी चिकित्सा में हवा का बहुत बड़ा रोल है भैया, मिट्टी की पट्टी को सुखाने में भी हवा का रोल है, हमारे नहाने के बाद हमारे शरीर को हम तौलिए से पोंछ लेते हैं तब भी उसको सुखाने में हवा का रोल है। हवा हमारे लिए बहुत जरूरी है, और सबसे बड़ी बात उसमें ऑक्सीजन है जिसके बिना हम एक मिनट भी चल नहीं सकते हैं। जो लोग पानी के नीचे डुबकी लगाते हैं वो हवा लेने वापस आते हैं। हम और आप दोनों कुंभ में गए थे और हमने कुंभ में डुबकी मारी थी और मार के हम ऊपर आए थे हवा लेने के लिए। भले ही हम माँ गंगा में थे मगर हमें वायु के लिए बाहर आना पड़ा। तो इसीलिए हवा बहुत जरूरी है।
1: अब हवा की जब बात कही जाती है तो हम तो देखते हैं हवा चारों ओर है, हवा के लिए ना हमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही। और जैसे मैं पहले बता रहा था कि अभी वो दिन नहीं आए कि हवा कोई पानी के बोतलों जैसा बिक रहा हो, अभी तो प्रकृति हमको ताजी हवा दे रही है और हर दिन शुद्ध हवा मिलती है। हम कहीं पर भी रहें प्रकृति से ये तो चीज मिलती ही है। भगवद गीता में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है जिसमें ये बात कही जाती है कि पवनम पवतहाम अस्मिन, यानी अमंग द प्यूरिफायर्स आई एम द एयर, ये बात कही जाती है, यानी जो चीज शुद्ध करने वाली है उनमें से मैं पवन हूँ। ये भगवान के महावाक्य हैं गीता में। प्रश्न उठता है कि क्या प्रकृति चिकित्सा में जब हम शरीर की शुद्धि की बात करते हैं तो ऐसे में क्या पवन का हमारे शारीरिक स्वास्थ्य उसको शुद्ध करने में कोई भूमिका है?
0: भैया आप खुद देखिए, अगर गुजराती में मेरी वाइफ अहमदाबाद से पढ़ी तो बोलती ना पवन चाले छे, तो अगर कहीं पवन चल रही है तो आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा। अगर जैसे शाम के समय गर्मी के समय आप चल रहे हैं और एकाएक हवा का झोंका आपको लगने लगे, माउंट दाबू में भैया पहाड़ पे जब चलते समय हवा अच्छी, कितनी अच्छी हवा चल रही है। मुंबई में हम अक्सर जब वॉक करते हैं समुन्द्र के किनारे और हवा चलती है, अरे वाह कितनी अच्छी हवा चल रही है। तो हवा हमको एक वेल बीइंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमको मेंटल हैप्पीनेस देती है। बहुत छोटी सी बात है भैया, हवा चलती है और शाम के समय गर्मी के समय हम वॉक करने निकले और हवा, अरे वाह क्या हवा चल रही है,
1: ना जाता है
0: ना। और भैया आपने बोला ना कि बोतल में पानी बंद करके मिल रहा है, सिर्फ कोविड के समय हवा को भी सिलेंडर में पैक करके बेचा गया और उसकी बहुत शॉर्टेज थी, और तभी कंपनी वालों ने छोटा छोटा सिलेंडर बनाया था जो लोग घर पे खरीद कर रखे थे, अगर परेशान हो जाएंगे तो ऑक्सीजन सूंघ लेंगे। तो हवा बहुत जरूरी है, शरीर के साथ साथ ये मन को भी खुश करती है, और मन की खुशी से हमारे सबसे पॉजिटिव न्यूरोटॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। इट इज ऑलवेज सेड हैप्पीनेस प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ पॉजिटिव न्यूरोटॉक्सिन्स and anger produces lot of negative neurotoxins. So if you smile, the world smiles with you. तो हंसना अपने आप को खुश करने के लिए भी हवा का बहुत बड़ा रोल है।
1: ये बात अक्सर सुनने को मिलती है, लोग बातों बातों में कह देते हैं कि भाई हवा बदल के तो देखो, कहीं अच्छी जगह जाओ वहां हवा बदलती है तो स्वास्थ्य बदलता है, ये चीज सुनने को मिलता है, मगर कभी इस बात के पीछे के विज्ञान को नहीं समझा, कभी तो इसकी अहमियत को नहीं समझा कि क्या वास्तविकता में सिर्फ हवा बदल देने से इंसान की तबीयत में उसका फर्क पड़ता है, वो कोई बेहतर हो सकता है स्वास्थ्य।
0: भैया एक मेट्रो सिटी जो इंडिया की है उसमें हवा की क्वालिटी, और हमें जो टाइप बी और टाइप सी सिटीज के बारे में बात कर रहे हैं उसमें हवा की क्वालिटी कितनी अच्छी है। आज आप माउंट आबू में है और ये बात आप खुद ऑब्जर्व किए होंगे कि 20 साल में आबू की हवा भी थोड़ी सी डिटोरिएट कर गई, क्योंकि बहुत सारे होटल्स खुल गए, बहुत सारे लोग फन एंड फ्रॉलिक के लिए वहां आने लगे, और लोग कहते नहीं है हम लोग अपना घर बनाने के लिए खुद तो पेड़ काट दिए पर हम दूसरे को कहते हैं पेड़ मत काटो हमको हवा चाहिए, क्योंकि पेड़ ही हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर सकते हैं, हमको ठंडक दे सकते हैं। तो एयर प्यूरिफाइंग में उसका भी बहुत रोल है। कहा जाता है ना, मैदानी इलाकों, जंगल है जहां, वहां हवा अच्छी रहेगी, कहीं समुन्द्र किनारे हवा रहेगी, यहाँ जहाँ पॉपुलेशन कम है वहां अच्छी रहेगी। जो बहुत वेल टू डू है उन्होंने अपने लिए फार्म हाउसेस बना लिए, अरे हम फार्म पे गए थे वहां की हवा बड़ी अच्छी है। तो ये है, या जहां पॉपुलेशन कम होगी, पॉल्यूशन कम होगा, वहां की हवा ज्यादा अच्छी होगी।
1: अब हवा के इस अहमियत को तो हम समझ चुके हैं डॉक्टर साहब, कि हवा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है व्यक्ति के स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखने के लिए। अब वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से व्यक्ति क्या करे, क्योंकि आपने कहा कि हम बंद कमरों में रह रहे हैं, ऑफिस हमारे बंद कमरे, बंद कैबिन्स, बंद क्यूबिकल्स जैसे हैं, गाड़ियों में हम घूम रहे हैं वो भी गाड़ियां कार बंद है, एयर कंडीशन में जा रहे हैं, ट्रेनें बंद हैं, बहुत सारी जगह ये जो बंद बंद वाली चीज है। ऐसे में एक व्यक्ति को अब पूरे 2400 घंटे तो खुली हवा में रहना असंभव सा लगता है, आज कल्पना के विपरीत सी ये बात लगती है, हालांकि 50-60 साल पहले ऐसा नहीं हुआ होगा मुझे यकीन है बिल्कुल। तो ऐसे समय में हम क्या समझें, कितना हम वायु विहार करें, कितना समय हम ताजी हवा में बिताएं, कोई इसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया है कि कम से कम इतना तो करना ही चाहिए?
0: भैया मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट टाइम, इसके लिए टाइम भी बोला गया है 4 AM to 6 AM, इफ नॉट देन आई से 6 to 7 AM, इफ नॉट टिल 8 AM, इफ नॉट टिल 9 AM। जब भी उठिए कम से कम 20 से 25 मिनट बाहर खुले में हवा जरूर ब्रीद इन ब्रीद आउट कर लीजिए, वॉक कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, स्किपिंग कर लीजिए, कुछ जरूर कर लीजिए। अगर आप मॉर्निंग में नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज इवनिंग के समय कर लीजिए। मेरा एक बहुत बड़ा बिलीव है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आपको एलर्जी नहीं है, आस्मा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो प्लीज बाहर निकलिए और 15 से 20 मिनट अपने शरीर को खुली हवा में रहने के लायक बनाइए और खुली हवा में रहिए। अगर आपको एस्मा है तो शाम के समय से बेटर है कि आप सुबेरे के समय एक्सरसाइज करें। तो जरूर करिए, जरूर बाहर निकलिए। मॉर्निंग इज बेटर देन इवनिंग एंड 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टाइम यू कैन स्पेंड।
1: डॉक्टर साहब बातों बातों में ये बात समझ में आ रही है कि हवा जिसे हम टेकन फॉर ग्रांटेड समझ रहे थे वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट सी चीज है, हमारे आसपास है और हवा के बिना तो जीवन संभव नहीं है। ये बात हम समझते हैं, हमारी सांसों को भी हम ऐसे चलाते हैं जैसे हाँ भई ये तो चल ही रही है, मगर जो सांस आ रही है जा रही है उसके लिए जो हवा है उसका शुद्ध होना वो कितना आवश्यक है, ये बात समझ में आई है। और भी इस विषय पर जुड़े हुए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को अगली कड़ी में, अगली बातचीत में मैं आपके साथ करूंगा। आज आप आए और आज ये जो हवा की अहमियत हमारे स्वास्थ्य के लिए है इस पर आपने प्रकाश दिया, समझानी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।
0: नमस्कार। ओम शांति।
1: दोस्तों आज की बातचीत में हमने डॉक्टर राहुल मोदी जी से ये बात सुनी कि कैसे हवा का हमारे स्वास्थ्य पर सीधा असर है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम सुबह उठकर 15 से 20 मिनट आप ताजी हवा में वॉक करें, वायु विहार करें। ताजी हवा का कोई और रिप्लेसमेंट नहीं है। आज हम भले एयर कंडीशन घरों में रह रहे हैं, एयर कंडीशन गाड़ियों में चल रहे हैं, मगर फिर भी जो प्राकृतिक हवा है, जो प्रकृति का वातावरण का जो वास्तविक स्वरूप है, उस स्वरूप में उस हवा का रस आस्वादन करना बहुत आवश्यक है और ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। अगर आप सुबह नहीं कर सकते तो शाम के वक्त भी आप थोड़ा कर सकते हैं, मगर सुबह के लिए आप कोशिश करें कि 15 से 20 मिनट या आधा घंटे तक आप इस ताजे हवा का सेवन करें। आज की बातचीत में बस इतना ही दोस्तों। सहज स्वास्थ्य में कुछ और विषय हैं जो इस हवा से संबंधित हैं, उन सभी विषयों पर बातचीत जारी रखेंगे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है जो आप डॉक्टर रोहन मोदी जी से पूछना चाहते हैं, या सहज स्वास्थ्य में जो बातचीत हुई है उस विषय पर आपके मन में कोई ख्याल है, कोई बात आप रखना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9414151415 पर। आप हमें SMS भी कर सकते हैं, आप ऑडियो मैसेजेस भी भेज सकते हैं। आपके मैसेजेस को और प्रश्नों को कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात सहज स्वास्थ्य में। तब तक के लिए नमस्कार।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: ेषु महिषार्दिनीति संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।
1: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
2: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान न करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
1: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। जब हमने ये समझ लिया कि आप जिस हैप्पीनेस की हम बात कर रहे हैं वो एक स्टेबिलिटी को दर्शाता है, मेरे अंदर की स्टेबिलिटी, कोई भी सिचुएशन हो, व्यक्ति कुछ भी कह रहा हो, कोई मेरा अपना भी कुछ भी क्रिएट कर रहा हो, वो स्टेबल रहना मेरा अपना कार्य है, मैं खुद उस स्टेबिलिटी को क्रिएट कर सकती हूँ, यानी कि मैं अपनी हैप्पीनेस इंडेक्स को खुद स्टेबल कर सकती हूँ, वो ऐसे ऊपर नीचे नहीं होगा। लेकिन सुबह अगर बैठकर या आज अभी बैठकर मैंने ये सोच लिया कि मैं कर सकती हूँ, करा भी, थोड़ी देर के लिए किया भी, लेकिन कौन सी ऐसी बातें हैं, अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दिन भर में होती हैं और मुझे पता ही नहीं चलता कि वो क्यों जो इंडेक्स है वो फिर ऊपर उठना या नीचे जाना शुरू कर देता है। तो इस पर बात करते हैं, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: अगर हम देखें, मैंने तय तो कर लिया कि ठीक है मैं ही क्रिएट करूंगा वो थॉट कि आई एम अ हैप्पी बीइंग, और अगर लास्ट कड़ी को देखें तो हमने उसमें भी बात की थी अपने मेडिटेशन के दौरान भी। दिन भर में क्या हो जाता है ऐसे, कौन सी ऐसी बातें हैं अगर हम उन पर आज देखने की कोशिश करें कि जिनसे वो धीरे धीरे फिर खत्म होने लगती है शक्ति।
1: सबसे पहले अब हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ। ये बिलीफ सिस्टम कि आई वॉन्ट हैप्पीनेस, इससे चेंज हो गया आई एम अ हैप्पी बींग। दिस इट्सेल्फ इज अ बिग शिफ्ट इन द वे आई एम गोइंग टू थिंक। और दूसरा, फिर जब मैंने ये समझा कि मेरी हैप्पीनेस डिपेंडेंट नहीं है, मेरी हैप्पीनेस बाहर से नहीं आनी है, तो आई स्टॉप लुकिंग फॉर इट आउटसाइड। यू नो, अभी तक आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर इट एंड मैं सब कुछ यही सोच कर रही हूँ कि इससे खुशी मिलेगी, इससे खुशी मिलेगी। अब मुझे ये डिसाइड करना है, मुझे खुश रह कर
0: चीज़ें करनी
1: ये है। करना है। यू नो, द फोकस शिफ्ट्स। एक है ये करना है फिर खुशी मिलेगी, और एक है खुश रहना है, मतलब खुश रह कर फिर ये करना है। इवन अ सिंपल थिंग लाइक गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, गो टू वर्क, यू नो हाउ डज इट स्टार्ट। जैसे ही हम सुबह उठते हैं हमारी फर्स्ट थॉट क्या है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हर एक के लिए। एवरी वन नीड्स टू चेक वॉट इज माई फर्स्ट थॉट। अगर मेरी फर्स्ट थॉट ये होती है ओह सुबह हो गई अब उठना है, एंड नॉर्मली मोस्ट ऑफ अस हैव दिस थॉट आई हैव टू गो टू वर्क, तो जो हैव टू सोच कर करेगा वो खुश नहीं हो सकता कभी भी। पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा वाई डू आई हैव टू गो टू वर्क, आई डोंट हैव टू, नो वन इज सिटिंग देयर कि आपको जाना ही है काम पर। लेकिन हम खुद जाते हैं ये सोचकर कि आई हैव टू गो टू वर्क बिकॉज आई हैव टू गेट द मनी, वाई बिकॉज आई हैव टू बाय द थिंग्स, वाई बिकॉज एट द एंड ऑफ इट आई विल गेट हैप्पीनेस। नाउ इट कैन चेंज टू आई एम हैप्पी एंड आई वॉन्ट टू गो टू वर्क। किस लिए जाना है, अभी काम पर जाना था क्योंकि वहाँ से लाना है, वहाँ से लाना है और उससे खुशी आएगी। अब ये हो सकता है कि मुझे काम पर जाना है, वो तो ठीक है जब वो पार्ट तो है ही धन का, लेकिन एक अलग पर्पस के लिए जाना है। एंड दैट पर्पस कुड बी कि ये जो मेरी वैल्यूज है, हैप्पीनेस है, लव, पीस, हर एक के साथ जिसको मैं मिलने वाली हूँ आज सारा दिन में, आई एम गेटिंग द अपॉर्चुनिटी to have an exchange of this energy. I am not going to go to work taki mujhe ye mile, lekin I am going to go to work taki I get the opportunity to share these. Pura purpose shift ho jata hai. And ek first thought jo morning ki hai, ye create karna bahut important hai. Aur agar hum apni vocabulary ko check kare to ye have to word isko nikalna
0: ho. Isko delete hi kar dena chahiye. And somewhere amazing, oh my god, आई कॉन्ट बिलीव इट कि मैं सुबह उठूं और मैं ये सोचूं कि मैं आज अगर काम पर जाऊंगी तो मैं प्यार शेयर करूंगी, मैं हैप्पीनेस शेयर करूंगी। कैन वी डू दैट, या हम ये सोचें कि मेरा बॉस क्या करने वाला है?
1: देखो सारा दिन कैसा बीतता है ना, आज मेरा सारा दिन ऑफिस में कैसा बीतता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग की थॉट कैसी होगी। अगर मेरा ऑफिस का एक्सपीरियंस सारा दिन एक स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे है, देन ऑब्वियसली आई डोंट लुक फॉरवर्ड टू इट। मैं कल क्यों देखूंगी, जैसे आई हैव टू गो, ये एक मजबूरी है। लेकिन इफ़ आई गो टू वर्क ये स्टेबिलिटी के साथ, और सारा दिन मैं जिनके साथ भी मिलूँ मैं उनके साथ ये एनर्जी शेयर करती हूँ, मैं छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब नहीं होती, तो मेरा पूरा दिन कैसे बीतेगा? वो पूरा दिन तो बहुत, इट विल बी वेरी फुलफिलिंग, क्योंकि हैप्पीनेस, लव, ये एक ऐसी एनर्जी है कि जितना हम इसको शेयर करते जाएंगे ये मेरे अंदर सिर्फ बढ़ती जाएगी। तो अगर मैं ऑफिस जाकर 10, 20, 50 लोगों से मिलने वाली हूँ और वो एनर्जी हर टाइम शेयर करते हुए मेरे अंदर बढ़ती जाएगी, विल आई नॉट एंजॉय गोइंग टू वर्क? और उसके लिए भले आप रात को वो थॉट क्रिएट करके सो. ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि रात को हम क्या प्रोग्रामिंग करते हैं वो थॉट हमारे माइंड पर ऑटोमेटिकली पॉप अप करेगी नेक्स्ट मॉर्निंग. सो अगर सुबह एकदम से नहीं याद रहने वाला है, आधा काम तो आप पहले रात को कर दो. रात को प्रिपेयर योर सेल्फ कि मेरा कल का दिन ऐसे, एंड लुक एट सी इट्स अ कॉन्शियस एफर्ट. कुछ भी अपने आप नहीं होगा. हम सोचते हैं हाँ समझ में आ गया ये तो अपने आप हो जाएगा. अपने आप नहीं,
0: यू हैव टू डू दिस.
1: अपने आप नहीं होगा. एक बहुत ब्यूटिफुल चीज है जब हम अपने थॉट्स को देखना शुरू करते हैं, जैसे ही दिखाई देता है कि दिस थॉट इज नॉट वेरी, स्टॉप, चेंज इट. एंड चेंजिंग इट मीन्स सब्स्टिट्यूटिंग इट विथ समथिंग एल्स. हमने पहले ही देखा कि थॉट फीलिंग को जेनरेट करती है. ठीक है, थॉट पर नहीं पता चला कि अच्छी है या बुरी है, फीलिंग पर पता चल जाता है. फीलिंग पर पता चलेगा, वाई नॉट चेंज द थॉट. जैसे ही हम ये थॉट क्रिएट करते हैं, आई हैव टू गो टू वर्क, कैसी फीलिंग क्रिएट होगी हमें ये पता है. अभी अभी करो, आई वॉन्ट टू गो टू वर्क, कैसी फीलिंग क्रिएट होगी. It is immediately happening inside. Let's try tomorrow morning. I want to go to work. क्योंकि जिससे आप शुरुआत करोगे, अगर हम यही सोचकर काम पे जाएंगे कि ये मेरी मजबूरी है, ये मुझे करना पड़ता है, जबरदस्ती है, इस क्या एनर्जी फ्लो होगा, आप किस एनर्जी से वॉक इन करते हैं. सो अभी ये होगा कि अगर सारा दिन अच्छा बीतेगा तब मैं अच्छी थॉट क्रिएट करूँ, अब वो नहीं, मैं अच्छी थॉट क्रिएट

0: करती हूँ
1: तो मेरा दिन अच्छा बीतेगा.
0: So let me start from my tomorrow morning thought, my first thought in the morning. And अगर वो automatically अपने आप सिर्फ नहीं create हो रही, बैठकर उसको करना है. बैठना है, अपने आप से दो मिनट बात करनी है, पहली गुड मॉर्निंग अपने साथ होनी चाहिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड प्रिपेयर, आई वॉन्ट टू गो टू वर्क, आई एम वेरी हैप्पी, नॉट आई हैव टू गो टू वर्क टू अर्न दिस टू गेट हैप्पीनेस. नहीं, इक्वेशन चेंज है, आई एम अ हैप्पी बींग. और वो जो दो मिनट हम रिफ्लेक्शन रोज करते हैं उसको सुबह में करके शुरू करना है. अब आप निकले मॉर्निंग,
1: तो अपने साथ चाहे हम बाकी सारे काम भी कर रहे हैं, दिस कन्वर्सेशन एक्चुअली कैन गो ऑन.
0: आपसे वैसे भी सारे काम करते हुए कन्वर्सेशन अंदर चलती जाती
1: रहती है, यू नो, सो व्हाई डोंट वी कॉन्शियसली क्रिएट दिस कन्वर्सेशन.
0: और इसीलिए हम कहते हैं कि मेडिटेशन कोई दो मिनट, दस मिनट या एक घंटे की चीज नहीं है. मेडिटेशन तो सारा दिन चलती रहती है. क्योंकि मेडिटेशन मीन्स क्या, मेडिटेशन की फर्स्ट स्टेज है अपनी इंटरनल कन्वर्सेशन. मेडिटेशन मीन्स थॉट्स तो चल रहे हैं, लेकिन मेडिटेशन मीन्स अवेयर होके कॉन्शियसली राइट थॉट्स क्रिएट करना, राइट पावरफुल पॉजिटिव हैप्पी थॉट्स. तो ये हमें क्या बैठकर करना पड़ेगा? हम सारा दिन कर सकते हैं, लेकिन क्यों बैठकर करते हैं? क्योंकि सारा दिन में हम कहते हैं पता ही नहीं चलता कितने. तो प्रैक्टिस थोड़ी सी बैठकर अगर हो गई, फिर अवेयरनेस सारा दिन करना बहुत ईजी है. अब आप कल की अपनी जो दिन है ना, उसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके अभी साथ साथ देखते जाओ कि सुबह उठे विद द राइट थॉट. राइट थॉट से उठे, प्रॉमिस योरसेल्फ इमीडिएटली कि अब मेरा बच्चों को उठाने का तरीका, बच्चों को तैयार करने का मेरा तरीका. क्योंकि हम अपनी थॉट्स के साथ जो एनर्जी क्रिएट करते हैं, उसी से एनर्जी भी पूरे घर के अंदर क्रिएट हो जाती है. कॉन्शियसली टेल योरसेल्फ ये सब कुछ आज स्टेबिलिटी के साथ होने वाला है. चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल रिमेन स्टेबल. करना तो वही काम होता है, तैयार करना है, ब्रेकफास्ट देना है, स्कूल तक छोड़ना है. अब उसी को या तो ऐसे करके करो, या
1: बच्चे
0: फिर
1: सुनते ही नहीं है, उठते ही नहीं है, तैयार नहीं
0: होते. पहले से ही तो थॉट क्रिएट कर लेते हैं इतने सारे. अच्छा, बच्चे सुनते नहीं है, उठते नहीं है, एक्सेप्ट इट ना, दिस इज पार्ट ऑफ चाइल्डहुड. मेरे चिल्लाने से कोई ज्यादा थोड़ी हो जाएगी वो चीज. हाँ, ये है एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाएगा. नाउ वंस आई स्टार्ट माय डे, चाहे वो घर पे है चाहे वो ऑफिस में है, हमें कुछ एक बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता. एक जो हमने पिछली बार भी देखी, जजमेंटल. ये तो फंडामेंटल है. आई डोंट नो अगर सबने ट्राई किया हो, नहीं किया हो तो अभी भी करें, कि जजमेंटल होने से हमारी बहुत सारी शक्ति वेस्ट हो रही है.
1: बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, सुबह पता चला आप ऐसे ही हो,
0: अब आपको शाम को ही करना पड़ेगा उसके ऊपर सोल्यूशन. सी, अब क्रिटिसाइज करके कुछ नहीं होने वाला. या तो कल शाम देखना चाहिए था उस बात को, या अब आज शाम को आकर देखेंगे. रॉन्ग एनर्जी देकर उसे भी स्कूल भेजना, या खुद भी वो रॉन्ग एनर्जी क्रिएट करना, जब वो चीज का अब कुछ नहीं हो सकता, तो वॉट इज द पॉइंट अननेसेसरी वी आर क्रिएटिंग. सी, लेट्स बी केयरफुल. जैसे हम बाकी शक्तियों का बहुत ध्यान रखते हैं, रिसोर्सेस का ध्यान रखते हैं, पानी तो हम वेस्ट नहीं करते आजकल बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी हम वेस्ट नहीं करते, पेट्रोल हम वेस्ट नहीं करते, एंड अपनी संकल्प शक्ति वेस्ट करते जाते, वेस्ट करते. तो हमें ध्यान रखना है मेरी एनर्जी कहाँ वेस्ट हो रही है. और ये बार बार से चिल्लाना, चीखना, गुस्सा करना, दिस इज वेस्टेज ऑफ एनर्जी. खुशी चाहिए नहीं, खुशी है उसको वेस्ट मत कीजिए. आपके पास टैंक है उतना पानी का, आप एवं सारी दुनिया में ढूंढ रहे हैं पानी चाहिए, पानी चाहिए, टैंक है. अब सिर्फ ध्यान रखो ना, ऐसे ही उसका नल चलता ना रहे, बह ही जा रहा है वो पानी. तो खुशी है, अब सिर्फ ध्यान रखना है कि अब जजमेंटल, क्रिटिकल, क्रिटिसाइज सारा दिन करते रहना, दिस इज वन बिग वेस्टेज ऑफ एनर्जी. और जजमेंटल में
1: मतलब दूसरों की स्क्रिप्ट लिखना, वो हम बार बार कहते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है, और कितनी बार तो हम पड़ोसी क्या कर रहा है उसके ऊपर भी बात करने लगते हैं. मतलब हम सोचने लगते हैं अननेसेसरली, देखते हुए ही. इनफैक्ट सो मेनी टाइम्स वी डू इट अननोइंगली.
0: हमें इसलिए देखना पड़ेगा, जिस तब जब तक हम देखेंगे नहीं ना एक दिन अपने आप को, हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि हम कितना ज़्यादा करते हैं ये. और ये एक एक वेस्टेज ऑफ एनर्जी है. मैं कितना भी बैठकर औरों के बारे में सोचती रहूँ, औरों ने मेरे हिसाब से चलना नहीं, वही एनर्जी अगर मैं अपने बारे में सोचते में लगा देती, तो आई वुड हैव बीन एबल टू डू मिरेकल्स. आई एम डूइंग माय वर्क and I'm thinking about other people and other people's work and the scenario, duniya mein kya ho raha hai uske, वेस्टेज ऑफ एनर्जी. अब जैसे ही हम जजमेंटल होने लगते हैं लेकिन लोग तो हमारे अनुसार नहीं चलते तो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है. सपोज सीनियर है, जूनियर को बोल रहे हैं बार बार लेकिन वो मानता ही नहीं, तो अब क्या होगा? और फ्रस्ट्रेशन आएगी, और गुस्सा आएगा, हम आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं. दैट इज़ वाई वी से एंगर इज़ लाइक टेम्प्ररी इनसेनिटी. यू गो टेम्प्ररी इनसेन. वाई इनसेन? क्योंकि आप आउट ऑफ कंट्रोल चले गए हैं. पहली चीज़ तो वो इमोशन ने आपको ओवर पावर कर लिया है. सो यू लूज योर क्रिएटिविटी.
1: एक्चुअली अगर हम देखें सचिवानी, हम बाहर लोगों को देख भी क्यों रहे थे? क्योंकि हमें कुछ और थोड़ा दिख रहा था, हमें जो दिख रहा था हम उसी को देख रहे थे. और फिर हमें गुस्सा चढ़ता था कि क्यों नहीं चेंज कर लेता, मुझे समझ में आ रहा है कि ये इसके लिए ठीक है.
0: बिल्कुल.
1: तो सिमिलरली अगर हम अपने आप को देखना शुरू करेंगे तो मुझे वही दिखेगा
0: और मुझे ये समझ में आएगा कि मेरे लिए क्या सही है. जिसको देखते हैं उनके लिए कितना इजी है. ऐसे ही मैं आपको देखूं और मेरे को पता है कि आपके लिए क्या सही है. आप मुझे देखो और आपको ये पता चले मेरे लिए क्या सही है. लेकिन हम दोनों एक दूसरे को चेंज तो नहीं कर सकते. लेकिन दोनों अगर अपने आप को देखना शुरू करें उतने ही टाइम में कि मेरे लिए क्या सही है, वी विल डू वंडर्स. एंड दैट्स व्हाई एट द ब्रह्मा कुमारीज वी से कि व्हेन वी चेंज द वर्ल्ड चेंजेस. हम बदलेंगे तो जग बदलेगा. क्यों? हम एक एक अगर बदलते गए, एक तो हम बदले तो हमारा दृष्टिकोण बदला, जग ही बदल गया हमारे लिए. और प्लस हम अगर एक एक बदलते गए तो विश्व तो परिवर्तन अपने आप हो जाएगा. इट इज सच अ नेचुरल प्रोसेस. लेकिन हमने उसको डिफिकल्ट इसलिए बना दिया, जब आप बदलेंगे तब मैं बदलूंगी.
1: क्योंकि अभी तक मुझे दिख ही आप रहे थे.
0: yes. अवेयरनेस सारी बाहर है ना?
1: और मेरी डिपेंडेबिलिटी भी आपके ऊपर हो रही थी.
0: yes.
1: मेरी डिपेंडेंसी आपके ऊपर थी, मेरा हर चीज आपके ऊपर थी. तो फिर पूरा फोकस
0: yes.
1: आपके ऊपर था.
0: एंड दूसरी चीज जो बहुत बड़ा लीकेज बनती है हमारी खुशी में, वो होती है हमारी एक्सपेक्टेशंस. हमने बहुत सभी से अपेक्षाएं बना कर रखी हैं और जब फिर लोग हमारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरते तो हमारी खुशी का इंडेक्स पूरी तरह से नीचे. इवन अ सिंपल चीज लाइक बस नहीं आई टाइम पर. मेरी एक्सपेक्टेशन थी ना कि बस अगर रोज सुबह 8 बजे आती है तो आनी चाहिए. तो जैसे ही वो टाइम पर नहीं आई, मेरा हैप्पीनेस इंडेक्स फॉल हो जाता. इसी तरह से अगर हम चेक करें हमने जीवन में किन किन लोगों से एक्सपेक्टेशंस बनाई हुई हैं, हाउ मच डू यू थिंक इट विल कम अप टू? हाउ मेनी पीपल डू वी हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम? ऑलमोस्ट
1: एवरीवन. यस,
0: एवरीवन.
1: एंड देन वी कीप ऑन सेइंग वी डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस. व्हाट इज रियली मेंट बाय एक्सपेक्टेशंस?
0: या व्हाट इज मेंट बाय एक्सपेक्टेशंस? एक्सपेक्टेशंस मतलब क्या? एक्सपेक्टेशंस मतलब दूसरे के फ्यूचर बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना.
1: ओके.
0: मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप ऐसा करेंगे.
1: आपके कर्म को ही मैंने,
0: कर्म या बोल व्यवहार जो भी, आई एक्सपेक्ट दैट यू विल डू दिस. मतलब आने वाले भविष्य में, दैट कुड बी द नेक्स्ट मिनट और इट कुड बी व्हाटएवर, आप क्या करने वाले हैं उसको मैं पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेती हूँ.
1: तो मुझे आपसे ये उम्मीद ना थी, ये कहते थे.
0: एक्जैक्टली. That's the point. तो आपको खुद को भी नहीं पता.
1: जब वो हो जाता है तब हम कहते हैं कि मुझे आपसे ये उम्मीद न थी.
0: तो मैंने आपका फ्यूचर बिहेवियर ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर लिया है. एंड जब अगर आपका फ्यूचर वो नहीं हुआ जो मैंने प्रेडिक्ट किया था, देन आई विल से यू डिड नॉट मीट अप टू माई एक्सपेक्टेशंस. तो अब आई हैव टू स्टॉप और अपने आप से लॉजिकली पूछना पड़ेगा, कितना इंटेलिजेंट आइडिया है ये.
1: हुए माई
0: तो फिर भी ठीक है. हुए माई तो डेफिनेटली इज अ क्वेश्चन. लेकिन फिर भी लोग कहते हैं क्यों एज अ पेरेंट हम एक्सपेक्ट ना करें, एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ मैं एक्सपेक्ट ना करूँ, एज अ टीचर मैं अपने स्टूडेंट से एक्सपेक्ट ना करूँ. एक्सपेक्ट, दैट्स वाई इट्स वेरी, ये एक चीज है जिसको लेट गो करना बहुत डिफिकल्ट.
1: एक्चुअली वो तब तक नहीं पता चल पाता जब तक कि वो फेल नहीं होता कि मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे.
0: yes, लेकिन आप सारा दिन में देखना ना, सपोज मैं आप, एंड एक्सपेक्टेशन किस आधार पे भी है, बेस्ड है कि जैसे आप जिस तरह से बोलते आए हैं मेरे साथ, कल भी आप इसी तरह से बात करेंगे. लेकिन अगर कल आपने एक अलग तरह से बात कर ली, I say, I did not expect this from you. So expectation मतलब मैंने पहले ही सोचा हुआ था कि कल आप इस तरह से बात करेंगे, ये आज आपने different तरह से कैसे कर लिया. So I did not expect this from you. तो किसी के past के साथ उसको compare करना कि ये जैसे करते आए हैं जैसा वैसे ही करेंगे, या जो आपके belief systems पहले थे आप वैसे ही चलेंगे, ये मैं पहले से ही दूसरे के लिए डिसाइड कर लेती हूँ. और फिर जब वो वैसा नहीं करते हैं, आई फील वेरी वेरी let down.
1: Hurt, yes.
0: Very let down. And wo hurt, phir sadness and phir anger. Anger bhi hai nikalta. Hmm. Outburst to nikalti hai. Ab bahut do baaton mein hum fasate hain. Ek to auron se expect karna, usme bhi bahut challenges. Aur dusron ki expectations ko meet karna. वो भी, ये दोनों चीजें हमारे हैप्पीनेस इंडेक्स को
1: yes, you
0: बहुत
1: ज़्यादा what did you expect of me? मुझसे क्या उम्मीद करते हो, मुझसे क्या चाहिए? बच्चे कितनी बार बोल रहे होते हैं, पेरेंट्स कितनी बार बोल रहे होते हैं?
0: अब दोनों केस में क्या है, इफ यू मीट माई एक्सपेक्टेशंस आई विल बी हैप्पी, एंड अगर मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट करती हूँ फिर आप खुश होंगे,
1: तो मैं खुश हो जाऊंगी.
0: तो दोनों चीज़ों में एक्सपेक्टेशंस का हैप्पीनेस के साथ बहुत डायरेक्ट हमने कनेक्शन रखा हुआ है. और हमें सोचना पड़ेगा कि हमने अपनी खुशी को किस चीज़ पर डिपेंडेंट कर दिया, कि भविष्य में ये क्या करेंगे, कैसे बात करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे, वो मैं पहले प्रेडिक्ट करती हूँ और उसके ऊपर अपनी खुशी को डिपेंडेंट कर देती हूँ, फिर वो वैसा करते नहीं हैं और फिर मैं उदास हो जाती हूँ. Whose fault is this?
1: But it's so natural. See, again, you know, it's now फिर हम बिल्कुल उस deep belief systems पे आ गए हैं जो जिन पर हम वही पूरा मेरा process उसी पे खड़ा है कि जो आप मुझसे एक तरह से behave करते हुए आ रहे हो, एक तरह से बात करते हुए आ रहे हो, अगर आप मुझसे अलग तरह से बात करोगे तो it's actually it's so natural that it hurts me.
0: See, it's so natural it hurts me. It's so natural I get hurt.
1: I get hurt, yes.
0: Belief system change karne na apne sare. I didn't hurt you.
1: I think language.
0: I just changed my behavior. Ye bahut critical ho jata hai ki future prediction par apni khushi ko आधारित कर दिया है, वो खुशी कैसे स्टेबल होगी.
1: तो ये इस बिलीफ
0: क्योंकि वो तो एक भविष्य का प्रिडिक्शन है ना, दिस इज लाइक एन एस्ट्रोलॉजी के मैंने भविष्य का आपका प्रिडिक्शन कर दिया और उस पर अपनी खुशी को बेस कर दिया और फिर अगर वो सही नहीं निकली तो मेरी खुशी गई ऐसे, एंड फिर मैं उसका ब्लेम किस पर डाल देती हूँ. यू डिड नॉट मीट अप टू माई एक्सपेक्टेशंस. नो, मैंने एक्सपेक्टेशंस पहले क्रिएट क्यों की,
1: लेकिन मुझे पता भी नहीं होता ना कि मैंने की हुई है.
0: इसी को तो अब अवेयरनेस रखनी है कि किन किन लोगों से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हम रखते हैं.
1: ऐसे हम कटते जाएंगे फिर सबसे.
0: नहीं, कटते क्यों जाएंगे हम सबसे. आपको पता है हमारे रिलेशनशिप्स कितने अच्छे हो जाएंगे अगर हमने एक्सपेक्टेशंस नहीं रखे. क्या होगा,
1: एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखी. सपोज बच्चे के साथ अगर हमने नहीं रखी तो आई डोंट इवन एक्सपेक्ट कि ईदर यू गोइंग टू गिव मी रिस्पेक्ट इवन दिस मच. दिस इज आल्सो एक्सपेक्टेशन.
0: अच्छा, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं. एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि आपने कहा एक्सपेक्टेशंस रखना नेचुरल है, लेकिन क्या डिटैच्ड एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस रखेंगे
1: तब भी ठीक, नहीं भी किया तब भी,
0: लेकिन अगर नहीं किया तो हम ऐसे नहीं जाएंगे. ये तो कर सकते हैं साथ साथ या ये नहीं कर सकते.
1: आई थिंक सो यस,
0: क्योंकि नहीं तो फिर हम ऐसे ऐसे
1: होते रहेंगे.
0: अगर हमें अपने जीवन
1: गुड, यू गिव अस वन सम ब्रीदिंग स्पेस, वी कैन डू दैट.
0: ये तो कर सकते हैं.
1: इवन हस्बैंड ने भी अगर बुरे तरह से रिएक्ट किया, मतलब अच्छा वाला प्यार से बात करते थे और आज आके ऐसे गंदे तरीके से रिएक्ट किया, तो हम परेशान नहीं करेंगे अपने आप को.
0: वो तो हो सकता है ना, क्योंकि जैसे ही आप वो करोगे तब हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस फिर मीट भी हो जाएंगे कि वो आपकी स्टेबिलिटी से वो भी जल्दी से ठीक होकर ही विल कम बैक टू. सी, इवन सेइंग आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, दिस इज अ वोकैबुलरी विच सेज डू इट अकॉर्डिंग टू मी. जो मुझे चाहिए आप अपने जीवन को वैसा. सी, हम क्या होता है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस मीट करने की कोशिश में कहीं ना कहीं हम अंदर बहुत सफोकेट होने लगते हैं हम, और फिर हमारी वोकैबुलरी भी ये कहती है मैं उनके लिए ये कर रहा हूँ, मैं उनके लिए ये कर रहा हूँ. इमेजिन अ लाइफ लाइक दिस, मैं इनके लिए ये कर रहा हूँ. नहीं, अगर किसी के कहने पर आप कुछ कर भी रहे हैं तो वोकैबुलरी शुड बी मुझे अच्छा लग रहा है इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ. क्योंकि अगर मैं आपके लिए कर रहा हूँ ना और फिर अगर आप मेरे से खुश नहीं हुए तो आपको पता है मैं कितना रिजेक्टेड फील करने वाले हूँ उसके बाद.
1: नो, बट इफ आई वांट टू मीट योर एक्सपेक्टेशंस, यू नो, सपोज मुझे पता है
0: आई वांट टू मीट योर एक्सपेक्टेशंस. इफ यू वांट टू मीट माय एक्सपेक्टेशंस, सबसे पहले आपको उनको अपना एक्सपेक्टेशंस बनाना पड़ेगा. सी, अगर एक पेरेंट्स बच्चे से कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर बच्चा ये सोच सोच कर करेगा मैं उनके लिए कर रहा हूँ, मैं उनके लिए कर रहा हूँ, आई डोंट थिंक इट्स द राइट एनर्जी. अगर बच्चे को पेरेंट की वो बात अच्छी लग रही है, समझ में आ गई है, एक्सेप्ट कर लिया, अब मैं अपने लिए कर रहा हूँ।
1: लेकिन बच्चा जो है समझता है कि मेरे लिए ये ठीक नहीं है। सपोज एनडीए में जाना, मेरा मन है एनडीए में जाने का, पेरेंट ने मना कर दिया नहीं जाना, बच्चा मान जाएगा कि ठीक है, क्योंकि वो बहुत पेन में चले जाएंगे, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसे नहीं पसंद था, बट ही एक्सेप्टेड पेरेंट्स वर्डिक्ट, यू नो, पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस, और उसने वो किया जो वो चाह रहे थे, बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू सी।
0: नहीं, वो करने से पहले उसको अपने साथ सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी बात, दोनों में से एक तरफ डिसीशन लेने से पहले या तो बात करके उनके साथ अपनी बात शेयर करके आप सॉर्ट आउट कर लो, लेकिन अगर आप उनकी बात को स्वीकार कर रहे हो, आप उसको तब तक नहीं करो जब तक आपने उसको अपना नहीं बनाया। सी, इफ आई रिस्पेक्ट यू, या मैंने आपकी खुशी के लिए कर लिया, चलो आपने कहा पेरेंट्स बहुत हर्ट हो जाएंगे, मैंने आपके लिए किया ना, लेकिन मुझे अपने आप को कहना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा ये कि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये खुश हो, और उसके लिए मैं ये करना चाहता हूँ। इट हैज़ टू बी मी। इफ इट इज़ नॉट माई डिसीशन, आई विल बी इन पेन थ्रू आउट व्हाइल आई एम डूइंग इट। लेकिन अगर मैंने उसको अपने लिए कर लिया, फिर उसकी जिम्मेवारी, उसमें जितना एफर्ट चाहेगा। देखो, खुश रहकर कैसे करोगे, बात ये हो रही है खुश रहकर करम करना।
1: अगेन ओके, मैंने इसलिए किया कि मेरे पेरेंट्स खुश हो जाते और उससे मुझे खुशी मिल रही है,
0: लेकिन अब मैं अपने लिए ये कर रहा हूँ।
1: ओके, मैंने किया क्योंकि मुझे पता था ये करने से मेरे पेरेंट्स को खुशी मिल रही थी, विच वॉज गिविंग मी हैप्पीनेस, फाइन। फिर काफ़ी टाइम बाद मैंने किया, तो मेरे पास वो बात तो रही कि मैंने इसे अपना थॉट, अपनी सोच तब बनाया था, क्योंकि तभी तो मैं उसमें एक्सेल कर पाऊंगा। अगर मैंने उस अपना बनाया होगा, मैं उसे एक्सेल भी कर जाता हूँ, लेकिन ये थॉट तो मेरे साथ ही रहा कि मेरे पेरेंट्स की खुशी इसमें थी और इसीलिए मैंने भी किया था।
0: लेकिन आपने सोच समझ के उस टाइम किया था। देखो, उसके बाद एक बार उसने आपने उस चीज़ को अपना बना लिया, आपके पेरेंट्स उस इक्वेशन से बाहर हो जाते हैं।
1: Because it is between you and the work.
0: Yeah, when whatever decision आपने जो निर्णय लिया अपनी लाइफ में, चाहे वो करियर का है, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप्स का है, जब तक, आई नो वन ब्रदर जिनका एक रिलेशनशिप था, ठीक है, द मदर डिड नॉट लाइक द आइडिया, द मदर डिड नॉट अप्रूव ऑफ द गर्ल, एंड भले उनका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अपने पेरेंट्स के लिए उन्होंने उस रिलेशनशिप को गिव अप किया, और ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है आज। लेकिन अब भले वो दूसरी तरफ सेट भी हो जाते हैं, कहीं और शादी हो जाती है, वो कॉन्स्टेंटली वो थॉट इतना डीप है माइंड पर, क्या मैंने सही किया या नहीं किया, लेकिन मेरी खुशी तो वहाँ थी, मैंने ये नहीं किया, मैंने अपनी मदर के लिए किया, अगर बार बार मैंने अपने पेरेंट्स के लिए ये किया, मैंने अपने पेरेंट्स के लिए किया, कहीं ना कहीं आपने, पहले तो आप दर्द में रहेंगे फुल टाइम जब तक आपकी वो थॉट है, और वो आपके रिलेशनशिप में आपके पेरेंट्स के साथ वो तो निकल ही आएगा सारा बाहर, मैंने आपके लिए क्या क्या किया, यू नो, एक दिन भी जब सामने वाला जिसके लिए आपने वो किया
1: उसने अगर कुछ गलत किया, हाँ,
0: exactly.
1: क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन उनसे इतनी ज्यादा हो जाती है,
0: स्पेशली अगर मैंने आपके लिए कुछ कर दिया, ये सोच करके मैंने आपके लिए किया, देन आई विल ऑल्सो एक्सपेक्ट के
1: आप वही,
0: एंड अगर आपने फिर नहीं किया, मैंने कहा मैंने आपके लिए क्या क्या किया, और मेरी लिस्ट तो यहाँ टॉप ऑफ द स्क्रीन पे हमेशा रेडी होती है कि मैंने आपके लिए क्या क्या क्या क्या किया, आपने क्या किया, दिस देन बिकम्स मोर लाइक अ बिजनेस एंड इट्स नो मोर अ रिलेशनशिप। फिर वो बहुत दर्द में रहेंगे, तो खुद भी दर्द में रहेंगे, पेरेंट्स के साथ जो एनर्जी एक्सचेंज होगा वो भी दर्द में है, जिस भी प्रोफेशन या जिस भी रिश्ते में जुड़े वहाँ भी दर्द है, और ये सब हो इसलिए रहा था क्योंकि पेरेंट्स को खुशी देने खुशी दे पाएंगे, इतना दर्द क्रिएट करके खुशी दे पाएंगे नहीं। तो टाइम लो, अपने आप से बात करो, समझाओ, जब तक वो चीज़ मेरी
1: अपनी
0: नहीं हो जाती। आपको खुशी देने के लिए भी अगर मैंने किया तो मैंने किया क्योंकि मैं खुशी वो दिन, देन इट्स ओनली मी माय डिसीजन, अदरवाइज आई वुड फील माइट एज वेल नॉट डू इट। ऐसे करने का कोई फायदा नहीं रहेगा जो पूरा टाइम ये माइंड पर चलता रहेगा, आपके लिए क्या, आपके लिए क्या, आपके लिए क्या, वो दर्द क्रिएट करने वाला है। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस हम रखते हैं और एक्सपेक्टेशंस मीट करने के प्रयास में जो सारा दिन लगे हुए हैं, ये भी हमारी स्टेबिलिटी को बहुत ऊपर नीचे करता रहता है। तो एक, एक्सपेक्टेशंस भले रखो कि आप ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मेरी खुशी उस पर डिपेंडेंट नहीं है। उससे क्या होगा, आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे लेकिन अगर वो पूरी नहीं हो पाई
1: तो दैट्स ओके,
0: आप हर्ट नहीं होंगे। सारा रिएक्शन कब आता है, जब हम हर्ट हो जाते हैं, एक्सपेक्टेशन तो साइड पर हो जाती है, लेकिन मैं हर्ट हो गई तब मैं रिएक्ट करती हूँ. हर्ट नहीं अगर हुए तो रिएक्ट नहीं करूंगी, रिएक्ट नहीं करूंगी तो आपको इम्पावर कर सकूंगी कि आप वो कर लेंगे. यू नो, बच्चे को 90% नहीं मिला, लेकिन अगर मैं हर्ट नहीं हुई, गुस्सा नहीं किया, एंड आई गिव दैट लव एंड एक्सेप्टेंस, वो अगली बार और बेटर परफॉर्म कर लेगा. लेकिन मैं, यू डिड नॉट लिव अप टू माई एक्सपेक्टेशंस, तुम्हारे ऊपर मेहनत हम इसलिए इतनी करते हैं, ऑल दिस वोकैबुलरी विल ब्रिंग यू डाउन. एनीथिंग विच ब्रिंग्स मी डाउन, नेक्स्ट इट विल ब्रिंग यू डाउन. And then it's energy of pain.
1: Wonderful. Somewhere it's unexpected to really understand what we have been expecting. बहुत बार हम कहते तो हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि हमारी expectations कितनी high होती हैं और हमारे से जो expectations हैं उन्हें meet करने के लिए हम कितने तत्पर रहते हैं. अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई बात मन में उठ रही है, आपका स्वागत. आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. आने वाली कड़ियों में कुछ और बातें करेंगे. आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

ओम शांति। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में, नई किरण। इस कार्यक्रम में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, आज सदगुरुवार है, 21 मई 2026 आज का तारीख है। राष्ट्रीय शके 1948 31 गते 7 अधिक ज्येष्ठा गुरुवार, विक्रम संवत 2083 अधिक ज्येष्ठा शुक्ल पक्ष पंचमी पष्टी गुरुवार पुनर्वसु आज है। इस्लामी हिजरी 1447 जिलकत जुमेरात नक्षता आज है। इसके साथ ही आज विशेष आतंकवाद विरोधी दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी आज है। तो चलिए आज बात करते हैं चाय के बारे में। वैसे चाय आप सभी पीते भी होंगे और बहुत सारे लोग नहीं भी पीते होंगे। आइए आगे बढ़ते हुए मैं सीधे आपको ब्रह्मा कुमारी के शांति वन में विशेष परमात्मा को भोग लगाया जा रहा है, वहीं चलते हैं, सुंदर अनुभव करते हैं, फिर बातें करते हैं। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। सद गुरुवार है आज, सद सदगुरुवार की आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं करते हैं और परमात्मा सदगुरु की कृपा आप पर बनी रहे ऐसी मंगल कामनाएं करते हुए आइए अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के बारे में बातें करते हैं। और हर एक वर्ष 21 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। पहले ये दिवस विश्व भर में हर साल 15 दिसंबर को विभिन्न चाय

उत्पादकों देशों के द्वारा मनाया जाता था। भारत की सिफारिश पर अब संयुक्त राष्ट्र ने सभी पूरे विश्व में एक ही दिन मुकर्रर किया, वो है 21 मई। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित कर दिया। दरअसल अधिकतर चाय उत्पादक देशों में गुणवत्तापूर्ण चाय उत्पादन का सीजन मई में ही शुरू हो जाता है, इसीलिए 21 मई इस दिन को मुकर्रर किया। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आज फ़ोन नहीं चलेगा तो आप मेरे नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं 94-14-09-22-45, तो आपसे बात भी हो जाएगी। और आप, क्योंकि वो फ़ोन अभी कुछ उसका काम चल रहा है, आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को सीधे ले चलता हूँ एक बहुत ही खूबसूरत गीत की तरफ। और ये गीत आपको परमात्मा की याद दिलाएगा, तो निश्चित तौर पे आप इसे अनुभव कीजिए। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: يوم يوم نهرام بلي من جاديش يام جيش يرام جاديش يام جيش يرام بلي من جيش يرام يه بجنة ده
1: क्या शुरुआत कैसा है शुरुआत कैसा है इसका
0: शुरुआत है कण कण में है कृष्णा अच्छा। रोम रोम में राम
1: अच्छा
0: कण कण में कृष्णा रोम रोम में राम बसने वाले मन में मन जय श्री कृष्णा जय श्री राधे श्याम ये है भजन सर ये हो जाएगा तो खुशी आ जाएगी सभी साथियों को मेरा प्यार बड़ा नमस्कार नमस्कार सर
1: नमस्कार नमस्कार नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप सुनाए हैं रेडियो माधवन 107.8 एफएम। चलिए कण कण में है भगवान ऐसा गीत कृष्णा कण कण में है कृष्णा। तो चलिए कोशिश करता हूँ मैं मुझे मिल जाए आप सुनाए हैं रेडियो माधवन 107.8 एफएम पर। जी हाँ नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोगों से बातें होती हैं। और कहा जाता है कि जब हम लोग आंतरिक खुशी के साथ जीना चाहते हैं तो सांसारिक चीज़ों पर ना देखते हुए अपनी अंतर चेतना को देखें और उस सद्गुरु परमात्मा को भगवान को देखें तो जीवन सुखमय हो सकता है। सुनते रहो मुस्कराते रहो

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। आशा करूंगा आप सभी को अच्छा लग रहा है और बड़ा ही प्यारा सा कण कण में श्री कृष्ण ये सुंदर सा भजन आपने सुना। और आइए इसके साथ ही मैं आप सभी को ले चलता हूं एक बहुत ही सुंदर इंटरव्यू की तरफ, जो साक्षात्कार हमने लिया है और संगरौली के ग्रुप आया था मध्य प्रदेश से, और उनका सुंदर अनुभव है जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ कुछ ही पल में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, मैं हूँ कुलदीप सिंह, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: अध्यात्म ज्ञान को जीवन की छोटी छोटी सरल गतिविधियों से समझना, जिससे मनुष्य बिना किसी वेद उपनिषद महाकाव्य पढ़े, बिना अपने कर्मों को परिष्कृत कर सकता है। ब्रह्मकुमारी संस्था के द्वारा 2013 से सिस्टर शिवानी और गीता बहन जी को फॉलो करते हुए मन से मैं जुड़ी, और सब कुछ देखने के बाद मेरे अचानक मुझे कविता लिखने का एक कलम चली, और उसमें से जो भी कुछ निकला वो एक कविता का रूप उसने लिया। लेखा जोखा आपके समक्ष प्रस्तुत है। परमपिता परमेश्वर शिव बाबा को समर्पित ये मेरी कविता। लेखा जोखा। बेटा हो या बेटी हो, इसकी चिंता तुमको ना हो। बेटा हो या बेटी हो, इसकी चिंता तुमको ना हो। बस हाथ जोड़िए मांगो तुम, बैरी कोई पैदा ना हो। ऐसा ना हो वो बेटा जो गोदी में तेरे आया है, ऐसा ना हो वो बेटा जो गोदी में तेरे आया है। हो पुनर्जन्म का शत्रु वो सीने से जिसे लगाया है। समय बदला पोशाक नहीं, जन्मों का ताना बाना है। समय बदला पोशाक नहीं, जन्मों का ताना बाना है। ये नया कोई संबंध नहीं, संबंध तो ये पुराना है। जो अपना तुझको दिखता है, आँखों का बस ये धोखा है। जो अपना तुझको दिखता है, आँखों का बस ये धोखा है। जो कष्ट मिल रहा अपनों से, करनी का लेखा जोखा है। अब उसकी बारी आई है, करने दे उसका काम उसे। है तेरे वश में कुछ भी नहीं, सहना है अब ये वार तुझे। जो वार किया आवेशवश, नुकसान तेरा ही होना है। अब सीने में ये बोझ लिए, जीवन भर तुझको ढोना है। था दर्द दिया तूने उसको, जो सूद समेत अब लौटा है। कालचक्र में हम भूल जाते हैं कि हमने क्या किया, तो जो दर्द दिया तूने उसको, अब सूद समेत वो लौटा है। बदला लेकर ही जाएगा, अपना बनकर जो बैठा है। अब चुप रहना होशियारी है, वरना तू धोखा खाएगा। हम ब्रह्म कुमारी संस्था से ये सीख पाते हैं कि अब हमें अपने जीवन में करना क्या है, कर्म को करते हुए किस तरीके से अपने आप को स्थिर रखना है। तो अब चुप रहना होशियारी है, वरना तू धोखा खाएगा। जितना देकर तू आया था, दुगना देकर वो जाएगा। ब्रह्मांड का ये नियम तू जान, ब्रह्मांड का ये नियम तू जान। क्रिया प्रतिक्रिया में बदलती है, हो सूर्य चमक कितनी भी तेज, वो सांझ पहर में ढलती है। धैर्य रख, चुपचाप तू रह, ये पीड़ा उसकी तब की है। जन्मों का है इंतजार किया, सारी तैयारी अब की है। बस सोच कि अब ऐसा ना हो, फिर से शत्रु पैदा ना हो। मतलब फिर से उसके साथ अकाउंट क्रिएट मत कीजिए शत्रुता का। बस सोच कि अब ऐसा ना हो, फिर से शत्रु पैदा ना हो। जीवन निश्चल पावन सा हो, शत्रु का व्यू विफल सा हो। एकाग्र चित्तु बढ़ता जा, कर्मों को करता बढ़ता जा। निर्देशक ऊपर बैठा है, फल बिना लिए तू बढ़ता जा। जो पात्र बनाया है तुझको, उसमें अपना सर्वोत्तम दे। इन छोटे दुख के शूलों पर चलकर तू मार्ग प्रशस्त कर दे। इन छोटे दुख के शूलों पर चलकर तू मार्ग प्रशस्त कर दे। ओम शांति।
1: नमस्कार, अभी आप सुन रहे थे प्रियंका सिंह चौहान जी को। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: ओम शांति। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र रघुनाथ उत्तुरकर, भारतीय विद्यापीठ पुणे से आपके साथ बात कर रहा हूँ। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

ओम शांति। मैं बीके अर्चना बहन और मैं आपके समक्ष बहुत सुंदर एक परमात्मा याद का गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ।

0: शांति।
1: नमस्कार, आप सुन रहे मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी आप सुन रहे थे अर्चना जी को, बहुत ही प्यारा सा आध्यात्मिक गीत आपको सुनाया उन्होंने। आइए हमारे साथ अभी एक मेहमान विशेष रूप से माउंट आबू का जो शिविर है, आध्यात्मिक शिविर, उसमें इन लोगों ने अपना शिरकत किया है। तो मुस्कान जी हमारे साथ हैं। मुस्कान जी स्वागत है और अपने बारे में बताइए हमें।
2: ओम शांति, मेरा नाम मुस्कान है और मैं एक टीचर हूँ बाय प्रोफेशन।
1: जी
2: जी, मैं सिंगरौली में पोस्टेड हूँ अभी।
1: क्या करते हैं वैसे आप?
2: टीचर, टीचिंग।
1: बना किस सब्जेक्ट में पढ़ाते हैं?
2: मैं प्राइमरी टीचर हूँ।
1: अच्छा,
2: ऑल सब्जेक्ट।
1: ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं बच्चों को?
2: गवर्नमेंट
1: स्कूल है। अच्छा अच्छा, तो इसमें कितने टीचर्स वगैरह हैं?
2: टीचर्स 5 टीचर्स हैं, 2 रेगुलर हैं और 3 गेस्ट।
1: अच्छा अच्छा, कितने बच्चे हैं टोटल?
2: टोटल 150 प्लस।
1: अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो 5वीं कक्षा तक है, चौथी का?
2: मिडिल स्कूल है मैं। हाँ, तो मिडिल के उनको भी पढ़ा देती हूँ, मिडिल स्टूडेंट्स को भी। इंग्लिश मेन सब्जेक्ट तो इंग्लिश ही है।
1: अच्छा अच्छा, तो अपना अनुभव सुनाइए, इस जगह पे आने के बाद आपको क्या महसूस हुआ?
2: अनुभव तो वैसा कुछ है नहीं अभी पहली बार आई हूँ मैं।

0: और यहाँ आके मतलब शांति मिली है मुझे.
1: जी जी.
0: अच्छा मतलब अलग एनवायरनमेंट है.
1: कुछ सुने लेक्चर्स वगैरह आपने?
0: हाँ शिवानी दीदी का यूट्यूब वगैरह में मोटिवेशनल.
1: अच्छा अच्छा. और यहाँ पर सुना आपने कोई लेक्चर?
0: हाँ अभी सुना था.
1: अच्छा, अच्छा.
0: वो डॉक्टर थे जो उन्होंने बताया था.
1: कुछ बातें बताइए हमें जो आपको अच्छी लगी हो, याद हो.
0: उसमें यही था कि एक तो ये अपने आप को शांत रखना है, सिचुएशन जो भी आए उसको अच्छे से डील करना है.
1: बिल्कुल. चलिए आपको रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग सुन रहे हैं, तो एक मैसेज क्या देंगे? संदेश क्या देना चाहेंगे?
0: संदेश तो यही है, बस खुश रहिए. और हाँ एक बार माउंट आबू आना चाहिए.
1: चलिए मुस्कान जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच. तो आइए आगे बढ़ते हैं. मुस्कान जी के साथ संत कुमार केवट जी भी आए हैं. और संत कुमार जी बताइए अपने बारे में, आप क्या करते हैं बताइए.
2: मैं निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी का मैं जिलाध्यक्ष सिंगरौली से हूँ.
1: अच्छा.
2: और हमारी पार्टी बीजेपी के सहयोगी दल में गठबंधन में हम अभी हमारा जो गठबंधन है वो पूरे स्टेट में है और हम उत्तर प्रदेश सरकार में हिस्सेदारी में हैं.
1: अच्छा
2: जी.
1: वैसे इस ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आने के बाद आपको क्या महसूस हुआ? यहाँ माउंट आबू में आप 3-4 दिन से हैं, तो क्या एक्सपीरियंस है वो शेयर कीजिए.
2: वैसे तो मैं इंडिया के हर कोने कोने मैंने घूमा है. हर तीर्थ स्थल में मैं घूमा और काफ़ी मैं धार्मिक प्रवृत्ति का शुरू से रहा. मैंने संन्यास जीवन भी यापन किया है 6 साल पहले.
1: अच्छा.
2: शादी के पहले. और मैं ऋषिकेश से लेकर के हरिद्वार बनारस में 4-5 साल मैंने जीवन यापन किया है. चित्रकूट में मैं रहा. लेकिन जो मैं मुझे यहाँ मधुबन में आकर के जो अनुभूति मिली मुझे, मुझे लगा कि मेरे जिंदगी का जो संसंत था, जो खाली जगह था, वो मेरा पूरा हो गया. और मैं मुझे लग रहा है कि ब्रह्मा बाबा ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं. हो सकता है कि मुझसे भी शायद बड़ा काम कुछ करवाए, क्योंकि मैं जो यहाँ ऊर्जा का एक अनुभव किया, आप मतलब कि मैं यहाँ पर जो बोल रहा हूँ शायद किसी को मजाक लगे, लेकिन मेरे आज्ञा चक्र पर, मुझे पता नहीं था आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र पर ऊर्जा का वाइब्रेशन इतना तेज हो रहा है कि लग रहा है कि मतलब कि अब उसका अनुभव और उसका आनंद जो उस स्थिति में पहुंचता होगा वही जानता होगा. तो मेरे मतलब यहाँ आने के बाद मेरे आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र पर एकदम 24 घंटे में जब से मैं एंट्री मारा हूँ ऐसा वाइब्रेशन फील हो रहा है. लग रहा है कि मतलब मैं एक अलग दुनिया में आया हूँ.
1: जी.
2: और हो सकता है कि ये जो मेरे पूर्व जन्म के संस्कार रहे होंगे और जो मेरी कमियाँ होंगी या जो मुझे कुछ और जो संस्कार होंगे वो हो सकता है कि मेरा पूरा होने वाला है.
1: जी जी.
2: इसी जीवन में मुझे हो सकता है कि ये मेरा जो लक्ष्य है वो पूरा होगा और ब्रह्मा बाबा हो सकता है कि बड़ी जिम्मेदारी समाज और लोक सेवा के लिए
1: देंगे,
2: देने के लिए ये ऊर्जा का अनुभूति करा रहे हैं, संचार करा रहे हैं.
1: चलिए
2: तो बहुत मैं यही चाहूँगा कि यहाँ पे एक बार मैं अपने जितने इष्ट मित्र और साथी हैं, मैं समस्त सिंगरौली वासियों, पूरे भारत वासियों से, और मैं अपने पूरे निषाद पार्टी के समस्त पदाधिकारियों से, और मैं माननीय मंत्री जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि एक बार
1: वो भी जगह पे आकर
2: इस पावन तीर्थ स्थल पर आए और अपने जीवन को सार्थक बनाएं.
1: जी जी. बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया.
2: थैंक यू. ओम शांति.
1: ओम शांति. नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 FM पर. आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है. आइए एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ रही हैं. नमस्कार जी, कैसे हैं आप?
3: ठीक हैं. ओम शांति.
1: ओम शांति. क्या नाम है आपका?
3: आरती तिवारी.
1: आरती जी बताइए हमें कि आप माउंट आबू आकर क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं?
3: मधुबन आके बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बाबा से मिलके बहुत अच्छा लगा। अभी तो उतना हम बाबा से कनेक्ट नहीं थे, कुछ ही महीनों पहले मैंने उनसे अभी जुड़े हुए हैं।
1: अच्छा,
3: लेकिन अभी यहाँ आके हमको ज़्यादा कुछ अनुभव हुआ, बाबा से कनेक्ट हुए और सब कुछ देख के बहुत अच्छा लगा। यहाँ शांति वातावरण, यहाँ का शांति वातावरण, ये सब मैंने दीदी लोग से मिलके सब कुछ बहुत अच्छा लगा।
1: जी जी जी, तो कुछ क्लासेस वगैरह सब अटेंड किया आपने?
3: जी।
1: कुछ चीज़ें बताइए जो अनुभूति हुआ हो किसी क्लास में, किसी चीज़ को सुनकर आपको लगा ये पहली बार मैंने सुना करके।
3: नहीं, सबसे अच्छा तो हमको वहाँ मेडिटेशन वगैरह ये जो कराया गया वो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि ये सब मैंने अब ज़्यादा हमको उसका वो नहीं था, लेकिन मेडिटेशन वगैरह करके बहुत अच्छा लगा। और दीदी लोग का ये सब सुन के अनुभव, उन लोग का बताया सब हमको आगे अच्छा के लिए रास्ता बने हुआ कि कैसे क्या करना चाहिए, कैसे मैंने अपने आप को बदलना चाहिए, कैसे करना चाहिए।
1: जी जी जी, चलिए आरती जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, और आपको यहाँ आकर काफ़ी अच्छा लग रहा है ये आपने बताया, थैंक यू।
3: ओम शांति।
1: ओम शांति। नीतू जी बहुत बहुत स्वागत है, बताइए अपना अनुभव क्या महसूस करते हैं आप यहाँ आकर?
4: अच्छा लगा काफ़ी, यहाँ पे आने के बाद शांति, काफ़ी शांति महसूस हुई।
1: देख सको
4: यहाँ आने के बाद काफ़ी शांति महसूस हुई। अब ये लगा कि अपने आप को चेंज करना है, जाने के बाद चेंज करना है।
1: क्या चेंज करेंगे?
4: मतलब कुछ भी, जैसे घर पे रहता है आदमी तो चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सारी चीज़ें यहाँ आने के बाद ये सब।
1: जी जी, तो आप वहाँ जाने के बाद इसको प्रैक्टिस करेंगे?
4: प्रैक्टिस।
1: चलिए नीति जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया। ओम शांति। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM। सिंगरौली से आए हुए सभी मेहमान अपना अनुभव साझा कर रहे हैं और एक मेहमान हमारे साथ हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका?
5: ओम शांति, मेरा नाम सरिता दुबे है।
1: सरिता जी बहुत बहुत स्वागत है, बताइए अपना अनुभव।

जगा मुझे खुद ही खुद पे होता है नाज, मुझे खुद ही खुद पे हो

0: से
1: जी। सरिता जी सुनाइए अनुभव।
0: ओम शांति। मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था 2015 में, तो फिर उसके बाद मुझे रूम चेंज करके आना पड़ा दूसरे जगह। तो मैं वहाँ आई तो मैं ऐसे ही यूट्यूब पे सर्च कर रही थी, देख रही थी, तो मुझे वहाँ बी के शिवानी का करके ऐसे आया, तो मैंने उनको सुना, शिवानी दीदी को। उसके बाद वो अपना बता रहे थे, सब सारा अनुभव बता रही थी कि ऐसे ऐसे जाइए आप वहाँ, ब्रह्मा कुमारी मेडिटेशन वहाँ पे करवाया जाएगा, वहाँ पे जाइए, और सब कुछ बता रहे थे। तो उनका हमको बहुत अच्छा लगा सुन करके, शिवानी दीदी का। उसके बाद मैं खोजने लगी कि कहाँ पे है ब्रह्मा कुमारी सेंटर। खोजते खोजते 6 महीना बाद जो है हमको मिल गया भोजूबीर में, बनारस में। तो फिर मैं वहाँ जाने लगी। उसके पहले मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा इलाज करवाना, उसके बाद झाड़ फूँक करवाना, सब कुछ करवाए, लेकिन कहीं भी मुझे राहत नहीं मिल रहा था। तो मैं एक दिन, दो दिन का शिवरात्रि व्रत पड़ गया था, वो मैं व्रत की। तो ऐसे ही मैं सोई हुई थी, 4 पहर का पूजा करके जैसे ही मैं सोई 4 बजे, तो मैं क्या देख रही हूँ कि शंकर जी, पहले मुझे पता नहीं था कि शंकर जी और शिव जी में अंतर है। तो मैं देख रही हूँ कि शंकर जी बड़ी बड़ी जटाएं और त्रिशूल जो है ऐसे नहीं लेकर के, सीधा नहीं लेकर के ऐसे चल रहे हैं। उसके बाद बोल रहे हैं कि तुम आओ मेरे पीछे पीछे, मैं तुमको सच्चे परमात्मा से मिलवाता हूँ। मैं उनके पीछे पीछे पीछे पीछे आने लगी। फिर उसके बाद वो गायब हो गए। तो जब मैं रूम छोड़ के जहाँ पे गई थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं रोती थी खूब। तो मैं बोली कि यही बचपन से मैं आपका पूजा कर रही थी, यही आप हमको फल दिए हैं, जाइए आज के बाद मैं आपका पूजा ही नहीं करूँगी। फिर उसके बाद जैसे यहाँ मुझे भोजूबीर सेंटर पे जब मैं गई वहाँ पे, तो कोर्स की फिर दीदी वीदी हमको सब कुछ बताए, लोग मेडिटेशन वगैरह करने लगी। तो मेडिटेशन करते करते एक दिन फिर वही सपना मुझे मेडिटेशन में दिखा कि मैं यही लेके आना चाहता। मुझे लगा कि मतलब ये कैसे ऐसे हो गया। तो फिर उसके बाद मेडिटेशन वगैरह करने लगी, धीरे धीरे मेरे हालत में अपने आप सुधार होने लगा, मैं ठीक हो गई, दवाइयाँ छूट गई, सब कुछ सही हो गया। फिर ये ब्रह्मा बाबा का मैं फ़ोटो लगाई थी, तो मेरे हस्बैंड देखे तो बोले कि ये हटाओ, इनको क्या लगा के रखी हुई है, हटाओ। तो मैं बोली अब कैसे क्या करें, कैसे इनको हम समझाएं। तो फिर मैं तब तक किसी का फ़ोन आ गया, मैं बताने लगी कि ये ब्रह्मा बाबा जो हैं बस ऐसे ही 3 लोग का वो करने के लिए इनको दिखाया गया है, एक ग्लोब दिखाया गया कि इस पे हम आत्माएं रहती हैं, उसके ऊपर जाइए। तो ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा विष्णु और शंकर का सूक्ष्म वो है, उसके ऊपर जो है परम धाम, वहाँ पे शिव बाबा रहते हैं। तो इस चीज़ को मेरे हस्बैंड सुन रहे थे इस बात को, तो फिर बोलो अच्छा ये बात है, ठीक है तब करो तुम। फिर धीरे धीरे उनको जो है देखे कि सब कुछ दवाइयाँ छूट गई, सब कुछ सही हो गया, तो बोले ठीक है तुम आना जाना शुरू करो। तो मैं आने जाने लगी और एकदम मेरी स्थिति में सुधार हो गया, पहले से सारी चीज़ें अच्छी हो गई। उसके बाद से मैंने कम से कम 50 से 100 लोगों को इसमें जोड़ा है, मैंने खुद ले जाके अपने साथ उन लोगों को ले जाके मैंने कोर्स करवाया है।
1: बहुत बढ़िया।
0: और बाबा का अनुभव सबको सुनाती रहती हूँ, सब कुछ बताती हूँ, मतलब ज्यादा से ज्यादा मैं आधा कोर्स बता के ही करवा देती हूँ ले जाने से पहले सेंटर। फिर वहाँ ले जा करके फिर दीदी वीदी आजकल हमको फोन करके लोग बोलिए सरिता बहन हम लोग 5-6 सेंटर खोल दिए हैं, आके थोड़ा सा सेवा करिए, सबको कोर्स करवाइए, अभी तो करवा सकती है। तो हम बोले दीदी ठीक है, वहाँ से आते हैं तो करवाते हैं हम। फिर ऐसे ही चला मेरा सब कुछ बाबा की कृपा से, मतलब क्या बोले हम कि बाबा कहाँ से हमको कहाँ से उठा के कहाँ पहुँचा दिए। बाबा की इतनी बड़ी कृपा है, जितना बोला जाए बाबा के
1: कम
0: लिए
1: है,
0: बहुत ही कम है।
1: चलिए सरिता जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका अनुभव बहुत ही अच्छा सुना है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका।
0: ओम शांति।
1: ओम शांति। तो आइए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आप सुन रहे हैं, आध्यात्मिक अनुभव सभी लोगों का। तो अभी एक और मेहमान हमारे साथ है, नमस्ते, ओम शांति।
2: ओम शांति।
1: क्या नाम है आपका?
2: कुसुम राय।
1: कुसुम जी बहुत बहुत स्वागत है, और बताइए अपना अनुभव, आपको यहाँ आकर कैसे लग रहा है?
2: यहाँ तो मैं 4 बार आ चुकी हूँ, और पहली बार अनुभव तो मेरा बहुत अच्छा था। और जब भी मैं, मतलब जो भी काम मैं कहती थी ना, तो बाबा को ही आगे रख के, कुछ भी अगर नहाने भी जाऊं तो बाबा चलो, कहीं भी जाऊं तो बाबा चलो, तो मेरा सब काम बाबा करते हैं। मतलब कोई भी काम, अगर एक चाबी भी घूम जाएगी ना तो मैं बाबा को बुलाऊंगी। हाँ। तो मैं क्या करती, अभी मेरे बहुत दिन से ना सब जगह आना जाना हो रहा है, मेरी बेटी का ये यहाँ पे सिंगरौली में वो हो गया ट्रांसफर, तो मैं घूमने भी जाती हूँ ना सुबह, तो चार छह जन लोगों को ना बाबा के बारे में बताती हूँ। और वो ना बस में भी मेरे को बोलते हैं कि आप ना अपना ज्ञान सुनाइए। हाँ। जब भी कोई मिल जाए जो सुना है ना, वो मेरे को बोलेंगे आप अपना ज्ञान सुनाइए। मैं बोली नहीं, ये सबका ज्ञान है, बाबा तो सबके हैं। बोले नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है आपका ज्ञान। और उस ज्ञान के माध्यम से ना मेरे को ऐसा लगा कि मतलब मैं सुरक्षित हूँ, मेन पॉइंट। मैं कहीं भी है ना, अभी बहुत दिन से ना मैं अकेले जा रही हूँ आ रही हूँ सब जगह, मैं कभी अपनी जिंदगी में 55 साल की जिंदगी में कभी अकेली नहीं गई, मगर अभी इतना मेरे को हो गया है अनुभव, और बाबा का साथ इतना हो गया कि मेरे को दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है। अब मेरे को ना कभी कुछ नहीं पड़ती, और ऐसा लगता है कि सबकी सेवा करूँ। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, तो मेन पॉइंट मेरा मुरली सुनने का रहता है। मैं कहीं बिलासपुर गई, कोरबा गई, और सबको ना, कई लोगों को ना ज्ञान में भी जोड़ चुकी हूँ। हाँ, और अगर जैसे वो बाई भी आती ना, उसको भी मैंने ज्ञान देके ना, वो अभी रोज जा रही है, मैं इधर आ गई वो रोज जा रही। तो मतलब ऐसा ऐसा है कि मतलब जहाँ भी जाती हूँ ना सेंटर, 8 बजे मैं कभी भी मतलब अपनी मुरली नहीं छोड़ती। हाँ, कहीं भी चली जाऊँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: मेरा पहला लक्ष्य है मुरली सुनना। और मेरी जो सेकंड नंबर की बेटी की शादी हुई ना, तो उसमें मेरे को थोड़ा ऐसा लग रहा था कैसे होगी कैसे होगी, फिर मैं बाबा को छोड़ दी। मेरे यहाँ बारात भी आने वाली थी, मगर मुरली मैंने नहीं छोड़ी। हाँ, बारात आने वाली थी, सब कुछ, पूरा सब कुछ, मतलब बाबा का फर्स्ट बाद में सब। इतने अच्छे से शादी की कि मतलब आज तक मैं बखान नहीं कर सकती।
1: बिल्कुल,
2: मेरे पास तो बहुत सारा अनुभव, क्या क्या बताऊं बाबा के बारे में। इतना ही बस कह के मैं ओम शांति कहती हूं।
1: ओम शांति जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू।
3: ओम शांति, नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आरती कुलवाल। आप सभी के लिए अच्छे स्वस्थ और सुंदर मन की शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा सा जो है एक्सपीरियंस आपने सुना, आध्यात्मिक अनुभव। और इस बीच दयाराम जी ने कॉल किया, याद किया आप सभी को, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। शैली गुड़ीलाल जी ने भी याद किया था, और आप सभी को बड़े प्यार से उन्होंने याद करते हुए गीत भी याद कराया था। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ। आज गुरुवार है, सदगुरुवार का दिन है, और आज खास दिन है, जैसे चाय का दिन है, चाय दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जाता है 21 मई को। तो आइए इस बार बात करते हैं चाय को लेकर, क्या कुछ बातें कर सकते हैं हम। तो एक और दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनसे भी बातें कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार। ओम शांति जी, ओम शांति, बढ़िया बढ़िया, आप सुनाइए आप कैसे हैं?
4: बस अच्छे हैं, सभी बहनों का जो सुनाया, जो सभी बहनों ने अच्छी चीज का जो इसमें सुनाया, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सबने जो अनुभव था बाबा कैसे मिले, बाबा को कैसे याद किया और बाबा को कैसे अपने शायद मन में ले लिया, और बाबा को इतना मानते हैं, ऐसे तो नहीं मानते सर लोग, लेकिन फिर भी जो बाबा का जो काम भी ऐसा है, तो इसी तरह से लोग सभी ने जो इसका सबका अनुभव किया, अनुभव सुनाया, बहुत अच्छा लगा। तो कहते हैं कि कोई भी काम करना है तो सबसे पहले हमारे परमात्मा को याद करके कीजिए, तो हमारा कोई भी काम रुक नहीं सकता है और हमारा काम हो जाता है। तो परमपिता परमात्मा श्री बाबा है, तो दुनिया को, पूरी दुनिया को चलाता है, पूरी दुनिया को अच्छा एक एक्सपीरियंस देता है कि भाई हम है, हमको याद कीजिए, आपका काम सब कुछ हो जाएगा। तो सभी ने अपना अनुभव सुनाया, बहुत अच्छा लगा सर
1: जी।
4: और गुरुवार है तो अच्छा कार्यक्रम भी चला बाबा का, आज के दिन की सभी को शुभकामनाएं सर, और हो सके तो अच्छा गाना बाबा का आपकी पसंद का सुना देना, 9 बजने वाले है समाचार का भी।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
4: आपकी पसंद का कोई गाना सुना देना जी। स्टूडियो का मोबाइल तो स्विच ऑफ आ रहा है क्या?
1: हाँ, वो थोड़ा खराब हो गया है, कल ठीक हो जाएगा, कल या शाम तक हो जाएगा।
5: नमस्ते नमस्ते। चलिए आगे बढ़ते हैं, दयाराम जी भी याद कर रहे हैं, उनसे भी बातें कर लेते हैं। हेलो जी नमस्कार।
6: हाँ जी नमस्कार, ओम शांति। रमेश भाई जी, मैं दयाराम बोल रहा हूँ।
5: जी जी स्वागत है दयाराम जी,
6: आपका रेडियो मधुमेह स्टूडियो में तह दिल से आपका स्वागत है। और आपने जो बहुत ही अनुभव सुनाए हमारे प्रमुख के, तो बहुत अच्छा लगा, बढ़िया लगा। और वो अनुभव हमारे को दिल को छू गए, और हमारे भीतर एक एक हमारे शक्ति की जो किरण है उम्मीद जगा गए है। तो बहुत ही बढ़िया लगा, अच्छा लगा। और सभी सुनने वाले मेरे प्यारे भाई बहन मित्रों को, और हमारे सुरेश भाई है, कंचन भाई है, और सुरेश भाई पिंगवाड़ा है, और हमारे जो बहुत सारे जो रेडियो परिवार है, उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है।
5: जी, जी,
6: आज बाबा का वार सतगुरु है, तो एक सुंदर सा भजन सुनना चाहूंगा।
5: जी जी जी।
6: और आप कोई अच्छा सा भजन सुना देना।
5: बिल्कुल बिल्कुल सुनाते हैं अच्छे से।
6: ओम शांति।
5: ओम शांति दयाराम जी, शुक्रिया आपका। आप सुन रहे हैं रेडियो माधवन 107.8 FM। चलिए मित्रों, ये थे दयाराम जी, सुरेश जी जोटाना से आप सभी को बड़े प्यार से याद कर रहे थे, और जब हम अनुभव सुनते हैं सुनाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। आइए, 8:57 हो रहे हैं और इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के बारे में बातें हो रही थी। चाय दिवस के बारे में अगर बात करें तो चाय हम सबको प्यारी है, मीठी चीज़ सबको अच्छी लगती है, ग्लूकोज अच्छा लगता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप अधिक मात्रा में ग्लूकोज लेते हैं तो दिक्कतें आती हैं, तो मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। लेकिन आप अगर लिमिट में और ज़रूरत के अनुसार चीज़ों को अगर आप लेते हैं तो अच्छी बात होती है। तो चाय भी आप एक हाथ चाय पी सकते हैं, और चाय भी उसके अंदर जो पत्ते हैं या चाय पत्ती हैं उसके ऊपर काफ़ी प्रयोग किया जाता है। अब ये प्रयोग में कुछ कुछ चीज़ें जो है उसमें एडिशनल की जाती, क्योंकि पत्ते तो चाय बागान में तो पत्ते ही मिलते हैं, पत्तों को फिर सुखा के फिर उनके अंदर जो प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस के कारण उसके जो टेस्ट बड्स है वो अलग से उसमें मिलाए जाते हैं, और जिस कारण वो प्रक्रिया के कारण वो जो केमिकल ज़्यादा रिलीज होते हैं या उसमें निकोटिन मात्रा बढ़ जाती है, जो हमारे लिए नुकसान या नशे का काम करता है, तो इस वजह से भी दिक्कतें शुरू हो गई, और ज़्यादा चाय पीने वाले के लिए मुश्किल होता है। इसलिए आप किसी भी अच्छे कंसल्टेंट्स के पास अगर जाते हैं, आप कभी बीमार हो गए तो डॉक्टर आपको सीधा कहता है कि चाय थोड़ा कम कीजिए या बंद कीजिए, या उसके बदले आप काढ़ा पीजिए, या फिर चाय बहुत कम आप लीजिए, ऐसा कहा जाता है। तो इसके पीछे का रीज़न यही होता है। तो आइए अब सीधे ले चलता हूँ मैं आपको समाचारों की तरफ। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कराते रहो।
7: प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
8: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
7: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

0: श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की, जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया, जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख किए। पश्चिम बंगाल लगभग 2200 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, जो कुल 4000 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी, जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और BSF द्वारा वहन किया जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताजा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
3: देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताजा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार ने TMC का कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसने डिक्लेयर किया था कि वो कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगा। तो अभी BJP का कैंडिडेट देवांशु पांडा, तृणमूल CIM का कैंडिडेट कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में अभी मुकाबला हो। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रज्जाक मुल्ला है और सीएम का कैंडिडेट है सोमनाथ कुर्मी।
0: जी जी धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थाई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्रमोहन पटवारी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत के साथ अमरीका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया है।
4: अमरीका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं। इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
0: श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतनेनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में श्रृंखला का 4था और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, करण गौतम और बेन सिद्धार्थ ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की श्रृंखला 1 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ समाप्त की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी लू चल सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा तथा किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन, मजबूत समुदाय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
5: धन्यवाद प्रियंका। एआई से अंतरिक्ष तक भारत इटली साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता को हिंदुस्तान और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने मेलोडी डिप्लोमेसी शीर्षक से लिखा है, मोदी मेलोनी की बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है, यूरोप के 5 देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं जो अमरीकी रवैये से बहुत निराश हैं और स्वतंत्र रूप से दुनिया में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। इस कार्य में उन्हें भारत जैसे विशाल देश की जरूरत पड़ेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण, 330 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर करेगा सटीक प्रहार। पत्र ने नई पीढ़ी के युद्धपोत संघमित्रा के जलावतरण की खबर भी प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सीबीएसई की 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की

यात्रा के बाद स्वदेश लौटे भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ओम शांति, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। आशा करूँगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और यहाँ पर एक जैसे कि हम लोग चाय के बारे में बातें कर रहे थे, और चाय उत्पादन को लेकर काफ़ी जो है काम किया गया है। जैसे आप देखेंगे, चाय उत्पादन और प्रसारण विकासशील देशों में लाखों परिवारों के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत है, और लाखों गरीब परिवारों के लिए निर्वाह का मुख्य साधन है। जो कम से कम विकसित देशों में रहते हैं, चाय उद्योग कुछ गरीब देशों के लिए आय का निर्यात राजस्व का एक मुख्य खजाना है या स्रोत है। और श्रम करने वाले लोग जो हैं गहन क्षेत्र के रूप में, विशेष रूप से दूर दराज रहने वाले आर्थिक रूप से वंचित लोग हैं, उस क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करता है। सिर्फ यही नहीं, चाय विकासशील देशों में ग्रामीण विकास, गरीबी में कमी और खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसलों में से एक है। अगर चाय बागान लगाते हैं तो ये आपको कैश क्रॉप बोलते हैं। सीधे डायरेक्ट आपको जो है ऑन लगते ही आपको जो है कैश देना शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हर किसी के दैनिक जीवन में चाय के महत्व को बताता है, और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस दुनिया भर में चाय के महत्व के बारे में बढ़ाने के लिए, पूरे इतिहास में चाय का मूल्य आर्थिक वस्तु से रहा है। चाय और पैसा दोनों की एक बराबरी यहाँ पर किया जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा जो वर्कआउट है। तो चलिए, चाय आप कितने पीते हैं दिन भर में, फ़ोन करके ज़रूर बताइए 9914092245। जी हाँ, इस नंबर पे आप मेरे को बताइए 9914092245। इस नंबर पे आप कॉल करके ज़रूर बताइए चाय आप कितना पीते हैं। आइए, तब तक आपको एक मस्ती भरा गीत मैं सुनाता हूँ। तुम जो हो सो हो, लेकिन खुदा तो नहीं हो। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: खेलाल हो, बड़े बड़ों की हमने बाबू, अरे कर दी सीधी चाल।
2: क्यों, कैसी कही?
3: तुम लोग जानते नहीं कि मैं कौन हूँ।
1: तुम

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। चलिए, आप चाय कितना पीते हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा कॉल करके। चलिए, आपका इंतज़ार कर रहे हैं 9414-09-2245 इस नंबर पर। आप अगर आप बताएंगे तो हमें खुशी होगी कि आप चाय कितना पीते हैं दिन में। और मंदार रेवदर इस तरफ में अगर कोई रेडियो सुन रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा हमें कि आप वहाँ पर हमें सुन रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के बारे में बात करते हैं। चाय के इतिहास के बारे में अगर मैं बात करूं तो, हेलो जी नमस्कार।
1: हाँ जी नमस्कार, ओम शांति, मैं दयाराम बोल रहा हूँ, लाखनी गुजरात से चिरा गया लाखनी।
0: जी जी जी, बोलिए कैसे हैं आप?
1: बहुत ही अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, और आपकी बातें और मनोरंजन कार्यक्रम गाने बाने सब सुन रहा हूँ, बहुत ही अच्छी बढ़िया चल रही है। और सभी दोस्त भी जुड़ रहे हैं, अपनी अपनी बात भी कर रहे हैं। और आज विश्व चाय दिवस है तो चाय के बारे में जो बात की आपने अच्छी लगी, बढ़िया।
0: जी जी।
1: और मैं बताऊं रमेश भाई, तो मैं दिन में एक तो सुबह चाय पीता हूं और एक दोबारा 9 बजे पी लेता हूं, फिर 3 बजे पीता हूं। ये तो नियमित रूप से 3 बार तो पीता हूं, लेकिन कभी कभी हमारे रिश्तेदारों के वहां जाना पड़ता है और कहीं हमारे सगे संबंधियों के वहां जाना पड़ता है, तो हमें 4 से 5 बार वह चाय पीनी पड़ती है। तो वो हम ज्यादा चाय पीती हैं तो तभी हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम ऐसा होता है कि कहीं हमारे पेट में बढ़तरा होती है और कहीं जलन भी होती है, तो ज्यादा चाय पीने से एसिडिटी ज्यादा बढ़ जाती है। आपकी बात सही है, आपने सही बताया था। लेकिन सुनने वाले सभी मित्रों को मैं कहना चाहूंगा, जितना हो सके आप कम चाय पिए,
0: बिल्कुल
1: तो आपके लिए अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य के लिए बढ़िया रहेगा।
0: जी जी जी, ठीक है।
1: और सुनने वाले सभी को प्यार भरा नमस्कार है, ओम शांति।
0: ओम शांति, ओम शांति। आइए आगे बढ़ते हैं और चाय पर एक बहुत ही सुंदर गीत आपको सुनाते हैं। हाँ जी,

0: चलिए सुरेश जी बताइए आपका चाय का क्या हाल है? चाय पीते ही नहीं आप? अरे जी जी जी,
1: कम से कम रोज की 10-12 बार चाय पीता था, लेकिन जब से मैंने वो बीड़ी बंद कर दी है तब से चाय भी बंद कर दिया है।
0: चल बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर,
1: दोनों साथ में बंद कर दिया। आज 15-17 साल 18 साल हो गए।
0: अरे वाह, अरे वाह,
1: तो दोनों एक साथ में बंद कर दिया। आज से कोई पीने का कोई है ही नहीं।
0: चलो बढ़िया बढ़िया, नशा मुक्त हो गया। चलो

0: कसम आऊंगा।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। चलिए, चाय आपने पी ली है या चाय के बारे में आपने सुन रहे हैं। तो कई बार हम लोग चाय को लेकर काफ़ी जो है चीज़ें हमारे बीच में आता है, और चाय ही हमारे लिए मीटिंग का एक टाइम भी होता है, या जो मेहमान हमारे घर आते हैं उनका स्वागत भी चाय से किया जाता है। तो एक ये आदत हो गई है, लेकिन इस आदत के कारण कई ऐसी चीज़ें भी हमारे जीवन में, हमारा हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, जो हमारे सुरेश जी दानेरे वाले ने याद किया, दयाराम जी ने आप सभी को बताया, और सुरेश जी ने चाय को समझ लिया, उसके साथ में जो नशा है उसको भी उन्होंने छोड़ दिया। धीरे धीरे चाय जब आप ज़्यादा पीने लगते हैं तो वो नशे का काम करता है, क्योंकि उसमें भी निकोटीन होता है, और जो बीड़ी सिगरेट या स्मोक करते हैं, किसी भी तरह का धुआं खींचते हैं, उसमें भी निकोटीन का मात्रा उनको मिलता है, जिसके वजह से वो आदत बन जाती है। और चाय में भी निकोटीन का एक जो है वो पड़ा रहता है, तो वो भी आपको नशे के लत में ले जाता है, और आपको एक टाइम बींग के लिए खुशी देती है, ब्रेन को एक्टिवेट रखता है, अच्छा फील कराता है। तो वो अच्छा फील का चक्कर में जो है वो ज़्यादा अच्छा फील करना चाहते हैं हम, तो फिर बड़ी मुश्किलें हो जाती हैं, वो आदत पड़ जाती है। आदत ना पड़े किसी भी चीज़ का, तो आपको देखना है कि चाय पीना है या नहीं पीना, आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप चाय पीते हैं तो कम मात्रा में पीने से वो आपकी बॉडी जो है उसे मैनेज कर सकती है। सुनते रहो मस्कर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: अबे यार छोटू गेट खोलियो। खोल
1: खोल रहा हूँ भैया, खोल रहा हूँ।
2: अरे हटो।
0: बेबी क्या हुआ? क्या हुआ? क्या
2: कुछ नहीं हुआ यार, मेरी आंटी ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। मेरे मम्मी पापा भी मेरे से बात नहीं कर रहे हैं।
0: कोई नहीं कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं। अरे गेट खोल यार।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं मधुबन 107.8 FM। चलिए, चाय दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए आज के दिन जन्म में उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनका जन्मदिन आज है। बहुत ही पॉपुलर विधि वेता और सार्वजनिक कार्यकर्ता थे सर सुंदरलाल। 1857 में इनका जन्म हुआ। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री मैलक फ्रेजर, 1930 में इनका जन्म हुआ। भारत के बहुत ही पॉपुलर व्यंग रचनाकार शरद जोशी का जन्मदिन भी आज है, 1931 में इनका जन्म हुआ। भारतीय मूल के हिंदी लेखक और ब्रिटेन से ताल्लुक़ रखते हैं नरेश भारतीय, 1940 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। तो चलिए, जिनका भी जन्मदिन आज है उन सभी को चाय दिवस के साथ हैप्पी बर्थडे भी करते हैं तो बहुत सारी शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं जिनका किसी का भी जन्मदिन हो, चाहे आप यहाँ हो, देश में हो, विदेश में हो, पहाड़ों में हो या घरों में हो, सभी को आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं और चाय दिवस की मंगल कामना के साथ हैप्पी बर्थडे टू यू।

0: चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं, सलाम नमस्ते। 4 बजे शार्प मिलेंगे सफर कार्यक्रम में। तब तक आप बने रहिए। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा।
1: भाव स्वभाव और संभावनाओं का अनूठा संगम, ये है नई किरण।

0: की जय।
1: वो पहाड़ देख रहे हो?
2: हाँ, कितना सुंदर है।
1: और उनको देख रहे हो?
2: वो तो रतन मोहिनी दादी है ना।
1: वो इस पर्वत से भी ज्यादा अपने नियमों पे अडिग, उसकी चोटी से भी उच्च स्थिति वाली है। उस पर्वत से जैसे सूर्य दिखाई देता है ना, ऐसे ही दादी जी ज्ञान सूर्य यानी परमात्मा से मिलवाती है।
3: ऐसी असीम शक्ति जिन्होंने समाज कल्याण में समर्पित कर दिया अपना जीवन, आइए सुने उनकी कहानी। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर हर शुक्रवार रात 9:30 बजे कार्यक्रम शक्ति वंदन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

सुबह का समय तब बनता है खास जब उषा आती है अशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार। राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणेशा। कितनी भी बड़ी समस्या हो, अगर युक्ति से चलते हैं तो समस्या से मुक्ति मिल ही जाती है। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ भाई, दीपावली जल्दी ही आने वाली है और घरों में साफ सफाई का काम चल रहा है, तो पित्तल और तांबे के बर्तनों को कैसे साफ करेंगे, ये टिप्स आपको जरूर देंगे, ठीक है। और आज की युवा पीढ़ी शादी तो कर लेती है परंतु रिश्ते टिका नहीं पाते। इस विषय पर चर्चा के लिए तैयार हो ना आप सभी, तो जरूर तैयार रहिएगा। और बनाएंगे गर्मा गर्म कुछ खास। वो क्या, वो सस्पेंस रहेगा भाई। आप आशियाना सुनिए, सब कुछ जान जाएंगे और प्रश्न भी पूछने वाली हूँ, तो तैयार रहिएगा आशियाना में प्रश्न का जवाब देने के लिए। तो अभी सुन लेते हैं गीत, पुनः लौट करके आ रही हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: महिला स्वयं में है शक्ति और इसलिए आपकी सुरक्षा है आपके हाथ ही। कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार के खतरे का आभास हो तो डायल करिए 1090 या 1091। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है कि कितनी भी बड़ी समस्या हो अगर युक्ति से चलते हैं तो समस्या से मुक्ति मिल ही जाती है। कितनी भी बड़ी समस्या हो अगर युक्ति से चलते हैं तो समस्या से मुक्ति मिल ही जाती है। कैसे? तो आज के विचार का विस्तार एक कहानी के साथ करना चाहूंगी स्पष्ट कि एक समय एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठ शास्त्र अध्ययन में बहुत ही निपुण था। उसकी पत्नी बहुत ही सुशील और सौम्य थी। घर में सिर्फ ब्राह्मण और उनकी पत्नी ही रहते थे। इस कारण घर के पूरे काम का बोझ उसके पत्नी पर पड़ता था। कुछ समय बाद काम करते करते पत्नी

अपने घर में पड़े हुए पुराने ताल पत्रों का अध्ययन करना शुरू किया। अचानक एक पत्र में उसे जिन्न को तैयार करने की यज्ञ प्रक्रिया मिली। ब्राह्मण ने खुश होकर के यज्ञ आरंभ किया। कुछ समय बाद यज्ञ की अग्नि से एक जिन्न प्रकट हुआ। काम करने के लिए जिन्न को पैदा किया था, इसलिए उसका नाम काम का जिन्न पड़ा। जिन्न ने ब्राह्मण और उसकी पत्नी को आदर सहित प्रणाम किया और उन दोनों को अपना मालिक माना। परंतु साथ ही साथ जिन्न ने एक शर्त रखी कि उसको सदा कुछ न कुछ काम मिलते ही रहना चाहिए। यदि एक क्षण के लिए भी काम नहीं मिला तो जिन्न ब्राह्मण को खा जाएगा। ब्राह्मण ने जिन्न की ये शर्त मान ली और सोचा कि करने के लिए काम तो बहुत है, इसलिए इसको सदा काम में व्यस्त रखने में उसे कोई परेशानी नहीं होगी। उसी क्षण से जिन्न ने मालिक का काम करना शुरू किया तो ब्राह्मण और उसकी पत्नी तो बड़े प्रसन्न हुए, पर ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। जिन्न को चाहे जितना भी बड़ा काम दो, एक पल में उसे पूरा करके वह ब्राह्मण के पास पुनः आकर के खड़ा हो जाता और कहता कि और कोई काम है, कोई काम चाहिए, कोई काम चाहिए। ब्राह्मण ने जिन्न को बड़े बड़े पतीले, बर्तन, पुराने सामान सब साफ करने के लिए कहा। ब्राह्मण ने सोचा कि ये काम करने के लिए जिन्न को एक दिन तो लगेगा और कम से कम एक दिन के लिए तो वह जिन्न से छुटकारा पा सकेगा। लेकिन जिन्न ने सारा काम एक पल में ही पूरा कर लिया और फिर कहने लगा कि काम चाहिए, कोई काम दो। ब्राह्मण का घर बड़ा था, बहुत ही बड़ा था, सो घर का पूरा काम करके झाड़ू और पोछा करने के लिए कहा गया। ये काम भी जिन्न ने एक पल में पूरा कर लिया और फिर बोलने लगा कि काम चाहिए, काम चाहिए। इस बार ब्राह्मण ने सुराख वाले घड़े दिए और कुएं से पानी भरने के लिए कहा। ब्राह्मण को मालूम था कि ये काम भी जिन्न एक पल में कर लेगा, इसलिए होशियार ब्राह्मण ने एक युक्ति रची। जब जिन्न अपना काम पूरा करके फिर से ब्राह्मण के पास आया तो उसने उसे सीढ़ी उतरने और चढ़ने की आज्ञा दी। अब जिन्न सीढ़ी चढ़ने और उतरने में व्यस्त हो गया। जब तक ब्राह्मण बुलाएगा नहीं तब तक जिन्न वही काम करता रहेगा। जब जरूरत पड़ेगी तब उसे बुलाया जाएगा और काम करने की आज्ञा दी जाएगी। इस तरह से ब्राह्मण ने युक्ति से मुक्ति पा ली और जिन्न को व्यस्त कर दिया। इसलिए प्यारे श्रोता बंधुओं, कहने का भाव यही है कि कितनी भी बड़ी समस्या हो, अगर युक्ति से चलते हैं तो समस्या से मुक्ति जरूर मिलती है। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, जिस पर जरूर गौर करेंगे। और आइए सुनेंगे एक प्यारा सा गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: गुस्सा कैसे आया, ये पूछ रही थी इस घास में काटा है कि नहीं, तो इसने उसको उठा के काटे वाले घास में फेंक दिया
1: पैर में चुप थी। मुझे इसके साथ मजाक करना बहुत पसंद है,
2: मजाक करना अच्छा
1: पर मारती जरूर है
0: और मजाक भी ऐसे ऐसे करती है
1: पिटाई वाली है। फिर लास्ट में मेरे को उसको धुलाई
2: करनी पड़ती है ना।
1: गुस्सा जाता है,
2: गुस्सा मतलब आप लोग को जल्दी जल्दी गुस्सा आता है और जल्दी चला भी जाता है।
3: और आज मुरली में बाबा ने बोला भी था कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए।
1: पर ये माया की दुनिया में थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता
2: है।
0: ऐसा कोई माया नहीं जिसे गुस्सा आए ना, सिवा
1: माया आक्रमण करती है।
2: बड़ों को भी आता है गुस्सा कि सिर्फ बच्चों को गुस्सा आता है?
0: बड़े को आता है,
1: सबको आता है। बोले आपको भी गुस्सा आता है?
2: मुझे भी आ जाता है, मैं भी उसको ठीक करती हूँ, उसको पे काम करती हूँ,
0: बाबा को याद करके मेडिटेशन करके
2: मेडिटेशन करते हैं उसके लिए।
1: छोटे बड़े बुजुर्ग को सबको
2: सबको आता है ना। सबसे ज्यादा खतरनाक गुस्सा किसका होता है?
0: एनिमल्स का।
2: एनिमल्स का
0: मम्मा का ज्यादा,
2: मम्मा का
1: ज्यादा गुस्सा है तो फिर कुछ
0: डंडा
1: मतलब जो भी हाथ की आए वो सीधा फेंक के मारेंगे या फिर आके
0: पिटाई
2: पिटाई। हाँ मेरी भी पिटाई हुई है बचपन में।
1: मजा भी आता है और रोना भी आता है।
0: फिर बाद में मनाने भी आते हैं।
2: मम्मी आती है मनाने के लिए? फिर क्या आप जाते हो मम्मी के बाद?
0: नहीं,
1: मम्मी आती है मनाने।
2: मम्मी आती है?
1: मैंने कोई शैतान नहीं किया, मम्मी ने मारा तो मैं थोड़ा देर रोती हूँ, फिर मम्मी को जाके खुद से सॉरी बोल देती
0: हूँ। क्यों? क्योंकि फिर मम्मा के बिना भी नहीं लगता।
2: बिना
1: मम्मी एक दिन मम्मा से बात नहीं की तो ऐसा लगता है हम दूसरे अल्लाह की दुनिया में आ गए।
0: बोरिंग, बहुत बोरिंग।
2: मम्मी से बात करने के लिए कितना टाइम लगा? कितनी देर आप लोगों ने मम्मी से बात नहीं किया? कितना मैक्सिमम टाइम है वो?
0: मैंने तो 10 मिनट से ऊपर कभी नहीं किया।
2: 10 मिनट और आपका?
1: 5 मिनट
2: आपका?
1: 1 मिनट।
2: 1 ही मिनट आपका?
1: 1 सेकंड।
2: 1 सेकंड, बाप रे, मतलब मम्मी से फटाफट बात करनी होती है ना, चाहे थोड़ा बेलन भी पड़ जाए कोई
1: लगता है बात नहीं करते ना, लेकिन
2: ज्यादा प्यारी मम्मी करती है।
1: मम्मी जब मारती है
4: जब और मैं मम्मी के साथ बात करने लगू ना बहुत देर, मतलब रात हो जाती है बात करते, मतलब बहुत देर तक बात करते,
0: जिंदगी की बात एक साथ
1: लगता है कि पूरा जिंदगी की बात मम्मी को बोलू, मम्मी के साथ ही हमेशा रहू,
0: टाइम स्पेंड करें। हाँ,
1: मम्मी के साथ ही जो करना है करूँ।
3: और अगर कभी मम्मी ने ज्यादा ही मार दिया तो हमको आदत बन जाती, लगता नहीं फिर ज्यादा
2: कोई फर्क नहीं पड़ता।
1: आदत हो गया
3: मुझे, पीठ पापा किसने मारा ना अच्छा लगता है, मसाज होती है उसके लिए मम्मी को बोलती हूँ मैं गाल पे मत मारना, पीठ पे
2: मारना। मम्मी का भी काम हो जाएगा, मसाज भी हो जाएगी।
3: पापा भी बहुत दुलाई देते हैं, पापा मुझे नहीं मारते। कभी ज्यादा शैतानी की तो कभी
1: कभी कभार थोड़ा थोड़ा मारते।
0: मेरे पापा
1: मारते तो ऐसे लगता ही नहीं है कि किसने हमको मारा।
3: जब मेरे पापा मुझे
2: पापा भाइयों के बीच

0: करते हैं कि आपकी करते हैं?
1: भाई मम्मी लोग हमारे करते हैं, भाई लोग
0: वो लोग शादा शादानी करते होंगे पापा लोग उनको फिर
1: और हम भी पापा
2: लोग। लेकिन जो पापा मुझे कभी स्लैप करते हैं तो मैं हंसती हूँ, रोती नहीं हूँ, लेकिन जब मम्मी मारती है तब मैं रोती हूँ।
0: ऐसा क्यों? पापा की स्लैप पे क्यों नहीं रोते हो, मम्मी के पे क्यों रोते हो?
2: क्योंकि पापा हंस हंस की स्लैप करते हैं।
1: हाँ,
2: और ऐसे करते
1: पापा थोड़े धीर मतलब थोड़ा धीरे सॉफ्ट, और मम्मी ज्यादा गुस्सा है तो थोड़ा जोर से चढ़ाते।
0: पापा लोग तेज नहीं मारते, बहुत प्यार से ऐसे थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हैं।
1: हाँ, गुस्सा आता नहीं,
2: गुस्सा देते नहीं। और जब पापा को गुस्सा आता है तो मैं हंसती हूँ।
0: हाँ,
2: क्यों अपनी
1: हंसी आती है उनके?
2: पापा लोग पापा भी अच्छे है पर मम्मी लोग थोड़ा ज्यादा गुस्सा करते हैं। क्या कभी कभार ऐसे भी होता है मम्मी लोग डांटते हैं पर हम मतलब सुनते नहीं है, फिर पापा आते हैं।
0: गलती भी होती है ना।
2: हाँ, फिर ना चॉकलेट वगैरह लेके आते हैं ना, तो पापा हमको मम्मी चले जाते किचन में, पापा झूठी झूठी ना मारने का एक्टिंग करते हैं। रूम में जैसे हमको चॉकलेट डंडा ना डंडा ऐसे पीटते हैं नीचे,
1: पर चॉकलेट देते हैं, चॉकलेट देते
0: हैं मतलब मम्मी के सामने ऐसे दिखाने के लिए, कहीं कहीं और लगाते हैं,
2: चिल्लाने के लिए बोलते हैं
0: आपको
2: कि एक्टिंग करो,
0: एक्टिंग करो कि आपकी पिटाई हो रही है।
2: दो हम जब बाहर आते हैं तो बोले खाकी मजा आया, मैंने बोला हाँ बहुत मजा आया।
0: उनको पता ही नहीं है कि डंडे की जगह चॉकलेट खाई है।
2: और कभी मम्मी मुझे मार रही हो और मेरा भैया घर पे हो, या जब कॉलेज में नहीं होता तो वो घर पे होता है, तो घर पे वो रहा और मम्मी मुझे मार रही है हॉल में, भैया पढ़े करते करते हॉल में आया, तो देखते है कि मम्मी देवेश्री को मार रही है और मम्मी को बोलते मम्मी होर मार।
0: बताओ, मुझे लगा बचाता है आपका तो बड़ा भाई, और पिटाई भी करवाते है कभी कभी ना।
2: हाँ,
0: बचाते ना भाई, छेड़ने में
2: ज्यादा है,
0: बचाता ज्यादा।
1: और अगर पापा ने यदि हमें मारा भी नहीं मम्मी के सामने, बच्चा छोड़ दो, तो मम्मी बोलेंगे आपने ही बिगाड़ा है।
2: हाँ, तो
0: सबकी मम्मी ऐसी, आप भी ने बिगाड़ा है। हाँ, जी पापा लोगों को थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ती है मारने।
2: हाँ, ऐसी बोला आपकी बेटी है ना, आपकी जैसी हुई है, चढ़ा के रखे हो
0: सिर पे चढ़ा के रखा है ना, आप ही ने बिगाड़ा है। आप लोग को याद हो गया ना सारे डायलॉग्स, मम्मी क्या बोलने वाली है पता चल जाता है पहले से।
2: और कभी हम फैमिली मूवी टीवी पे ही देखते रहे, द टूरिस्ट फैमिली, वो एक नवी मूवी आई थी, तो हम घर पे ही देख रहे थे और मम्मी का क्या है, उसको बीच में का स्टोरी देखा ना थोड़ा स्टार्टिंग का, तो आगे का पता चल जाता है।
0: अच्छा,
2: फिर मम्मी को हम मेरा भाई और मैं बोलते
0: बताओ,
2: मम्मी बताओ मैं देखने का क्या।
1: हाँ, मम्मी लोग बता ही देते हैं।
2: हाँ, मम्मी को आगे की पता रहता है, कैसे पता नहीं,
0: कैसे पता नहीं ना, वो बता देते हैं। ओहो, सस्पेंस खराब हो जाता है,
1: मजा नहीं आता, पता चल जाता है। तो
2: फिर हम क्या करते हैं, हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं, जो मम्मी ने नई मूवी देखा है उसको हम लगाते हैं।
0: हाँ, ताकि कोई सस्पेंस नहीं खराब रहता है ना,
2: तो भी मम्मी को पता चल जाता है।
1: हाँ, क्योंकि कुछ वैसा रहता है ना जो हमारे घर के अंदर भी होता है,
0: मतलब
2: और कुछ ऐसी मूवीज होती है जो दूसरी कोई मूवी में वैसा हुआ होता है, वही मूवी में थोड़ा डाला।
1: हाँ, और हर मूवी में यही है कि एंड में जाके अच्छा ही जीत।
2: ऐसे भी होता है, हमें नहीं पता चलता कि मम्मी ने ये मूवी देखा है, मम्मी बोलते हैं ये नहीं देखा मैंने, फिर बाद में वही बोल देते कि मैंने देखा है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है।
0: अच्छा, आप हम इमोशंस के बारे में बातें कर रहे हैं ना, आप लोग को रोना किस बात पे आता है, अपसेट या सैड कब लगा था, कुछ याद है?
2: मैं कल सुबह हुई थी,
0: आज सुबह बहुत सैड लगा हो, रोना आया हो बहुत,
2: कल भी रात को, मैं तो आज सुबह ही हुई थी, मम्मी चले गई थी उसके लिए,
0: तो मम्मी चले गई तो उसमें सारे इमोशंस आ गए, डर भी लगा,
2: रोना भी आया, गुस्सा भी आया,
0: रोना भी आया। और आप लोग को कुछ इंसिडेंट ऐसा याद है क्यों रोना आया था, क्या हुआ था?
2: सुबह थोड़ा पापा बहुत डांट रहे थे
0: तो रोना आया।
2: हाँ, और मम्मी ना मतलब सुबह ना मतलब थके आ रहे, हम आए थे कहाँ से, तो मम्मी ना जो जबरदस्ती स्कूल भेज रहे थे उस टाइम मुझे रोना आया।
0: थक गए थे ना, मन नहीं कर रहा था।
2: हाँ,
0: लेकिन मम्मी को लगा होगा ना पढ़ाई नहीं छूटे, बहुत समय हो गया।
1: कल ट्रेन में मुझे मेरे भाई डांट रही थी, मार रही थी,
2: मार रही थी,
0: इसलिए।

0: भाई से कितना प्यार है ना आप लोग को, सबको एक दूसरे से बहुत प्यार है. अच्छा, बिना मम्मी की डांट के या मार के या घर वालों के बिना, और किसी बात पे कभी रोना आया आप लोगों को, अपसेट हुए हो बहुत
1: हाँ
0: स्कूल में? मे भी डांट या मार
1: हाँ
0: की बात नहीं कर रही मैं, डांट या मार नहीं पड़ी हो, उसके
1: स्कूल में
0: अलावा
1: नहीं.
0: कभी कोई चीज बुरी लगी हो, हर्ट हुए हो आप?
1: हाँ, जब हम सोसाइटी में खेलते तो एक साथ मिलके खेलते, और कभी मेरे फ्रेंड ने मुझे देख के इग्नोर किया
0: इग्नोर किया.
1: तो बहुत गुस्सा आता है, और स्कूल में भी अगर मेरे फ्रेंड ने मुझसे बात नहीं की तो आता ही है.
0: आता है. और आप लोगों को?
2: मुझे तब गुस्सा आता है जब छोटी छोटी बातों पे ये गुस्सा हो जाती है ना, तब मुझे गुस्सा
0: रोना
2: आता
0: कब आया आप लोगों
1: है.
0: को? बहुत अपसेट का फील
1: मुझे
0: होगा.
1: ना मेरे स्कूल में मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे, मतलब उन लोग अपना टीम बना लेते हैं और मुझे अकेला छोड़ देते हैं, और
0: हाँ,
1: मेरी चीज को ही लेके फिर खाते हैं, मेरी चीज से ही कुछ करता है, इसलिए मुझे बहुत अपसेट
0: बहुत बुरा
1: होता है.
0: लगता है ना, हर्ट
1: हाँ,
0: होता है.
1: कि वो पहले मेरे मेरे सारे चीजों का इस्तेमाल करते हैं, फिर मुझे ही छोड़ देते हैं.
2: हाँ, मतलब के लिए
0: मतलब
2: सिर्फ.
0: के लिए
2: हाँ,
0: आप
1: जैसे कि स्कूल गए और बेस्ट फ्रेंड की तबीयत खराब है, तब थोड़ा रुला आता है कि पूरा दिन उसके साथ ही रहते हैं,
2: हाँ, और अगर कोई
1: की बात
2: बेस्ट
1: करते हैं,
2: मुझे तो
1: फिर
2: तब
1: लोग स्कूल भी नहीं आए, फिर हमारे साथ बात भी नहीं करे, तब थोड़ा.
0: तब थोड़ा बुरा
1: और
0: लगता है ना.
1: कभी हमारी जो बेस्ट फ्रेंड है वो स्कूल में नहीं है तो
2: गुस्सा
1: चिंता
2: आता है.
1: होने लगती है. मुझे तो
2: हाँ,
1: गुस्सा आता है बहुत,
0: गुस्सा आता है. क्यों नहीं आई, मैं अकेले क्या करूंगी?
1: इसको क्या
0: हाँ,
1: हुआ
2: मुझे
1: था,
2: नाराज
1: क्या
2: भी आता
1: लगा
2: है,
1: होगा,
2: गुस्सा भी आता है,
1: रोना
2: और
1: भी
2: रोना
1: आता है.
2: भी आता
1: हाँ,
2: है.
0: साथ में होता है सब कुछ.
1: हाँ, ज्यादातर रोना आता है.
0: लेकिन फिर आप लोग उसको कैसे ठीक करते हो, क्या करते हो?
1: वो जब आती है तो बहुत खुश आता है.
2: नहीं, मैं तो मेडिटेशन करके.
0: अच्छा, कितनी देर लगती है, मान लो आपको रोना आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, कितनी देर लगी उसको ओके ओके होने में?
1: जब
0: वन
1: तक
0: सेकेंड.
1: सर नहीं आए तब तक मैं तो पूरी सैड हूँ, जब सर आते हैं तब
0: आंसू
1: तब से
0: पोंछ के, क्योंकि पढ़ाई करनी है.
2: जब तक मैं
0: हाँ,
2: मेडिटेशन ना करूँ तब तक.
0: ओके. और आप
1: 1 मिनट
0: 1 मिनट में अपने आप ही, या कुछ करते हो उसके लिए?
1: अपना.
0: आप रो रहे हो, फिर 1 मिनट में एकदम ठीक हो जाते हो फटाफट?
1: मैं तो, मेरी कोई फ्रेंड होती है और मैं रो रही हूँ, कुछ फनी एक्टिंग करके हंसा देती है.
0: तो ठीक हो जाता है सब कुछ.
1: मेरे को तो मेरे दोस्त ही बनाते हैं, और मुझे 2 मिनट में
2: बना.
1: हंसना आता है.
0: कैसे आपके, कैसे आप कैसे ठीक होते हो?
1: मतलब मैं किसी बात में, सर ने मारा है कुछ भी हुआ तो मैं रोती हूँ ना, तो मेरे दोस्त दूसरे सीट पे बैठते हैं, मैं दूसरे सीट पे बैठती हूँ, वो सर पढ़ा रहे, वो आके तो भी मैं कुछ, मतलब कुछ भी करके हंसाती है,
0: हंसा देता है.
1: पर
0: और
1: सर
0: आप
1: से वो डांट खाती है तो भी इसका कुछ नहीं होता.
0: और आपके फ्रेंड्स जैसे मान लो आपको शामिल नहीं कर रहे किसी चीज में, आपको बुरा लग रहा है, तो फिर क्या करते हो आप?
1: मैं कुछ नहीं करती. फिर मैं, मतलब मेरे भाई लोग भी है स्कूल में, मैं उनके साथ खेलती हूँ, फिर उन लोग जब मेरे से मिलने की कोशिश करते हैं फिर मैं उनको अनदेखा कर देती हूँ, क्योंकि बाद में वो फिर से धोखा देने वाले. वैसे ही मैं खेलती रहती हूँ, मतलब ऐसी बाबा से बात करती हूँ, ऐसे ही मैं अकेला, मतलब बाबा और मैं. मतलब हमारी एक दीदी है, वो इसके क्लास भी पढ़ते हैं, उसका नाम है पलक. तो उसने क्या बोला कि तुमको कोई भी सताए या कुछ भी करे इनको बोलना, मैं उसको समझाती हूँ. तो दीदी का थोड़ा ज्यादा गुस्सा,
2: स्कूल
1: हम उसको ही बोलते तो वो ना
2: और
1: प्रिंसिपल सर को डायरेक्ट जाके बता देती है, प्रिंसिपल सर उनको डांटते हैं.
2: अगर
1: और
2: मैं
1: स्कूल
2: कभी रोती हूँ क्लास के अंदर तो फिर वो लोग भी शांति से रोने का नाटक करते हैं ये देख के.
0: हाँ,
2: और
0: क्यों?
2: स्कूल मनाने के
0: अच्छा,
2: लिए.
0: आपको मनाने के लिए कि हम भी अपसेट हैं, तुम अपसेट
1: हाँ,
0: हो तो.
1: और स्कूल में और हमारे सोसाइटी में कोई कोई बच्चे अच्छे भी होते हैं, कि हम उनको हमारी जो प्रॉब्लम है, हम क्यों अपसेट हैं वो बता सकते हैं. हमारे
0: शेयर कर
1: सोसाइटी
0: सकते
1: में
0: हैं.
1: ऐसी एक लड़की है जिसको, मतलब एक बार मैंने पूछा था, हम एक बच्चे के घर पे थे छोटे, वो हमारा भाई लगता है, हम उसको भाई मानते हैं. तो वो एक लड़की थी, उसका नाम मृदुला है, तो वो आ रही थी और मैंने पूछा कहाँ, मतलब सॉरी जा रही थी, मैंने पूछा कहाँ जा रही है, और मैंने ऐसा किया था गलती से, मेरा हाथ ऐसा चला गया था, वो ऐसी गिरी, बस घुटने को लगा भी नहीं उसके, तभी उसके मम्मी
0: रोने लगी.
1: मेरे को चिल्ला रही है, मेरी कोई गलती नहीं है, तो भी और मैं डाली थी, अभी तो कुछ नहीं लगेगा ना,
0: फिर क्या किया आपने?
1: कुछ नहीं,
0: सुना जब उन्होंने डांटा तो फिर बुरा लगा होगा आपको, क्यों क्यों डांटा मेरे को, है
1: बहुत,
0: ना?
1: और मेरी
2: बिना
1: तरह
2: मतलब
1: कैसे,
2: के डांटा.
0: बिना मतलब

0: नाटी अच्छी
1: पर
0: लगती है ना।
1: ऐसी
0: अच्छा
1: फ्रेंड है कि मैंने मेरी एक दूसरी फ्रेंड थी तो वो भी मेरे साथ थी और एक दूसरी फ्रेंड थी जो मेरे साथ नहीं थी। फिर हम उसको बुलाने गए थे, फिर मैंने ऐसा ऐसा बोला, ऐसा ऐसा हुआ था, तो वो हंसने लग रही है।
0: उसको ये
1: हाँ,
0: सुन के
1: कोई कोई
0: हंसी
1: तो
0: आ गई ना।
1: हंसते हैं। हाँ,
0: आप सुना रहे हो कि आपको गुस्सा आया और वो सुन के हंस रही है।
1: फिर
0: हाँ, ये तो गलत बात है ना। सुनना चाहिए ना ध्यान से अपने फ्रेंड को ही कुछ बोले तो,
1: हाँ
0: है ना, कि भाई उसको बुरा लगा। कोई बात नहीं, आपको नहीं बुरा लगा बट उसको बुरा लगा ये बात सुन के, है ना।
1: ये सुनती भी है और हंसती भी है और रोती भी है और गुस्सा भी
0: फ्रेंड्स
1: करती है।
0: चिढ़ाते भी है ना थोड़ा।
1: हाँ, ये बहुत चिढ़ाती है।
0: हाँ, मस्ती भी करते हैं फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ ना, एक दूसरे को चिढ़ाते भी।
1: ज्यादातर फ्रेंड्स था और
0: लेकिन
1: झगड़ा।
0: शेयर करना, जब कोई शेयर करता है हमसे और उसको बहुत बुरा लगा है तो उसको फिर ध्यान से सुनना चाहिए, है ना, प्यार से सुनना चाहिए, ताकि उसको ऐसे नहीं लगे कि नेक्स्ट टाइम वो हमें नहीं बता सकता,
1: मैं वैसे ही करती हूँ,
0: है
1: कोई
0: ना।
1: मेरे स्कूल में जो मेरा फ्रेंड ही ना हो और वो रोने लग रहे तो भी उसको
0: हाँ
1: संभालना ही पड़ेगा।
0: हाँ सबको, हम सबको, तभी तो हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं ना।
1: हाँ,
0: अच्छा, आप लोग को कभी बुरा लगता है तो शेयर किससे करते हो, बताते किसको?
1: हम दोनों बहनें, हम तीनों।
0: तीनों एक दूसरे को बताते हो।
1: हाँ, मैं मेरे मॉम को बताती हूँ।
0: मॉम को बताते हो, वेरी गुड। आप लोग मम्मी को नहीं बताते?
1: बताते
0: और
1: हैं
0: अगर कोई
1: सारी चीज, मम्मा को बताना चाहिए, बाबा को भी बताना चाहिए। मैं पहले भगवान
2: मैं
1: को
2: ज्यादातर
1: बताती हूँ,
2: मम्मा और बाबा
1: फिर
2: को बताती
1: मम्मी को बताती हूँ और फिर भैया को बताती हूँ।
0: हूँ। आप किसको बताते हो?
2: मैं मम्मी पापा सिस्टर्स
0: जो सबसे पहले
2: सिस्टर
0: मिला, जो सबसे पहले मिला इनमें से, या ढूंढते हो किसी को कि उसी को बताना है?
2: नहीं, सबसे पहले मम्मी को बताती हूँ।
0: सबसे पहले मम्मी को
1: मैं
0: बताते हो
1: सबसे
0: ना,
1: पहले मम्मी को बताती हूँ, फिर
2: फिर
1: पापा को बताती हूँ। नहीं,
2: जाके
1: सबसे पहले बाबा को बताती हूँ, फिर मम्मा को बताती हूँ, फिर पापा को बताती हूँ, फिर इसे बताती हूँ।
0: सबको बताती
1: नहीं, इस तक ही,
0: इस तक, चार लोग, है ना।
1: इसको ही
0: ओके,
1: बताती हूँ।
0: मतलब हमारे इमोशंस जो होते हैं उनको हम एक्सप्रेस करते हैं, है ना, और हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो हमारे हाथों में है।
1: कभी मैं, मतलब मैं नीचे गिर जाऊँ, पत्थर पे गिरी हूँ और खून निकले तो भी मैं हंसने लगती हूँ। मेरे दोस्त बोलते, अरे भाई तेको लगा है, वही
0: तो भी हंसी आती है आपको? दर्द नहीं होता?
1: नहीं,
0: नहीं होता
1: मजा
0: आपको भी?
1: आता
0: नहीं होता
1: है। मैं तो
0: आपको?
1: खेलने
0: मैं
1: लगती हूँ।
2: सीधे बाबा को बुलाती हूँ। मेरी दीदी जब रोती है ना तो मेरे को रोना चाहता है। एक बार मैं साइकिल से गिरी थी, जोर से चला रही थी, ब्रेक भी नहीं था मेरे साइकिल को।
0: ओ फिर
1: डायरेक्ट ऐसे गिरी थी और
0: चोट लगी होगी।
1: इधर लगा था। मैं बोली,
2: मैं भी
1: कुछ
2: साइकिल से
1: नहीं
2: गिरी
1: लगा
2: थी,
1: है,
2: मुझे भी
1: कुछ
2: नहीं
1: नहीं
2: लगा।
0: आपको
2: लगा
0: भी
2: है,
0: साइकिल से लगी?
2: हाँ, तो भी मैं हंस रही थी।
1: अरे मैं तो साइकिल चला रही थी और पीछे देख रही थी, एकदम से जाके मेरी साइकिल पत्थरे से टकरा गई।
0: ओहो,
2: तो फिर
0: फिर
2: जैसे ही मैं गिरी ना, घुटना फूट गया, लेकिन फिर भी मैं खेल रही थी।
0: तो आप लोग को चोटने में तो
2: एक
0: दर्द नहीं होता?
2: नहीं, बाबा को
0: नहीं।
2: बुला
0: क्या
2: लेते।
0: हुआ?
2: हमारे, मैं पहले जहाँ पर रहती थी वहां पर ऐसा थोड़ा सा ढलान है पूरा, फिर वहां से साइकिल चलाई, नीचे आई, मतलब थोड़ा सा बचा था नीचे आने में, धपास, फिर इसे खिसक खिसक के नीचे आई, बहुत चोट लगी थी तब। और एक बार
0: लेकिन
2: ना,
0: चोट लगती है तो दर्द हो सकता है,
2: हाँ, पर
0: पर
2: मैं एक दिन क्या हुआ, स्कूल जा रही थी ना, तो अपना 6 बार गिरी थी। ओ,
0: बाप रे,
2: गिरी
0: इतनी बार में
2: उठी,
0: फिर
2: फिर
0: गिरे
2: गिरी
0: फिर
2: उठी,
0: उठे,
2: फिर ऐसे ऐसे करते
0: कोई
2: करते
0: बात नहीं।
2: फिर यहाँ पर पूरा घाव बन गया था ये।
0: लेकिन ध्यान रखना चाहिए,
2: हाँ,
0: साइकिल जब चलाएं तो
2: कभी
0: ध्यान
2: बाबा
0: रखना
2: को बुला
0: चाहिए।
2: लो। तभी मैंने
0: हाँ,
2: रोया नहीं, तो
0: और
2: किधर
0: स्पीड
2: गई।
0: में बहुत फास्ट फास्ट नहीं
2: हाँ,
0: चलानी
2: नहीं,
0: चाहिए, है ना।
2: मम्मी को
0: अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले अपना ध्यान तो मैं ही रखूंगी ना,
1: हाँ,
0: है ना। अब भगवान भी हमारा ध्यान कैसे रखेगा जब हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो, है ना। आप लोगों ने सुना है एक वो कहावत है, क्या मैं खुद ही भूल गई?
2: जब मेरे
0: जब हम
2: को,
0: खुद अपनी मदद करते हैं तब भगवान हमारी मदद करता है, सुना।
2: जब मेरे को
0: तो
2: चोट लगी
0: इसीलिए
2: थी ना, तब मम्मी जब प्यार कर रही थी ना, तभी मेरे को थोड़ा देख के रोना आया। नहीं, जब मैं गिरी थी ना, मेरे को दो दिन
0: आता
2: फील हो
0: है,
2: रही थी।
0: होता है, चोट लगती है तो रोना आता है,
2: हाँ,
0: लेकिन कहते हैं मुझे कहावत याद आ गई, हिम्मत ए मर्दा मदद ए खुदा। तो इसलिए हिम्मत रखनी है, खुद की मदद करनी है और फिर भगवान भी हमारी मदद करेंगे, है ना। तो बहुत मजा आया आप लोगों से ढेर सारी बातें करके, फिर आप लोगों ने इतनी सारी बातें शेयर की तो और अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं हम सभी, है ना, शेयर करके। तो चलो फिलहाल अपने जो दोस्त हमें जो रेडियो पे सुन रहे हैं वो भी हमारे फ्रेंड्स बन गए हैं, उन्होंने हमसे इतनी सारी बातें करी हैं, उनको भी हम कहते हैं बाय बाय दोस्तों।
1: बाय बाय दोस्तों,
0: रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए,
1: मुस्कुराते

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: विभिन्न विषयों पर स्वामी विवेकानंद जी के व्याख्यानों से हमें पता चलता है कि उनके ज्ञान भंडार का कोई छोर नहीं था। सभी विषयों पर वे धारा प्रवाह बोल सकते थे और उनकी बातें हमेशा सारगर्भित होती थीं। बड़े बड़े विद्वान एवं मनीषियों के साथ बैठकर बिना हिचक वे बातें किया करते थे। केवल अपने देश में ही नहीं, विदेशों में उनके दिए गए भाषणों की सराहना होती थी। वहां वे विद्वानों के सम्मुख भारत की एक नई छवि प्रस्तुत करने में सक्षम हुए थे। सभी चिंताशील श्रोता उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना करते थे। उनके आंखों के सामने एक नया जगत, नई सोच और नया दृष्टिकोण उन्मोचित होता था।
1: ऐसी ही कुछ बातचीतों के अंश हमें अमेरिका की श्रीमती राइट के संस्मरणों से प्राप्त होते हैं। वहाँ वे अंग्रेजों की बर्बरता की कहानी सुना रहे थे, उनकी राज्य लिप्सा और दमन की कथा कह रहे थे। अमेरिका वासी स्तंभित होकर इन इतिहासों को सुन रहे थे।
0: सन 1893 के अगस्त मास के अंत में स्वामी विवेकानंद अमेरिका के एलिस्क्वाम में J.H. राइट के मकान पर ठहरे। न्यू इंग्लैंड के इस शांत ग्राम में स्वामी जी को देखकर वहां के निवासियों को इतना आश्चर्य हुआ कि तुरंत लोगों में इस बात की अटकलबाजी होने लगी कि ये भव्य और आकर्षक व्यक्ति है कौन, ये कहां से आया है। पहले वे इस निश्चय पर पहुंचे कि ये भारत का कोई ब्राह्मण होगा, किंतु उनका व्यवहार उनकी धारणाओं से पूर्ण रूपेण मेल नहीं खाता था। ये ऐसी बात थी जिसका समाधान आवश्यक था, और वे एक मत होकर भोजन के पश्चात इस विचित्र नवागंतुक के प्रवचन को सुनने के लिए उस कुटीर की ओर चले।
2: अभी कल की ही बात है, सिर्फ कल की, 400 वर्ष से अधिक पूर्व की नहीं।
1: फिर उन्होंने एक धीर जाति और उत्पीड़ित राष्ट्र याने अमेरिका के ऊपर की गई निर्दयता और दमन की कहानियां सुनाई, और भविष्य में इसका न्याय निर्णय होगा ये भी बताया।
2: ओह अंग्रेज, केवल कुछ समय पूर्व वे बर्बर थे, स्त्रियों के शरीर पर कीड़े रेंगते थे और अपने शरीर की घिनौनी दुर्गंध छिपाने के लिए वे सुगंध लगाती थी, अत्यंत विभत्स। अब भी वे केवल उस बर्बरता से बाहर निकल भर रहे हैं।
1: उन श्रोताओं में से एक ने कहा,
3: गलत, ये तो कम से कम 500 वर्ष पहले की बात है।
2: और क्या, मैंने नहीं कहा जरा देर पहले, यानी 400-500 साल पहले। मनुष्य की आत्मा की प्राचीनता को दृष्टि में रखने पर इन कुछ 100 वर्षों की क्या गिनती है।
1: उन्होंने कुछ अधिक भावना के साथ तेजी से कहा,
2: वे नितांत बर्बर हैं। वो भयानक शीत और वे उत्तरी जलवायु जन्य अभाव और कष्ट, इस परिस्थिति ने उन्हें जंगली बना डाला है। वे केवल मार डालने की बात सोचते हैं, उनका धर्म कहाँ है। वे उस पवित्र पुरुष का नाम लेते हैं, वे अपने मनुष्य भाइयों से प्रेम करने का दावा करते हैं, फिर वे सभ्य बनते हैं, क्या इसी धर्म के द्वारा? नहीं, ये तो उनकी भूख है जिसने उन्हें सभ्य बनाया है, उनके ईश्वर ने नहीं। मानव प्रेम तो केवल उनकी जिह्वा पर है, उनके हृदय में और कुछ नहीं, केवल बुराई और हर प्रकार की हिंसा ही हिंसा है। मेरे भाई, मैं तुमको प्यार करता हूं, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, और निरंतर वे उसका गला काटते रहते हैं, उनके हाथ खून से लाल हैं।
1: धीरे धीरे उनका स्वर और गंभीर होता गया और वे ईश्वर और प्रकृति की प्रतिशोध की बातें करने लगे।
2: किंतु उन्हें ईश्वर के दंड का भागी बनना पड़ेगा। प्रभु कहते हैं कि प्रतिशोध मेरा है, मैं उसे चुकाऊंगा, और विनाश आ रहा है। तुम्हारे ईसाई कितने हैं? दुनिया के एक तिहाई भी नहीं। उन कोटि कोटि चीनियों को देखो, वे ईश्वर का प्रतिशोध हैं जो तुम्हारे ऊपर उद्दीप्त हो उठेगा। हूणों का एक और आक्रमण होगा, वे समस्त यूरोप को पद दलित कर देंगे, वे एक भी ईंट साबुत नहीं छोड़ेंगे, पुरुष स्त्रियां और बच्चे सभी चल बसेंगे और अंध युग फिर आएगा।
0: उनका स्वर करुणा पूर्ण हो गया, उनकी आंखें जैसे भविष्य को निहार रही थीं।
2: मुझे कोई चिंता नहीं है, दुनिया इससे और अच्छी होकर निकलेगी, किंतु ये सब आ रहा है, ईश्वर का वो प्रतिशोध शीघ्र आ रहा है।
1: शीघ्र? उन सब लोगों ने पूछा।
2: हाँ, इसके होने में 1000 वर्ष भी ना लगेंगे।
0: ओह, 1000 साल। लोगों ने निश्चिंतता की सांस ली। ये सब अभी निकट भविष्य में नहीं होगा। वे कहते गए,
2: ईश्वर प्रतिशोध अवश्य लेगा। तुम्हें ये बात धर्म और राजनीति में भले ही ना दिखाई पड़े, किंतु इतिहास में अवश्य ही दृष्टिगत होगी, और जैसा होता रहा है वैसा ही होगा। यदि तुम लोगों को पीसोगे तो तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। भारत में हम लोग ईश्वर के प्रतिशोध को भोग रहे हैं। उन घटनाओं को देखो, उन लोगों ने अपने निजी लाभ के लिए गरीबों को पीसा। उन्होंने उनकी कातर ध्वनि नहीं सुनी। जब जनता रोटी के लिए पुकार रही थी, तब वे सोने और चांदी के पात्रों में खाते थे, और इसके बाद ही आक्रांताओं ने वध और हत्या करते हुए आक्रमण किया। वध और हत्या करते हुए उन्हें पराभूत कर दिया।
1: श्रोतागण अवाक होकर स्वामी जी की बातों को सुन रहे थे। वे भावावेग में बोलते गए,
2: वर्षों तक भारत बार बार पराजित होता रहा, और उन सब के अंत में तथा सबसे बुरे अंग्रेज आए। तुम भारत में देखो, हिंदुओं ने क्या छोड़ा? चारों ओर आश्चर्यजनक मंदिर। मुस्लिमों ने क्या छोड़ा? भव्य भवन। अंग्रेजों ने क्या छोड़ा? शराब की टूटी बोतलों के टीलों के अतिरिक्त और कुछ नहीं। ईश्वर ने मेरे देशवासियों के ऊपर दया नहीं की, क्योंकि स्वयं उनमें दया नहीं थी। अपनी निष्ठुरता से उन्होंने जनता को नीचे गिराया, और जब उन्हें उनकी आवश्यकता पड़ी, तब उस जनता में उनकी सहायता करने के निमित्त कुछ भी शेष नहीं रह गया था। मनुष्य को ईश्वर के प्रतिशोध में भले ही विश्वास ना हो सके, किंतु वो इतिहास के प्रतिशोध को कदापि अस्वीकार नहीं कर सकता।
0: स्वामी जी भावुक हो चले। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
2: यही अंग्रेजों के ऊपर भी बीतेगा। वे हमारी गर्दन पर सवार हैं। उन्होंने अपने सुख भोगों के लिए हमारे रक्त की अंतिम बूंद भी चूस ली है। हमारी करोड़ों की संपत्ति अपहरण कर ले गए, जबकि गांव और प्रांत के प्रांत भूखों मर रहे थे। अब उनके ऊपर चीनियों के प्रतिशोध की बौछार होगी। यदि आज चीनी उठें और अंग्रेजों को समुद्र में डुबो दें, जिसके की वे पात्र हैं, तो ये न्याय के अतिरिक्त और कुछ ना होगा।
1: इसके पश्चात अपने कथन को समाप्त कर स्वामी जी चुप हो गए। धीमे स्वर में उनके संबंध में लोगों की बड़बड़ाहट शुरू हो गई। वे बाहर से उदासीन से सुनते रहे। कभी कभी वे ऊपर छत की ओर दृष्टि निक्षेप करते और धीरे धीरे शिव शिव दोहराते थे। वो छोटा सा एकत्र समुदाय इस अद्भुत व्यक्ति के शांत धरातल से निकलकर गर्म लावा के समान उबलते हुए विचलित मन से विदा हुआ।
0: वे कई दिन, वस्तुतः केवल एक लंबे सप्ताहांत भर ठहरे। सदैव उनके प्रवचन सजीव उदाहरणों और सुंदर कथाओं से परिपूर्ण रहते थे। उन्होंने एक व्यक्ति की सुंदर कहानी सुनाई, जिसकी पत्नी उसके कष्टों के लिए उसे ही दोषी ठहराया करती, दूसरों की सफलता को देखकर उसे कोसती और उसकी समस्त असफलताओं के कारण उसे ही बताया करती थी। उसने अपने पति से कहा,
4: तुमने इतने वर्षों से ईश्वर की सेवा की है, उसके निमित्त तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारे लिए यही किया है?
5: क्या मैं धर्म का व्यापारी हूँ? उस पर्वत को देखो, वो मेरे लिए क्या करता है और मैंने उसके लिए क्या किया है? तो भी तुझे उससे प्रेम है, क्योंकि मेरी रचना ही सुंदरता से प्रेम करने के लिए हुई है। इसी प्रकार मैं ईश्वर से प्रेम करता हूँ।

0: ایک دوسری کہانی انہوں نے ایک راجا کی سنائی جس نے ایک رشی کو ایک بھینٹ دینے کی اچھا پرکٹ کی۔ رشی نے اسویکار کر دیا، کنتو راجا نے آگرہ کیا اور ساتھ چلنے کی پرارتھنا کی۔ جب وہ محل میں آئے تو رشی نے راجا کو پرارتھنا کرتے ہوئے سنا۔ راجا نے ایشور سے دھن، شکتی اور دیرگھایو کی یاچنا کی۔ رشی نے آشچرے سے سنا اور انت میں اپنا آسن اٹھا کر چل دینے کو تتپر ہوئے۔ اسی سمے راجا نے اپنی پرارتھنا سماپت کر آنکھیں کھولی اور انہیں دیکھا۔ اس نے پوچھا، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے اپنی بھیٹ کے لیے نہیں کہا؟
1: میں ایک بھکاری سے کیا بھیٹ مانگوں؟ آپ تو خود ہی یاچنا کر رہے ہیں۔
2: سوامی جی رائٹ مہودے کے گھر پر کچھ ملنے والوں سے بات کر رہے تھے، ان میں سے کسی نے کہا،
3: آپ کچھ بھی کہیں، عیسائی دھرم مہان ہے، وہ پیڑیتوں کا ادھار کرتا ہے۔
2: سوامی جی نے اس کی اور دیکھا اور شانت بھاؤ سے بولے،
3: انگریز تو عیسائی ہیں، وہ افریقہ کے ابیسینیا واسیوں پر کیا اتیاچار کر رہے ہیں آپ کو نہیں معلوم؟ اگر عیسائی دھرم میں ادھارک شکتی ہے تو انہوں نے وہاں کے لوگوں کا ادھار کیوں نہیں کیا؟
0: اپت شروتا جواب سن کر چپ ہو گئے۔ پھر سوامی جی نے بھارت میں انگریز دوارا کیے جانے والے اتیاچار کی کہانیاں سنائی۔ انت میں انہوں نے کہا،
3: پر وہ میرے جیسے سنیاسی کے ساتھ ایسا انیائے کرنے کا ساہس نہیں کر پائیں گے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ انگریز سرکار مجھے پکڑ کر گولی مار دے، یہ ان کی تابوت کی پہلی کیل ہوگی۔ میری مرتیو بھارت بھومی پر ایک بھیشن آگ کے سمان پھیل جائے گی۔
0: ان کی آدرش بھارتی سپاہی ودروہ کی ویرانگنا جھانسی کی رانی لکشمی بائی تھی، جنہوں نے سوئم اپنی سینا کا سنچالن کیا تھا۔ انہوں نے بتایا،
3: بہت سے ودروہی اپنے کو چھپانے کے لیے سادھو ہو گئے تھے، اور اس لیے جو بھی سادھو ہو وہی اگر وچاروں والا ہوگا، یہ دھارنا پھیل گئی تھی۔ ان ودروہیوں میں سے ایک تھا جو اپنے چار پتروں کو کھو کر بھی ان کے سمبندھ میں سنیت ہو کر بات کر سکتا تھا، کنتو جب کبھی وہ رانی کا نام لیتا تو رونے لگتا، اس کے مکھ پر آنسوؤں کی دھارا پرواہت ہو جاتی۔ وہ کہتے وہ استری دیوی تھی، جب ہار گئی تو اپنی تلوار کے گھاٹ اتر گئی اور ایک پرش کی بھانتی مری۔
2: سوامی جی نے سپاہی ودروہ کے بارے میں انیکوں انجانے تتھیوں سے امریکہ واسیوں کو اوگت کرایا۔ ان کے سامنے ودروہ کا ایک دوسرا پکش اجاگر ہوا۔
0: امریکہ واسیوں کو بھارت کے بارے میں انیک بھرانت دھارنائیں تھیں۔ ان بیٹھکوں میں وہ سوامی جی سے انیکوں پرشن کرتے اور سوامی جی اپنے جوابوں سے انہیں نئی نئی جانکاری دے کر سنتشٹ کرتے تھے۔ اکثر ان سبھاؤں میں پترکار بھی اپستھت رہتے تھے اور دوسرے ہی دن امریکی اخباروں میں سوامی جی کے وکتویہ پرکاشت ہوتے۔ ایسی ہی ایک رپٹ 21 جنوری 1894 کو پرکاشت ہوئی۔ یہ بیٹھک لا سیلٹ اکیڈمی میمفس نگر میں ہوئی تھی۔ وہاں سوامی جی نے کہا تھا،
3: میں سنیاسی ہوں، پروہت نہیں، اپنے دیش میں جگہ جگہ گھومتا ہوں، جن گاؤں اور شہروں سے ہو کر نکلتا ہوں وہاں کے لوگوں کو اپدیش دیتا ہوں، اپنے بھرن پوشن کے لیے میں ان کے اوپر نربھر ہوں، کیونکہ مجھے پیسہ سپرش کرنے کی آگیا نہیں ہے۔
2: ایک پرشن کے اتر میں انہوں نے کہا،
3: میرا جنم بنگال میں ہوا تھا اور میں نے اپنی اچھا سے آویواہت رہ کر سنیاسی کا جیون سویکار کیا۔ میرے جنم پر میرے پتا نے میری جنم پتری بنوائی تھی، کنتو انہوں نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ اس میں کیا تھا۔ اپنے پتا کی مرتیو کے کچھ دن بعد جب میں اپنے گھر گیا تب میں نے اپنی ماں کے پاس رکھے ہوئے کاغذوں میں وہ پتری دیکھی۔ اس میں میں نے جانا کہ میرے بھاگیہ میں پرتھوی پر وچرن کرنا لکھا تھا۔
2: ایک شوتا نے پرشن کیا،
1: یدی آپ کا دھرم جو کچھ آپ دعویٰ کرتے ہیں ویسا ہی ہے، یدی وہ سچا دھرم ہے تو کیا کارن ہے کہ آپ کے دیشواسی جتنے سبھے ہیں اس سے ادھک سبھے نہیں ہو سکے؟ اس دھرم نے دنیا کے راشٹروں کے بیچ ان کو اونچا کیوں نہیں اٹھا دیا؟
3: کیونکہ وہ کسی بھی دھرم کا شیتر نہیں ہے۔ میرے دیشواسی دنیا میں سب سے ادھک یا کسی بھی جاتی کے سمتلیہ نیتک ہیں۔ वे अपने मानव भाइयों के अधिकारों के प्रति मूक पशुओं तक के प्रति कहीं अधिक ध्यान देते हैं, परंतु वे भौतिकवादी नहीं है। किसी भी धर्म ने कभी किसी राष्ट्र या जाति के विचार या प्रेरणा को आगे नहीं बढ़ाया। वास्तव में इतिहास में कभी भी ऐसी कोई महान सफलता प्राप्त नहीं की गई जिसको धर्म ने बाधा नहीं पहुंचाई हो। आपके ईसाई धर्म ने भी अपने को इसका अपवाद सिद्ध नहीं किया। आपके डार्विन, मिल, हूम आदि को आपके धर्माधिकारियों का समर्थन नहीं प्राप्त था, तब इसके लिए मेरे धर्म की आलोचना क्यों?
1: परंतु आप कुछ भी कहें, मैं उस धर्म को एक कानी कौड़ी भी नहीं दूंगा जो मानव जाति के भौतिक जीवन और आध्यात्मिक दशा दोनों के उत्थान के लिए सचेष्ट न हो, और इसी कारण मैं आपके वक्तव्यों की सत्यता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ईसाई धर्म ने कॉलेज और अस्पतालों की स्थापना की और पतितों को उठाया, उसने दलितों का उत्थान किया और अपने अनुयायियों को जीवन बसर करने में मदद की।
0: सन्यासी ने शांत भाव से कहा,
3: कुछ हद तक तो आप ठीक कहते हैं, फिर भी इससे ये सिद्ध नहीं हो जाता कि ये सीधे आपके ईसाई धर्म के परिणाम हैं। पश्चिम में अनेक कारण विद्यमान रहे हैं और ये सब उन्हीं के परिणाम हैं।
2: उन्होंने इसी बात को और भी समझाकर कहा,
3: धर्म का प्रयोग मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष का विकास करने में होना चाहिए। विज्ञान, कला, दार्शनिक अनुसंधान सभी का जीवन में अलग अलग कार्य है, किंतु यदि तुम इनका मिश्रण करना चाहो तो तुम उनकी अलग अलग विशेषताओं को नष्ट कर दोगे। जैसे अंततः कुछ दिनों में तुम लोग धर्म से आध्यात्मिकता को बिल्कुल ही निकाल बाहर करोगे। तुम अमेरिकन लोग किसकी उपासना करते हो? डॉलर की। स्वर्ण के पीछे पागल होकर भागते हुए तुम अध्यात्म को भूल रहे हो और अंततः तुम भौतिकता परायण बन गए हो। अपनी जाति के इतिहास में एक भी ऐसा व्यक्ति बताओ जिसने वैसा आध्यात्मिक जीवन बिताया हो जैसे हमारे देश में लोगों ने बिताया, और जिनके की मैं नाम गिना सकता हूं। ऐसे लोग कहां हैं जो मृत्यु के आने पर कह सकते हो, ओ बंधु मृत्यु, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। तुम्हारा धर्म फेरिस चक्रों और आड़ फेल मीनारों के निर्माण में मदद देता है, पर क्या वो तुम्हारे आंतरिक जीवन के विकास में भी तुम्हारी सहायता करता है?
0: सन्यासी गंभीरता पूर्वक बोल रहे थे और उनका मधुर तथा सुनियंत्रित स्वर उस कमरे में छाए हुए धुंधलेपन से छन कर आ रहा था और कुछ आरोपयुक्त। 6,000 वर्ष पुराने इतिहास वाले देश के इस नवागंतुक के द्वारा की गई 19वीं शताब्दी के अमेरिका की समालोचना में कुछ अलौकिकता थी।
4: किंतु आध्यात्म की साधना में आप वर्तमान की मांगों के प्रति आंखें बंद कर लेते हैं। आपका सिद्धांत मनुष्य को अच्छी तरह जीवित रहने में सहायता नहीं देता।
3: वो उन्हें अच्छी तरह मरने में सहायता देता है।
1: हम वर्तमान के प्रति विश्वस्त नहीं हैं।
3: आप किसी चीज के प्रति विश्वस्त नहीं हैं। मेरा विश्वास है कि हिंदू धर्म ने भौतिक मूल्य चुकाकर अपने साधकों में अध्यात्म का विकास किया है, और मैं सोचता हूं कि पश्चिमी दुनिया में सत्य इसके विपरीत है। मेरा विश्वास है कि पश्चिम के भौतिकवाद और पूर्व के समन्वय से बहुत कुछ किया जा सकता है। ये हो सकता है कि इस प्रयत्न में हिंदू धर्म अपने वैशिष्ट्य को बहुत कुछ खो देगा।
1: जो कुछ आप करने की आशा करते हैं क्या उससे भारत की समस्त सामाजिक व्यवस्था में क्रांति न करनी होगी?
3: हाँ, शायद। फिर भी धर्म अक्षुण्य बना रहेगा।
2: अब बातचीत का रुख हिंदुओं की उपासना विधि की ओर बदला और विवेकानंद ने इस विषय पर बहुत सी बातें बतलाई। भारत में तथा अन्यत्र सभी जगह अज्ञेयवादी और नास्तिक हैं। ब्रह्म के अनुयायियों के जीवन में अनुभूति एक आवश्यक वस्तु है, श्रद्धा आवश्यक नहीं है। थियोसॉफी एक ऐसा विषय है जिसमें विवेकानंद की रुचि नहीं है, वो अलग अध्ययन का विषय है।
0: विवेकानंद कभी मैडम ब्लॉवस्की से नहीं मिले, किंतु अमेरिकन थियोसॉफिस्ट सोसाइटी के कर्नल ऑलकट से उनकी भेंट हुई थी। वे एनी बेसेंट से भी परिचित हैं। भारत के फकीरों, प्रसिद्ध मदारियों अथवा जादूगरों जिनके चमत्कारों की विश्व में प्रसिद्धि है, उनकी चर्चा करते हुए विवेकानंद ने कुछ ऐसी घटनाएं सुनाई जो उन्होंने स्वयं देखी थी और जो विश्वास से परे थी।
2: इस विषय पर प्रश्न पूछे गए तो उन्होंने कहा,
3: 5 मास पूर्व और इस देश के लिए भारत से प्रस्थान करने के ठीक 1 मास पूर्व मुझे 25 व्यक्तियों के दल के साथ देश के भीतर स्थित एक नगर में कुछ समय तक ठहरना पड़ा। वहां पर हमने इन भ्रमणशील जादूगरों में से एक के आश्चर्यजनक चमत्कारों के विषय में सुना और उसे अपने सामने बुलाया। उसने हमें बताया कि हम जिस वस्तु की इच्छा करें वो उसे उपस्थित कर देगा। हमने उसके कहने के अनुसार उसके वस्त्रों को उतारा, यहां तक कि वो बिल्कुल नग्न हो गया और उसे कमरे के कोने में बैठा दिया। मैंने अपनी यात्रा के कंबल को उसके ऊपर डाल दिया और तब हमने उससे अपने वादे के अनुसार कार्य करने को कहा। उसने पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं। मैंने काबुली अंगूरों का एक गुच्छा देने के लिए कहा और तुरंत उस व्यक्ति ने उन्हें कंबल के नीचे से बाहर निकाला। संतरे और दूसरे फल निकाले और अंत में निकाली गरम भात की बड़ी बड़ी थालियां।
0: अपना वक्तव्य जारी रखते हुए सन्यासी ने कहा,
3: मेरी 1/6 इंद्रिय में और सुदूर अवस्थित 2 व्यक्तियों के मन में एक साथ एक ही विचार का उदय हो सकता है, मुझे इस बात में विश्वास है।
2: उन्होंने फकीरों के चमत्कारों की व्याख्या नहीं की, केवल यही कहा कि वे अत्यंत आश्चर्यजनक थे। मूर्ति पूजा के विषय में भी चर्चा हुई और सन्यासी ने बताया कि केवल प्रतीक के रूप में ही मूर्ति हमारे धर्म का अंग है।
3: आप किसकी उपासना करते हैं? ईश्वर के संबंध में आपकी क्या धारणा है?
0: आत्मा, एक महिला ने धीरे से कहा।
3: आत्मा क्या है? तुम प्रोटेस्टेंट लोग बाइबल के शब्दों की उपासना करते हो अथवा उनके परे किसी और चीज की उपासना करते हो? हम लोग प्रतिमा द्वारा ईश्वर की उपासना करते हैं।
5: अर्थात आप अंतरस्थित वस्तु को ब्रह्म सहायता द्वारा प्राप्त करते हैं?
3: हाँ, ठीक यही।
2: विवेकानंद उसी स्वर में आगे बात करते रहे और उनके भाषण का समय समीप होने के कारण इस गोष्ठी का अंत हुआ। इसी तरह की एक सभा में स्वामी जी ने अमेरिकी जनता को सम्राट अशोक के बारे में बताया, उनके शिलालेखों का वर्णन किया, कहा,
3: उसी बुद्धिमान राजा ने जिसने ये राजाज्ञा खुदवाई थी युद्ध करने से मना किया था, क्योंकि इसकी विभीषिकाएं सभी महान सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों के प्रतिकूल होती हैं। इसी कारण भारत ने भौतिक पक्ष में हानि उठाई है, जहां पाशविक शक्ति और रक्तपात ने दूसरे राष्ट्रों को आगे बढ़ाया है। भारत ने इस प्रकार के पाशविक प्रदर्शन का प्रत्याख्यान किया है और योग्यतम की विजय के नियम के अनुसार जो राष्ट्रों और व्यक्तियों दोनों के लिए लागू होता है वो भौतिक अर्थ में दुनिया की एक शक्ति के रूप में बहुत पीछे रह गया है।
0: इसी क्रम में उन्होंने कहा कि संभवतः भविष्य में पूर्व और पश्चिम का समन्वय होने को है, एक ऐसा समन्वय जिसके परिणाम अद्भुत होंगे। पश्चिमी राष्ट्रों की प्रकृति को प्रशंसा का पात्र बनाने वाला उनका एक गुण है और वो है स्त्रियों के प्रति अत्यंत आदर भाव तथा उनके साथ सहृदयता पूर्ण व्यवहार।
2: विभिन्न मतवादों की दोषान्वेषण की प्रवृत्ति के संबंध में उन्होंने जो कहानी कही वो ऐसी थी।
3: एक कुएं में एक मेंढक रहता था। वो वहां बहुत दिन से रहता था, वहीं पैदा हुआ और वहीं बड़ा हुआ। वो एक छोटा नन्हा सा मेंढक था। एक दिन एक दूसरा मेंढक जो समुद्र में रहता था आया और कुएं में गिर पड़ा। तुम कहां से आए हो? समुद्र से। समुद्र? वो कितना बड़ा है? क्या वो मेरे कुएं के बराबर है? और उसने कुएं के एक किनारे से दूसरे किनारे तक छलांग मारी। मेरे मित्र, समुद्र के मेंढक ने कहा, तुम अपने छोटे से कुएं से समुद्र की तुलना कैसे कर सकते हो? तब मेंढक ने दूसरी छलांग मारी और पूछा, क्या तुम्हारा समुद्र इतना बड़ा है? समुद्र से अपने कुएं की तुलना करके तुम कैसे मूर्खता की बात कर रहे हो? कुएं के मेंढक ने कहा, अच्छा, तब क्या तुम कहते हो कि तुम्हारा समुद्र मेरे कुएं से बड़ा है? ये हो ही नहीं सकता, ये झूठा है, इसे बाहर निकालो। यही कठिनाई सदा से चली आ रही है। मैं हिंदू हूं, मैं अपने छोटे से कुएं में बैठा हूं और मैं सोचता हूं कि मेरा कुआं ही दुनिया है। ईसाई अपने छोटे से कुएं में बैठा है और वो कुआं उसकी दुनिया है। मुसलमान अपने कुएं में बैठा है और उसी को संपूर्ण दुनिया समझता है। मैं तुम अमेरिकनों को धन्यवाद देता हूं कि तुम हमारी छोटी दुनिया की दीवारों को तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हो, और आशा करता हूं कि भविष्य में प्रभु तुम्हें इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायता प्रदान करेंगे।
0: इसी कहानी के साथ उस दिन सभा का अंत हुआ।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के 150वें जन्मशती वर्ष के अवसर पर उनके विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वरा संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे प्रत्येक बुधवार और रविवार इसी समय अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग राजस्थान, गुड इवनिंग गुजरात, गुड इवनिंग आप सभी को जो इस वक्त रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं। आइए 21 मई की बात करते हैं। आज चित्र नक्षत्र है, शरद जोशी सर सुंदरलाल इन दोनों का जन्मदिन है और इसके साथ ही राजीव गांधी मामा पहलवान सुंदरलाल बहुगुणा जानकी देवी बजाज इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए कुछ खास बातें आपसे शेयर करूंगा और साथ ही साथ आप भी अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ मैसेज के जरिए पहुंचा सकते हैं 94-14-15-14-15 इस नंबर पर। तो चलिए, कुपराम जी, सुरेश जी जोटाना, सुरेश जी पिंडवाड़ा, भूपत सिंह जी और हमारे मदन लाल जी और फिरोज जी और सुभाष जी जलगांव से आप सभी को याद, और साथ में हर्षिता जी और अंजू जी और अंजिता जी इन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो सभी लोग मैसेज करते रहते हैं, हमें अच्छा लगता है। उमेश सिंह जी भी कभी कभी बड़े प्यार से याद करते हैं कार्यक्रम, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। तो सभी जो भी हमारे श्रोता मित्र हैं जो सुन रहे हैं, जिनका नाम नहीं लिया, ऐसा नहीं है कि आपका नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन कभी कभी याद कम आती है। तो सभी जिनका भी आप जो भी रेडियो मधुबन सुन रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आइए एक बहुत ही खूबसूरत विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि अन्न के कण और आनंद के क्षण कभी व्यर्थ न जाने दे, दोनों अमूल्य है ना। कमाल की बात कही है, जिसने भी कही है बहुत बहुत साधुवाद उनको भी। और आप सभी फिर से एक बार सुन लीजिए, अन्न के कण और आनंद के क्षण कभी व्यर्थ न जाने दे, दोनों अमूल्य है। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर इस कार्यक्रम को। तो आइए एक बहुत ही खूबसूरत गीत की तरफ आपको ले चलता हूँ कार्यक्रम की शुरुआत में, ढेर सारी खुशियों के साथ। आइए सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत आपके नाम, सिर्फ और सिर्फ सुनते रहो।

0: ओए रुको रुको रुको। हाँ जी, थोड़ा अपना प्यारा सा मुखड़ा दिखाना शीशे के बाहर झांक के। हैं
1: जी, कहिए। अरे ये क्या कर रहे हो?
0: ओ मेरे भाई, और जिस चीज का कोई फायदा नहीं उसको रखने का फायदा क्या? तो तेरे पास चश्मा होते हुए तेरे को रेड लाइट नहीं दिखती तो फायदा की?
1: पर रोड तो खाली थी, कोई था ही नहीं।
0: ये क्या बात हुई भाई? हैं? तो इसका मतलब तो ये है कि दुकान पर अगर मालिक नहीं होगा तो तुम बिना पूछे उसका सामान उठाओगे? कोई बॉस नहीं होगा ऑफिस में तो तुम उसकी कुर्सी पे सो जाओगे? और रोड पे कोई हो न हो, सड़क के नियम कायदे कानून कभी नहीं टूटेंगे। और वैसे भी ये तो है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: रेड लाइट होने पर हमें अपनी गाड़ी रोक लेनी चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा न करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए बात करते हैं एक विशेष साहित्यकार के बारे में जिनका जन्मदिन आज है। जी हाँ, और इसके साथ में हम एक ऐसे बिजनेसमैन के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए, आज साहित्यकार शरद जोशी की अगर बात करें तो वो अपने समय के अनूठे व्यंग्यकार रचनाकार थे। अपने वक्त की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को उन्होंने अत्यंत पौनी निगाह से देखा और अपनी पौनी कलम से बड़ी सफगोई के साथ उन्हें सटीक शब्दों में व्यक्त किया। और शरद जोशी पहले व्यंग नहीं लिखते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी आलोचना से किन्न होकर व्यंग लिखना शुरू कर दिया। वो भारत के पहले व्यंग्यकार थे जिन्होंने पहली बार मुंबई में चकलस के मंच पर 1968 में गद्य पढ़ा और किसी कवि से अधिक लोकप्रिय हुए। तो आइए इनके बारे में जानते हैं, शरद जोशी के बारे में। जी हाँ, इनका जन्म आज के दिन 1931 को जून उज्जैन में हुआ। और सीधी छोटी सी बात, सांच को आज नहीं गो धूली और उत्सव फिल्म में लिखने वाले शरद जोशी ने 25 साल तक कविता के मंच से गद्य पाठ किया और बिहारी के दोहे की तरफ शरद अपने व्यंग का विस्तार पाठक पर छोड़ देते हैं। एक बार शरद जोशी ने लिखा था, लिखना मेरे लिए जीवन जीने की तरकीब है। इतना लिख लेने के बाद मैंने अपने लिखे को देखा, मैं सिर्फ यही कह पाता हूँ कि चलो इतना बरस जी लिया, ये ना होता तो इसका क्या विकल्प होता। अब सोचना कठिन है लेकिन मेरा निजी उद्देश्य है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इनकी लोकप्रियता और इनकी किताबों के बारे में कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा। इनको मिले हुए सम्मान के बारे में आपको कुछ बातें शेयर करने वाला हूं, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफर, इस कार्यक्रम को सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: प्यार से काम करना और प्यार से काम करवाना, क्योंकि आई बिलीव एटलीस्ट कि अगर काम प्यार से नहीं हो सकता तो डांट कर जबरदस्ती करवाने का उसमें बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। यू नो योर रिलेशनशिप इज ब्रेकिंग डाउन एंड मोर इम्पोर्टेंट इज रिलेशनशिप नॉट द वर्क। लेकिन फिर भी अगर काम करवाने के लिए आपको वो असर्टिवनेस का आधार लेना है तो इनर बिल्कुल एंगर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप उसको असर्टिवनेस नहीं कह सकते। से आई एम एंग्री, डोंट से आई एम नॉट एंग्री, आई एम जस्ट बींग असर्टिव, ये चीटिंग है अपने आप से दूसरे से भी। तो आप पहले तो अंदर बिल्कुल स्टेबल है और फिर आपको जो कुछ कहना है उसको अथॉरिटी से और बहुत डिसिप्लिन एंड असर्टिव। डजेंट हैव टू बी लाउड, यू नो इट डजेंट हैव टू बी लाउड। हम सोचते हैं जोर से बोल दिया तो दैट इज असर्टिव, दैट इज अ ट्रेस ऑफ एंगर। आपका वॉल्यूम बढ़ ही नहीं सकता है जब तक वो एनर्जी अक्यूमुलेट नहीं हुई है अंदर। तो इवन जब हमारा वॉल्यूम इस तरह से जोर से बढ़ जाता है, दैट एनर्जी हैज बीन क्रिएटेड इन साइड। बहुत आराम से, स्टेबिलिटी मीन्स स्टेबिलिटी एवरीवेयर, यू नो थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शंस। तो अंदर वो स्टेबिलिटी होगी वो बाहर अपने आप आएगी, वी विल नॉट हैव टू डू इट। एंड फिर डिसिप्लिन करने के लिए आपको जो डायरेक्शन देना है उसको आप देते हैं, तो आई थिंक एनर्जी एक्सचेंज विल बी वेरी कम्फर्टेबल बिटवीन द टू पीपल।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। शरद जोशी के बारे में बातें चल रही थी और निजी तौर पे उस व्यक्तित्व के बारे में मैंने तो बता दिया, और शरद जोशी के व्यंग में हास्य, कड़वाहट, मनोविनोद और चुटीलापन दिखाई देता है जो उन्हें जनप्रिय और लोकप्रिय बनाता है। और टेलीविजन के लिए ये जो है जिंदगी, विक्रम बेताल, सिंहासन बत्तीसी, वाह जनाब, देवी जी, प्याले में तूफान, दाने अनार के और ये दुनिया गजब की आदि धारावाहिक इन्होंने लिखे। इन दिनों सब चैनल पर उनकी कहानियों और व्यंग पर आधारित लापतागंज शरद जोशी की कहानियों का पता बहुत पसंद किया जा रहा है। तो ये एक अपने आप में यूनिक है। आप समझ गए होंगे कि अब इनकी लोकप्रियता को सुनकर आप समझ गए होंगे शरद जोशी किस तरह के लेखक होंगे, है ना। लापतागंज आपने देखा ही होगा।

किनारे बैठ मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं दूसरी सता हम ब्रस्टन के ब्रस्ट हमारे यथा संभो जीप पर सवार झलिया जीप पर सवार इलिया। और इसके साथ में दूरदर्शन धारावाहिकों के नाम तो मैंने बता ही दिया, फिर भी एक बार वापस सुना देता हूँ। ये जो है जिंदगी विक्रम बेताल सिंहासन बत्तीसी वाह जनाब देवी जी प्याले में तूफान दाने अनार के ये दुनिया गजब की, इस तरह के 8 सीरियल इन्होंने लिखे। अब इनकी लेखनी और इनके कार्य को देख कर चकलस पुरस्कार तो इनको शुरुआत में ही मिला मुंबई में, और उसके बाद काका हसरती पुरस्कार इनको मिला, और श्री महाभारत हिंदी साहित्य समिति इंदौर द्वारा सरस्वती मार्तंडे की उपाधि परिवार पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया, और 1990 में भारत सरकार भी इन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया। तो आइए ऐसे विशेष व्यक्ति का जिंदगी से जाना हमारे लिए एक जो है बहुत बड़ा क्षति हो सकता है। तो 5 सितंबर 1991 में मुंबई में उनका निधन हुआ। इन दिनों जब सब चैनल पर उनकी कहानियां और व्यंग पर आधारित सिटकॉम लापतागन पसंद किया जा रहा है, उन्होंने लिखा था, अब जीवन का विश्लेषण करना मुझे अजीब लगता है, बढ़ चढ़ कर ये कहना कि जीवन संघर्षमय रहा लेकिन होने के कारण मैंने दुखी जीवन दिया, कहना फिजूल है। जीवन होता ही संघर्षमय है, किसी का नहीं होता, लिखने वाले का तो होता है, लिखने वाले का होता है तो क्या अजब होता है। तो चलिए बहुत ही खूबसूरत लाइनें आपने सुनी, आशा करूंगा आपको उनकी बातें सुनकर कहीं ना कहीं उनके प्रति बहुत प्यार और सम्मान जगा होगा। तो चलिए ऐसे विशेष लेखक शरद जोशी के लिए ढेर सारी श्रद्धा सुमन करते हैं, और जहां भी रहें खुश रहें ऐसी शुभ आशा के साथ। आइए एक बहुत ही खूबसूरत गीत आपके नाम सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का ढेरों शुभकामनाओं के साथ फिर से एक बार स्वागत है। और बड़ा अच्छा जो है, आपने शरद जोशी के बारे में सुना और उनकी टीवी सीरियलों की बात जब याद आती है तो हंसी छूटे बिना रह नहीं जाती है। लापचागंज आदि आदि जो है, विक्रम बेताल और ये जो है जिंदगी, अगर आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं, अब YouTube पे आप इन चीजों को देख सकते हैं। एक बार देख लीजिए, बेहद आपको आनंद आएगा। और कहीं ना कहीं जीवन के कुछ चुनिंदा जो अनुभव है, जो हमारी जीवन से जुड़ी बातें हैं, उसे भी व्यंगात्मक तरीके से और शिक्षाप्रद तरीके से शरद जोशी ने कैसे उन चीजों को लिखा है, ये समझ में आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक और बिजनेसमैन के बारे में बात करते हैं, राइटर के बाद सर सुंदर लाल के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, बहुत ही पॉपुलर विधिवेता और सार्वजनिक कार्यकर्ता के रूप में देश के विकास के लिए, औद्योगिक और शिक्षा प्रसार की उन्नति के लिए आवश्यक जो समझते थे वो करते थे, उनका नाम है सर सुंदर लाल। जी हाँ, इनके बारे में बात करते हैं। सर सुंदर लाल का नाम, जो जन्म है वो उत्तरांचल के नैनीताल जिले में जासपुरा नामक स्थान पर हुआ, 21 मई 1857 को। और उनका नगर ब्राह्मण परिवार गुजरात से आकर यही बस गया था। और उन्होंने पहले वकालत की परीक्षा पास की और फिर बाद में कोलकाता विश्वविद्यालय से डिग्री बनाने के बाद वकालत करने लगे। और अपनी प्रतिभा के बल पर उन्होंने इस क्षेत्र में शीघ्र ही बड़ी सफलता अर्जित की और सरकार ने उन्हें सर की उपाधि से नवाजा। सर सुंदरलाल उच्च पदों पर आसीन रहे और वे अवध के जुडिशियल कमिश्नर और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज भी बने। तीन बार वे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के और 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पहले वाइस चांसलर बने। और इस विश्वविद्यालय की स्थापना में वे मालवीय जी के बड़े सहायक बने। है ना कमाल की बात। तो आइए, कभी कभी किसी व्यक्ति के जीवन में चीजें बड़ी आसान और सरल रूप से आ जाती हैं, तो इसी तरह पढ़ाई के साथ साथ व्यवसायीकरण भी इन्होंने बड़ी अच्छी तरह से किया है। तो इनके बारे में और थोड़ी बातें थोड़ी देर में, लेकिन अभी एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपके लिए खास। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, मैं हूँ हरमीत सिंह, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पे असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रहे, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग, द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं, द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। देखा जाए तो साथियों, जीवन बड़ा सरल है, ईश्वर ने सब कुछ दे के बनाया। अगर ईश्वर की रचना हम उस पर विश्वास करेंगे तो फिर आपको कोई जगह पे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, उस पर नाम लिए, उनका नाम ले और काम करते जाए, है ना। जब ईश्वर ने बनाया होगा तो आपके लिए अच्छा ही बनाया होगा, है ना। आप ईश्वर की सुंदर रचना हो, अर्थात ईश्वर आपके पिता, आप उनके बच्चे हो। तो जब इस नाते से कोई भी बाप अपने बच्चे के लिए ऐसी कोई दुनिया या ऐसी कोई सिचुएशन नहीं डालेगा कि उसको तकलीफ हो, है ना। अगर उसने सोच के हमें अगर इस संसार में भेजा है तो उन्होंने बड़े प्यार से और बहुत ही सुचारू रूप से हमारे जीवन को डेकोरेट करके ही भेजा था, और उन सारे शक्तियों को, सामर्थ्यता को हमारे अंदर भर के भेजा है। तो बस हमें गहरी शांति में उनका धन्यवाद करते हुए अपने कार्य को करते जाना है। अपेक्षा कहीं से या इच्छाएं कहीं रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं रखेंगे तो अच्छा है, रखेंगे तो दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए निस्वार्थ भाव से परमात्मा पे 100% निश्चय, 100% परमात्मा पे विश्वास करते हुए कार्य करते जाएं, देखिए आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं सर सुंदर लाल जी के बारे में। सुंदर लाल के विचार इस संबंध में गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते जुलते रहे हैं, और हिंदू आचार विचार में निष्ठा रखने वाले सर सुंदर लाल संवैधानिक तरीकों से देश की आजादी के समर्थक रहे, और वे देश की समृद्धि के लिए औद्योगिकरण को आवश्यक मानते थे और शिक्षा प्रसार को उन्नति का साधन समझते थे। सर सुंदर लाल का विशेष राजनीति से उनकी जो है स्थापना के समय से ही संबंध रहा है, और मोतीलाल नेहरू, मालवीय जी, एनी बेसेंट आदि इनके अच्छे मित्र और सहयोगी थे। इलाहाबाद अधिवेशन 1910 की स्वागत समिति के भी वे अध्यक्ष थे, और इस तरह से विश्वविद्यालय एजुकेशन में लोगों को हेल्प करने के लिए काफी काम उन्होंने किया, और गोपाल कृष्ण गोखले के मित्र होने के नाते उनके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काफी मेहनत भी की है। तो ऐसे विशेष व्यक्ति 1918 को इलाहाबाद में अपने ही घर पर 13 फरवरी के दिन इनका निधन हुआ। प्रसिद्ध विधिवेता और सार्वजनिक कार्यकर्ता सर सुंदर लाल जी 13 फरवरी को इस दुनिया को अलविदा कहे 1918 में। और आइए आगे बढ़ते हैं, आप सभी को ले चलता हूं एक और गीत की तरफ। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर, सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: अरे हाँ, ये कौन सा महीना है?
1: जनवरी। ऋतु सुहानी झूमती है।
0: ये पुलिस क्यों घूमती है?
1: अरे बाबा, तुम्हें नहीं किसी चोर को ढूंढती है।

0: हाँ तो मैं क्या कह रहा था?
1: हाँ तो
0: मैं कुछ कह रहा था,
1: बोलो ना, भूल गए?
0: अरे हाँ भूल गया।
2: मैं कमलेश माउंट आबू ढूंढने गाँव रेवन वाली भूसा और मैं सुन रही हूँ रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनता रहो और मुस्कुराता रहो।
3: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM। चलिए सर सुंदरलाल और शरद जोशी की छोटी कहानी सुनकर बड़ा अच्छा लगा होगा। जीवन में कई बार हम लोग, जीवन छोटा हो लेकिन सपने बड़े हो, है ना, जीवन बड़े हो और सपने इतर बितर हो तो क्या मतलब, है ना। जितना भी जिए, जीवन को समृद्धता के साथ, खुशी के साथ जिए, यही मानवता है। और सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना करें, ऐसी शुभ आशा के साथ आइए बात करना चाहूँगा। एक और सुंदर विचार के साथ आपको छोड़े जाऊँगा। आशा करूँगा आज हम लोग जिन लोगों के बारे में बातें की, उनकी कहानी सुनकर आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। तो आइए एक बहुत ही सुंदर विचार जो मैं हमेशा आपको बताते रहता हूँ। प्यार और सम्मान करने की क्षमता मनुष्य को ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा अनमोल उपहार है। जी हाँ, इसलिए प्यार और सम्मान खुद के लिए भी रखें और दूसरों के लिए भी रखें। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ खुशियों भरा बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए और खुशी अपने साथ रखिए। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: जीना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ डांस, डांस विद जॉय एंड एंथुसियाज्म, अर्थात ये जीवन को हमेशा उमंग और उत्साह के साथ जियो। दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। इंग्लिश में एक बहुत अच्छा स्लोगन है जिसे हमको प्रेरणा मिलती है कि हर पल हर क्षण हमें उमंग उत्साह में रहना है, और वो बहुत सुंदर स्लोगन है, आई ऑलवेज कंप्लेन दैट आई हैड नो शूज अंटिल आई सॉ अ मैन हु हैड नो फीट। मैंने हमेशा कंप्लेन की कि मेरे पास जूते नहीं है, जब तक मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके पैर ही नहीं थे। तो देखो, हमें अपने भाग्य पर कितना नशा होना चाहिए, कितना नाज होना चाहिए कि ईश्वर ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है, तो क्या हमें दुखी होना चाहिए क्या? नहीं, हर पल हर क्षण वी हैव टू डांस विद जॉय एंड एंथुसियाज्म। तो आज मैं आपको एक बहुत सुंदर डांस सिखाने वाला हूँ। सभी करेंगे डांस। इसको कहते हैं पीकॉक डांस। पीकॉक जब खुशी में होता है ना तो कितना वंडरफुल डांस करते हैं, वही डांस मैं आपको भी सिखाता हूँ। और वो कैसे करना है? वाह मेरा जीवन वाह। जब आप ये डांस करते हो तो एक तो इट पंप्स इन अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन टू योर लंग्स, और दूसरा मन में भी जो आपको विचार मिलते हैं वो बहुत एंथुसियास्टिक और मोटिवेटिंग होते हैं। तो मैं आपको एक एक बोलता रहूंगा, वैसे आप करते रहना, ठीक है? करेंगे सभी? ओके, चलिए। वाह ईश्वर वाह, वाह मेरा जीवन वाह, वाह मेरे फैमिली मेंबर्स वाह, वाह मेरे मम्मी डैडी वाह, वाह मेरे ब्रदर्स सिस्टर्स वाह, वाह मेरा ऑर्गेनाइजेशन वाह। स्टूडेंट्स बहुत खुशी से कह सकते वाह एग्जाम्स वाह, वाह मेरी पढ़ाई वाह, वाह ये दिन वाह, वाह वाह वाह। तालियां बजाइए। तो हर दिन सुबह उठकर ये पीकॉक डांस जरूर जरूर करना।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन ना खींचें। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स। क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद में उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, wherever and for however long I want. So then it's my choice. So now it's your choice. आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, create it.
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: अभी बजे हैं शाम के 5।

रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है सही मार्ग पता होना। सही मार्ग पता हो तो सही समय पर सही निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन अगर ये पता ही ना हो कि करना क्या है तो कभी कभी हम कंफ्यूजन में ऐसा निर्णय ले लेते हैं, बाद में पछतावा भी होता है। लेकिन दोस्तों, उससे बचने का बहुत एक सहज साधन है कि अपनी नॉलेज को बढ़ाते जाना। नॉलेज को कैसे बढ़ाएं? किताबें तो हम पढ़ते हैं, और क्या करते हैं? और लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, इंटरनेट पर बहुत सारी बातें जानने को भी मिलती हैं। लेकिन दोस्तों, साथ साथ कुछ और ऐसे स्रोत हैं जिससे आपको जानकारी मिल सकती है, काउंसलिंग मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है, उस प्रकार की जो सच में स्टूडेंट लाइफ में हमें चाहिए होती है। और वो क्या है आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। रेडियो मधुबन के साथ बने रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप कार्यक्रम है युवा मंच। और दोस्तों, कभी कभी कुछ चीजों से आगे बढ़ना हमारे लिए असंभव हो जाता है या मुश्किल हो जाता है, ये उस समय हमें लगता है। और कभी कभी हमें ये भी लगता है कि कुछ भी तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी उदासी है, थोड़ी थोड़ी बेरुखी है, थोड़ी थोड़ी सी परेशानी महसूस होती है। उतनी खुशी नहीं रहती जैसे पहले रहा करती थी, उतना एंथुसियाज्म नहीं रहता जैसे पहले रहा करता था। कहीं कुछ तो खालीपन है या कुछ तो कमी है। कभी कभी वो कमी क्या है ये फिगर आउट करना आसान नहीं होता। लेकिन दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें न सिर्फ उन चीज़ों को इग्नोर करना बल्कि समझ के सॉल्व करके आगे बढ़ना। वैसे तो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात आज बताने वाली हूँ दोस्तों, जो मुझे भी पता चली कि किस प्रकार से आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए, किसी को भी कोई भी हेल्प चाहिए, तो बहुत सुंदर सी एक सुविधा है जो कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है, और वो है नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम ऑफ इंडिया। जी हाँ, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम ऑफ इंडिया, ये टेली मानस के नाम से भी मशहूर है। ये एक मेंटल हेल्थ केयर सर्विस है। टोल फ्री नंबर्स हैं जिनको आप कॉल कर सकते हैं, जिनसे आप मेंटल हेल्थ सपोर्ट ले सकते हैं जहाँ भी आपको ज़रूरत लगे, और ये फ्री है। मैं नंबर आपको बता देती हूँ दोस्तों, 1-4-4-1-6 नंबर है, 1-4-4-1-6, या फिर 1-800-891-4-4-1-6। जी हाँ, 1-800-891-4-4-1-6। साथ में आप चाहे तो अपने फ़ोन में इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले के माध्यम से। आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं दोस्तों, आप जैसे ही गूगल पे टेली मानस डालेंगे, TELEMANAS, दोस्तों जब भी हम कोई सरकारी वेबसाइट खोलते हैं तो हमेशा ये याद रखें, वो जो एंड होती है वो वेबसाइट किसी .com पे नहीं होगी, वो हमेशा .in पे होगी, .gov.in। और आप पता कर सकते हैं सरकारी वेबसाइट है या नहीं, क्योंकि इसका एंड .gov.in से ही होगा। तो जब आप टेली मानस खोलते हैं, यानी नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम ऑफ इंडिया खोलते हैं, तब आप उस पर क्लिक भी कर सकते हैं। वो आपको नंबर दिखा रहा होता है कि आप कॉल कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, या गूगल प्ले से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस पे बहुत सारी आपको सेवाएं मिलती हैं, जैसे प्रोफेशनल हेल्प मिलती है, काउंसलर का सपोर्ट मिलता है, आपकी पहचान को एनोनिमस ही रखा जाता है, कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, किसी को बताई नहीं जाएगी। तो आप डरे नहीं, घबराए नहीं, ये ना सोचें कि मेरी बात मेरे किसी व्यक्ति को पता चल जाएगी, जानने वाले को पता चल जाएगी। और यूजुअली ऐसा होता है कि अगर हम मानसिक रूप से परेशान भी हैं तो या तो हम खुद से ही झूठ बोल लेते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं तो हम दूसरों से तो बोल ही लेते हैं, क्योंकि हम किसी को बताना नहीं चाहते अपनी परेशानी। लोग हमें कमज़ोर समझेंगे या फिर पता नहीं हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ऐसा लगता है। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, मैक्सिमम लोगों को हम में से कभी ना कभी ज़रूरत पड़ती है हेल्प की। वो हेल्प किसी भी प्रकार की हो सकती है। जब तन को बीमारी हो सकती है तो मन को क्यों नहीं, उसको हमें समझना ज़रूरी है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको प्रोफेशनल हेल्प मिलती है, 24 घंटे सर्विसेज मिलती हैं, मोबाइल एप्लीकेशन भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वीडियो कंसल्टेशन भी उपलब्ध है। और एक बार फिर से मैं बता दूँ, एनोनिमस है, कॉन्फिडेंशियल है, आपकी बात आप मतलब उन प्रोफेशनल्स तक ही रहेगी, बाहर नहीं आएगी। मल्टीपल लैंग्वेज में आपको ये सुविधा मिलती है, तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। टेली मानस आप इसे देख भी सकते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट है, विजिट भी कर सकते हैं। तो इन सुविधाओं के अलावा भी कुछ ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो कुछ एनजीओज प्रोवाइड कर रही हैं या फिर कुछ और संस्थाएं प्रोवाइड कर रही हैं, उनकी भी मदद ली जा सकती है। दोस्तों, कुछ बातचीत

0: मैंने सुनी थी कि किस तरीके से माइक्रो ट्रॉमा जो होता है, कोई बहुत बड़ा नहीं बट कोई एक माइक्रो ट्रॉमा होता है जो कहीं छिपा हुआ सा होता है, जो हमारे बिहेवियर को वैसा बना देता है जैसा कि आज है या हो सकता है कल हो जाए। कई बार हमें कुछ करने के बाद ये लगता है, मैं तो ऐसा नहीं था या मैं तो ऐसी नहीं थी, मैंने कैसे इस तरह से बात की या बिहेव किया। कुछ अंदर दबा हुआ होता है, छिपा हुआ होता है, जो हमारे बिहेवियर को वैसा बना रहा होता है, जो हमें वैसा बना रहा होता है। हो सकता है हम जिद्दी या चिड़चिड़े हो रहे हों, हम पहले ऐसे नहीं थे। हो सकता है हम डरने लगे हों, हम पहले ऐसे नहीं थे। तो अगर कुछ नकारात्मक बदलाव हमारे अंदर आ रहे हैं और एक प्रश्न आपके अंदर आता है कि ये क्यों हो रहा है, तो यानी हो सकता है कोई माइक्रो ट्रॉमा, कोई छुपी हुई बात हो जो आपने अंदर इग्नोर कर दी हो, मगर अंदर रह जाती है वो बात और कैसे वो आपके बिहेवियर को शेप करती है। तो दोस्तों, एक इंटरैक्शन मैंने सुना था, उसकी कुछ झलकियां आपको भी सुनाती हूँ। ये सहयोग जो कार्यक्रम है, ये भी बहुत सुंदर कार्यक्रम है। मनोदर्पण एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, ताकि साइकोलॉजिकल और मेंटल सपोर्ट स्टूडेंट्स को मुहैया कराया जा सके। और इस बारे में आइए कुछ बातें आपको सुनाते हैं।
1: सोच में सकारात्मकता लाएं, जीवन को बेहतर बनाएं।

0: मनोदर्पण के काउंसलर से परामर्श पाने के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 844-844-0632। नंबर एक बार फिर सुने 844-844-0632।
1: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल, चैनल नंबर 6 से 12 और एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इसके अलावा आप हमारे अन्य यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी जुड़े हैं, जो है एनसीईआरटी पीएम ई विद्या क्लास नंबर 6 से 12। इन तमाम माध्यमों पर आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव इंटरैक्शन में, जिसका नाम है सहयोग। आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मेरे साथ नजर आ रही हैं हमारी साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर। चलिए आप सभी का परिचय करवाना चाहते हैं उनसे। आप हैं सुश्री सोनल सिद्धू। सोनल, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार आप सभी का, फिर से स्वागत, आप सभी का अभिनंदन। और इससे पहले कि हम आज इस सत्र की डिटेल्स आपके साथ शेयर करें, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ अबाउट सहयोग सेशंस। एज यू ऑल नो, सहयोग एंड परिचर्चा सेशंस आर हेल्ड अंडर मनोदर्पण इनिशिएटिव। इट्स अ ब्रिलियंट इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान फॉर प्रोवाइडिंग साइको सोशल सपोर्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, देयर पेरेंट्स एंड टीचर्स अक्रॉस द कंट्री। हम इन सत्रों में बच्चों के मेंटल वेलबींग पर भी बात करते हैं। आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं वो भी हम आपके साथ साझा करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे द माइक्रो ट्रॉमा, द हिडन एवरीडे स्ट्रेसर दैट शेप बिहेवियर। किस तरह से माइक्रो ट्रॉमा आपके हर दिन के व्यवहार को प्रभावित करता है, इम्पैक्ट डालता है, आज हम इस सत्र में जानने वाले। वी हैव जॉइन्ड बाय आर एक्सपर्ट्स, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स क्विकली मीट देम। यू आर डॉक्टर जया मृणालिनी, यू आर असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम आरआईई एनसीईआरटी भोपाल। वेरी वार्म वेलकम मैम, स्वागत है आपका।
2: थैंक यू मैम।
1: We have joined by our practicing counselor as well. You are Miss Suja Varghese. Very warm welcome, ma'am. Swagat hai aapka. और इससे पहले कि हम इस सत्र को शुरू करें, लेट मी शेयर सम सर्टेन इन्फॉर्मेशन टू ऑल द व्यूअर्स। इन केस यू हैव एनी क्वेरी और यू वांट टू नो मोर अबाउट माइक्रो ट्रॉमा, आप अपनी क्वेरीज हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर, जो है 8800-440-559। अगर आप मनोदर्पण काउंसलर से बात करना चाहते हैं बच्चों, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। उनका नंबर है 8448440632। हमारे YouTube चैनल्स पे हैं तो बहुत आसान है हमसे जुड़ना, लाइव चैट बॉक्स में जाके अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। अगर ईमेल के थ्रू हमसे जुड़ना चाहते हैं और फीडबैक शेयर करना चाहते हैं, तो आपके ईमेल्स का भी बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें करेंगे ईमेल, हमारा ईमेल एड्रेस है sahyog.ncert@cit.nic.in। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने आज के इस सत्र। हम यहाँ पर शुरुआत करना चाहेंगे जया मैम आपसे। हम माइक्रो ट्रॉमा की बात करते हैं जो कि एडोलसेंट स्टूडेंट्स के बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है। मैम, इसकी हम डिटेल जरूर लेंगे लेकिन एट द वेरी बिगनिंग ऑफ दिस सेशन हम चाहते हैं कि आप प्लीज हमारे सभी व्यूवर्स को ये बताएं कि माइक्रो ट्रॉमा एक्चुअल में होता क्या है और इसके सोर्सेस क्या क्या होते हैं मैम।
2: जी तो मैम, माइक्रो ट्रॉमा इज एक्चुअली अ स्मॉल सटल एंड ऑफन अननोटिस्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ स्ट्रेस। मतलब ये डेली एक बहुत ही दिखने में बहुत लगेगा कि एक बहुत छोटा एविडेंस है, किसी को कुछ बोल दिया, ये बहुत अननोटिस होता है, बट एक्चुअली अगर हम देखें कि टाइम एंड अगेन इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। सो इट मे लुक लाइक दैट द इंसिडेंस इज वेरी स्मॉल एंड too minor to notice, but their cumulative impact actually shapes a person's emotional state, behavior and mental well-being. अब ये जो है ये बहुत frequent होता है, बार बार repetitive होता है, बहुत ही frequent repetitive, हमेशा ignore normalize करने वाले कि अरे ये तो छोटी सी बात है, इस तरीके से हम इस पूरे experience of stress को देखते हैं। और हम इसे, चूंकि हम इसको बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं कि हमने कुछ भी बोल दिया और ये डेली डेली हमेशा एक किसी को टारगेट करते हुए बोलते गए, तो ये इसलिए हम इसको एक माइक्रो ट्रॉमा बोलते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे धीरे हमारे बिहेवियर, हमारे रिलेशनशिप्स को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। अगर इसके हम सोर्सेस को लेके बात करें कि ये कहाँ से ये ट्रॉमा जो है हमें मिलते हैं, तो ये बहुत सिंपल वे में बोलूंगी कि ये हमारे आसपास के फिजिकल सराउंडिंग लोग हैं जिनके तरफ से ये ट्रॉमा हमें मिलता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बोलूं तो द पीपल अराउंड अस, जो हमारे क्लोज हैं, फैमिली, हमारे पीयर मेट्स, जैसे कि छोटी सी बात है कि फैमिली में क्या रही है, तो छोटी सी बात है, इसमें क्या रोने की बात है। और बार बार अगर बच्चा एक्सप्रेस कर रहा है और हम उसे बोल रहे हैं कि अरे इतने छोटे से बात पे रोते हो, या हम उसे लेबल करते हैं कि तुम देखो उसने कितना अच्छा किया, तुम्हें नहीं समझ, कॉन्स्टेंट कंपैरिजन करते हैं फैमिली की तरफ से, हमेशा हम देखें, या टीचर हमेशा अगर किसी को टारगेट करके बोल रहा है कि अरे या कोई बहुत साइलेंट है तो वाई आर यू साइलेंट, एंड वो जो एक टारगेट हमारे लोगों के अराउंड होते हैं, कभी कभी एक्सेंट पे लोग बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं, तो इस तरीके के जो छोटे छोटे कमेंट जो बार बार किए जाते हैं, इस तरीके के टारगेट, तो ये एक मतलब हम सोर्स की तरह देख सकते हैं, ये भी बहुत ज्यादा माइक्रो ट्रॉमा के रूप में इम्पैक्ट कॉज करता है किसी के लाइफ में. दूसरा हमारा फिजिकल सराउंडिंग, हम कैसे सराउंडिंग में रह रहे हैं, अगर बहुत ही क्राउडेड बस में ट्रैवल करके जा रहे हैं, या हम जिस क्लासरूम में बैठ रहे हैं वो बहुत कंजस्टेड है, ओवर क्राउडेड है, या हमारा होम एनवायरनमेंट बहुत फेवरेबल नहीं है हमारे काम के लिए पढ़ने के, तो वो भी एक छोटे छोटे ट्रॉमा कॉज करते हैं. देन अगर हम आगे देखें तो जो सोसाइटी है, हम हमेशा देखते हैं कि अगर किसी लड़के को रोते हुए देखते हैं तो सोसाइटी ये कमेंट करती है कि अरे लड़के होके रोते हो, या तुम्हें तो यही करना चाहिए, या इस तरीके की जो लेबलिंग करते हैं, ये धीरे धीरे, ये बार बार अगर किसी को बोला जाए तो ये धीरे धीरे करके ये माइक्रो ट्रॉमा कॉज करती है. सिमिलरली मीडिया, आज के टाइम में हम देखते हैं कि मीडिया के दौर में बहुत ज़्यादा बच्चे प्रभावित होते हैं इंटरनेट पे, जो रील्स वो देखते हैं या जो मैसेजेस और जो ये अपडेट्स होते हैं, और हमें हर पल नेगेटिव, और वो जिस तरीके से पूरे के पूरे फिजिकल अपीयरेंस को लेके बात की जाती है, तो उसको लेके जब इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बच्चे फील करने लगते हैं, या नेगेटिव चीज़ों को पढ़ के जिस तरीके का उनके अंदर इम्पैक्ट आता है, तो ये सब धीरे धीरे धीरे ट्रॉमा कॉज करते हैं. और ये कोई एक दिन बोल देने वाली बात नहीं होती, ये जब हर दिन की एक ही कमेंट को हम हर दिन कहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो हमारे बिहेवियर, हमारे थॉट प्रोसेस को, हमारे मेंटल वेलबींग को बहुत प्रभावित करता है. जी
1: जी तो ये तो बात हुई, और ये सारी चीज़ें हुई जो कि बहुत ही धीरे धीरे आप सभी के व्यवहार पर असर करती है. आपके साथ रोज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम, हो सकता है कि अनकॉन्शियसली नहीं, हम कॉन्शियसली हम इस पर जोर ना दे रहे हो, लेकिन अनकॉन्शियसली वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं चलती रहती है. यहाँ पर हम इस बात को, चर्चा को आगे ले जाएंगे. यहाँ पर हम मैम सूजा मैम आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम बात करते हैं माइक्रो ट्रॉमा की, तो किस तरह से ये हमारे बिहेवियर को, हमारे हर दिन के बिहेवियर को शेप करता है, आप प्लीज इस पे बताएं मैम.
3: थैंक यू मैम. एक्चुअली ट्रॉमा शेपिंग एवरीडे बिहेवियर, हम जिस भी चीजों से, जो भी स्ट्रेस से हम जा रहे होते हैं, वो हमारे एवरीडे बिहेवियर को बहुत अफेक्ट देता है. कि आपके पास अगर कोई चीज, कोई स्ट्रेस आया, तो आपने उस समय क्या डिसीशन लेके किया. कई बार आप छोटी छोटी चीजों में भी आप बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर जाते हैं. नाउ सबटल चॉइसेस एंड कोपिंग बिहेवियर्स, आपने उस स्ट्रेस से, उस पॉइंट में आपने क्या एकदम डिसीशन लिया, आपने चॉइसेस क्या बनाए, और जैसे जैसे आप अपने चॉइसेस बनाते जाते हैं, तो स्लोली स्लोली आपका कोपिंग बिहेवियर भी उस हिसाब से बनता जाता है. देन रिड्यूस कैपेसिटी फॉर पॉजिटिव रिकवरी में आप क्या करते हैं कि जैसे लाइफ में अगर आप वैसे पॉजिटिव पर्सन होंगे, बट इफ़ यू आर गेटिंग एवरी डे, इफ़ यू आर गेटिंग लॉट ऑफ नेगेटिव कमेंट्स, तो आपकी जो पॉजिटिविटी है लाइफ के लिए, लाइफ को लेकर, वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है, और आपकी कैपेसिटी स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा कम हो जाता है. देन सेंस मेकिंग एंड परसिस्टेंस विजिलेंस में, When you, जब कोई भी ऐसा कुछ बिहेवियर होता है या स्ट्रेस आपको बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप उस चीज को अपने आप से क्वेश्चन करने लगते हैं, व्हाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, और क्या हो रहा है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा. एक व्यक्ति उसको इतना कंफ्यूज हो जाता है कि उसको हर चीज में उसको सेंस मिलना ही चाहिए कि क्यों हो रहा है, और फिर वो क्या होता है, अगले बार जब उसको स्ट्रेस आता है तो वो बहुत विजिलेंट हो जाता है कि कहीं मैं ऐसा ना कर दूं, वैसा ना कर दूं, तो इतना ज्यादा विजिलेंट होता है कि इज नॉट एबल टू एक्चुअली एंजॉय हिज लाइफ. देन शेपिंग रिलेशनशिप्स एंड सोशल बिहेवियर, अब जो स्ट्रेस के कारण जो हमने चैलेंजेस फेस करी, उस चैलेंजेस को जब हमने फेस किया, तो हमारे रिलेशनशिप्स हम उस हिसाब से शेप करने लगते हैं, और उसी हिसाब से हमारा सोशल बिहेवियर भी बन जाता है. नाउ दैट डिपेंड्स कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है. देन अक्यूमुलेटिंग अफेक्ट ऑन ओवरऑल हेल्थ एंड कैपेसिटी, अब जो भी स्ट्रेस हुआ, आपका ओवरऑल जो बिहेवियर और हैबिट जो बन गया है, उसका इफेक्ट लॉन्ग रन रहता है आपकी हेल्थ पर, और आपकी कैपेसिटी उस हिसाब से होती है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी, आपका जो मूड स्विंग, ये सब ओवरऑल इफेक्ट हो जाता है. सो द पर्सन इज नॉट एबल टू हैंडल दैट स्ट्रेस इन द वे ही शुड. थैंक यू मैम.
1: ओके, तो इस तरह से बच्चों का बिहेवियर जो है चेंज होता है और धीरे धीरे ये आप सभी पे इम्पैक्ट डालता है, तो इसको हैंडल करने की जरूरत है. इसलिए हम यहाँ पे इस चीज को और डिटेल में जानना चाहेंगे. मैम, जब हम माइक्रो ट्रॉमा की बात करते हैं तो किस तरह से इसको पहचाना जा सकता है, रिकग्नाइज किया जा सकता है? जया मैम, प्लीज एक्सप्लेन.
2: जी मैम, तो सबसे बड़ा जो मैं कहूंगी कि इसके इश्यूज हम कहेंगे माइक्रो ट्रॉमा को रिकग्नाइज करना, ये एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि ये इतना सटल होता है, माइन्यूट होता है कि हम इसको पहचान नहीं पाते हैं. अब जैसे एक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसको हम नॉर्मलाइज कर देते हैं. बच्चा कुछ भी एक्सप्रेस कर रहा है, या स्टूडेंट कुछ भी बोल रहा है कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा, या उसको किसी तरह का कमेंट फेस करना पड़ा है, अगर वो बोल कि उसे डेली सुनना पड़ रहा है और वो शेयर करता है, तो हम कहते हैं कि यू आर ओवर रिएक्टिंग, यू डोंट हैव टू ओवर रिएक्ट, जस्ट इग्नोर इट. तो इसको बहुत हम नॉर्मलाइज कर देते हैं, नॉर्मलाइज ढंग से रखते हैं कि भाई ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता इससे. लेकिन बार बार अगर किसी बच्चे को ये फेस करना पड़ रहा है, सुनना पड़ रहा है कमेंट क्लास में, या अपने परिवार में, अपने पीयर ग्रुप में, तो वो कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट कॉज करता है. अब ये एक इशू है, जो हम इसको बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज करने लगते हैं तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कॉज करती है और वो माइक्रो ट्रॉमा का रूप लेती है. सेकेंडली, अगर हम देखें तो ये एक ऐसा ट्रॉमा है जो दिखता नहीं है. अगर बच्चा गिर गया तो उसे चोट लग जाती, तो वो दिख रहा है कि हाँ उसे चोट लग गई, इतना खून बहा और ये सब. बट ये है, ये बहुत मेंटली बच्चे को इफेक्ट करता है. जैसे कि हम सीधे बोल देते कि अरे यू आर ऑलवेज लेट, यू डोंट स्पीक नाइसली, और इस तरीके के कमेंट अगर हम देते रहते हैं बच्चों को, और हर बार देते रहते हैं, कंटिन्यूअसली बच्चे को इस तरीके से देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे धीरे, शुरुआत एक दिन शायद कुछ ना हो, बट अगर टाइम एंड अगेन इसे रिपीट किया जाए तो वो एक माइक्रो ट्रॉमा का रूप ले लेती है. एक वो इनविजिबल है, तो ये भी लगता है कि अरे ये क्या है, इसके बारे में बात करने की जरूरत क्या है, तो वो भी एक ट्रॉमा रिकग्नाइज करने बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि ये दिखता नहीं है और ये धीरे धीरे हमारे मेंटल स्टेट को इफेक्ट करता रहता है. अगर देखें तो जैसे मैंने पहले ही बोला कि इट्स अ क्यूमुलेटिव थिंग, लाइक इट्स नॉट अ सिंगल इवेंट, बट इट्स अ क्यूमुलेटिव, इट्स मोर देन अ सिंगल इवेंट विच हैपन्स इन आर डेली लाइफ. जब डेली डेली इस तरीके के कॉमेंट बच्चों को सुनने पड़ते हैं, चाहे अपने अपियरेंस को लेके, चाहे मैंने जैसे पहले भी बोला कि सोसाइटी जिस तरीके की लेबलिंग करती है, या अपने पीयर ग्रुप में, या टीचर या पेरेंट्स का जो कॉन्स्टेंट कंपेरिजन होता है, अब ये डेली डेली जब पार्ट होता है तो कहीं ना कहीं माइंड में वो घर करता है और एक ट्रॉमा का रूप लेता है. तो अब ये चूंकि ये बहुत डेली और क्यूमुलेटिव प्रोसेस है, तो उसको रिकग्नाइज हम नहीं कर पाते हैं. तो ये रिकग्निशन में कि कुछ तीन चीजें हैं जो एक इशू कॉज करती है कि हम माइक्रो ट्रॉमा को पहचाने कैसा है. तो ऐसा लगता है कि जो मेजर ट्रॉमा है वही काउंट हो, ये जो छोटे छोटे जो इस तरीके के डेली कमेंट और डेली जिस तरीके से बच्चों को सुनना पड़ता है, ये शायद मायने नहीं रखती है. तो ये जो नहीं मायने रखने वाली बात है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इशू है जो हम माइक्रो ट्रॉमा को रिकग्नाइज नहीं करते हैं उसके लिए. मैम जी,
1: जी. तमाम, ये तो बात हुई इश्यूज की कि इसे रिकग्नाइज नहीं किया जाता है आसानी से, तो छोटी छोटी चीजें जो है वो एक साथ इकट्ठा होती रहती हैं, और क्योंकि इसे नॉर्मल माना जाता है तो जो नॉर्मल चीजें हैं उस पर इतना ज्यादा तो ध्यान नहीं दिया जाता है कि सब चीज ठीक है, सबके साथ ही होता है. लेकिन हर पर्सन टू पर्सन अलग अलग है, उनपे सामने जो चीजें हैं उसका असर अलग तरीके से पड़ता है, सेंसिटिविटी लेवल अलग अलग होता है हमारे एडोलसेंट बच्चों का. तो इन सभी चीजों को देखते हुए कुछ हम ऐसे टेक्निक्स जानना चाहेंगे सूचा मैम आपसे, कि कुछ ऐसी हीलिंग टेक्निक्स होंगी जो कि बच्चों को और स्ट्रांग करती होंगी, या फिर वो उनको इस तरह से चीजें वो इग्नोर कर पाए या हैंडल कर पाए. व्हाट आर दोस टेक्निक्स मैम, प्लीज एक्सप्लेन.
3: मैम प्लीज स्लाइड टू बी शिफ्टिंग. थैंक यू. हीलिंग टेक्निक्स, अब जब हम स्ट्रेस में बहुत ज्यादा होते हैं तो मैंने जैसे ऑलरेडी शेयर किया कि मेंटली और फिजिकली बहुत इफेक्ट करता है, साइकोलॉजिकली इमोशंस, हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, एवरीथिंग मैटर्स. सो जो कुछ टेक्निक्स जो मैं लाई हूँ वो है एक माइंडफुलनेस, कि अपने आप जो भी आपको स्ट्रेस दे रहा है, जो सिचुएशंस या पर्सन है, तो वो स्मॉल स्मॉल ट्रिगर्स को हमको समझ लेना चाहिए कि ये करने से मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तो मैं उसको रिड्यूस कैसे कर सकती हूँ. अगर हो सके तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं. सो दैट इज समथिंग कॉल्ड माइंडफुलनेस, जो आपको कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना पड़ता है. देन इट इज इमोशनल लेबलिंग. कई बार हमारे ऐसे इमोशंस होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते. अब इफ यू आर एंग्री, या अगर आप एंग्री हैं या आप बहुत खुश हैं, तो यू कैन इजिली फिगर आउट. बट सो मेनी पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हेन दे आर एक्चुअली एंग्शियस. वो बहुत एंग्जाइटी हो रही है उनको, हार्ट बीट बढ़ रहा है उनका, उनको मूड स्विंग्स हो रहा है, ये सब होता है. तो अगर आप अपने आप को इस इमोशंस को समझ लें और उसको लेबलिंग कर लें कि ये इमोशन है तो मैं उस चीज को कैसे हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, दैट्स कॉल्ड इमोशनल लेबलिंग. तो आप उस चीज को बेटर मैनेज कर पाएंगे. देन इट इज रिफ्रेनिंग, शिफ्टिंग नेगेटिव थॉट्स इनटू बैलेंस्ड वंस. नाउ रिफ्रेनिंग मींस इट इज इनसाइड अस, वो हमारे अंदर है, कि हम उस नेगेटिव कोई भी सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस अगर आ रही है तो हम उसको पॉजिटिवली लें या नेगेटिवली लें. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर इनर वॉइस. अगर आपके अंदर इनर वॉइस है और आप पॉजिटिव टॉक करते हैं तो यू कैन एक्चुअली रिफ्रेम फ्रॉम नेगेटिव थिंकिंग टू अ पॉजिटिव थिंकिंग, एंड यू कैन बैलेंस इट. आई डोंट से कि है ना हमेशा हम पॉजिटिव से कर, हमेशा पॉजिटिव ही सोचेंगे, बट देर आर टाइम्स नेगेटिव से सडनली आपको शिफ्ट करना आना चाहिए, दैट्स कॉल्ड रिफ्रेमिंग. देन यू हैव टू लर्न टू सेट योर बाउंड्रीज, लिमिट योर ड्रेनिंग इंटरेक्शंस. कई बार कुछ लोगों से दे आर वेरी नेगेटिव, दे आर ऑलवेज सेइंग वी आर सिक, दे आर ऑलवेज टेकिंग एवरीथिंग दैट इज नेगेटिव. तो उस चीज को आप उसके साथ एक बाउंड्री लिमिट कर लीजिए, सो दैट इट डज नॉट अफेक्ट यू. बिकॉज लाइक जया मैम सेड कि हम बार बार जब किसी चीज को सुनते हैं तो हमारा माइंड सेट भी वैसे ही हो जाता है. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू लिमिट योर बाउंड्रीज विथ दीज पीपल. देन सेल्फ कंपैशन, वी आर वेरी कंपैशनेट वेन इट कम्स टू अदर्स. जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो हम उनके लिए कंपैशन होता है, बट वेन इट कम्स टू आवर सेल्फ, हमारे खुद के लिए आता है, तो हमको कई बार हम अपने ऊपर खुद ही बहुत हार्श हो जाते हैं कि तो जरूरी होता है सेल्फ टॉक करना. तो कई बार क्या होता है, जैसे वेन यू आर ब्रशिंग योर टीथ, गिव सम असर्टिव पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दीजिए, ताकि आई एम गुड, आई एम एबल टू डू इट. जब आप ये करेंगे तो यू बिकम कंपैशनेट फॉर योरसेल्फ. और जब तक
4: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन.
5: प्लेटफॉर्म पर चलते समय ध्यान रखें कि यदि कोई गाड़ी रनिंग थ्रू पास होती है उस समय प्लेटफॉर्म के किनारे पर न चलें, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है. तब एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए पैदल पुल का इस्तेमाल करें. रेलवे लाइन क्रॉस करना कानूनी अपराध है व इससे आप अपनी जान गंवा सकते हैं.
4: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: एक माँ का अपने बच्चे के प्रति जो स्नेह होता है वो निस्वार्थ स्नेह होता है। एक बार माँ जो थी ना किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी, और बेटा जो होता है वो मम्मी के पास आता और कहता, मामा मुझे इस महीने का बिल आपको सबमिट करना है। मम्मी कहती, व्हाट? लाइक यस। तो मामा को बिल देता है तो मामा उसको देखती है, मालूम बेटा क्या लिखता है? मामा इस महीने आपने 3 बार मुझे नीचे दुकान में सामान खरीदने को कहा, एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर ट्रिप 9 रुपीज बिल। मामा आपने बकेट ऑफ पानी को यहाँ से यहाँ उठा के रखने के लिए कहा अनदर 5 रुपीज। मामा आपने छोटी बहन को संभालने के लिए कहा वेरी टेरिफिक जॉब 10 रुपीज। सारा महीने का बिल 66 रुपीज, क्योंकि यू आर माई डियर लविंग मम्मी 6 रुपीज दिवाली डिस्काउंट 60 रुपीज बिल। तो मामा ये बिल को देखती है, मुस्कुराती है अपने क्यूट बॉय को देखकर। द अदर एंड ऑफ द बिल जो खाली पेज था, माँ लिखती है, 9 महीने मैंने आपको अपने खून से सींचा, नो चार्ज। मैंने आपको चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, नो चार्ज। जब भी आप बीमार पड़ते थे तो रात रात बैठकर मैंने आपकी पालना दी, नो चार्ज। जब भी आप स्कूल से ट्यूशन क्लासेस से थके हारे वापस आते थे, गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट भोजन डिनर बनाकर देती थी, नो चार्ज। और मम्मी नीचे लिखते 0 रुपीज बिल, और बेटे को देती है। बेटा ये बिल को देखता है, अपनी मम्मी को देखता है, कहता है, मामा आई एम वेरी सॉरी, और अपना बिल लेता है, उसको कट करता है और बहुत बोल्ड लेटर्स में लिखता है, मामा पेड इन फुल, मामा पेड इन फुल बट इनडेब्टेड फॉर एवर, जीवन भर में आपका

0: रुक रुक। ओ भाई साहब इधर आओ, कहाँ जा रहे हो जरा बताओ। लाल बत्ती में दिखता नहीं आपको, सामने लोग रोड क्रॉस कर रहे फिर भी गाड़ी पकाए चले जा रहे हो हैं?
1: अरे हवलदार साहब, एक बार लाल बत्ती में निकल गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा।
0: ओए पहाड़ भले ही ना टूटे, लेकिन बेमतलब यमराज के रजिस्टर में एक नाम जुड़ जाएगा। ओए इसीलिए जब भी लाल बत्ती हो तो बोलो पहले आप, समझे?
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: गुड इवनिंग, नमस्ते। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप जुड़ चुके हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम
4: उड़ान के साथ।
3: जी हाँ, मैं हूँ आपकी दोस्त मोना। आप दोस्तों के बीच प्यार के साथ, मस्ती के साथ गुनगुनाते खूबसूरत शाम बिताने आ चुकी हूँ और साथ में लाई हूँ
4: रूहानी।
3: हाँ हाँ, उसको भी लेकर आई हूँ और हम दोनों जरूर सुनाएंगे आज आपको कहानियाँ भी, होमवर्क भी, साथ ही साथ प्यारी कविता पूछा जाएगा आप दोस्तों से, सवाल भी जिसका जवाब दोगे आप
4: 9414151415 पर।
3: सुनते रहो,
4: मुस्कुराते रहो,
3: रेडियो मधुबन 107.8 FM।

तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए आदर्श है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू, तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी, तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल है, तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कप कपाएगा, चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कप कपाएगा, अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा, तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है।

0: दोस्तों वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप जुड़ चुके हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम उड़ान के साथ। आज है विशेष दिन। विशेष किस चीज का है दिन?
1: आतंकवाद विरोधी दिवस।
0: पूरे भारत वर्ष में 21 मई को ये मनाया जाता है एंटी टेररिज्म डे। आज दुनिया जिन समस्याओं का सामना कर रही है उनमें सबसे बड़ी और अहम समस्या है आतंकवाद। आतंकवाद के कारण हजारों लोगों को दुनिया में अपनी जान गंवानी पड़ती है और भारत समेत कई देशों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। आतंकवाद जैसी समस्याओं से निपटने के लिए भारत ने 21 मई का दिन चुना और इसको समर्पित किया। हर साल पूरे देश भर में 21 मई में आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद सिर्फ है आतंकवाद के समाज विरोधी कृत्य से लोगों को अवगत कराना, आतंकवाद की वजह से लोगों को जान माल का कितना नुकसान उठाना पड़ता है उससे अवगत कराना।
1: 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है क्योंकि 1991 को देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्री पेरुनबुदन में हत्या कर दी गई थी। उस वक्त राजीव गांधी चुनाव प्रसार के लिए सिलसिले में श्री पेरुनबुदन गए हुए थे। वे वहां से एक आम सभा को संबोधित करने जा ही रहे थे कि उनका स्वागत करने के लिए रास्ते में बहुत सारे प्रशंसक उन्हें फूलों के माला पहना रहे थे। इसी मौके का उठाते हुए लिट्ठे के आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। हमलावर धनु ने एक आत्मघाती विस्फोट का अंजाम दिया जिसमें राजीव गांधी की मौत हो गई थी। राजीव गांधी बलिदान दिवस को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
0: तभी से स्वर्गीय राजीव गांधी जी के सम्मान में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 21 मई का दिन आतंकवाद विरोधी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और आप सभी को पता है इस मई के दौरान ही पुलवामा जो अटैक्स, ये जितने भी अटैक्स हमारे हुए और पिछले साल जो कश्मीर में अटैक हुआ जिसकी वजह से हमारे कितने भारत के करीबन 21 लोगों की मौत हो गई थी, जिसका भारत ने मुंह तोड़ जवाब तो दिया लेकिन कहीं ना कहीं ये हानि बहुत नुकसानदायक होती है। सिर्फ जान माल की हानि नहीं होती है, ये इमोशंस का भी कत्ल कर देता है, इमोशंस को भी तोड़ देता है, साथ ही साथ हर एक के अंदर एक खौफ पैदा करता है। कश्मीर भारत का है, ये जम्मू कश्मीर बहुत ही खूबसूरत राज्य है लेकिन शायद हम में से बहुत लोग इस जगह जाने से आज डरते भी हैं, प्लान भी नहीं कर पाते। क्यों? खौफ है उन दिनों का जो हुआ जिसकी वजह से कितने मासूम लोगों की हत्या हुई, मार दिया गया और भारत को इसकी खामियां भुगतनी पड़ी, नुकसान हुआ। तो प्लीज इसे रोके जरूर। चलिए इसके पहले एक सवाल पूछ लेते हैं। सवाल है आपको, आपके लिए, ताजमहल इन तीनों में से किस चीज का बना हुआ है? ताजमहल इन तीनों में से किस चीज का बना हुआ है? क्या संगमरमर पत्थर का बना हुआ है या फिर ग्रेनाइट का बना हुआ है या फिर बलुआ पत्थर से बना हुआ है? सही जवाब एक है, देना आप
1: 9414151415 पर देना।
0: युद्ध रोको, आतंकवाद रोको। चलिए गीत सुनते हैं।

0: ये है नशे की कहानी।
1: पहला नशा, पहला खुमार,
0: कभी किसी वजह से और कभी यूं ही बेवजह।
1: किसी की याद सताए, शराब पी लेना।
0: कड़वे घूंट पीकर भी आने लगा अगर जिंदगी का मजा, तो लगता है

0: दोस्तों कविता लेकर आए हैं आज हम उड़ान में। मजहब और जाति की दीवारों को तोड़ो, अब वक्त आ गया है आतंकवाद को रोको। मासूमों का लहू जो बहता है सड़कों पर, इस खौफ के काले साए को यहाँ से उखाड़ फेंको।
1: डरते नहीं हम कभी भी किसी बुजदिल से, बहादुरी की मिसाल लिखते हैं हम अपने लहू से। एकता की डोर में जब सारा देश बन जाएगा, तब आतंकवाद का हर नापाक इरादा मिट जाएगा।
0: सीमा पर जो वीर हमारा सीना ताने खड़े हैं, उन्हीं के दम पर आज हम सुरक्षित भी खड़े हैं।
1: आओ मिलकर कसम खाएं हम इस वतन की, मिटा देंगे जड़ से दहशत गर्दी को इस चमन की।
0: मैं एक छोटी सी घटना बताती हूँ। दिल्ली में अक्सर ये विस्फोट होने की वजह से मुझे एक प्रोग्राम में अटेंड करने जाना था और मैं अकेले जा रही थी। विश्वास नहीं करोगे, मैं ट्रेन स्टेशन में पहुंचने के बाद भी, क्योंकि जस्ट 10 दिन पहले वो घटना घटी थी, तो मैं ट्रेन स्टेशन पहुंचने के बाद भी, कंफर्म टिकट होने के बाद भी, मैंने वो रेल यात्रा नहीं की। सिर्फ एक डर। तो इस डर को मिटाने की जरूरत है, इस खौफ को मिटाने की जरूरत है, आतंकवाद के नापाक इरादे को भी मिटाने की जरूरत है। सभी के दिलों में सुरक्षित हैं हम, इस भावना को पनपाने की जरूरत है। चलिए एकजुट हो जाए, आतंकवादी को कह दे, आतंकवाद को कहें नो। एक गीत आप तक पहुंचा रहे क्योंकि आप जुड़े हैं उड़ान के साथ, और आज का पुनः सवाल दोहरा देते हैं।
1: ताजमहल इन तीनों चीजों में से किस चीज का बना है?
0: आपके ऑप्शन है ए संगमरमर का, बी ग्रेनाइट का, सी बलुआ पत्थरों का। झटपट जवाब दीजिए 9414154154155।

0: गॉड इज विद मी, लेकिन आज एक और दिवस है, वो है
1: अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस।
0: जी हाँ, इंटरनेशनल टी डे। प्रत्येक वर्ष 21 मई को ये विशेष दिन मनाया जाता है। हर साल 15 दिसंबर को विभिन्न चाय उत्पादक देशों का द्वारा मनाया जाने वाला विश्व माने ये 15 दिसंबर को होता था, लेकिन भारत के सिफारिश से अब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया। दरअसल अधिकतर चाय उत्पादक देशों में गुणवत्ता चाय उत्पादन का सीजन ही मई होता है, ओके? क्योंकि उस समय कटिंग होती है, प्लकिंग होती है। प्लकिंग मोस्टली आपका अप्रैल से शुरू होता है, जो पत्तियों को प्लक करना। और फिर चाय उत्पादन तथा प्रसंस्करण विकासशील देशों में लाखों परिवार के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत है।
1: और लाखों गरीबों परिवारों के लिए निर्वाह का मुख्य साधन है, जो कम से कम विकसित देशों में रहते हैं। चाय उद्योग कुछ गरीब देशों के लिए आय और निर्यात राजस्व का एक मुख्य स्रोत है और श्रम ग्रहण क्षेत्र के रूप में विशेष रूप से दूरस्थ और आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करता है।
0: सिर्फ यही नहीं, चाय विकासशील देशों में ग्रामीण विकास, गरीब में कमी और खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसलों में से जानी जाती है। इतिहास है,
1: यह दिन हर साल लोगों और सरकार का ध्यान खींचने के लिए मनाया जाता है। हालांकि भारत में सिफारिश का संयुक्त राष्ट्र ने 21 मई को इंटरनेशनल टी डे घोषित किया है, 4 साल पहले मिलान में हुई अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठित के अंतर सरकारी समूह की बैठक में भारत ने यह प्रस्ताव पेश किया था।
0: और ये पेश करने के बाद राजी भी हो गए और साथ साथ चाय के चस्की शाम में भारत नहीं पूरे विश्व भर में यानी कायम हो गई। खैर, एक चाय का गीत भी आपके लिए है, सुना देती हूँ इसे पहले, क्योंकि आप उड़ान के साथ जुड़े हैं।

0: सामान्य चल रहा था, तभी अचानक यमराज का दूत महिषासुर बहुत घबराया हुआ यमलोक के दरबार की ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। उसके चेहरे पर डर और हैरानी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि आज पृथ्वी पर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जो पहले कभी नहीं हुआ था।
1: अरे ये आज क्या मुसीबत हो गई, मैं तो सच में बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया हूँ। अगर मैंने ये बात जल्दी से महाराज को नहीं बताई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। पृथ्वी के एक जंगल में एक गधा, हाँ एक साधारण सा गधा, उसने तो हद ही कर दी। जब मैं उसकी आत्मा लेने गया तो उसने साफ मना कर दिया, कहने लगा जब तक मैं खुद यमराज से बात नहीं कर लूंगा तब तक अपने प्राण नहीं दूंगा। अरे भला ऐसा भी कहीं होता है? अगर ये बात फैल गई तो बाकी जानवर भी यही करने लगेंगे। नहीं नहीं, मुझे अभी तुरंत जाकर महाराज को सब बताना होगा, वरना आज मेरी ही खैर नहीं है।
2: महाराज गजब हो गया, बहुत बड़ा गजब हो गया। मैं धरती से ऐसी खबर लेकर आया हूँ कि सुनकर आम भी चकित रह जाएंगे। मैंने अपने जीवन में कई अजीब घटनाएं देखी हैं, लेकिन आज जो हुआ है वो तो बिल्कुल ही अलग है। एक गधा, जी हाँ महाराज, एक साधारण सा गधा मौत के दरवाजे पर खड़ा होकर आपकी मांग कर रहा है।
3: महिषासुर जरा शांत होकर बात करो, तुम्हें देखकर लगता है जैसे धरती पर कोई बहुत बड़ा तूफान आ गया हो। साफ साफ बताओ आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुम इतने घबराए हुए यमलोक तक दौड़े चले आए।
4: महाराज धरती के एक जंगल में एक गधा अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, मैं उसकी आत्मा लेने गया था लेकिन उसने साफ मना कर दिया। वो कह रहा था कि जब तक वो खुद यमराज से बात नहीं कर लेगा तब तक वो अपनी जान नहीं छोड़ेगा।
3: क्या कहा, एक गधा और वो यमराज से बात करना चाहता है? ये तो बड़ा विचित्र मामला है। तुमने उससे ये नहीं पूछा कि आखिर उसे मुझसे क्या काम है? मैं इतना भी खाली नहीं हूं कि हर किसी के बुलावे पर चला जाऊं।
4: पूछा था महाराज, बहुत समझाया भी, लेकिन वो गधा अपनी जिद पर अड़ा रहा, बस बार बार एक ही बात दोहराता रहा कि मुझे यमराज से ही बात करनी है। सच कहूं तो उसकी जिद देखकर मैं भी हैरान रह गया।
2: महाराज अगर आज ये गधा बच गया ना तो कल को जंगल के सारे गधे लाइन लगाकर कहेंगे पहले यमराज से मीटिंग चाहिए, फिर तो हमें यमलोक में गधा मीटिंग ऑफिस खोलना पड़ेगा।
4: महिषासुर तुम्हें मजाक ही सूझ रहा है, लेकिन ये मामला सच में थोड़ा अजीब लग रहा है। कोई साधारण गधा मृत्यु को रोकने की हिम्मत कैसे कर सकता है?
0: यमराज कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाते हैं।
5: आखिर ऐसा कौन सा सवाल हो सकता है जिसके लिए एक गधा अपनी मृत्यु को भी रोक रहा है?
6: ठीक है महिषासुर, चलो हम खुद चलकर देखते हैं। मैं भी जानना चाहता हूं कि वो गधा आखिर क्या कहना चाहता है।
0: इसके बाद यमराज और उनका दूत महिषासुर यमलोक से निकलते हैं और सीधे धरती के उस जंगल की ओर चल पड़ते हैं, जहां एक जिद्दी गधा मौत के दरवाजे पर खड़ा उनका इंतजार कर रहा होता है। कुछ ही समय में यमराज और उनका दूत महिषासुर धरती के उस जंगल में पहुंच जाते हैं। वहाँ एक कमजोर और घायल गधा जमीन पर पड़ा होता है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी हिम्मत और जिद साफ दिखाई दे रही होती है।
5: तो तुम ही हो वो गधा जिसने यमलोक तक खबर भिजवाई है, मेरे दूत को भी रोक दिया और अपनी जान देने से मना कर दिया। आखिर इतनी हिम्मत तुम्हें कहां से मिल गई कि तुमने मृत्यु को भी कुछ देर के लिए रोक दिया?
7: प्रणाम महाराज, सबसे पहले तो धन्यवाद कि आप खुद यहाँ आए। सच बताऊं तो मुझे यकीन था कि आप जरूर आएंगे, क्योंकि अगर मैं मर जाता और मेरा सवाल अधूरा रह जाता तो मेरी आत्मा को बहुत दुख होता।
8: अरे गधे भाई तुम भी कमाल करते हो, लोग मरते समय भगवान को याद करते हैं और तुमने तो सीधे यमराज की मीटिंग फिक्स कर दी। इतनी हिम्मत तो कई शेरों में भी नहीं होती।
9: दूत जी क्या करूं, जिंदगी में पहली बार कोई वीआईपी मिलने आया है। अगर मैं जल्दी मर जाता तो ये मौका भी हाथ से चला जाता। मैंने सोचा मरना तो बाद में भी हो जाएगा, पहले यमराज से बात कर लेते हैं।
10: गधे तुम्हारी जिद ने मुझे यहाँ तक आने पर मजबूर कर दिया है, अब जल्दी बताओ आखिर तुम्हें मुझसे क्या पूछना है, क्योंकि मृत्यु के समय को ज्यादा देर तक टाला नहीं जा सकता।
7: महाराज, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये गधा ऐसा कौन सा सवाल पूछने वाला है जिसके लिए इसने पूरी मौत की प्रक्रिया ही रोक दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मरने के बाद यमलोक में छुट्टी मांगने वाला हो?
11: अरे दूत जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? छुट्टी तो मुझे जिंदगी में भी नहीं मिली। हर दिन बोझ उठाओ, डांट खाओ और ऊपर से लोग मजाक उड़ाएं। अगर यमलोक में भी यही काम मिला तो फिर तो मैं वापस धरती पर ट्रांसफर मांग लूंगा।
6: गधे, मजाक बहुत हो गया, अब गंभीर होकर अपनी बात बताओ। आखिर ऐसा कौन सा सवाल है जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है?
4: महाराज, मेरा सवाल बहुत सीधा है, लेकिन उसका जवाब पूरे जंगल का भविष्य तय कर सकता है। अगर कोई अपनी आंखों से बहुत बड़ा गलत काम होते देखे, ऐसा काम जो पूरे जंगल की बर्बादी का कारण बन सकता हो, तो उसे क्या करना चाहिए?
2: महाराज, ये गधा तो सच में अजीब बात कर रहा है। आज तक किसी ने मृत्यु के समय ऐसा सवाल नहीं पूछा। मुझे तो लगता है कि इस जंगल में जरूर कोई बड़ी साजिश चल रही है।
0: गधे की बात सुनकर यमराज भी कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें महसूस होता है कि ये गधा सिर्फ अपनी जान की चिंता नहीं कर रहा, बल्कि पूरे जंगल की रक्षा करना चाहता है। जंगल की ठंडी हवा में अजीब सा सन्नाटा था। गधे की बात सुनकर यमराज और महिषासुर दोनों गंभीर हो जाते हैं। अब सबको लगने लगता है कि ये सिर्फ एक साधारण सवाल नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ी सच्चाई छिपी है।
5: गधे, तुम्हारी बात बहुत गंभीर लग रही है। अगर किसी ने सच में पूरे जंगल के खिलाफ साजिश रची है तो उसे छुपाना बहुत बड़ा पाप होगा। लेकिन पहले तुम साफ साफ बताओ कि तुमने आखिर ऐसा क्या देखा है जिससे तुम्हें इतनी चिंता हो रही है।
2: महाराज, मैंने अपनी आंखों से ऐसी बात देखी है जिसे सुनकर कोई भी चौंक जाएगा। जंगल के दो जानवर मिलकर पूरे जंगल को भूखा मारने की साजिश कर रहे हैं। वे चोरी छुपे जंगल का अनाज इंसानों को बेच रहे हैं। अगर ये चलता रहा तो कुछ ही दिनों में पूरा जंगल भूखा मर जाएगा।
6: महाराज, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। जंगल का अनाज चुराकर इंसानों को बेचना मतलब पूरे जंगल के साथ गद्दारी करना। मुझे तो अब समझ में आ रहा है कि ये गधा मरने से पहले आपसे क्यों मिलना चाहता था।
11: महाराज, सच बताऊं तो मैं पहले सोच रहा था कि चलो मर जाते हैं, कम से कम बोझ उठाने से छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन जब मैंने ये साजिश देखी तो लगा अगर मैं मर गया तो जंगल वाले कहेंगे गधा तो था ही बेवकूफ, कुछ देखा ही नहीं। इसलिए सोचा मरने से पहले थोड़ा समझदार बन ही जाऊं।
6: गधे, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। अगर कोई अपनी आंखों से गलत काम होते देखे और फिर भी चुप रहे तो वो भी उतना ही दोषी होता है जितना अपराध करने वाला। सच्चाई का साथ देना ही सबसे बड़ा धर्म है।
4: महाराज, यही बात सुनने के लिए मैंने आपको बुलाया था, क्योंकि मैं बहुत कमजोर हो चुका हूं, शायद ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा। लेकिन मरने से पहले मैं उस गद्दार को सबके सामने लाना चाहता हूं।
11: महाराज, ये गधा तो बड़ा बहादुर निकला, वरना कई जानवर तो ऐसे होते हैं जो चोरी देखकर भी कहते हैं भाई हमें क्या, हम तो घास खाने वाले हैं।
5: महाराज, इसलिए मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे थोड़ी सी ताकत दे दें, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, तो मैं उस गद्दार को पूरे जंगल के सामने पकड़वा सकता हूँ।
11: गधे, तुम अपनी जान से ज्यादा पूरे जंगल की चिंता कर रहे हो, ऐसा साहस बहुत कम देखने को मिलता है। अगर तुम्हारा इरादा सच में जंगल को बचाने का है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ।
5: महाराज, सच कहूँ तो मैं भी हैरान हूँ। जिंदगी भर सबने मुझे बेवकूफ गधा कहा, लेकिन आज पहली बार मुझे लग रहा है कि शायद इस जंगल को बचाने के लिए सबसे समझदार गधा भी मैं ही निकला।
0: गधे की ईमानदारी और हिम्मत देखकर यमराज प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि मृत्यु के नियम आसानी से नहीं बदले जा सकते।
12: ठीक है गधे, मैं तुम्हें थोड़ी शक्ति दे सकता हूँ, लेकिन इसके साथ एक शर्त भी होगी। जैसे ही तुम्हारा काम पूरा होगा उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी।
4: महाराज, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अगर मेरी मौत से पहले जंगल बच सकता है तो मैं ये सौदा खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ।
0: गधे की सच्चाई और साहस देखकर यमराज प्रभावित हो जाते हैं। जंगल में एक अजीब सी शांति छा जाती है, जैसे कोई बड़ा फैसला होने वाला हो।
3: गधे, तुम्हारी नीयत साफ है और तुम्हारा साहस प्रशंसा के योग्य है। मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए शक्ति दे सकता हूँ, लेकिन इसके साथ एक कठोर शर्त होगी। जैसे ही तुम्हारा काम पूरा होगा, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो जाएगी।
4: महाराज, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अगर मेरी मौत से पहले जंगल बच सकता है तो मैं ये सौदा खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ।
7: महाराज, सच कहूँ तो आज पहली बार मुझे लग रहा है कि यमलोक में भी कभी कभी गर्व महसूस किया जा सकता है। ये गधा अपनी जान की परवाह किए बिना पूरे जंगल के लिए खड़ा है, ये कोई साधारण बात नहीं है।
3: दूत जी, आज तो मुझे खुद पर भी थोड़ा गर्व हो रहा है, वरना अभी तक तो लोग मुझे देखकर सिर्फ यही कहते थे, अरे हटो हटो, गधा आ गया। लेकिन आज अगर सब सही हुआ तो लोग कहेंगे, अरे रास्ता दो, हीरो गधा आ रहा है।
13: ठीक है गधे, मैं तुम्हें ये शक्ति प्रदान करता हूँ, लेकिन याद रखना, तुम्हारे पास बहुत कम समय है, हर क्षण कीमती है, इसलिए बिना देरी किए अपने कार्य को पूरा करो।
0: इतना कहते ही यमराज अपने दिव्य हाथ उठाते हैं। अचानक चारों ओर तेज प्रकाश फैल जाता है और गधे के शरीर में एक नई ऊर्जा भर जाती है।
2: महाराज, मैं आपका आभारी हूँ। मैं वचन देता हूँ कि इस शक्ति का उपयोग सिर्फ सच्चाई और न्याय के लिए करूँगा। अब मैं उस गद्दार को सबके सामने लाकर ही दम लूंगा।
14: महाराज, एक बात तो तय है, अगर ये गधा बच गया ना तो मैं इसे यमलोक में नौकरी दे दूंगा। कम से कम ये बाकी दूतों से ज्यादा मेहनती निकलेगा।
7: अरे दूत जी, नौकरी की बात बाद में करना, पहले ये काम पूरा कर लेने दो। वरना ऐसा ना हो कि मैं यमलोक पहुंचूं और आप कहो, भाई इंटरव्यू तो पास नहीं हुआ, वापस जाओ।
0: अगले ही पल यमराज और महिषासुर अदृश्य हो जाते हैं। अब गधा पूरी ताकत के साथ जंगल की ओर बढ़ता है, जहां उसे उस गद्दारी का सबूत ढूंढना है। जंगल के एक सुनसान कोने में अंधेरे के बीच दो परछाइयां आपस में धीरे धीरे बातें कर रही होती हैं। उन्हें लगता है कि कोई उन्हें देख नहीं रहा। देखा बाघ भाई, मैंने कहा था ना कि ये काम बहुत आसान है। जंगल का अनाज चुपचाप निकालो और इंसानों को बेचकर अच्छा फायदा कमाओ, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा।
14: हाँ लोमड़ी, अब समझ आया कि तुम्हारी चालाकी क्यों मशहूर है। जंगल के जानवर सोचते रह जाएंगे कि अनाज कहाँ गया, और हम आराम से अपना काम करते रहेंगे।

0: इज विथ मी. बिल्कुल, परमात्मा हमारे साथ है. आज का होमवर्क भी अब आपके लिए है. उससे पहले आज का सवाल पुनः दोहरा देते हैं.
1: ताजमहल इन तीनों चीजों में से किस चीज का बना हुआ?
0: पता है रूहानी, हमारे में से किसी भी दोस्त को इसका जवाब नहीं पता, इसीलिए कॉल भी नहीं करते. कार्यक्रम सुनते तो जरूर होंगे. अरे सुभाष जी, कितने दिन हो चुके हैं वो हमारे मैंने कार्यक्रम में नहीं आते. आप में से किसी को यदि सुभाष भाई के बारे में कुछ पता है तो आप प्लीज हमें कॉल करके बताओ, और आप उन्हें भी कॉल करके बताओ कि मोना जी और रूहानी उड़ान में उन्हें याद कर रही है. तो चलिए, आज का सवाल है, ताजमहल किस चीज का बना हुआ है? ऑप्शन ए
1: संगमरमर, ऑप्शन बी है ग्रेनाइट, ऑप्शन सी है बलुआ पत्थर.
0: झटपट जवाब देना 9414151415 पर देना. दो बैलों की कथा, आज है तीसरा पन्ना. जी हां, आगे का पाठ. दोनों ने अपने मुख भाषा की में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए. जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले.
1: पगे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी. एक एक झटके में रस्सियां टूट गई.
0: झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं. दोनों की गर्दनों में आधा आधा गरमा लटक रहा है. घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में
1: विद्रोह में स्नेह झलक रहा है. झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया. प्रेमालिंगन और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था.
0: घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर अपना उनका स्वागत करने लगे. गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण जरूर थी. बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए. कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई
1: चोकर, कोई भूसी. एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे.
0: दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए.
1: तीसरा बोला, बैल नहीं, वे एक जन्म के आदमी हैं।
0: इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ. झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी. बोली, कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए.
1: झूरी ने अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका. नमक हराम क्यों है? चारा दाना कुछ दिया होगा तो क्या करते?
0: चारा दाना कुछ न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रौब से कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं.
1: झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते?
0: स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धों की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ रगड़ कर जोतते भी हैं. ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले. अब देखूं कहां से खाली और चोकर मिलता इन्हें.
1: सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे. वही हुआ, मजूर को बड़ी ताकीद पर कर दी कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए.
0: बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाए. आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे. झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता?
1: मालकिन मुझे ही मारेगी, मजूर ने कहा.
0: चुरा कर डाला?
1: ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं किसी कहोगे.
0: दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला. अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता. दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क से की खाई में गिराना चाहा, पर
1: हीरा ने संभाल लिया. वह ज्यादा सहनशील था. संध्या समय पर घर पहुँचे उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया.
0: फिर वही सूखा भूसा डाल दिया. अपने दोनों बैलों को खली चूना सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी इन्हें फूल से छुरी से भी ना छूता था।
1: उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यही मार पर यहाँ पर मार पड़ रही है। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस समय पर मिला सूखा भूसा।
0: नींद नाद की तरफ आंखों तक न उठाई दोनों ने। आगे आज का सवाल पुनः एक बार और दोहरा देते, ताजमहल इन तीनों में से किस चीज का बना है?
1: ऑप्शन ए है संगमरमर, ऑप्शन बी है ग्रेनाइट, ऑप्शन सी है बलुआ पत्थर।
0: छोटे से ब्रेक के बाद हम दोनों लौट कर आते हैं और फिर आपसे कहेंगे गुड बाय।
2: फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए, मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
3: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: ओम शांति, मैं हूं शान और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
0: वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM। तो चलिए आज के सवाल का जवाब देने का वक्त जरूर आ चुका है। सवाल हमने पूछा था, ताजमहल एक खूबसूरत दुनिया का क्या है, 7 wonders of the world में। जी हाँ, new 7 wonders of the world में इसे गिना जरूर जाता है। और ताजमहल बना है बलुआ पत्थर से
1: नहीं,
0: ग्रेनाइट से
1: नहीं,
0: बल्कि वो बना है
1: संगमरमर से।
0: जी हाँ, और संगमरमर इसका आया था मखराना से। जी हाँ, राजस्थान के मखराना से ही ये संगमरमर गया था जिससे ताजमहल का निर्माण किया गया। ताजमहल की अपनी ही रूपरेखा है और ताजमहल का ये जो रूप है वो उसको और खूबसूरत बनाता है क्योंकि उसका बैकड्रॉप बहुत सुंदर है। ताजमहल के पीछे किसी भी प्रकार की रिहायशी इलाका नहीं है, पूरी यमुना नदी बहती है और यमुना नदी के पीछे भी, उसके अदर साइड में भी पूरा गार्डन एरिया है और ताजमहल का यही बैकड्रॉप उसको सबसे यूनिक कर देता है। और बहुत, वैसे भी ताजमहल बहुत ऊंचाई पर बना हुआ है, ये भी उसकी एक अनोखी बात है। तो यदि आपने जीवन में भारत में रहते हुए ताजमहल नहीं देखा तो प्लीज़ देखाइए, अभी भी मौका है। और जाने का रास्ता बहुत आसान है, यहाँ से आगरा फोर्ट की गाड़ी लीजिए और फिर छोटी सी रात भर की यात्रा के साथ आप सुबह सुबह आगरा फोर्ट में ही उतर जाएंगे और फिर दिन भर घूमकर वापस आप रात में ही ट्रेन पकड़कर आबू रोड आ जाएंगे। खैर, इतना कुछ जानने की आपको यदि आवश्यकता थी तो हमने जानकारी दे दी, और नहीं तो अपनी झोली में ऐसी जानकारियों को भर के रखिए। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM। कल मिलने का वादा है ठीक शाम
1: 6 बजे,
0: तब तक के लिए उड़ान से कहते हैं मैं मोना और रूहानी गुड बाय। सुनते रहो,
1: मुस्कुराते रहो,
0: रेडियो मधुबन

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर हम गांव और अंचल में जाते, ढाणी में जाते, मगरा में जाते, सभी वर्ग से मिलते, चाहे स्कूल हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे प्रशासन गाँव के संघ, सभी वर्ग से मिलते। क्यों मिलते हैं? क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक द्वारा और सामुदायिक के लिए प्रस्तुतिकरण होता है। क्योंकि आसपास जो गतिविधि हो रही सब तक पहुंचे, सिर्फ अपना गांव और अंचल में सीमित नहीं रहे। चाहे अबरोड ब्लॉक हो, चाहे स्पिंडवाड़ा ब्लॉक हो, चाहे रेवदर ब्लॉक हो, चाहे शिवगंज हो, चाहे सिरोही, हर जगह में रेडियो मधुबन पहुंचता है। एक सामुदायिक रेडियो मीन्स आपका रेडियो है, आपके द्वारा और आपके लिए प्रस्तुत करना होता है। तो आज बहुत खुशी है, बहुत दूर अबरोड ब्लॉक से हम पिंडवाड़ा ब्लॉक में पहुंचे और वो भी बालोरिया बालोरिया ग्राम पंचायत में पहुंचे। और ग्राम पंचायत में सरकार का जब मंच है, हाथ को काम और दिल में राम देते हैं तो कोई पलायन नहीं करे। इसलिए गांव को सुंदर सौंदर्य बनाने के लिए नरेगा एक अच्छा प्रोजेक्ट चलता है। तो इस संदर्भ में हम जब बालोरिया में पहुंचे, यहाँ के सभी माताओं को वंदे मातरम कहते हैं, इस नारी शक्ति को जय कहते हैं। और हमारा जो कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा भाई साहब है तो उनको भी स्वागत करते हैं। भाई जी राम राम और ओम शांति। आज इस कार्यक्रम को लेकर हम आए तो हमें बहुत खुशी और एक इशारा से आपने हमें सहयोग दिया। आप अपना परिचय दीजिए और खास करो इस तरह कार्यक्रम जो होता है जो नरेगा मनरेगा काम में, तो इससे क्या फायदा होगा गांव को वो भी बताएंगे। पहले अपना परिचय दीजिए। आपको स्वागत करते हैं रेडियो मधुबन परिवार की ओर से। आपका नाम और कितने दिन से काम कर रहे हैं?
1: मेरा नाम सोमाराम, जो वालिया ग्राम पंचायत के जो मीट के बारे में मेरे को कम से कम 2009 से मैं उस मीट का काम चला रहा था, लेकिन बाद में जो सरकार की मंशा से जो लेडीज की जो महिला मीट में ली उसी हिसाब से वो महिला की जो मेरी बच्ची है उसकी मस्टूल से वो काम मैं संभाल रहा हूँ।
0: और कहाँ तक पढ़ाई किया?
1: पढ़ाई मेरी हुई है 8वीं पास।
0: बालोरिया गांव का बारे में क्या जानते हैं? कितना बस्ती और इसी ग्राम पंचायत में कौन सा गांव आता है?
1: बालोरिया पंचायत में हमारी जो 13 फलियां आ रही थी उनमें से 2 पंचायतें अलग हुई, एक पानिया पंचायत एक वो अलग हो गई, एक वालिया में। इसमें से जो कम से कम 13 वार्ड में से अभी हमारे जो 6-7 वार्ड जो वालिया पंचायत में,
0: पंचायत में जो सोर्स ऑफ इनकम जो खेती बाड़ी ना विदेश में जाते हैं कि काम करने के लिए रोजगार के लिए किसका पर डिपेंड करते हैं? मैंने यहाँ का जो निवासी उनका रोजगार खेती से ना नौकरी से ना बिजनेस,
1: यहाँ के लोग जो हमारे जो जो किसान है उसकी खेती में जो हमारे बाप दादा से जो मूल मिल से वो खेती करते हैं और आसपास के वो यहाँ तक वो नरेगा के हिसाब से इधर है, वो पूरा गांव जो फड़ी उधर है दूर है उसमें वहाँ पर है, खेती में जो हरियाली है एंडा है जो पूरी जो फसलें है वो हो जाती है। पानी पानी है उसके सर, पानी है वहाँ होता है।
0: और लोग क्या करते हैं खेती बाड़ी जिसका नहीं है वो क्या करते?
1: वो तो जो हमारे जो आसपास में जो ये वासा और सुरगंज जो ये गांव है उसमें जो मजदूरी के लिए भी जाते हैं और जो नरेगा काम चलता है तो उसमें वो काम भी करते हैं। ठीक है, जो ऐसे होते हैं जो युवा लोग होते हैं वो तो थोड़ी दूर भी जा सकते हैं, जो आबू है आबू लोल है जो इस काम में जा।
0: ये था कुछ संक्षिप्त परिचय बालोरिया और बालोरिया पानिया यहाँ से कितना दूर, जैसे पंचायत अलग हुआ तो इधर जाने के लिए कहाँ पानिया का रास्ता किधर?
1: वो जाएगा वो इधर वासा से होकर जाएगी,
0: वासा से होकर पानिया जाने के लिए, वो भी एक ग्राम पंचायत हो गया। बहुत अच्छा। तो हमारा श्रोता मित्र सुन रहे खासकर पिंडर ब्लॉक में बहुत सारा बॉयल्स तेल्स ग्राम पंचायत है, तो आज सभी ग्राम पंचायत का हमारा लक्ष्य सभी ग्राम पंचायत में रेडियो मधुबन जाए और उनका जो गाँव का हित में जनहित में जो भी प्रोग्राम होता है सरकार तरफ से हो चाहे हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय तरफ से जो भी ईश्वरीय ज्ञान सबको मिले, इस संदर्भ में आज हम पहुंचे। बहुत खुशी लगा और हमारा मैट जी इस कार्यक्रम को सजा रहे हैं, हमें खुशी लग रहा है और आगे कभी मौका मिलेगा तो पुनः आपका साथ मुखातित होंगे, रूबरू होंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हमारी माताएं इंतजार कर रहे हैं, एक अच्छा भजन हो जाए, शिव भजन हो चाहे भोला बाबा का भजन हो जाए, चाहे कोई भी त्यौहार अपना मन का चाहे विदाई गीत हो चाहे अच्छा गीत गाएंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद।

0: दे।
1: बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, सब ताली बजाओ। हाँ, जो सोए हुए वो भी ताली बजाकर उठ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन और एक गीत उसके साथ सब मिलकर गाएंगे और एक गीत हो जाए।

बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। आज रेडियो मधुबन का कार्यक्रम में खासकर जब बालोरिया में आए, माताओं का आवाज एक को देखकर एक गीत गा रहे हैं, और हमारा छोटे छोटे बच्चे वो भी कम नहीं है, इसको देखकर वो भी सीख जाते हैं। सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक गीत होगा, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। अच्छा

0: ओए रुको, ओए रुको, ओए त्रिदेव, त्रिमूर्ति, एक बाइक पे तीन हैं, ओए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ओ बाइक एक और एक साथ तीन चढ़े जा रहे हो, ओ तीन लोगों का जाना अलाउड नहीं है बाइक पे, मालूम नहीं तुमको? ओए अपनी नहीं तो इस बाइक की सोचो बेचारी, तीन के बोझ की मारी।
1: सर बहुत जरूरी मैच है सर आज।
0: ओए तुम्हारे मैच की तो, ओए एक बाइक पे तीन जा रहे हो और कुछ हो गया तो सीधे हमेशा के लिए क्लीन बोल्ड हो जाओगे, ओए जिंदगी के स्टंप उखड़ जाएंगे। ओए ये ट्रैफिक है भाई, यहाँ तो कोई फ्री हिट भी नहीं मिलती, ठोको ताली। ओए मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार सड़क।
2: याद रखें, एक बाइक पर कभी दो से ज्यादा लोग एक साथ न जाएं, यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी है। आज तो खुशी हर्ष लग रहा है और एक रपट में हम बैठे शांत शुद्ध हवा मिल रहा है और कोई पॉल्यूशन नहीं, पूरा शुद्धता। क्योंकि दैत्रा नाम जैसे काम वैसे करते बहुत सारा प्रोग्राम किए हैं, लेकिन आज नरोगा स्थित रपट जो काम चल रहा है उन जो मिस्त्री हो चाहे हमारा जो मेट हो चाहे सभी से आज बारी बारी बात कर रहे हैं, हमें खुशी लग रहा है। और चलते हैं और एक महान अनुभवी श्रीमान जी उपस्थित है तो उनको भी राम राम करते हैं, ओम शांति करते हैं और गांव का बारे में और खुद का बारे में जानकारी लेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो आते हैं बकरी पानी और खजूर का पेड़ और आम का पेड़, क्योंकि उपला खेजड़ा निचला खेजड़ा सब तो इस एरिया में जहाँ जाते खजूर का पेड़ ही पेड़ नजर आ रहा। क्या मैं ज़्यादा बता पाऊंगा इसका बाद हमारा साथ जो अनुभवी है श्रीमान जी उनको स्वागत करते हैं ग्रामवासियों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से और रेडियो मधुबन परिवार की ओर से। सर जी आप अपना परिचय दीजिए, आपका बचपन पढ़ाई और यहाँ तक कैसे एक कारीगर तक पहुँचे, कुछ एक काम एक स्किल मैंने जिस जो काम मिस्त्री काम करते हैं उसका बारे में थोड़ा बताइए, आपको अपना परिचय दीजिए।
1: श्री जयंती लाल जी और बुरीभुज और दोइत्रा पंचायत से हम करिया काम कर रहे हैं। रपोट पे बाबा साहेब आ गया है, हमारे कार्यक्रम में आ गया है रपोट पे, तो 1 लाख की मिट्टी ली है हमारे बाबा साहब ने। हमारे लोगों को छोटा छोटा बच्चे बच्चों को प्रयोग बताया है, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल भेजो ऐसे बाबा साहब ने ज्ञान दिया है। तो 3 लोग की बात ज्ञान बताया है बाबा साहब ने, 3 लोग की माया का शंकर देवा का, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाओ अच्छे के ज्ञान दो स्कूल में देवो वैसे करके बाबा साहब ने ऐसा कहा है। अपन का आत्म ज्ञान का थोड़ा प्रयोग करो, गुरुदेव का प्रयोग करो, ऐसे अपन को हमारे को सहयोग किया है। हमारे को सहयोग करने के लिए गुरुदेव ने बोला है सहयोग करो। हमारे स्कूल बहुत दूर है इसलिए हमारे बच्चे थोड़े सहयोग समझदारी उसी है, इसलिए बाबा साहब के सामने ऐसे ऐसे लोगों ने तो भी हमारे रैली में बोला है, इसलिए हम करिया काम कर रहे हैं। इसलिए रास्ता के लिए बाबा साहब आ गया है, निचलागढ़ उपलागढ़ होकर हनुमान टेकरी से घुसा है, यहाँ से नालफली में आ गया है, दोइत्रा पंचायत में 7वां नंबर वार्ड में नालफली में आया है, नालफली से सेवक किया है बाबा साहब ने।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, तो बहुत सुंदर और हमारा जो कार्य को सराहनीय किए और इस तरह कार्यक्रम के लिए खुशी प्रदान किए और हमें बाबा साहब नाम दे दिए। क्योंकि बाबा तो एक परमात्मा में तो बाबा है नहीं, लेकिन बाबा का काम मीन्स पिता का काम, बाप का जो काम है सुप्रीम फादर ऊपर वाला मालिक जिसको कहते हैं, मालिक का काम हम सब बच्चे हैं और हम सब उनका संतान है, छोकरा छोकरी भगवान के। तो हम खुश रहेंगे, हमारा परिवार भी खुश रहे, हमारा एक परिवार है कुटुंब है, तो आज हम कुटुंब का नाते हमारा जो फर्ज है सभी हमारा भाई बहन खुशी रहे, दुख से दूर रहे, नशा से दूर रहे, विकार से दूर रहे, गलत से दूर रहे, ये परमात्मा चाहते हैं भगवान चाहते हैं। और हम सब परमात्मा का कार्य को आगे बढ़ाने के लिए एक अंगुली दे रहे हैं, आप सब भी हमारा साथ दिए हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि पहला बार आए हैं इतना दूरस्थ जगह, आपने जैसे बताया हनुमान टेगरी उपलागढ़ निचलागढ़ उपला खेजड़ा फिर बोरीबुज इस तरह बोलते बोलते आज इसी जगह में पूछा भाई नरगा का काम कहाँ चल रहा है, ढूंढते ढूंढते बोला यहाँ पर एक रपट चल रहा है, वहाँ पर आप जाओ, वहाँ पर बहुत लोग मिलेंगे, उनको कुछ समझा उनसे उनका भाव को उनका टैलेंट को उनका प्रतिभा जो गीत कविता उनका गांव का जो शुद्धता जन जन तक पहुँचे, सिर्फ सीमित इनका गाँव में क्यों रहे, पूरा प्रशासन रेडियो का माध्यम से पूरा दूरस्थ जगह आज का कार्यक्रम जो है नेट का माध्यम से लिंक का माध्यम से FM का माध्यम से पूरा भारत का कोने कोने ये आवाज़ जा रहा है, तो ये खुशी का बात है। क्योंकि रेडियो मधुबन एक सामुदायिक रेडियो, सामुदायिक का गतिविधि को जन जन तक पहुंचाने के लिए इसी रेडियो का कार्यक्रम में अपना भाव को भावना को जैसे रूपा राम जी और आपने बताया मुझे बहुत खुशी लगा, इतना सहयोग दिए, पहला बार आए कोई जान पहचान नहीं लेकिन परमात्मा का काम में सभी सहयोग दिए, इसलिए सभी को धन्यवाद देते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल रेडियो मधुबन। बच्चे जोर से ताली बजाओ बच्चे, हम तो बच्चे कहेंगे क्योंकि बच्चे सच्चे होते हैं। बच्चे निष्काम होते हैं और परमात्मा का तो हम बच्चे ही है, भगवान का संतान है कि नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद कुछ गीत प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि उनका आवाज का बिना, दैत्र का आवाज का बिना और गोपालगढ़ का आवाज का बिना ये कैसे हो सकता है, तो उनको भी एक मंच मिलेगा। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: अपने से।
1: क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें? आप sanchar-saathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

0: पहले सुनते रहे, मुस्कुराते रहे, और हमारे साथ छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चिया हैं, तो उनको कौन बोल पाए? हेलो थमर हो नाम, थमरो थमर नाम बता, थमर हो नाम
1: निर्मा,
0: बोलो निर्मा। और आयर हो नाम
1: जीजा।
0: और बाप रो कौन अच्छा लगता है? मम्मी पापा आई अच्छा लगता है ना? बाप अच्छा लगता, कौन आपको अच्छा लगता है? कौन रोटा कौन खिलाता है? मम्मी आई। अच्छा बड़ा कर तुम क्या बनेगी? कुछ डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, मास्टर, कार्यकर्ता, मैडम, पुलिस क्या बनेगी? चलाने के लिए मगरा जाएगी? कुछ थोड़ा झिझक है पहला बार आए, होता है भाई लोग तो होशियार, लेकिन जब तक नारी शक्ति आगे नहीं बढ़ेगा देश तो ऐसे ही रहेगा। इसलिए वंदे मातरम कहते हैं, नारियों का आगे बढ़ना चाहिए, महिला को सम्मान होना चाहिए। महिला जब आगे लीडर होकर बेझिझक से अपना बात को रखेंगे तब हमारा भारत स्वर्ग बनेगा। क्योंकि पहले लक्ष्मी, इसके बाद नारायण, लक्ष्मी नारायण आता है, पहले लक्ष्मी इसके बाद नारायण, सीता राम कहते, राम सीता नहीं, सीता राम। इसलिए आपका दुनिया अभी भारत महिलाओं का सम्मान हो, जिस गांव में जिस बेटियों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे वो आगे बढ़ाएंगे तो वो गाँव अच्छा बनेगा। बनेगा ना? आप लोग बने थे फिर बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक गीत प्रस्तुत करेंगे सब मिलकर, ठीक है? चाहे गणगौर का त्यौहार हो, चाहे शादी का हो, चाहे विदाई का गीत हो, कोई एक गीत हो जाए। सर रूपाराम जी तो बोलने में भी होशियार है, रूपाराम जी क्या कहना चाहेंगे अंत में?
2: सर अंत में क्या कहना चाहूँगा, ये सामूहिक में जो एक कोई हमारे रीति रिवाज समाज गीत को है, जो शादियों का भी कोई बोलना चाह रहे हैं तो उनको जरा मौका दीजिए।
0: क्या क्या नाम सब बताए, कौन कौन उपस्थित है? नाम तो वो तो बोलने
3: सीता
2: ने भाइयों ने जो नाम बताया है आज पहली बार परिचय दिया है। और ये
0: ताली बजा भाई, ठीक है? आपने के लिए ताली बजा, उसके लिए ताली बजा। और सभी बच्चे तो अपना अपना बात को रखे हैं, लेकिन जब नेक्स्ट बार आएंगे और एक बार आएंगे तब रेडी रखना, उस समय कोई झिझक नहीं। अब पहला बार आए तो थोड़ा सा होता ही है, कोई बात नहीं। आज रेडियो मधुबनी को मौका दिया, इस तरह गाँव का जो भोलापन और शुद्धता देखने को मिला, सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, ये खुशी का बात है। कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं, और अपना बात को रखने में होशियार है। लेकिन लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन।
4: सोशल मीडिया पर संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचें। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं तो तुरंत cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से आपकी पहचान की चोरी और धोखाधड़ी हो सकती है। इन जोखिमों से बचने के लिए अपना पासवर्ड कठिन बनाएं और किसी के साथ साझा न करें।

0: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रस्तुति पुनः स्वागत करते सभी माताएं अपना अपना नाम नाम बताओ थमरा नाम
1: नाम बता
2: मीरो
1: मीरो थमरा
2: मैगी
1: मैगी अच्छा मैगी
0: और थमरो
2: फूली
1: फूली थमरो बाप रे
0: बहुत सारा माताएं का नाम और हमारा जो गायिका है तो उनका नाम
2: लच्छी
0: सभी को धन्यवाद और कितना माता है सभी अपना अपना नाम बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा फिर भी मैंने उनको देता हूँ
2: दारी
0: हाँ हाँ
2: जेड़ू
1: तुम्हारा
2: काली
1: काली
2: गेवरी
1: सुमा
2: इंद्रा
1: इंद्रा ओके
0: बहुत सारा सभी अपने के लिए ताली बजाओ ताली बजाने में पैसा नहीं लगता है खुशी मिलता है और बच्चे तो खुशी से नाचते भी है और एक्सरसाइज हो जाता है बहुत बहुत धन्यवाद चलिए हमारे साथ और तीन माताएं आई लोग हैं तो थेमरा भूनाम फुल्ली सबका आवाज आज रेडियो में जा रहा आकाशवाणी में जो सुनेंगे उनका बाप लोग आई लोग भाई लोग सुनेंगे बोला अरे ये तो हमारा आवाज है जान पहचान आवाज इसे लगेगा तो देर किस बात की और एक प्रस्तुति होगी है ना हाँ शुरू करो करो करो करो

बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। और आज अचानक में आए, कोई सूचना नहीं था, कोई फोन नहीं करके आए, फिर भी माताएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। कोई जान पहचान नहीं, लेकिन जब मिलता है परमात्मा का काम में हाथ लगाते हैं और दुआएं लेते हैं। जो भी हमारा श्रोता सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, खासकर माताएं बहने और भाई लोग सुन रहे हैं, तो उनको भी लग रहा है दिल का तार परमात्मा तक पहुंचे। आस्था, विश्वास, भक्ति भावना में हम ओत प्रेत होकर ऐसे भजन करते हैं, जिसका चलते हमें शांति खुशी मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं। आज का कार्यक्रम को यहीं पर रखते हैं, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। तो जाते जाते सभी को मैट का साथ समाराम जी और उनका टीम सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं, इस कार्यक्रम को सजाए सुंदर रूप में। और जाते जाते सभी आई लोग को वंदे मातरम कहते हैं, नारी शक्ति का जय। तो एक बार जोर से ताली बजाओ, जोर से। वाह वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर।

0: नमस्कार, मैं हूँ हरमीत सिंह।
1: दुनिया बनाई मैंने हाथों से।
0: वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड।
1: मिट्टी से नहीं जज्बातों से।
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, मैं हूँ शिप्ला, डिस्ट्रिक्ट मोहाली, स्टेट पंजाब से। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहें, मुस्कुराते रहें।

0: नमस्ते मित्रों, मैं हूं कवयित्री डॉक्टर कविता किरण और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो, ये हम सभी चाहते हैं। पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाए, घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया, और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया, कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन कुछ बातें याद रखने लायक होती हैं।
1: भगवान के साथ संबंध, the relationship with God, and friends, believe me, शायद हमने भगवान को सही अर्थ में नहीं पहचाना। Two good reasons. एक तरफ भगवान को कहते वो प्रेम का सागर है, और दूसरे तरफ आज हम उस प्रेम के सागर से सबसे ज्यादा डरते हैं। We have become God fearing rather than God loving. आप कहेंगे सर, no, we don't fear God. Then there's a second good reason why we have not understood God, because friends, more than 80% of the war that is fought today is directly or indirectly in the name of God. चाहे वो अमेरिका अफगानिस्तान वार हो, अमेरिका इराक वार हो, जम्मू कश्मीर प्रॉब्लम हो, गुजरात प्रॉब्लम हो, दिल्ली ब्लास्ट हो, have we really understood God? किसी ने क्या खूब कहा है, काबा है घर रहीम का, काशी है घर राम का, दोनों ही बात तो एक है, झगड़ा है बस नाम का। We are fighting in the name of God and we call ourselves intellectuals. Friends, let's understand the name very clearly. Hindus मनाते हैं दिवाली और हमारे इस्लाम भाई बहने मनाते हैं रमजान, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस तो हम समझ सकते हैं। अरे दिवाली में है अली A-L-I, तो रमजान में है राम R-A-M. दिवाली में है अली, रमजान में है राम। दिवाली में है दिल D-I-L, तो रमजान में है जान Z-A-N. अरे उस प्रेम के सागर को दिल व जान, सिख व प्रेम से याद करना है, ना कि उसके नाम पर युद्ध करना है। तो परमात्मा के साथ वो संबंध जोड़ना जरूरी है। हमें ये समझ होनी चाहिए कि हम सभी जो आत्माएं हैं उस एक परमात्मा के संतान हैं, and that is a beautiful relationship that we can establish with the Almighty God. And this is what is very very important. और उस परमात्मा पर संपूर्ण निश्चय भी होना बहुत बहुत जरूरी है। जब हम परमात्मा के साथ संबंध जोड़ लेते हैं तो उनका जो स्नेह है, क्योंकि परमात्मा को कहते हैं वो स्नेह और प्रेम का सागर है, तो ऑटोमेटिकली वो स्नेह और प्रेम हमारे में आने लगती है और हमारा जीवन फिर से प्रेममय, सुखमय और शांतिमय बन जाता है। तो हम सबको एक ऐसा कार्य करना है जिससे समाज जो है फिर से ऐसे सुखमय बन जाए।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपनी दिनचर्या का विश्लेषण करें, अपनी आदतों और कार्यों को देखें। जो आदतें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन्हें बदलें। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो।

सेना स्वयं में है शक्ति और इसलिए आपकी सुरक्षा है आपके हाथ ही। कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार के खतरे का आभास हो तो डायल करिए 1090 या 1091। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

क्या आपको भी बैंक के नाम से SMS आ रहे हैं? इन SMS में फिशिंग लिंक मिल रहे हैं जो एक क्लिक से .apk फाइल को आपके फोन में डाउनलोड कर देते हैं। ऐसी फाइलें आपके फोन का पूरा नियंत्रण साइबर अपराधियों को दे देती है, यहाँ तक कि वो आपका बैंक OTP भी देख सकते हैं। याद रखें, कभी भी किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें और किसी भी साइबर अपराध की शिकायत cybercrime.gov.in पर करें। सोशल मीडिया पर साइबर दोस्त को फॉलो करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ गार्डन, जीवन एक बहुत सुंदर बगीचा है। पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? एंजॉय द फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर्स। फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस मीन्स खुशबू, करेक्ट। अगर हमें जीवन को सचमुच एंजॉय करना है तो एक काम कर सकते हैं, गो वेरी क्लोज टू नेचर, प्रकृति के नजदीक आइए। प्रकृति के जितने नजदीक होते हैं तो उतना फील कर सकते हैं कि हमारा जीवन कितना वंडरफुल है और उसको आप एंजॉय कर सकते हो। तो आप ऐसा डिसाइड करना कि साल में एटलीस्ट 10-15 दिन आप अपने बिजी लाइफ को निकाल कर गो वेरी क्लोज टू नेचर, गो टू वेरी क्लोज टू माउंटेन्स, गो टू रिवर्स, है ना, नेचुरल फ्लोरा और फौना की तरफ जाइए। लिसन टू द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, जहाँ बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है, और वहां जाकर अकेले में आप बैठिए एंड स्लोली इंट्रोस्पेक्ट, और वहां के साइलेंस को आप अनुभव करेंगे। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, यू विल रियली एंजॉय इट, करेक्ट। अच्छा, नेचर का दो अर्थ होता है, एक होता है नेचर का अर्थ प्रकृति, उसी तरह दूसरा होता है नेचर मीन्स नेचर ऑफ पीपल। हमें यह समझना है कि जीवन एक बहुत सुंदर बगीचा है जिसमें अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो अलग अलग फ्लावर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। गुलदस्ता की भी रौनक कब होती है? जब उसमें अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं। उसी तरह इस जीवन रूपी यात्रा में आपको अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे जिनके अलग अलग नेचर होते हैं। कैन यू एक्सेप्ट देयर नेचर? और अगर आप उनको एंजॉय कर सकते हो, बिलीव मी, लाइफ वुड बिकम रियली वंडरफुल, रियली कूल।

0: दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का स्वागत है। जीना इसी का नाम है। हर बार हम इस कार्यक्रम को लेके आते हैं, कुछ आध्यात्मिक जगत की योगियों को आपसे रूबरू कराते हैं इस कार्यक्रम में। दोस्तों, हर कोई अपना जीवन जीता है, लेकिन ऐसा कौन सा पल होता है या ऐसे कौन से जीवन होता है जिसके लिए हम कहे जीना इसी का नाम है। चलिए दोस्तों, आज की हमारी जो मेहमान है आज के कार्यक्रम में, उनसे जानते हैं कि उनको वो पल कब महसूस हुआ कि मुझे ऐसे ही जीना है और इसी को ही जीवन कहते हैं। चलिए स्वागत करते हैं ईश्वर जी को। आप जलगांव महाराष्ट्र से हैं, लेकिन 1992 से आप ब्रह्म कुमारीज के हेडक्वार्टर्स शांतिवन में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक आध्यात्मिक जीवन जीते हुए जिम्मेवारियों को संभालना और उसको बखूबी निभाना क्या होता है, आइए आपके जीवन से जानते हैं। ईश्वर जी, आपको रेडियो मधुबन में और जीना इसी का नाम है इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: थैंक यू। नमस्कार जी। और सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार कि आप अभी सभी सुनेंगे और किस तरह जीना इसी का नाम है। और बहुत अच्छा सुंदर टॉपिक आपने चुना है, मुझे बहुत अच्छी एक सॉन्ग है आध्यात्मिक, उसमें है कि इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग।
0: हाँ।
1: ये राजयोग ऐसा चीज है जो इंसान को एक जीने की कला सिखलाता है। जो मुस्कुरा के जिए, खुशहाल होके जिए, वही एक जीना है। और दूसरों के लिए जिए और दूसरों के हर कार्य में मदद करे, उसके सुख दुख में मदद करे और हर प्रकार से उसको सहयोग करे और खुद भी खुश रहे, दूसरों को भी खुशी दे। परमात्मा यही बोलता है कि खुद ना दुखी हो ना किसी को दुख दो, खुद भी सुखी रहना है, दूसरों को भी सुखी करना है। तो ये जीना इसी का नाम है। तो बहुत अच्छा आपने टॉपिक चुना, इसके माध्यम से बहुत सारे श्रोताओं को भी एक जागरूकता आएगी कि किस तरह हमारा जीवन होना चाहिए। हमारे जैसे यहाँ पर करीबन 2000 से लगभग यहाँ पर समर्पित लोग सरेंडर है, यहाँ पर डेडिकेट है इस विद्यालय में, और मैं समझता हूँ सारे स्टेट से, सारे जगह से है और सभी ऐसे मिलजुल के रहते हैं जैसे परिवार में भाई भाई बहन रहते हो, इतना प्यार से रहते। तो ये भी एक जीने की कला सिखाता है राजयोग। और राजयोग के माध्यम से मैं इस राजयोग केंद्र से जुड़ा था 1983 में
0: जी,
1: जब मैं फोर्थ क्लास में था। और हमारे गांव में, जब जलगांव डिस्ट्रिक्ट में भड़गांव तहसील में हमारा गांव है, तो वहां पर हम रहते थे। और हमारे साथ जब मैं फोर्थ क्लास में था तो हमारे पिताजी शरीर छोड़ दिया था और उसमें हमारी माताजी बहुत दुखी थी। करीबन 6 मास हुआ था, काफी दुख में थी। और क्योंकि हम 3 भाई थे, 2 बहनें थी और पूरी जिम्मेवारी उसके ऊपर आने से वो काफी मना ट्रेस में थी। तो ऐसे टाइम पे शिवरात्रि के दिन था और एक टीचर वहां पर, स्कूल टीचर, उसका ट्रांसफर हुआ और वो पहले इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से जुड़ा हुआ था। और उसने वहां पर आने के बाद, जैसे हम कहते हैं कि जैसे हमको सुख मिला, हमको अच्छा चीज मिली, तो हम सबको दे और सबको सुखी बनाए। ये इस विद्यालय का मुख्य उद्देश्य है कि सबका जीवन सुखी कैसे बने, परमात्मा यही चाहता है। तो उसी उद्देश्य से उन्होंने एक शिवरात्रि के दिन एक प्रदर्शन लगाई, जिसको हम एग्जीबिशन लगाई उन्होंने वहां पर। तो उन्होंने बहुत सुंदर एक लगाया था बोर्ड कि स्वर्ग में एक सीट खाली है और सुखमय जीवन जीना है तो ये सच्चा मार्ग है, परमात्मा शिव धरती पर आ गए। तो बहुत अच्छा आकर्षक बोर्ड था वो। तो वो देख के, तो गांव में तो पता था आपको कि गांव में जब लोग आते हैं, ऐसी कोई बात नई चीज आती है तो पूरे गांव में फैल जाती है। तो ऐसे पूरे गांव में चर्चा होगी, कोई एक टीचर आया, स्कूल टीचर, और एक कोई आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा है और एक नया ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है और सच्चा ज्ञान है, जीवन जीने की कला सिखाने का ज्ञान है। तो हमारी माता जी को जब मैसेज मिला तो वो भी गई वहां पर। तो उनके साथ मैं और मेरा बड़ा भाई, हम 2 लोग वहां पर पहुंचे। तो हमने देखा, जब वो, हम तो छोटे थे उस टाइम, लेकिन हमको जो दिखाया गया था एक कार, उसके अंदर नाक मुंह सब लगा हुआ था। तो मैंने मास्टर जी को सबसे पहले वही पूछा कि भाई कार को हाथ नाक क्यों लगाया
0: जी, तो एक बाल मन में सवाल तो ऐसे ही आता है।
1: तो उन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में मुझे कहा, जैसे कार होती है उसको ड्राइवर चलाता है, वैसे आत्मा भी बॉडी को चलाती है, लेकिन ड्राइवर कहाँ बैठता है, मेन इंजन के पास। वैसे आत्मा भी भ्रुकुटी आंखों के बीच में, भ्रुकुटी है मस्तक में, यह आत्मा बैठती, इसलिए यहाँ तिलक करते लोग, जोत जलाते और उसको नमस्कार करते। तो इस तरह आत्मा भी यहाँ बैठ के इस पूरे बॉडी को कंट्रोल करती है, बाकी जो पहिया है वो सब कर्म इंद्रिय हमारे। तो उन्होंने डिटेल थोड़ा ज्ञान सुना, मुझे अच्छा लगा कि ये तो रियल बात है
0: जी।
1: उसके बाद उन्होंने फिर थोड़ा परमात्मा के बारे में बताया, जैसे आत्मा के पिता ज्योति स्वरूप है, परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है, वो कहाँ रहता है, क्या करता है, उसका कर्तव्य क्या है, वो कब आता है, और संसार चक्र में कैसे मनुष्य आत्मा के 84 जन्म होते और किस तरह आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आते आते फिर से रिपीटिशन का ये समय आ गया है। तो उन्होंने बोला और फिर कल सुनाएंगे आप। तो ऐसे तीन दिन उन्होंने हमको एक एक चीज डिटेल बताई। हमारे एक ग्रुप था, ग्रुप ग्रुप वाइज समझाते लोग, एक ग्रुप को फिर दूसरे ग्रुप, ऐसे चार पांच ग्रुप थे। तो हर दिन हमको एक घंटा जाना पड़ता था, तो एक घंटे में काफी हमको ज्ञान मिला, आत्मा का मिला, परमात्मा का मिला, संसार चक्र का मिला, कर्मों की फिलॉसफी का मिला। जबकि हम बच्चे थे इतने समझ नहीं पाते थे, लेकिन काफी बातें समझ में आती थी कि क्या है प्रैक्टिकल।
0: तो फिर आप अपनी लौकिक पढ़ाई भी पढ़ते थे?
1: जी, लौकिक पढ़ाई भी पढ़ते थे,
0: मतलब सुबह स्कूल गए फिर शाम को आप
1: आश्रम जाए। के टाइम हम फ्री होते थे तो शाम के टाइम जाते थे, कि गांव में लोग शाम को इकट्ठा होते, तो शाम का ही टाइम था वो, तो शाम के टाइम हम जाते थे रोज। तो ऐसे करते करते फिर उन्होंने बोला कि अभी आपको तो समझा दिया बेसिक नॉलेज हमने, तो अभी आपको कल मुरली सुनाएंगे।
0: अच्छा।
1: तो मुझे लगा मास्टर जी को मुरली बजाना आता होगा। तो हम तो बहुत खुश हुए कि बोला चलो एक संगीत भी मास्टर जी कराता है तो मुरली सुनने जाएंगे जरूर। तो हम सभी गए, तो पहले उन्होंने तो रेड लाइट में मेडिटेशन कराया, परमात्मा की अनुभूति कराई, बाद में फिर कुछ परमात्मा के महावाक्य सुनाए गए, फिर बाद में फिर रेड लाइट में मेडिटेशन करके फिर बोले उठ जाओ जाओ। बोले मैं तो बैठा रहा, मैंने कहा आप मुरली सुनाओ तो मैं जाऊं। मैंने कहा आप तो मुरली सुनाने वाले थे, इसमें बैठा हूं। तो बोलता नहीं, मुरली इसी को बोलते, परमात्मा का जो महावाक्य जो उसका गायन है कि कृष्ण की मुरली सुन के सब गोप गोपियां दौड़ के आती थी, तो परमात्मा ने जो ज्ञान सुनाया है, इस ज्ञान को जो आत्माएं सुनती है वो जीवन में धारण करती, उनका जीवन श्रेष्ठ बनता है। तो ऐसी कई आत्माएं फिर यहाँ आती है दौड़ दौड़ के। तो ये है बोले ज्ञान मुरली। तो ऐसे धीरे धीरे ज्ञान की बातें समझ में आने लगी, फिर आगे बढ़ते रहे। फिर 1992 में मैं यहाँ पर पहली बार आना।
0: ईश्वर जी, जैसे आप मधुबन में पहली बार आए हैं, लेकिन उससे पहले जैसे आपके जीवन में आप सुबह स्कूल जाते थे फिर शाम को, तो फिर आपने पढ़ाई कहाँ तक किया? और आप बचपन से ही आध्यात्मिक पढ़ाई और लौकिक पढ़ाई दोनों पढ़ रहे थे, तो फिर किस प्रकार से आपको ये मदद किया है?
1: जी, हमें लौकिक पढ़ाई में जो आध्यात्मिक पढ़ाई ने बहुत मदद की, क्योंकि जो आध्यात्मिक पढ़ाई से एक तो माइंड एकाग्र हो जाता है, और दूसरी बात हम बुरे संग से बच जाते हैं। जो परमात्मा के ज्ञान से बचपन से जब जुड़ जाता है व्यक्ति, उसको अच्छी बातें जब सुनने को मिलती है तो वो बुरे संग से बच जाता है, बुरे खानपान से बच जाता है, और दूसरी बात हमारे पढ़ाई में भी फोकस रहता है। जैसे मॉर्निंग उठने का हमारा नियम था, मॉर्निंग में जल्दी हम उठते थे मेडिटेशन के लिए, तो उसके बाद फिर एक घंटा पढ़ते थे, तो जो मॉर्निंग जो पढ़ाई पढ़ते तो पूरा उसमें अंदर चली जाती, तो एक साइलेंस, एक पॉजिटिव वातावरण होता मॉर्निंग के टाइम। तो ये बहुत अच्छा था कि बहुत मजा आता था। कभी कभी मैं परमात्मा के बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग होते तो वहां सुनाते थे स्कूल में, उनको भी अच्छा लगता था। तो इस तरह हमारा चलता रहा। मैं
0: लेकिन कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि आप ईश्वरीय पढ़ाई, मतलब सुबह स्कूल जा रहे शाम को आश्रम जा रहे हैं, और आपको बच्चे है तो खेलने का मन करता है, दोस्तों के साथ घूमना है, ये सभी चीजें?
1: जी,
0: तो कभी ऐसा नहीं लगता कि आपने कोई चीज मिस किया है?
1: नहीं, ज्यादा तो ऐसा मिस नहीं हुआ, क्योंकि दिन में थोड़ा टाइम मिलता था, कभी हम खेत में भी चल जाते, कभी दोस्तों के साथ भी बैठ जाते थे, लेकिन शाम का टाइम हमारा फ्री होता था। तो शाम को जो टाइम है मेजोरिटी 7 बजे के बाद वो टाइम फ्री रहता था हमारा, तो 7 से 9 बजे तक हम फ्री रहते थे। तो उस टाइम हम थोड़ा एक घंटा ज्ञान भी सुन लेते।

0: एक घंटा पढ़ाई भी कर लेते, फिर 10 बजे सोते थे। तो ये हमारी दिनचर्या थी। हमारा भाई भी हमारे साथ ज्ञान में चला था, तो काफी वो भी अच्छा आगे प्रोग्रेस किया उसने ज्ञान में भी। फिर वो 1991 में यहाँ पर माउंट आबू से एक सूचना आई थी कि यहाँ पर एक कार सेवा की आवश्यकता है, क्योंकि वहां पर ज्ञान सरोवर लैंड वहां खरीदा हुआ था और वहां की झाड़ियां काटनी थी, और उस टाइम तो सब सेवाधारी मिलकर सेवा करते थे। तो उस टाइम वो आया था फर्स्ट टाइम और माता जी के साथ, और उसने जब ये सेवा करके मुझे समाचार सुनाया कि बहुत अच्छी जगह है और बहुत बढ़िया है और बहुत ज्ञान योग का मजा आता है वहां पर, तो मेरा भी मन हुआ कि मैं भी जल्दी से जल्दी जाऊं। तो मैं बीए सेकंड ईयर का एग्जाम दिया और मैं जस्ट माता जी आ ही रहे थे तो अक्टूबर में यहाँ पर बाबा मिलन के लिए, तो उस टाइम 4 दिन का ही यहाँ पर टाइम मिलता था, क्योंकि दूसरे सेकंड वीक में फिर बाबा आते थे। हर वीक में परमात्मा का अवतरण होता था और हर व्यक्ति को 4 दिन के लिए स्टे होता था यहाँ पर। तो मैं जब फर्स्ट टाइम आया तो 4 दिन के लिए आया था, लेकिन मैं जब यहाँ आया तो यहाँ का वातावरण देख के और यहाँ का हर कोई मुझे फरिश्ता ही नजर आया। इतना यहाँ पर मेरा योग लगता था, इतना मजा आता था लाइफ में, तो मुझे लगा जीना है तो यही जीना है
1: जी।
0: दुनिया में भाई कोई सर्विस करो, कुछ लोगों के लिए जियो, उससे अच्छा बेहद में जिए। कई आत्माओं की सेवा का हमें यहाँ चांस भी मिलेगा, अनेक आत्माओं का, और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का अच्छा अवसर है। तो मैंने निश्चय किया कि मैं अभी थोड़ा दिन रह के रुक के जाऊंगा। तो माता जी ने टिकट तो बना था वापसी टिकट, तो मैंने बोला भाई अभी तो मुझे रहना है थोड़ा दिन, मैं 1-2 मास सेवा करके फिर मैं आता हूँ। तो मैं रुक गया, माता जी चले गए। तो इस तरह 92 में यही रहना, लेकिन मैं 1 साल नहीं गया घर पे, फिर 1 साल कंटिन्यू सेवा में रहा
1: जी।
0: और 1 साल के बाद फिर मुझे यहाँ संस्था की तरफ से बोला गया कि भाई हम यहाँ पर किसी को ऐसे नहीं रखते, क्योंकि यहाँ पर माँ बाप की परमिशन चाहिए, टीचर है उसका लेटर चाहिए, और हर प्रकार से सबकी स्वीकृति हो तो हम यहाँ सेवा में रखेंगे, और सेवा में भी जब आप यहाँ पर हर प्रकार से सेवा में सेट होंगे तो हम इसको आपको आगे के लिए परमानेंट करेंगे। तो यहाँ का ये सिस्टम है, पहले इसको ट्रायल बेस पे 5 साल रखा जाता है और उसको हर प्रकार की सेवाओं में डाला जाता है कि व्यक्ति उसके स्वभाव, संस्कार, नेचर या संगठन में कैसे चलता है व्यक्ति, वो अगर सब जगह सेट हो गया व्यक्ति तो उसको आगे के लिए चांस मिलता है सेवा का इस विद्यालय में। तो इस तरह या डेडिकेट सभी प्रकार के जितने भी लोग है यहाँ पर 2000, उनको इसी तरह से इनको समर्पित किया जाता है। तो मैं भी 1 साल रहा, फिर घर पे जाके लेटर वगैरह सब लेके आया, तो उसके बाद फिर हमको यहाँ पर सरेंडर रूप में रखा गया। दादी प्रकाश बनते थे उस
1: जी जी
0: जी।
1: जब आप समर्पित होने के लिए लेटर मांगा घर
0: जी,
1: पे
0: जी,
1: निश्चित रूप से माँ अकेली है, पिताजी नहीं है
0: जी,
1: और माँ को भी तो सहारा चाहिए
0: जी,
1: और हमेशा एक बेटे के लिए तो जिम्मेवारी रहती है माता पिता के प्रति
0: जी।
1: तो आपको इतनी आसानी से छुट्टी मिल गई आपके भाई बहने रिश्तेदार सभी ने?
0: नहीं, मुझे कोई ऐसी कठिनाई नहीं हुई छुट्टी लेने में, क्योंकि बैकग्राउंड में मेरी माता जी ज्ञान में थी, भाई भी ज्ञान में था, और एक बड़ा भाई था वो सब कारोबार संभालता था, तो नेचुरल घर का जिम्मेवारी वो लोग संभालते थे। मैं पहले भी फ्री रहता था, वो घर में था तो भी पढ़ाई करता था और अपना ज्ञान योग करता था। मैं बहुत इस कारोबार में इन्वॉल्व नहीं था ज्यादा,
1: घर की कारोबार
0: सबसे छोटा मैं था।
1: ओके।
0: मेरे से वो लोग बड़े थे तो वो लोग सब कारोबार देखते थे, तो मुझे इजीली उन्होंने छुट्टी दिया। फिर भी माता जी ने सोचा कि एक बार सोच लो आप, ये लाइफ का एक मोड़ है आपका, एक बार फाइनल सोचो आपको क्या करना है। आपको अच्छी सर्विस भी लग सकती है और आपको एक अच्छा जीवन भी आप जी सकते हैं शादी विधि करके। तो उन दोनों पर्पस मेरे सामने रखा था, लेकिन मुझे यही अच्छा लगा कि ये जीवन जीना इसी का नाम जो है तो यही है। आज भी आप देखते हैं हमारे जो भी समर्पित लोग हैं, आज बाहर से लोग आते हैं, इतने सारे लोग आते हैं, बोले आपको क्या मिला आप इतने खुश रहते हो।
1: सही बात है,
0: क्योंकि हमेशा मुस्कुराते रहते हैं आप लोग।
1: हाँ जी।
0: सुबह से उठते हो 3:30 बजे से रात को 10 बजे सोते हो तो भी आपके चेहरे पे कोई टेंशन नहीं, कोई ऐसा मुरझाइश नहीं, हमेशा खुश नजर आते हो, तो क्या मिला? तो ये मिला जो हम बताना चाहते हैं आपको, ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, परमात्मा की पढ़ाई और परमात्मा की जो शक्तियां मिलती है यहाँ, वो शक्तियां आत्मा को भरपूर कर देती है और वो एक सच्चा जीवन जीने की कला सिखाती है, क्योंकि हम बुराइयों से बिल्कुल ही दूर हो जाते और बुरे व्यसनों से भी टोटली दूर हो जाते, और एक अच्छा ही धारण करने से आत्मा फिर से पावरफुल सत्व प्रधानता की ओर बढ़ती है और आत्मा एक शुद्ध आत्मा बन के, और जो भी उसके कॉन्टेक्ट में आएगा तो उसका व्यवहार भी ऐसे होगा। जीवन की कला है।
1: आपके जीवन में रोल मॉडल कौन रहे हैं?
0: रोल मॉडल तो मैं जब यहाँ पर आया माउंट आबू तो मैं तो दादियों को ही देखा, क्योंकि मैं छोटा था सबसे, और बड़ी दादियां सब यहाँ पर पांडव, तब तो ज्ञान स्वरूप भी बाद में बना, शांतिवन भी बाद में बना प्रोग्राम के हिसाब से, और जब वो पांडव भवन था वहाँ का एक अलग ही माहौल था उस टाइम। तो उस टाइम सब दादियाँ, मनोहर दादी से लेके चंद्रमन दादी से लेके हमारी कई सेंटर की दादियाँ भी आती रहती सीजन में। बाबा से जैसे कलकत्ता से पर दादी आते रहते और पंजाब से चंद्रमन दादी आते थे, बॉम्बे की कई दादियाँ थी, संतरी दादी वगैरह सब आते थे, पूना की दादियाँ थी, सब शहरों में जो दादियाँ थी वो साल में दो बार दो दो तीन तीन महीना यहाँ रहते थे माउंट आबू। तो सबसे बहुत कुछ सीखने को मिला, खासकर जगदीश भाई से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि वो इतना बड़ा व्यक्ति इतनी बड़ी पोस्ट पे होते हुए सारा साहित्य उन्होंने यज्ञ का लिखा है, लेकिन मैंने देखा बहुत ही निर्वांचित, एकदम उनके लिए कुछ नहीं चाहिए, उनको पर्सनली भी एकदम सिंपल रहते थे, सादगी वाला जीवन था और बहुत ही ज्ञानी विद्वान व्यक्ति था। तो उनके साथ में करीबन 4-5 साल रहा माउंट आबू में, तो उनकी भी सेवा का चांस मिला, तो उनसे ही बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, और दादियों से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि दादियों ने कैसा यज्ञ को आगे बढ़ाया और बाबा ने कैसे इनकी पालना करके इनको दादी तक पहुंचाया है, कैसे इन लोगों ने अपनी अवस्था को संपूर्ण बना के इतना बड़ा यज्ञ का कारोबार संभालते हुए वो कैसे अपने को एकदम न्यारा प्यारा रखते थे और हर एक को प्यार देते, हर एक को भासना होती दादी से कि यही मेरी माँ है, और इतना दादी का प्यार था सब यज्ञ निवासियों से। जब भी दादी चलते फिरते पूछती थी भैया कैसे हो, ठीक हो, कुछ चाहिए, तो हर बार दादी पूछती थी। तो माना एक पूछना भी एक बड़ी बात थी, इतनी बड़ी संस्था के मुख्य हेड और वो हमको आते जाते पूछती है कि भाई कुछ चाहिए, कैसे हो, ठीक हो, तबीयत ठीक है, हर बात से पूछती थी दादी।
1: हर किसी से वो व्यक्तिगत कनेक्शन रखना, हर किसी को ये फील करना कि दादी को, दादी मेरे को अच्छे से जानती
0: जी,
1: है
0: जी।
1: और दादी मेरे बारे में सोचती है,
0: बिल्कुल
1: ये बहुत बड़ी बात होती
0: है। दादी में वो कला थी, दादी गॉड गिफ्ट थी, मानव नेक्स्ट ब्रह्मा के बाद जो मैं देखा दादी को, दादी में हर एक को लगता था कि दादी मेरी है, क्योंकि बच्चों के साथ बच्चे जैसी होती थी, बड़ों के साथ बड़े जैसी, माँ ग्रस्त ग्रस्त जैसे, माना उसी हिसाब से उसको पालना भी देती थी और प्यार भी करती थी, और हर व्यक्ति को आगे बढ़ाने का दादी का था। हमने देखा जब हम आए यहाँ पर इंडिया में तो कम सेंटर थे, लेकिन दादी ने पूरे देश विदेश में ऐसी सेवाएं करके आज आप देखते होंगे आज 140 देशों में ब्रांचेस हमारी है और पूरे वर्ल्ड से इतने लोग आते हैं, चाहे देश का है, चाहे विदेशी आए, चाहे वो धर्मात्मा है, महात्मा है, सन्यासी संत लोग तो रोते रोते जाते थे यहाँ से, दादी इतनी पालना देती माना दादी की पालना ही अलग थी।
1: हाँ।
0: उनके आंखों में आंसू होते थे,
1: मतलब दूसरे धर्म के लोगों को भी एक अपनापन महसूस होता था, उनको भी एक घर की फीलिंग आती थी उनसे मिलके।
0: जब कुछ सोच के कुछ और आते थे लोग, लेकिन यहाँ के लोग परिवर्तन होके जाते थे, क्योंकि आप जानते होंगे महामंडलेश्वर ये सब संत लोग, उनकी कितनी संस्था के लिए पहले अलग भावनाएं थी, लेकिन जब वो यहाँ आए उन्होंने देखा प्रैक्टिकल, तब उनकी भावनाएं टोटली चेंज हो गई
1: जी। तो ईश्वर भाई आप ये बताइए कि जब बचपन से आपने ज्ञान सुना है, आपने लौकिक पढ़ाई भी किया है, थोड़ा बहुत दुनिया तो देखी होंगे आपने, महाराष्ट्र से जब आप माउंट आबू आते हैं तो कहीं ना कहीं जाना
0: जी,
1: तो आपको वो कौन सी बात थी जिससे निश्चय हुआ कि यही परमात्मा का सत्य ज्ञान है और मुझे इसको फॉलो करना है, वो कौन सी बात थी जिससे आपको निश्चय हुआ?
0: ये बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि भाई ब्रह्मा कुमारी में क्या मिला, क्यों वहां गए, ऐसे कई बार लोग सवाल होता लोगों का, या तो लोग सोचते है ब्रह्मा कुमारी ऐसी कोई संस्था की, बहुत सारी संस्था है, बहुत सारे बाबा ऐसी एक संस्था होगी और वहां भी कोई बाबा आते होंगे, तो कई लोग डिटेल इसका जानते नहीं, इसलिए वो लोग यहाँ से वंचित हो जाते, और ऐसे लोगों का एक सवाल होता है कि आपको क्या मिला यहाँ पर जाके, आपको क्या प्रेरणाएं मिली, आप क्या मिला आपको। तो मैं समझता हूँ ये जो ज्ञान है सिर्फ सुनने सुनाने का नहीं है, ये प्रैक्टिकल अनुभव करने की बात है। आप जैसे मैंने आपको सुना दिया कि आप सुन लिया, वो नहीं, यहाँ पर हम जब सुनाते किसी को, कोर्स कराते और हम जब मेडिटेशन में अभ्यास करते, मैं बताता हूँ आपको, मैं जब मेडिटेशन में बैठता था, जब सूरज भाई की क्लास होती थी रोज नाइट को शांति स्तंभ पे, तो क्लास के बाद जब मैं योग में बैठा तो मैं उठने का मन नहीं होता था मेरा, ऐसे लगता कि हम बैठे ही रहे रात भर। तो ऐसे परमात्मा की वो जो शक्ति है, जो ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा की जो लाइट माइट आती है आत्मा के अंदर, जो शक्ति आती है, ये सबसे बड़ा अनुभव है आत्मा के अंदर। और जो खुशी है, जो प्यार है, जो परमात्मा से जो आंतरिक सुख मिलता है, जिसको बोलते कि अंतर्द्रिय सुख पूछना गोप गोपियों से पूछो, जो कृष्ण के साथ होती थी, वो सुख यहाँ मिलता है, अतन्द्रिय सुख का अनुभव जो होता है और जो सच्चा सुख मिलता है, उसके बाद दुनिया का सुख उसके आगे सब फीका है। तो मुझे लगता है कि ये जो नेचुरल परमात्मा के साथ का जो अनुभव हमने किया, परमात्मा ने जो भी ज्ञान सुना उसको हमने अंदर धारण करके उससे डायरेक्ट शक्तियों का जो अनुभव किया, तो अनुभव अगर कोई एक बार भी कर ले वो जीवन भर नहीं भूलता है, सबसे बड़ा एक अनुभव है प्रैक्टिकल
1: जी। आपने जब मेडिटेशन किया पहली बार और ज्ञान सुना, वो परमात्मा की अनुभूति जो है वो आपको
0: जी
1: रियलिटी से महसूस कराई,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: आपको अपने आप से जोड़ दिया
0: जी, जी।
1: तो आप अभी

0: कार्य सिखाया, किस तरह मकान को संभालना है, किस तरह लोगों की सेवाएं करनी है। उसके बाद फिर 1996 में यहाँ पर दादी जी ने ज्ञान सरोवर बनवाया था, क्योंकि 1994 में एक बहुत बड़े प्रोग्राम हुआ था माउंट में, तो उसमें 4000 लोग आ गए थे, तो हॉल में समा नहीं पाए थे वहां ओम शांति भवन में, तो इधर उधर सब जगह आंगन में टेंट लगा के लोग बैठे थे। तो दादी को संकल्प आया क्यों ना हम बड़ा हॉल बनाए जहां पर हजारों लोग आके इसका लाभ ले। तो उसके बाद फिर दादी ने ज्ञान सरोवर में सोचा था हॉल बड़ा बनाने का, लेकिन वहां पहाड़ी होने के कारण बड़ा हॉल नहीं बन पाया, वो भी 2200 सीट का हॉल बना। फिर दादी को प्रेरणा आई कि भाई ये तो उससे काम नहीं चलेगा, या तो चलो विंग्स के वीआईपी प्रोग्राम चलेंगे, लेकिन एक बड़ा हॉल चाहिए जहां पर बाबा का बेहद के अन्य आत्माओं को, पूरे दुनिया के लोगों को संदेश मिले और सारी दुनिया से लोग आके इसका लाभ ले, क्योंकि 2000-3000 लोग कब तक आते रहेंगे, उसमें तो होता होगा नहीं। तो दादी ने एक प्रेरणा ही दादी को कि दादी ने बोला भाई शांति में जो जमीन है अपनी, लैंड है काफी बड़ा, 50-60 एकड़ का लैंड था उस टाइम भी। तो दादी ने बोला कि यहाँ पर एक हम टेम्पररी हॉल बनाएंगे, टेंट का, टोटल टेंट का बनाएंगे, एक मेला वहां बनाएंगे और उसमें हम देखेंगे अगर वहां सक्सेस तो फिर वहां परमानेंट हॉल बनाएंगे, तो क्या वहां का सिस्टम है। तो इसका ड्यूटी दिया गया था गुजरात जोन को फर्स्ट टाइम 1995 की बात है, 95 एंड की। तो उसमें यहां पर पूरा टेंट का हॉल बना था, 20,000 सीटिंग का भंडारा बना था पूरा टेंट का, डाइनिंग किचन रेजिडेंस पूरा टेंट का बना था, खाली वॉशरूम वगैरह थोड़े बना देते टेम्पोररी, वो भी टेंट के ही थे सारे। तो इस तरह यहाँ पर 20,000 लोगों को बुलाया गया और वो मेला इतना सक्सेस रहा, एकदम बढ़िया रहा मेला। तो दादी को लगा कि भाई ये तो बहुत बढ़िया है, यहाँ पर 20,000 लोग रह के यहाँ पर सेवाएं हो सकती। तो दादी ने यहाँ पर एक 1996 में डायमंड हॉल का फाउंडेशन डाला गया, 20,000 सीटिंग का हॉल का, और दादी ने टारगेट दिया कि मुझे 10 महीने के अंदर यह हॉल चाहिए। तो दादी का जो टारगेट था, तो कई जगह से इंजीनियर आए, कई जगह से साउंड वाले इंजीनियर आए, कंस्ट्रक्शन के इंजीनियर आए, क्योंकि यहाँ पर दादी ने एक शर्त रखा था कि इस हॉल में कोई पिलर नहीं होना चाहिए, विदाउट पिलर होना चाहिए, जिसमें हम हजारों भाई बहन बैठ के बाबा को डायरेक्टली देख सके, कोई बीच में पिलर नहीं आना चाहिए, ये इसकी विशेषता थी। इसलिए थोड़ा टाइम लगा, लेकिन 10 महीने तक वो हॉल बन के तैयार हो गया था। ये भी दादी का एक सिस्टम था, दादी जब प्रोग्राम मानते उसको डेट देती थी कि इस डेट में हमको चाहिए यहाँ का भंडारा, जहाँ पर 5,000 लोग खाना खाते एक टाइम पे, भंडारा किचन डाइनिंग आप देखा होगा, तो वहां पर दादी ने सिर्फ उसको 2 महीने का टाइम दिया था, सोचो आप 2 महीने मुझे बन के तैयार चाहिए, और वो बना के दिया था भरत भाई और रमेश भाई ने, इंजीनियर ने। तो दादी ऐसे माना पूरे विश्वास के साथ बोलती थी कि इस टाइम में होना ही चाहिए। तो दादी ने जब डायमंड हॉल की शुरुआत की, जब डायमंड हॉल बन रहा था, तो मुन्नी बेन ने मुझे बोला कि आप थोड़ा अभी ओम शांति भवन में जाओ और इसमें थोड़ा हॉल कैसे संभालते उसको थोड़ा आप सीखो। वहां पर दिवाकर भाई थे, तो उन्होंने काफी मुझे हर प्रकार से सिखाया, तो काफी स्टेज कैसे संभालना है, किस तरह हॉल को संभालना है, किस तरह लोगों को मैनेज करना है, तो सब हम सीखे। एक साल तक हम सीखे, 97 तक तो सीखता रहा मैं, लेकिन उसके बीच में 98 में ये डायमंड हाउस बन के तैयार हो गया था, न्यू डायमंड नहीं बना था, सिर्फ डायमंड हाउस और कॉन्टेंट हॉल, ये दोनों का काम साथ साथ चल रहा था। तो जब डायमंड हाउस बना, तो वहां पर यहाँ पर वीआईपी प्रोग्राम चालू हो गए थे, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस चालू हो गई थी। दादी बोलती मकान इतने बन गए थे, इसमें कॉन्फ्रेंस शुरू करो। तो जब कॉन्फ्रेंस थी, तो मुन्ने बेन बोलती भाई वहां तो अपने मकान का ट्रेनिंग लिया है, पहले डायमंड हाउस संभालो आप। तो ड्रामा चेंज हो गया फिर
1: जी।
0: तो डायमंड हाउस से सीधा डायमंड हाउस में हमको बुलाया गया, तो मैं ऊपर से फिर शांति बनाया, तो डायमंड हाउस का थोड़ा सेटिंग वगैरह किया वीआईपी के हिसाब से, और तब से यहाँ पर वीआईपी प्रोग्राम काफी शुरू हुआ। लेकिन एक गांव का व्यक्ति हो कि लोग मुझे डराते थे माउंट में, अरे भाई तुम डायमंड हाउस क्या संभालेगा, वहां तो वीआईपी लोग आएंगे और इतनी बड़ी बिल्डिंग है 250 बेड की, और वहां पर कंप्लेंट्स आएगी विदेशियों की कईयों की, तो फिर आपको डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप नहीं जाओ बोले, माउंट ही रहो। लेकिन मैंने कहा देखो हमने भगवान को जीवन दिया है, जो हमको ऑर्डर मिलती है वो हमको जाना है। जैसे आर्मी में होता है फॉलो करो, जैसे ये भी रूहानी आर्मी या परमात्मा ने जो हमको सेवा दी वो हमको करना है। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आया, डायमंड हाउस किया, फिर उसके बाद डायमंड हाउस जब सेटअप हो गया, तो 2000 में यहाँ पर ओआरसी का निर्माण हो रहा था। दादी ने दिल्ली में ओम शांति रिट्रीट सेंटर जो है आज हमारा, उसका निर्माण हो रहा था। तो दादी ने और मुन्ने बेन ने मुझे बुलाया कि मुन्ने बेन को जिम्मेवारी थी ओआरसी पूरा आपको सजा के सेट करके ओपनिंग करके देना, क्योंकि दिल्ली वालों का तो प्रॉपर ये नहीं था वहां पर। बाद में आशा बेन को इन्वॉल्व किया दादी ने, मुख्य बनाया आशा बेन और शुक्ला बेन और गीता बेन, तीन बड़े बड़े जोन इंचार्ज थे वहां पर, तो इन तीनों को दादी ने निमित्त बनाया, लेकिन बोले मुन्नी बेन की पूरी जिम्मेवारी है, तो इसको पूरा सेट करके ओपनिंग करके देने की। तो आप सोचते हो

0: नया कंस्ट्रक्शन है, टोटल नए मकान है, वहां पर कुछ है ही नहीं, ना लेबर है, ना स्वीपर है, ना सामान है, कोई भी सामान नहीं। तब मुन्नी बिन ने एक मीटिंग की हम लोग साथ की, बोले भाई देखो आप तो पुराने हो गए थोड़े, आप जानते हो, तो आपको जाके ओ आर सी का सेटअप करना है पूरा। तो हमने एक टीम बनाया, फिर करीबन हम 15 लोग यहाँ से गए थे यहाँ से, और कम से कम मैं समझता हूँ हर हफ्ते 5-6 ट्रकें हम ले जाते यहाँ से सामान। तो ऐसे मैं समझता हूँ 1000 ट्रक के सामान वहां गया होगा, हर चीज यहाँ से गई टोटल। तो इस तरह फिर ओ आर सी में 2 साल रहा वहां पर करीबन, और पूरा ओ आर सी का अकोमोडेशन है, रेजिडेंस है, पूरा गांव गांव से लेबर ढूंढ के लाना, उनको काम सिखाना, स्वीपर लाना, तो हर प्रकार से पूरा सेटअप करके जब सेटअप हो गया टोटल। और जब ओपनिंग के बाद भी मैं रहा वहां पर 1.5 साल रहा ओपनिंग के बाद भी, तो वहां पर पूरा सेटअप होने के बाद फिर मुन्नी बहन ने बोला भाई अभी न्यू डायमंड बन रहा है तो आप आ जाइए, और एक मकान बन गया आपके लिए।
1: जी।
0: तो इस तरह फिर इसमें मुन्नी बहन के काफी योगदान रहा है, क्योंकि उसने दादी के साथ रह के बहुत कुछ कारोबार सीखा और दादी के कार्य को हल्का किया। दादी जो कार्य देती थी उसको वो पूरी एकदम निश्चित बल होके वो आगे बढ़ाती थी उस कार्य को और संभालती थी। तो इस तरह उसने भी एक टीम वर्क बनाया है पूरा सभी भाइयों को लेके। तो उसने ये सारा अकोमोडेशन से लेके, चाहे ज्ञान सरोवर हो, चाहे शांति होने, चाहे पांडव होने, पूरा अकोमोडेशन उनके अंडर में है, और वो हर सुचारू रूप से इसको चलाती है और देखती है, और हर बात का उसका पूछताछ भी करती है, ऐसे नहीं कि छोड़ देती। एक ही चीज देख, वो मुझे याद है वो कमरे में एक एक चीज आके सेट करती थी, फोटो यहाँ लगाओ, घड़ी यहाँ लगाओ, बिस्तर ऐसा होना चाहिए, फर्नीचर ऐसा होना चाहिए। तो हम इतना ट्रेनिंग लेने के बाद भी हमको एक एक चीज सिखाती थी कि ऐसा होना चाहिए मकान, ऐसे सफाई होनी चाहिए हर प्रकार से। तो एक बहुत बड़े एक सीखने को मिला यज्ञ में, और बहुत कुछ मिला बाद में। तो आप देखते होंगे डायमंड हाउस में तो इतने बड़े बड़े वीआईपीज आते हैं, चाहे एमपी हो, एमएलएज है, चाहे राष्ट्रपति, चाहे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कितने वीआईपीज यहाँ पर लाइन लगी रहती, वीआईपीज तो आते रहते, तो सबकी सेवा का चांस भी मिलता है। और आप जानते होंगे एक छोटे से गांव से व्यक्ति आया और इतने इतने बड़े लोगों की सेवा कर रहा है, तो इसकी किसकी कमाल है, ये परमात्मा की कमाल,
1: परमात्मा की कमाल है।
0: तो परमात्मा ये सब करा लेता है अपने कार्य को और हमको आगे रखता है, लेकिन भगवान ही कराता है। और बहुत कुछ इसका बेनिफिट, बहुत खुशी मिलती है, बहुत प्यार मिलता है लोगों का, और दुआएं भी मिलती है
1: जी।
0: तो मैं समझता हूँ ये जो जीवन है बहुत ही अच्छे से श्रेष्ठ जीवन बीत रहा है और बीतता रहेगा, और सबका सहयोग भी मिलता है, सबकी दुआएं भी मिलती है।
1: बहुत सुंदर जर्नी रहा भाई जी, आपके जीवन से हमें आज ये सीखने को मिलता है कि भले आप कितना भी काम करते हैं, लेकिन अगर स्व उन्नति करना है तो एक आध्यात्मिकता ही आपके लिए एक रास्ता है। और दूसरा, जिन गुणों को हम अपने जीवन में धारण करना चाहते हैं, चाहे वो एक्यूरेसी है, परफेक्शन है, या फिर डिसिप्लिन में रहना है, संयम में रहना है, इस तरीके की जो वैल्यूज हमारे जीवन में प्रैक्टिकली लेके आना है
0: जी।
1: तो उसके लिए एक निरंतर अभ्यास
0: जी,
1: जो आप एक लंबे समय से करते आए हैं, और हम भी आपको देखते हैं, हम भी जब से शांतिवन में हैं तो कितनी एक्यूरेसी के साथ आप हर दिन सुबह मुरली क्लास में भी दिखते हैं, अमृत वेला भी आप दिखते हैं, मेडिटेशन कंडक्ट करते हैं, मुरली क्लास के पहले भी मेडिटेशन में आते हैं। तो ये एक बैलेंस के लिए जो कर्मठता होनी चाहिए वो आपके अंदर बखूबी दिखता है। तो इसीलिए कहते हैं जीना इसी का नाम है। आपका जीवन से आप अपनी इस चीज को एक दर्शाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आज आप हमारी स्टूडियोज में आए, और हमारे श्रोताओं को जीना इसी का नाम है जो टाइटल है उसके अनुसार आप अपनी जीवन से एक संदेश दिया है। शुक्रिया आपका।
0: थैंक यू। ओम शांति सभी भाई बहनों। धन्यवाद। थैंक यू
1: जी। दोस्तों फिर मिलेंगे एक अगली कड़ी में एक नए मेहमान एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

करते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए। रेडियो मधुबन 90.4।

0: आसमान में छाए हैं काले बादल, सूरज आंख में चोली खेल रहा है और हवा ऐसी चल रही है मानो अपने साथ उड़ाकर ही ले जाएगी। ओह, आप सोच रहे होंगे कि खिड़की के बाहर तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, आखिर ये मौसम के गलत थलत हाल क्यों बताए जा रहे हैं हमें? तो जी मैं आपको बता दूं कि ये मौसम की जानकारी नहीं बल्कि एक घर का हाल है। जी हाँ, ऐसे घर का जहाँ लोगों का स्वभाव ऐसा है जैसे सर्दी गर्मी बरसात पतझड़ एक साथ रहते हों, और जज्बात ऐसे कि सूरज को पश्चिम से उगा दे और तारों को दिन में दिखा दे। यहाँ रोज होते हैं नए नए किस्से, गुस्सा, प्यार, हंसी मजाक, सब कुछ भरपूर है। यहाँ बातें होती हैं हवा में, इसलिए ये घर है ऑन एयर। मिलिए राजस्थान के राठौड़ परिवार से। आज जब सब न्यूक्लियर परिवार के ढांचे में ढल चुके हैं, वहीं राठौड़ परिवार में रहते हैं 16 सदस्य साथ साथ, यानी 16 अलग अलग स्वभाव, 16 अलग अलग अनूठे कैरेक्टर और 16 अलग अलग कहानियां। आइए मिलते हैं राठौड़ परिवार के पहले सदस्य, घर के सबसे बड़े भाई यानी बच्चों के ताऊजी श्री गजेंद्र सिंह राठौड़ से। ये आदर्शवादी, आशावादी बात सभ्यता से करते हैं, स्कूल टीचर हैं, संस्कारों से इनके दिन रात चलते हैं। अरे अरे रुकिए रुकिए, और भाई इनके बिना गजेंद्र सिंह जी कहाँ पूरे होते हैं। साथ में मिलिए गजेंद्र सिंह जी की धर्म पत्नी श्रीमती चंद्रावती राठौड़ से, जो बात बात पे नाक चढ़ाती हैं, खबर ये सबकी रखती हैं, पल में तोला पल में माशा पल पल में रंग बदलती हैं।
1: ठीक है लगाता हूँ।
2: अरे मैंने बोला ना यार, उसमें नहीं लगाने पैसे, इसमें लगा।
3: पैसे लगाना मतलब सट्टा। आजकल के बच्चे ना शर्म है ना संस्कार, क्या कर रहे हो तुम लोग ये हैं जी? ये सट्टा वट्टा इस देश को बर्बाद कर रहा है
2: अंकल। हम
3: देखो, तुम युवा पीढ़ी हो, तुम्हारे ऊपर अपने देश की जिम्मेवारी है।
1: अंकल हम
3: आदर्श ये कहते हैं कि मानव को सदा सच्चा धन ही कमाना चाहिए, झूठा धन समृद्धि नहीं लाता है।
2: ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं अंकल जी?
1: अरे ताऊ जी हैं ये राठौर परिवार के, एक बार को प्लेन को भी ब्रेक लग सकता है लेकिन इनका ब्रेक।
4: अजी सुनते हैं, जल्दी आइए, आपके कॉन्स्टिपेशन की दवा आ गई।
3: अरे आ रहा हूँ, क्या तुम सबके सामने बोले जा रही हो?
4: झूठ बोलूं तो मिर्ची खाऊं, मैं तो इनकी चिंता कर रही थी। अब मेरे अलावा इस घर में है ही कौन जो इतना ध्यान रखे किसी का। ये बहू को देखो, बाप समान जेब की कोई फिक्र ही नहीं है, लगी हुई है टीवी देखने।
0: अगर कोई आपसे कहे कि चलता फिरता रेडियो देखा है तो आप उसे एक बार ताई जी से जरूर मिलवा दीजिएगा। कभी ताने कभी गम, इनका तो बस यही नारा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं राठौड़ परिवार की दो बहनों से। बड़ी बहन है रागिनी, ये फेमिनिज्म के राग अलापती है। छोटी बहन है शांति, लेकिन असल में जिनसे शांति कोसों दूर भागती है।
5: आज तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं, मुंह काला करके गधे पे घुमाएंगे। अरे पत्नी पे हाथ उठाना ये कोई आम बात नहीं है। जिस दिन सारी पत्नियां जाग गई ना, देखना इन मर्दों की तो खैर नहीं। चलो कल सुबह अनशन पर मिलती हूँ।
6: फिर से सुबह सुबह शुरू हो गई। दीदी थोड़ा चिल करो, हिंसा तो आप मेरी नींद पर कर रही हो। थोड़ा सोने दो ना, मेरे डार्क सर्कल्स हो जाएंगे। मुझे आज पार्टी में भी जाना है।
7: शांति शांति शांति शांति।
6: क्या हुआ माँ, सुबह सुबह मुझे क्यों बुला रही हो?
7: अरे मैं भगवान को बुला रही हूँ, तुझे नहीं। और आंखें खोल, 8 बज गए हैं। क्या कुंभकर्ण की तरह सोई हुई है? ओ राम राम राम राम, माफ करना प्रभु, माफ करना। मैंने आपको याद करते करते अपने मुख से राक्षस का नाम ले लिया। माफ करना भगवान, माफ करना। आज ही मंदिर जाके पूरे 2 नारियल चढ़ाऊंगी प्रभु।
0: चलिए बढ़ते हैं अब आगे और मिलवाते हैं आपको राठौड़ परिवार के सबसे छोटे भाई किशन राठौड़ जी से। बच्चों के साथ ये बच्चे बन जाते हैं। छोटे हैं पर बड़ा शायराना मिजाज रखते हैं। मनमौजी हैं थोड़े, थोड़े से हैं जिम्मेदार। जिंदगी के पेचीदा मसले इनकी कलम से सुलझते हैं।
8: अंधेरे बाहर हो तो मंजर, अंदर तलक आए तो गम है। जिंदगी की तस्वीर में मुश्किलों के भी अपने रंग हैं।
9: चाचू, लिखा तो बहुत अच्छा है आपने, लेकिन
8: लेकिन क्या?
9: लेकिन बात कुछ समझ नहीं आई।
8: कोई बात नहीं बेटा, जीवन है, जीवन में सब कुछ समझ नहीं आता। ये बताओ, कल जो टेबल याद कराई थी वो तो भूल नहीं गया ना?
9: नहीं चाचू, आपने गाने में गा के सिखाई थी ना, कैसे भूलूंगी। लेकिन एक बात बोलूं प्लीज?
8: बोल बेटा बोल।
9: ये कविताएं आप किसी अपने उम्र वालों को क्यों नहीं सुनाते हो? हम बच्चों को क्यों सताते हो?
8: अच्छा बेटा रुक, अभी बताता हूँ।
9: अरे चाचू, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ।
0: बचपन किसी पौधे की तरह होता है। अगर शिक्षा की खाद और स्नेह का पानी न मिले तो ये पनप नहीं पाता। जहाँ इतने बड़ों का हाथ सर पर हो वहाँ तो ये हंसी खुशी लहराएंगी ना। अब मेरी बात पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि बामुलायजा होशियार पधार रही हैं राठौड़ परिवार की राजकुमारी, मतलब राठौड़ परिवार की मंझली बहुरानी राजकुमारी जी, जो भोली भाली हैं दिल की पर रहती हैं थोड़ी अस्त व्यस्त। किचन के बर्तन भी डरते हैं इनसे, देती हैं उन्हें इतना कष्ट। और साथ में आपको मिलवाते हैं घर की सासू माँ यानी अंबिका देवी राठौड़ से, जो सबका रखती हैं ख्याल पर इनके ख्याल कभी कभी करते हैं सबको हैरान।
10: ये बर्तन किसने बनाए? अब कटोरी इतनी गोल कि हाथ से सरक जाए और थाली इतनी चपटी कि हाथ पकड़ ही न पाए। किसी का बुरा ना बोलूं। चल राजकुमारी, फिर से सारा काम कर।
11: राजकुमारी क्या कर रही है, आराम से कर।
10: हाँ ठीक है माँ साहब, बस खाना तैयार है, लेके आई बस।
11: बेटा राजकुमारी, दाल में इस बार नमक ही डाला है ना?
10: हाँ माँ, इस बार तो चीनी का डब्बा ही खाली हो गया ना, तो पक्का नमक ही डाला है।
0: आई नो आप लोग यही आशा कर रहे होंगे कि खाने में नमक ही पड़ा हो, वरना खाने वालों का तो भगवान ही मालिक है। चलिए अब आपको मिलवाता हूँ घर के सबसे बड़े व्यक्ति यानी राठौड़ परिवार के पिताजी श्री भगवत सिंह राठौड़ जी से, जो हैं ज्ञानी, धैर्य है इनकी निशानी, दुनिया के किसी भी मुद्दे पर सुना सकते हैं ये एक न एक कहानी। और साथ में मिलिए इनके मंझले बेटे यानी वीरेंद्र सिंह राठौड़ जी से, जो वक्त के हैं पक्के, करते हैं सबका सम्मान, नई टेक्नोलॉजी से जूझते हैं। इनके जोक्स को तो करता हूँ मैं भी सलाम।
12: श्री ये बताओ कि मौसम का हाल कैसा है?

0: अरे बोलो श्री। अब क्या तुमको श्री श्री महाराज बोलूं तब जवाब दोगे?
1: डैड व्हाट हैपेंड?
0: अरे ये श्री जवाब ही नहीं दे रही।
1: ये श्री कौन है डैड?
0: अरे ये फोन में होती है, हमारे ऑफिस में आज हमने देखा था, वो सौरभ अपने फोन से बात कर रहा था कि श्री ये बताओ वो बताओ, तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करूं।
1: अरे डैड वो श्री नहीं सीरी है, और वो महंगे वाले फोन में होता है, आपके वाले बजट फोन में नहीं।
0: ठीक है पढ़ाई करो जाकर, वरना बड़े होकर ये बजट वाला फोन भी नहीं खरीद पाओगी।
2: अरे ये फोन क्यों खरीदेगी? मैं दिलाऊंगा ना इसको मेरी प्यारी पोती को।
0: पिताजी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना, इसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाऊंगा मैं।
2: हाँ भाई बिल्कुल बने, आखिर भगवत सिंह राठौड़ की पोती जो है, बच्चों को प्यार और शिक्षा के बैलेंस से बड़ा करो तो वो जीवन में सफल भी होंगे और अच्छा इंसान भी बनेंगे।
0: जी पिताजी, बच्चों के सर पर माँ बाप के साथ साथ दादी दादा और बड़ों का साया है, तो फिर मुझे तो कोई टेंशन नहीं है। चलो आ जाओ बच्चों, आज दादाजी तुम सब के लिए मालपुआ लाए हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
3: देखिए भाई, सारे परिवार के सदस्यों से तो मैंने आपको मिलवा दिया, अब ये कौन आया है गेट पर? आइए चलिए देखते हैं।
4: मैडम 50 पिज्जा की डिलीवरी है आपके घर।
0: 50 पिज्जा किसने मंगाए?
5: राजकुमारी।
0: राजकुमारी
6: राजकुमारी
7: राजकुमारी।
8: अरे मैंने कुछ नहीं किया।
9: हाँ हाँ, इल्जाम हमेशा एक औरत पर ही आता है।
8: वाओ पिज्जा, मजा आ गया।
10: ये विदेशी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हो तुम लोग, दाल बाटी चूरमा खाओ, ये क्या लगा रखा है पिज्जा?
11: बच्चों रुको, लाओ इधर लाओ पिज्जा, ये हमने नहीं मंगवाया भाई साहब।
12: अरे फिर मंगवाया किसने?
13: मुझे
12: वापस कर दो उसको।
8: नहीं नहीं नहीं नहीं, मेरा वाला पिज्जा तो वापस नहीं जाएगा।
10: नहीं नहीं, कोई पिज्जा नहीं रहेगा यहाँ पर।
3: अब इतने सारे पिज्जा का क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन एक बात जरूर पता है कि इस परिवार से मिलके आपको बहुत मजा आने वाला है। खुशी, नोक झोंक, प्यार की मिठास और अनबन का तड़का भी है। राठौड़ परिवार में सब कुछ मिलेगा आपको। अब जिस घर में इतनी वैरायटी है लोगों की, सोचिए किस्सों की कितनी होगी। जीवन के हर रंग को लेकर अगले एपिसोड में फिर लौटेगा कार्यक्रम घर ऑन एयर, सिर्फ रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, 107.8 की फ्रीक्वेंसी पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
14: घर ऑन एयर, पात्र परिचय। दादाजी भगवत सिंह राठौर, आरजे ज्ञानेश्वर। दादी जी अंबिका देवी राठौर, आरजे संध्या। चाचा किशन सिंह राठौर, आरजे श्रीनिधि। ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौर, आरजे रोहित। ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा। बुआ रागनी राठौर, आरजे कृष्णा। बुआ शांति राठौर, आरजे मोना। वीरेंद्र राठौर, आरजे विशाल। राजकुमारी राठौर, आरजे आरुषि। बच्चे रूहानी, अमीक्षा। नैरेटर आरजे अमित। आशा करते हैं घर ऑन एयर का पहला एपिसोड आप सभी को पसंद आया होगा। इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का, क्योंकि राठौड़ परिवार की कहानी तो अभी बस शुरू ही हुई है। रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

सुबह का समय तब बनता है खास जब उषा आती है अशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार। राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणेशा। कितनी भी बड़ी समस्या हो, अगर युक्ति से चलते हैं तो समस्या से मुक्ति मिल ही जाती है। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ भाई, दीपावली जल्दी ही आने वाली है और घरों में साफ सफाई का काम चल रहा है, तो पित्तल और तांबे के बर्तनों को कैसे साफ करेंगे, ये टिप्स आपको जरूर देंगे, ठीक है। और आज की युवा पीढ़ी शादी तो कर लेती है परंतु रिश्ते टिका नहीं पाते। इस विषय पर चर्चा के लिए तैयार हो ना आप सभी, तो जरूर तैयार रहिएगा। और बनाएंगे गर्मा गर्म कुछ खास, वो क्या, वो सस्पेंस रहेगा भाई। आप आशियाना सुनिए, सब कुछ जान जाएंगे और प्रश्न भी पूछने वाली हूँ, तो तैयार रहिएगा आशियाना में प्रश्न का जवाब देने के लिए। तो अभी सुन लेते हैं गीत, पुनः लौट करके आ रही हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4।

0: महिला स्वयं में है शक्ति और इसलिए आपकी सुरक्षा है आपके हाथ ही। कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार के खतरे का आभास हो तो डायल करिए 1090 या 1091। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है कि कितनी भी बड़ी समस्या हो अगर युक्ति से चलते हैं तो समस्या से मुक्ति मिल ही जाती है। कितनी भी बड़ी समस्या हो अगर युक्ति से चलते हैं तो समस्या से मुक्ति मिल ही जाती है। कैसे? तो आज के विचार का विस्तार एक कहानी के साथ करना चाहूंगी स्पष्ट कि एक समय एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठ शास्त्र अध्ययन में बहुत ही निपुण था। उसकी पत्नी बहुत ही सुशील और सौम्य थी। घर में सिर्फ ब्राह्मण और उनकी पत्नी ही रहते थे। इस कारण घर के पूरे काम का बोझ उसके पत्नी पर पड़ता था। कुछ समय बाद काम करते करते पत्नी थकने लगी और काम से तंग आने लगी। काम के बोझ को कम करने के लिए वह उपाय सोचने लगी। उसने अपने पति से कहा, आप वेदों शास्त्रों में पंडित है, कोई ऐसा यज्ञ रचिए जिससे एक काम करने वाला व्यक्ति उस यज्ञ से उत्पन्न हो। यदि कोई नौकर रखेंगे तो पूरा समय उसके पीछे रह करके काम कराना पड़ेगा, परंतु यदि अपनी ही रचना का कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो सारा दिन हमारे साथ रहे, सब काम करे और आज्ञाकारी भी हो तो अच्छा होगा। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पसंद आई और उसने इस बारे में सोचना शुरू किया। ब्राह्मण ने अपने घर में पड़े हुए पुराने ताल पत्रों का अध्ययन करना शुरू किया। अचानक एक पत्र में उसे जिन्न को तैयार करने की यज्ञ प्रक्रिया मिली। ब्राह्मण ने खुश होकर के यज्ञ आरंभ किया। कुछ समय बाद यज्ञ की अग्नि से एक जिन्न प्रकट हुआ। काम करने के लिए जिन्न को पैदा किया था इसलिए उसका नाम काम का जिन्न पड़ा। जिन्न ने ब्राह्मण और उसकी पत्नी को आदर सहित प्रणाम किया और उन दोनों को अपना मालिक माना, परंतु साथ ही साथ जिन्न ने एक शर्त रखी कि उसको सदा कुछ न कुछ काम मिलते ही रहना चाहिए। यदि एक क्षण के लिए भी काम नहीं मिला तो जिन्न ब्राह्मण को खा जाएगा। ब्राह्मण ने जिन्न की यह शर्त मान ली और सोचा कि करने के लिए काम तो बहुत है, इसलिए इसको सदा काम में व्यस्त रखने में उसे कोई परेशानी नहीं होगी। उसी क्षण से जिन्न ने मालिक का काम करना शुरू किया तो ब्राह्मण और उसकी पत्नी तो बड़े प्रसन्न हुए, पर यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। जिन्न को चाहे जितना भी बड़ा काम दो, एक पल में उसे पूरा करके वह ब्राह्मण के पास पुनः आकर के खड़ा हो जाता और कहता कि और कोई काम है, कोई काम चाहिए, कोई काम चाहिए। ब्राह्मण ने जिन्न को बड़े बड़े पतीले बर्तन पुराने सामान सब साफ करने के लिए कहा। ब्राह्मण ने सोचा कि ये काम करने के लिए जिन्न को एक दिन तो लगेगा और कम से कम एक दिन के लिए तो वह जिन्न से छुटकारा पा सकेगा। लेकिन जिन्न ने सारा काम एक पल में ही पूरा कर लिया और फिर कहने लगा कि काम चाहिए, कोई काम दो। ब्राह्मण का घर बड़ा था, बहुत ही बड़ा था, सो घर का पूरा काम करके झाड़ू और पोछा करने के लिए कहा गया। ये काम भी जिन्न ने एक पल में पूरा कर लिया और फिर बोलने लगा कि काम चाहिए, काम चाहिए। इस बार ब्राह्मण ने सुराख वाले घड़े दिए और कुएं से पानी भरने के लिए कहा। ब्राह्मण को मालूम था कि ये काम भी जिन्न एक पल में कर लेगा, इसलिए होशियार ब्राह्मण ने एक युक्ति रची। जब जिन्न अपना काम पूरा करके फिर से ब्राह्मण के पास आया तो उसने उसे सीढ़ी उतरने और चढ़ने की आज्ञा दी। अब जिन्न सीढ़ी चढ़ने और उतरने में व्यस्त हो गया। जब तक ब्राह्मण बुलाएगा नहीं तब तक जिन्न वही काम करता रहेगा। जब जरूरत पड़ेगी तब उसे बुलाया जाएगा और काम करने की आज्ञा दी जाएगी। इस तरह से ब्राह्मण ने युक्ति से मुक्ति पा ली और जिन्न को व्यस्त कर दिया। इसलिए प्यारे श्रोता बंधुओं, कहने का भाव यही है कि कितनी भी बड़ी समस्या हो अगर युक्ति से चलते हैं तो समस्या से मुक्ति जरूर मिलती है। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार जिस पर जरूर गौर करेंगे और आइए सुनेंगे एक प्यारा सा गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

देखिए दीपावली के दिन चल रहे हैं भाई, दीपावली बहुत ही जल्दी आने वाली है और घरों में साफ सफाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि पहले हम साफ सफाई करेंगे, घर हमारा चमकेगा, तभी तो दीपावली पर हम माता लक्ष्मी जी का आह्वान कर पाएंगे ना। तो स्वाभाविक है कि घर की साफ सफाई में हम बर्तनों को तो मांजते ही है, सब कुछ पूरे घर को हम अच्छा सा स्वच्छता से साफ करते हैं, सारे ही सामान को उथल पुथल करके वहां से हटा के साफ करके उस जगह को साफ करके फिर वहां पर वापिस व्यवस्थित रखते हैं। तो भाई पित्तल के बर्तन की तो वैल्यू बहुत है, स्टील के बर्तन तो अभी चले हैं, पहले के समय में पित्तल के बर्तन ही चलते थे और हमारे दादी नानी के जमाने में पित्तल के बर्तन में ही भोजन पकाया जाता था, खाया जाता था। पित्तल के, तांबे के ये बर्तन सबसे ज्यादा चलते थे। आप पनियारे पर देख लीजिए, तांबे के घड़े रखे जाते थे पानी भर के, वो भी कुएं से ला करके। तो अभी समय के साथ परिवर्तन हुआ है, माताएं बहनें थोड़े काम धंधे में नौकरी में व्यस्त हो गई है, भाई लोग भी, तो पित्तल और तांबे के बर्तन को हटा ही दिया गया, क्योंकि उसमें मांजने की मेहनत है ना, स्टील के बर्तन में कोई मेहनत ही नहीं है और मेहनती काम आजकल कोई करना नहीं चाहते। सभी के लिए नहीं कह रही हूँ, ऐसा मत सोचना है कि मैं सभी के लिए कह रही हूँ। आज भी बहुत जने पित्तल और तांबे के बर्तन रखते हैं और बड़े ही उसको प्यार से साफ करते हैं। तो आपको बहुत ही सरल टिप्स देती हूँ ताकि तांबे और पित्तल के बर्तनों को फिर से चमका सको। देखिए मैंने तो देखा है बहुत जगह पर, विशेष करके गुजरात में, कि पित्तल के बर्तन और तांबे के बर्तन को बहुत ही अच्छी तरह सजा करके रखते हैं दीपावली के दिनों में। वो माज माज के थक जाते हैं, बोलते कि बहन जी क्या करे, लेकिन जब ये चमकते तो बड़े अच्छे लगते हैं, मेहनत तो करनी पड़ती है। तो सही कहा है कि भाई मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आज मैं आपको ऐसी टिप्स देने वाली हूँ कि उसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपके बर्तन ऐसे चमकेंगे कि बस आने वाले देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। मैं आपको टिप्स दे रही हूँ बहुत ही सुंदर की, देखिए बाजार में पीताम्बरी पाउडर आता है बर्तन मांजने के लिए, जो पित्तल और तांबे के बर्तन है उसमें आप पीताम्बरी पाउडर को यूज करेंगे तो बर्तन बहुत ही अच्छी तरह चमकेंगे। इसमें खास मेहनत नहीं है, आपको क्या करना है, पीताम्बरी पाउडर लाना है और जो अपने बर्तन मांजने का स्क्रब होता है ना, जिसको हम देसी भाषा में कुच्चा कहते हैं, लोखन वाला, ठीक है, तो उस कुच्चे से आप उस पीताम्बरी पाउडर को लगाइए और साफ करिए। ज्यादा आपको रगड़ने की जरूरत नहीं, आप हल्के हल्के हाथों से पित्तल और तांबे के बर्तन को रगड़ेंगे ना, घिसेंगे तो भी बर्तन चमक उठेंगे, ठीक है। तो ये टिप्स आपको मिल गई है, पीताम्बरी पाउडर का पैकेट आता है मार्केट में और आप इससे आसानी से पित्तल और तांबे के बर्तन को मांज सकते हैं। अब मैं दूसरी टिप्स आपको दे रही हूँ, नींबू तो देखिए सभी लाते हैं, नींबू का रस निचोड़ दीजिए, इसमें नमक मिला दीजिए, फिर कुच्चे से इस कुच्चे को पूरा भिगो दीजिए अच्छी तरह और फिर तांबे और पित्तल के बर्तन को हल्के हल्के हाथों से रगड़िए, 5 मिनट के बाद फिर से घिसिए साफ, ना आपको पाउडर ना लिक्विड लगाने की जरूरत है, बस नींबू में नमक डाल दीजिए नींबू के रस में और कुच्चे से इसको अच्छी तरह घिस दीजिए, तो पित्तल और तांबे के बर्तन चमक उठेंगे और बर्तन चमकेंगे तो हमारे चेहरे के मुस्कुराहट भी बढ़ेगी, क्योंकि इतने सरल तरीके से साफ हो गए। पहले तो हम बहुत घिसते थे, घंटों घंटों लग जाते थे और एक 5 मिनट में बर्तन चमक उठे तो खुशी तो होती है ना। और लास्ट टिप्स ये कि अगर आप नींबू यूज नहीं करना चाहते हैं तो विनेगर और नमक ये आप यूज करिए, विनेगर और नमक को मिक्स करके कुच्चे से फिर आप मांजिए बर्तन को, तो इससे भी बर्तन तांबे और पित्तल के चमक उठेंगे। तो ये टिप्स आपको मिली है, जरूर ध्यान दीजिएगा और इसको आजमा सकते हैं। अब मैं आज का प्रश्न पूछने जा रही हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। चूंढावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी। बस इससे आगे नहीं बोलूंगी। चूंढावत ने जब अपनी पत्नी से निशानी मांगी युद्ध पर जाते समय, तो क्षत्राणी ने सिर ही काट के दे दिया, तो उस क्षत्राणी का नाम आपको बताना है, ठीक है। रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए बढ़ते हैं गीत की ओर, बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: किसी ने कुछ ठीक ही लिखा है कि मांग भरने की सजा कुछ इस कदर पा रहा हूँ कि मांग पूरी करते करते मांग के खा रहा हूँ। तो ये विषय आपको दिया है, आप चर्चा में राय अपनी व्यक्त कर सकते हैं कि शादी ब्याह, आज की पीढ़ी शादी ब्याह तो करने के लिए उत्सुक रहती है परंतु रिश्ते टिका नहीं पाती है। देखते हैं कि समाज में ज्यादातर रिश्ते टूट रहे हैं, सहन शक्ति कम होती जा रही है और डिमांड बढ़ती जा रही है। बहुत कुछ देखते हैं आजकल शादी ब्याह में। लड़की वाले तो इतना कुछ देखते हैं कि लड़के के घर में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, भले अपने घर में कुछ होना हो लेकिन मेरे अपनी बेटी की शादी जहाँ करूँ वहाँ पर सब कुछ होना चाहिए, और फिर भी करते भी हैं लेकिन उसके बाद भी रिश्ते टूट जाते हैं, उसके बाद भी लड़कियाँ टिक नहीं पाती अपने ससुराल में और तलाक ले लेती हैं। तलाक के पीछे बहुत सारे बातें भी होती है, वो आप सभी जानते हो कि खर्चा भी लेती है, घर का हिस्सा भी लेती है। तो समाज में ये क्या हो रहा है? देखिए, आप सभी सामाजिक प्राणी हैं, हम सभी, आप भी, तो आप भी देखते हैं आपके आसपास या कहीं पर तो इस तरह की बातें होती होगी, तो आप भी चर्चा में राय व्यक्त कर सकते हो। नंबर हमारे है 94-14-15-14-15। और आज का प्रश्न भी बहुत सुंदर है कि चूंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी। जब चूंडावत ने युद्ध में जाते समय अपनी पत्नी से निशानी मांगी तो उनकी पत्नी ने सिर काट करके दे दिया। तो ऐसी क्षत्राणी का आपको नाम बताना है, ऐसी रानी का नाम आपको बताना है। नंबर 94141514-15 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब भी आपको देना है और विषय में भी आप भाग ले सकते हो। हेलो,
3: जय माता दी, जय श्री हरि।
2: जय श्री हरि, नमस्कार, स्वागत आपका।
3: सभी सुनने वाले और सुनाने वाले सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार
2: जी।
3: टॉपिक तो बहुत ही सुंदर लेके आई है। सबसे पहले तो मैं एक विश करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ?
2: हाँ जी,
3: आपकी इजाजत हो तो।
2: जी जी, कहिए।
3: मेरे पति का जन्मदिन है तो उनके जन्मदिन की ढेर शुभकामनाएं।
2: जी जी, हम भी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं आपके भतीजे के जन्मदिन पर। बहुत बहुत खुश रहे वो, पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे बढ़े और हमेशा स्वस्थ रहे।
3: भाई नाम है उसका। और आज का टॉपिक है तो देखिए, अभी जो कुछ हो रहा है ना उसी पे आपने टॉपिक लिया, बहुत सुंदर टॉपिक है
2: जी।
3: कि शादियां हो जाती है फिर मतलब तलाक भी लेना नहीं चाहती है और उनको खर्चा भी चाहिए
2: जी।
3: ऐसे भी मैटर देखिए
2: जी,
3: तो मैं कहना चाहूंगा अगर वो ज्यादा सैलरी कमा रहा है तो चलो दे सकता है मदद। कोई बंदा ऐसा भी होते है जो 10-15 हजार महीने के कमाता है
2: जी,
3: और वहाँ वो खर्चा पहुँचाएगा तो वो खुद पर घर कैसे चलाएगा, आएगा क्या
2: जी।
3: तो मैं जो भी, जहाँ तक मेरी आवाज पहुंची है उन सभी बहनों से यही मेरी गुजारिश है कि आप अगर शादी कर रहे हो, आपको पसंद नहीं है तो तलाक करके छुट्टी कर सकते हैं
2: जी।
3: केसबाजी में भी कोई बेनिफिट नहीं है और ऐसे मतलब गरीब परिवारों को दुखी करने में भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि परमात्मा देख रहा है
2: जी।
3: अगर वो कोई मतलब उनकी गलती है तो आप उनको सजा दे सकते हो, मगर कोई उसमें गलती नहीं है, वो राजी खुशी रखना चाह रहे हैं, उसके बावजूद भी ये गलत फहमियाँ कुछ हो जाती है, तो ये गलत फहमिया कि किसी को बिना कसूर के फिर दर्द दुख देखना पड़े
2: जी।
3: तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, और रही बात की शादी करे तो देख के, मतलब थोड़ा बहुत देख के, मतलब कुछ समय के बाद में जल्दबाजी में शादी की जाना
2: जी
3: तो सही रहेगा। और रही बात दूसरी, तो मैं सभी बहनों और भाइयों से भी यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मतलब कई ऐसे कुछ रहम वगैरह भी हो जाए ना, तो उसका सही मुजारा करना चाहिए, उसकी सही जांच करनी चाहिए, उसके बाद ही कोई कदम उठाए।
2: जी जी।
3: तो दूरिया बनी मतलब नजदीकियां बनी रहेगी, नहीं तो दूरिया आ सकती है। और बस कुछ बहन मेरे देखने की भी बात हुई है, तो यही मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे कदम उठाने से पहले लाखों बार सोचिए। थैंक यू।
2: जी जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो बहुत ही सुंदर आपने स्पष्ट किया है। देखिए, शादी ब्याह तो होते हैं, उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, और एक दूसरे को देख करके, परख करके, समझ करके ही शादी करते हैं। क्योंकि पहले के समय में तो ऐसा होता था कि एक दूसरे को देखते नहीं थे, परिवार वाले ही फाइनल करते थे कि भाई आपकी लड़की हमें पसंद है, और शादी फाइनल हो जाती थी। लेकिन लड़के लड़के आपस में मिलते नहीं थे, एक दूसरे को देखते नहीं थे, फिर भी रिश्ते टिकते थे। कभी पहले के समय में सुना आपने कि भाई वो छोड़ के चली गई, या उनका तलाक हो गया, अब वो मायके जा करके बैठ गई? बिल्कुल नहीं। वो 100-200 में एक आध केस ऐसे होते थे तो ये समस्या आती थी। और आज तो आप देख लीजिए, 100 में से कुछ ऐसे है जहां पर रिश्ते टिके रहते, बाकी अधिकतर लड़ाई झगड़े और फिर तंग आ करके घर परिवार छोड़ देते हैं। तो ये बहुत ही बढ़ता जा रहा है। और ये भी है कि देखिए, हम एक बार बात करेंगे अपने श्रोता बंधु से। हेलो
4: दीदी, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। नमस्कार।
2: हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आपका रेडियो मधुबन में सुरेश भाई।
4: जी दीदी, बहुत अच्छी बात हो रही है
2: जी।
4: और अभी अभी जो आपने दीदी बताया कि बिल्कुल सही बात है, कि पहले जमाना में कोई देखता नहीं था, लड़की लड़का नहीं देखता, माँ बाप करते वो सही हो जाता था
2: जी।
4: और कभी भी कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता था
2: जी।
4: तो पूरी जिंदगी तक जो सबर सीखते थे
2: जी।
4: लेकिन आज नहीं, पता नहीं, आज इतने सब कुछ देखते हैं, सब कुछ तय होने के बाद ही शादी करते हैं, बाद में भी ऐसा होता है। तो इसका मतलब तो देती यही है कि अभी लोग को सहन शक्ति भी बिल्कुल नहीं है। कुछ बात हो जाती है तो तुरंत बोल देते हैं हमको रिश्ता नहीं रखना है, हमको ये नहीं करना है
2: जी।
4: तो और दूसरी बात की आप कितना ही दो लड़के वाले को, फिर भी वो तो बस यही बात करता है, ये हमारे पास नहीं है तो ये दे दो, ये हमारे पास नहीं है तो ये दे दो, हरदम नाचने की ही बात करते हैं
2: जी।
4: तो माँ बाप भी कई ऐसी प्रॉब्लम होते थे, माँ बाप कहाँ से दे सकते हैं
2: जी।
4: तो ये मांग भी सही नहीं है, इसीलिए भी रिश्ता टूट जाता है, क्योंकि माँ बाप के पास कुछ नहीं होता है। तो
2: जी जी जी,
4: सामने वाला मांगता है तो बेटी को दुख तो होता है कि मेरे घर को पास कुछ नहीं है, फिर भी ये मांग करता है तो
2: जी जी
4: सही नहीं है।
2: बिल्कुल सही कहा।
4: माँ बाप भी कई बार, माँ बाप भी कहते हैं कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है तो सामने वाले को हम फिर इतना बेटी को, वो हमारी बेटी को ये चाहिए, हमारी बेटी को ये चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। ये भी एक बात सही है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे घर में कुछ नहीं होता, और सामने वाले को हम सब कुछ बोलते हैं, उसके पास गाड़ी नहीं है, उसके पास बंगला नहीं है, उसके पास कोई अच्छा टैलेंट नहीं है, जॉब नहीं है
2: जी।
4: लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि सामने वाले पास कुछ ना हो, लेकिन इसके पास रिश्तेदारी हो, खानदानी हो, उसका लड़का अच्छा हो, अच्छी तरह से वो करका जो पूरा कर सकते हो, और लड़का सीधा साधा हो, तो शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है
2: जी।
4: हम कई बार क्या होता है, ज्यादातर बहुत बड़े लोग भी शादी करते हो तो यही भी प्रॉब्लम रहता है
2: जी जी।
4: तो हम बराबरी का रिश्ता करें तो यही रिश्ता सीख सकता है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बहुत आभार आपका।
4: मैं तो यही कहूँगा, बस बराबरी में रिश्ता करिए, और सब चेती पे सब देख के करिए तो अच्छा रहेगा
2: जी जी जी। बहुत सुंदर जी, नमस्कार, बहुत बहुत आभार। तो बहुत ही सुंदर स्पष्ट किया आपने। अब यहाँ पर एक गीत सुनेंगे, उसके बाद इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आप जरूर जुड़िएगा, प्रश्न का जवाब भी दीजिएगा। चूंडा वत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी। तो ऐसी कौन सी क्षत्राणी है जिसने निशानी के तौर पर अपना सिर ही काट करके दे दिया? तो प्रश्न का जवाब भी दीजिए और विषय में भी जरूर भाग लीजिए। नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और रेडियो मधुबन से आप जुड़ सकते हो। आइए सुनेंगे एक गीत, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: अगर कहीं भी आग लगने की देनी हो जानकारी तो तुरंत कॉल कीजिए फायर ब्रिगेड के इमरजेंसी नंबर पर. डायल कीजिए 101 अपने फोन से. सजग रहिए, सुरक्षित रहिए. रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी.
1: चूंढावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो क्षत्राणी. बहुत सुंदर ये प्रश्न है, इस पर आपको जवाब देना है कि ऐसी कौन सी क्षत्राणी है जिसने निशानी के तौर पर अपने पति को सिर काट करके ही दे दिया. ऐसी क्षत्राणी का नाम आपको बताना है. भाई आप सभी देखिए राजस्थान के रहने वाले हैं और राजस्थान का ही ये इतिहास है और ये इतिहास तो आपने पढ़ा ही होगा. तो आप जो भी आशियाना सुन रहे हैं जरूर जवाब दीजिएगा, क्योंकि इतिहास की बातें हैं तो इतिहास में तो अगर हम बात करते हैं तो और हमारे देश के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न होती है ज्यादा, क्योंकि वैसे तो होती है लेकिन कुछ ऐसे हम टॉपिक को लेके आते हैं या फिर अच्छे अच्छे से गीत सुनते हैं तो उससे और भी हमारे मन में देश के प्रति प्रेम बढ़ता है. और ये राजस्थान का इतिहास है कि ऐसी कौन सी क्षत्राणी है जिसने अपने पति को निशानी के तौर पर सिर काट करके दे दिया है. तो जिन्होंने भी पढ़ाई की हो जरूर आप जवाब दे सकते हैं, और पढ़ाई नहीं की है तो ठीक है, फिर तो आपको हम बताएंगे, जवाब देंगे ताकि आप इतिहास को जान सको. तो देखते हैं अब किन्होंने पढ़ाई की है, जवाब आएगा, फोन कॉल्स आएंगे तो पता चल जाएगा. और विषय भी बहुत सुंदर है कि भाई शादी ब्याह तो कर लेते हैं लेकिन रिश्ते नहीं टिक पा रहे हैं, क्या करें. बहुत से पेरेंट्स की शिकायत रहती है कि बच्चों को इतना उमंग उत्साह से शादी करवाते हैं, इतना खर्चा करते हैं, माता पिता बेचारे पूरे कहते ना जिंदगी भर की कमाई लुटा देते हैं, उसके बाद रिश्ते नहीं टिकते और इस तरह लड़कियां घर छोड़ करके चली जाती है, बेटा वापिस कुंवारा. बेटी के भी माता पिता को कोई कम दिक्कतें नहीं आती है, दोनों ही परिवार को बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है. फिर वो दूसरी जगह देखते हैं कि कहीं अच्छा मिल जाए. तो देखिए जीवन में थोड़ा बहुत तो सबके जीवन में तकलीफ होती ही है, और कहते हैं कि कुछ समस्याएं आती है तो हमें भी उस समस्याओं का सामना करने का अवसर मिलता है. अगर समस्या नहीं आती है तो कैसे जिंदगी का आभास होगा कि जीवन में उतार चढ़ाव भी है. एक रस जीवन सभी के जीवन में नहीं होता है. तो कहते हैं कि रिश्ता टूटे उससे अच्छा है कि थोड़ा बहुत वही सहन कर लो, और सहन शक्ति अगर हाँ वो कहते हैं ना कि लिमिट से बाहर हो जाती है तो स्वाभाविक है एक रबड़ को आप कितना खींचेंगे, ज्यादा खींचेंगे तो वो टूटेगा ही. तो रिश्ते भी ऐसे हैं कि अगर मजबूरी से निभाए जाए तो फिर वो टिकेंगे नहीं, टूट जाते हैं. लेकिन आजकल ज्यादातर देखिए अलग अलग समाज की अलग अलग बातें हैं. जैसे सुरेश भाई ने कहा कि भाई दहेज बहुत मांगते हैं और डिमांड पूरी नहीं होती है तो भी इस तरह रिश्ते टूट रहे हैं, तो इस तरह भी होता है. हेलो
2: हेलो नमस्कार जी.
1: हाँ जी नमस्कार नमस्कार, कैसे हो आप बोरीलाल जी? जी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका. क्या बात है, आप तो हमेशा मुस्कुराहट के साथ ही आते हैं, बहुत अच्छा है. तो आज के विषय के बारे में आप क्या कहेंगे? आज के विषय
2: सवाल भी बहुत अच्छा है, प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है
1: जी.
2: तो क्या है कि रिश्ते में तो टिकते ही नहीं है ज्यादातर.
1: क्यों नहीं टिकते?
2: लोगों में एक चीज जो सहनशीलता है ही नहीं
1: जी,
2: इसलिए रहते ही नहीं है
1: जी.
2: इसलिए कह रहा हूँ कि दो ही पार्टी को बराबर रहना चाहिए, समानता का अधिकार रखना चाहिए और ज्यादा दहेज वहेज के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ चाहिए
1: जी. जी
2: ये मेरा कहने का है
1: जी. जी बहुत सुंदर बात है.
2: वो पद्मावती होनी चाहिए मेरे ख्याल से.
1: अच्छा ठीक है,
2: ये मेरा सवाल सुनो.
1: ठीक है, तो भूरीलाल जी आप आशियाना कार्यक्रम सुनिए, हम जवाब जरूर देंगे आपका. ठीक है
2: जी. ठीक है ठीक है ठीक है, टाइम मिलेगा मैं रुकूंगा
1: जी. जी
2: बाकी चला जाऊंगा.
1: नहीं नहीं जाना नहीं है आपको, रुकना है.
2: धंधा करना ही पड़ता है सर.
1: नहीं नहीं धंधा तो देखिए बिजनेस तो पहले वो करिए आप.
2: आ जी, आ जी.
1: लेकिन आप ईयरफोन लगा के रखिएगा और सुनते भी रहिए कार्यक्रम, ठीक है? बीच बीच में समय मिले तो जी. बहुत बहुत आभार आपका. तो बहुत ही सुंदर बात कही है कि देखिए सहनशीलता होना जरूरी है. लेकिन आजकल हम क्या देखते हैं कि लड़कियां भी, एक हमारे ही लिसनर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन उनके साथ भी इस तरह की परेशानी हुई है. और उन्होंने कहा है कि लड़कियां शादी कर तो लेती है लेकिन फिर वो स्वतंत्र जीवन जीना चाहती है, इसलिए थोड़े से अनबन करके घर से चली जाती है और पैसे ऐंठती है पति से. और रहना नहीं है साथ में सास ससुर की सेवा. अरे सास ससुर की सेवा क्या, देखे आजकल तो बूढ़े बूढ़े माता पिता भी अपना काम खुद कर रहे हैं, अपना ही नहीं पूरे घर परिवार का काम कर रहे हैं, तो कौन से हम उनकी सेवा कर रहे हैं. और जरूरत पड़ने पर हम भी तो बीमार हो जाते हैं ना, तो हमारी भी सभी मदद करते हैं, ऐसे वो भी बीमार होते तो उनकी मदद उनकी सेवा करना बहुत जरूरी है. हेलो
3: जी नमस्कार, ओम शांति.
1: हाँ जी नमस्कार कुपाराम जी, ओम शांति, कैसे हो आप?
3: बस बहुत अच्छे कार्यक्रम सुन रहे
1: जी.
3: पहले तो वो आपका प्रश्न बता देता, वो तो हांडी रानी है
1: जी,
3: और एक बटालियन भी बनी हुई है हांडी बटालियन
1: जी,
3: इसके नाम से हांडा परिवार में हुई है
1: जी.
3: की स्टोरी तो बहुत लंबी है, फिर आप भी बताना
1: जी. जी जी.
3: और ये विषय चल रहा है मेरे हिसाब से क्या नए नए होते हैं ना.
1: हाँ जी.
3: ये उनको अभी ये मालूम नहीं, लेकिन तो पूरी दुनिया में ऐसा होता रहा, खटपट वाली बात तो छोड़ना नहीं है, उसके साथ संघर्ष करना है
1: जी.
3: जैसे कोई भी गाड़ी आती है तो ड्राइवर होशियार होगा ना
1: जी,
3: उनको ठिकाना लाता है वो, और रिश्ते तोड़ के वो फिर दूसरी जगह जाएगी भी कहाँ
1: जी,
3: वहाँ भी परेशानी तो वो खड़ी होगी
1: जी. लेकिन वो कहते हैं कि बहुत ही परेशानी होती है घर में, तो फिर क्या करना चाहिए. बहुत जैसे कोई समझने को तैयार नहीं, लड़ाई झगड़े ताने मारना, तो फिर क्या होगा.
3: वो तो ऐसे करना पड़ता है थोड़ा सा
1: संघर्ष.
3: हाँ संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, वो तो ऐसे थोड़े दिन एक बार पियर रूट के जाते है
1: जी,
3: तो उनकी आदत होती है, वो तो वहाँ भी उनको वो भी परेशानी रहती है
1: जी.
3: फिर या तो उसको मजबूर करेंगे दूसरी जगह जाओ, तो नहीं मुझे तो दूसरी जगह से वही जाना है, तो फिर वो वापस आके तो सीधी होने वाली है
1: जी. चलिए बहुत बहुत आभार आपका.
3: देखो एक बहन जी बात करेगी मेरी
1: जी,
3: आदमी ज्ञाति लेके जो काम करता है ना
1: जी,
3: तो भी घर को नहीं सुधार दे सकता, और महिला बहन है जो एक सुई लेके काम पे लगे ना
1: जी,
3: तो भी घर को सुधार देती है.
1: बिल्कुल बिल्कुल,
3: महिला में वो ताकत है
1: जी,
3: लेकिन
1: जी,
3: वो उसके उसको सोचना है कि मेरे घर को बिगाड़ना है कि सुधारना है, वो उसके ऊपर है
1: जी. जी जी.
3: फिर समय तो निकल जाएगा, थोड़े दिन उधर गए ना, थोड़े दिन उधर गए ना, फिर कहेगा हम तो पीछे रह गए
1: जी,
3: ऐसे तो वो पीछे ही रहेंगे
1: जी. जी जी. बहुत बहुत आभार आपका.
3: नमस्कार. नमस्कार.
1: नमस्कार. बहुत सुंदर बात आपने कही है, आभार आपका. और देखिए ये टॉपिक ऐसा है कि जितनी बात करे उतनी कम है, हर प्रकार के पहलू हुए इसमें, कहीं पर दहेज की डिमांड है, तो कहीं पर पति की ज्यादती है, कहीं पर नशे में ग्रस्त रहते हैं वो भी पत्नी के साथ अत्याचार करते हैं, और कहीं कहीं पर पत्नियां भी कम नहीं होती है, वो भी पैसे ऐड करके चली जाती है. कोई पैसे मतलब ऐडने के लिए आती है तो फिर वो एट के चली जाती है, लेके चली जाती है. मतलब जैसे कि कहते हैं ना कि तलाक तो लेती नहीं है भाई, साइन नहीं करूंगी लेकिन मैं रहूंगी नहीं तुम्हारे घर में, और फिर भरण पोषण देना ही पड़ेगा. तो ये भी हर प्रकार के पहलू है, ऐसा नहीं है कि एक तरह की समस्या है, लेकिन सभी का तोड़ यही है कि थोड़ा सा सहन कर लीजिए और समझाने की कोशिश करिए. अगर नहीं समझते हैं, बेसिर पैर की बातें होती है और बिल्कुल समझ ते नहीं है, देख लेते हैं कि साल दो साल तीन साल या पांच साल में भी अगर ससुराल वाले नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप डिसीजन ले सकते हो. और मैं तो हर माता पिता से भी यही कहना चाहूंगी कि बेटी को अगर आप विदा करते हैं तो उनको यही शिक्षा दीजिए कि भाई आप घर में शांति से और प्यार से रहिए, क्योंकि अगर बेटी की शादी होती है तो वो सिर्फ पति ही उसका सब कुछ नहीं होता है, पति का जो पूरा परिवार होता है वहां पर, सास ससुर ननंद भाई देवर जेठ जो भी होते हैं, सभी को सम्मान देना बहुत जरूरी होता है, तो ही रिश्ते टिकते हैं. बाकी ठीक है, मैं तो पति का कहना मानूंगी, बाकी सभी का कुछ भी नहीं करूंगी, सामने बोलूंगी जबान लड़ाऊंगी, वो नहीं चलता है. इसलिए परिवार में अगर रहना है, परिवार को टिका के रखना है, तो सभी के साथ प्यार से रहना होगा, और सभी का सम्मान करेंगे तो सभी का प्यार भी मिलेगा. इसलिए पति के घर वालों को भी कहना चाहूंगी कि वो भी आने वाली बहू का दिल से स्वागत करें और उसको एक बेटी की तरह प्यार देवे. मैं जानती हूं कि बहू बहू ही रहेगी, बेटी नहीं बन सकती, लेकिन बेटी का प्यार तो दे सकते ना. कहीं कहीं पर तो देखने को मिलता है कि बेटियों से भी बढ़कर के बहुएं होती है, और पूरे ही अपने पूरे ससुराल वालक जो परिवार का पूरा ही ध्यान रखते हैं, तो हर तरह की बातें आती है इसमें, लेकिन बस थोड़ा सा सहन कर लीजिए, थोड़ा सा एक दूसरे को पहचानिए, एक दूसरे को समझिए, तो ये रिश्ते टिकेंगे और बहुत ही अच्छा भी लगेगा। बाकी तो कहते हैं कि रिश्ते टूटने में तो कोई देरी नहीं लगती, भड़काने वाले कितने ही आ जाते हैं, लेकिन स्वयं को सोचना होता है कि हमें क्या करना है। हमें अपने परिवार को टिका के रखना है, अपने घर गृहस्थी की गाड़ी को टिकाए रखनी है या तोड़नी है। ठीक है, तो चलिए मैं फिर से प्रश्न पूछ रही हूँ। चूंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी, तो ऐसी कौन सी क्षत्राणी है जिसने निशानी के तौर पर अपना सिर काट करके दे दिया? जवाब जरूर दीजिएगा। हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए बढ़ते हैं गीत की ओर, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: हेलो, मेरा नाम दीपक है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते
1: रहो। सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो भाई, इतने बड़े बड़े त्योहार आ रहे हैं, कल शरद पूर्णिमा है, फिर दीपावली, दीपावली के आसपास तो कितने सारे त्योहार होते हैं, और त्योहारों की तैयारी तो पहले ही कर लेते हैं, इसमें मिठाइयाँ वगैरह भी बनाते हैं, बहुत सारी चीजें बना करके रखते हैं। कहते हैं ना कि भाई दीपावली का त्योहार ऐसा है कि बहुत सारे टू मच मिठाइयाँ, नमकीन आइटम बना बना करके रखते हैं, ताकि मेहमान जब दीपावली पर आना शुरू करे तो उनको हम मिठाइयों और नमकीन आइटम के साथ उनका वेलकम करते हैं, है ना। आते हैं तो बहुत प्यार से उनको बिठाते हैं, खिलाते हैं। तो सोचा कि क्यों ना आपको मैं इमरती सिखा दूं, ताकि आप ऐसे बड़े त्योहार पर आप इमरती बना सको और अपने गेस्ट को खिला सको। तो सामग्री आपको लिखवा रही हूँ, जलेबी की तरह ही होती है इमरती, लेकिन फिर भी टेस्ट में फर्क है, क्योंकि जलेबी बनाते हैं मैदे की और ये बनाएंगे हम उड़द की दाल की इमरती, और ये भी बहुत टेस्टी लगती है। जलेबी टेस्टी लगती है, इसी तरह इमरती भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो सामग्री आप सभी को लिखवा रही हूँ, 250 ग्राम लेंगे आप उड़द की दाल, ठीक है। फिर आप लीजिए 1 किलो चीनी। अब आप 50 ग्राम दूध ले लीजिए और 25 ग्राम लेना है मैदा। फिर आप आवश्यकता के अनुसार घी लीजिए और खाने का मीठा रंग लेना है, ठीक है, जिसको नारंगी रंग भी कहते हैं। तो बस सामग्री फिर से दोहरा रही हूँ, इतनी सी ही सामग्री है, 250 ग्राम उड़द की दाल, 1 किलो चीनी, फिर आप लीजिए 25 ग्राम मैदा, आवश्यकता के अनुसार घी और 50 ग्राम दूध, फिर आप खाने का ले लीजिए मीठा रंग, ठीक है। अब बनाने का तरीका भी आपको साथ ही साथ सिखा रही हूँ कि इमरती कैसे बनाई जाती है। आप क्या करेंगे, दाल को अच्छी तरह धो करके भिगो दीजिए, ठीक है। दाल कम से कम 4 घंटे भीगी रहने दीजिए, ताकि वह अच्छी तरह से फूल जाए। इसके बाद दाल का छिलका निकालिए, उसे खूब बारीक पीस लीजिए। अगर मोगर है तो आप मोगर को गलाइए, ठीक है। इस तरह आप कपड़े में पानी डाल करके गला कर रखिए, और अगर मोगर नहीं है तो फिर छिलके वाली दाल को भी आप भिगो सकते हैं। 4 घंटे में तो सारे छिलके निकल जाएंगे, तो इन छिलकों को निकाल दीजिए, फिर बारीक पीसना है, ठीक है। पीसी हुई दाल में मैदा और रंग मिला करके परात में आप डालिए, जिसको गुजराती में कचरोट कहते हैं। तो कचरोट में डाल करके काफी देर तक अच्छी तरह उसको फेंटिए, इतना फेंटना है कि फेंटते फेंटते दाल का हल्कापन आ जाए। पहले जब हम फेंटेंगे ना तो हमको भारी भारी लगेगा, लेकिन अच्छी तरह जब फेंटेंगे, फेंटते ही जाएंगे, तो फिर हल्कापन आ जाएगा। इतनी देर तक आपको फेंटना है। फिर एक तवी लीजिए, समतल कढ़ाई भी कहते हैं इसको, तवी जिसमें मालपुआ भी बनाते हैं, तो ऐसी तवी आपको लेनी है, ठीक है। तवी में ही हम ये बना सकते हैं इमरती। तो फेंटी हुई दाल को एक कपड़े में रखिए, स्वच्छ कपड़ा लीजिए, उसमें भरिए फेंटी हुई दाल, ठीक है। इतना लीजिए कपड़े के आवश्यकता के अनुसार, भाई कपड़ा छोटा और दाल का खीरा ज्यादा भर देंगे ना तो ऊपर से निकलेंगे, जब आप दबाएंगे तो ऊपर से निकल जाएगा सारा खीरा, इसलिए आप कपड़ा ऐसा लीजिए और उसमें आवश्यकता के अनुसार ही इस खीरे को भरना है, ठीक है। और नीचे से काना कर दीजिए, काना बोले तो खड्डा, ठीक है। और फिर ऐसे छोटा सा छेद कर लिया। अब आप तवी में घी डाल दिया, घी गर्म हो जाए तो फिर आप बस कपड़े को चारों तरफ से अच्छी तरह पकड़ लीजिए ऊपर से, और थोड़ा सा प्रेशर दे करके एक अपन चूड़ी कैसे पहनते हैं ऐसे गोल गोल गोल गोल आप डालिए तवी में, ठीक है। जो साइज आपको पसंद है उस साइज में डाल करके फिर आप दूसरी डालिए, फिर तीसरी डालिए, फिर चौथी डालिए, घी के अनुसार, तवी के अनुसार, जो साइज है उसके अनुसार आप इस तरह इमरती डालिए, फिर इसको आप पलटी लगाइए अच्छी तरह, एक तरफ से सिक जाए तो दूसरी तरफ से पलटी लगाइए। पलटी लगाने के बाद इधर आपने जो शक्कर ली है ना, तो उसके आप चाशनी बना लीजिए, ठीक है। चाशनी बनानी है, फिर इस चाशनी ज्यादा देखिए कड़क नहीं करनी है चाशनी को, एक तार की चाशनी बनानी है, जैसे कि गुलाब जामुन की बनाते ऐसी, ठीक है। और फिर इस चाशनी में आप इमरती को डालते जाइए, तो इस तरह सारी इमरती बना लीजिए। बहुत सरल तरीका है ना, हाँ जरूर आप बना करके देख सकते हो। बहुत अच्छी लगेगी। और एक नई आइटम बनाते हैं, अक्सर हम क्या करते हैं, गुलाब जामुन नहीं, इमरती और जलेबी हम बाजार से लाते हैं, घर पर बनाते नहीं है। लेकिन घर पर अभी दीपावली का त्योहार है, बाजार से कितना लाएंगे, घर पर बनाएंगे तो अच्छा है ना, थोड़े से क्वांटिटी में बनेगी वही चीज और क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, क्योंकि हम खुद अपने हाथ से बना रहे हैं, ईश्वर की याद में, प्रभु की याद में बनाते हैं, स्वच्छता से बनाते हैं, तो वो क्वालिटी वाली भी हो जाती है और क्वांटिटी तो बढ़ती ही है। एक किलो आप बाजार से लाइए और एक किलो ही आप घर पर बनाइए, देखो कितना बैठती है, तो सस्ती पड़ती है घर पर। ठीक है, तो इस तरह इमरती बनाई जाती है। फिर से मैं तरीका समझा रही हूँ ताकि आप अच्छी तरह बना सको, तो आप ध्यान से सुनना। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो उड़द की दाल ली है ना, उसको आप पानी में डाल करके भिगोइए। अगर मोगर है तो मोगर भिगोइए, नहीं है तो छिलके वाली दाल भी भिगोइए। 4 घंटे तक पानी में भिगो के रखना है, ठीक है, ताकि अच्छी तरह ये दाल फूल जाए। 4 घंटे के बाद जो छिलके हैं ऊपर आ जाते हैं, सारे हटा दीजिए, निकाल दीजिए और फिर इसको बारीक पीस लीजिए। ठीक है, पीसी हुई दाल में फिर आप मैदा और रंग डालिए, खाने का जो रंग लिया है ना वो डालिए, और एक परात में, छोटे बर्तन में, जिसको कचरोट भी कहते हैं, परात कहते हैं राजस्थान में, हिंदी भाषा में भी परात कहते हैं, गुजराती में कचरोट कहते हैं, छोटे बर्तन में आप निकालिए और अच्छी तरह इसको फेंटिए। फेंटते समय थोड़ा भारीपन महसूस होगा, जब फेंटते जाएंगे तो हल्कापन आ ही जाएगा, तो इतनी देर तक आपको फेंटना है। ठीक है, अब फेंटने के बाद अब आप क्या करेंगे, इसको अच्छा से इकट्ठा कर लीजिए, और कढ़ाई नहीं तभी रखनी है आपको गैस में, और इसमें घी डालिए आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, और इस खीरे को आप क्या करेंगे, एक स्वच्छ कपड़ा लीजिए, वाइट सूती, ठीक है, इसमें आप भरिए और भर करके चारों ही कोनों को लपेट करके हाथ से पकड़ लीजिए मुट्ठी में। ठीक है, नीचे से एक छेद कर लीजिए और फिर थोड़ा सा ऊपर से प्रेशर देते हुए तवी में जब घी गर्म हो जाए तो मध्यम आंच पर आप चूड़ी की तरह गोल गोल गोल गोल गोल गोल डालते जाइए। तो जो आपने घी डाला है, तवी की साइज है, उस अनुसार इमरती आप बनाइए, 3, 4, 5 डालिए। ठीक है, फिर आप जाले से इसको पलटी मारिए, जब दोनों तरफ से अच्छी तरह लाल लाल हो जाए तो फिर आप एक तरफ चाशनी बना दीजिए एक तार वाली, और उस चाशनी में फिर आप इन इमरती को डालते जाइए। तो ये इमरती तैयार है, फिर चाशनी जब पी ले वे इमरती, तो फिर आपको निकाल देना है, चाशनी में ही नहीं रखना है। गुलाब जामुन को हम चाशनी में रखते हैं लेकिन इमरती को चाशनी में नहीं रखते हैं। अच्छी तरह वो जब चाशनी पी लेवे तो आप निकालते जाइए, दूसरी इमरती डालते जाइए, उनको निकालिए, फिर तीसरा पाया डालिए, इस तरह इमरती आपको बनानी है। ठीक है, तो चलिए इमरती बन चुकी है हमारी। अब भाई मीठा सिखाया है तो कुछ नमकीन तो जरूर बनाना पड़ेगा, परंतु एक ब्रेक के बाद। ठीक है, तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: बहू मुझे लड़का ही चाहिए।
1: माँ माँ माँ माँ माँ माँ अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना, मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
2: अब तो बस करो।
0: बहू क्या सोच रही हो, घर चले, नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है। चलो
3: कोख को कवर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में ला।

पानी ले लीजिए और एक चौथाई छोटा चम्मच लेना है लाल मिर्च, चुटकी भर स्वाद के अनुसार नमक और 40 ग्राम के आसपास बारीक कसा हुआ चीज। फिर से दोहरा रही हूँ सामग्री, ध्यान दीजिएगा। 25 ग्राम मक्खन, 50 ग्राम मैदा, आधा प्याला माने आधी कटोरी पानी, एक चौथाई छोटा चम्मच लाल मिर्च, चुटकी भर नमक या फिर नमक और मिर्च अपने स्वाद के अनुसार डालिए, क्योंकि कोई तीखा पसंद करते कोई मोरा पसंद करते हैं तो आप पर छोड़ा। फिर 40 ग्राम के आसपास लीजिए बारीक कसा हुआ चीज। ठीक है, ये तो हो गई सामग्री। बनाने का तरीका आपको सिखा रही हूँ कि पानी में मक्खन डाल दीजिए और पकने के लिए रख दीजिए। जैसे ही उबाल आने लगे एकदम से सारा मैदा डाल दीजिए और लगातार घुमाते जाइए, जब तक कि देखिए आंच को तो आपको स्लो करना है, ठीक है, मध्यम आंच पर ही आपको बनाना है, बिल्कुल बराबर मुलायम न हो जाए तब तक आपको चम्मच से हिलाते रहना है। उसके बाद गैस बंद कर दीजिए और इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। लगातार हिलाते हुए एक एक करके कसा हुआ चीज और नमक मिर्च मिला दीजिए इसमें। फिर ना अच्छी तरह खीरा तैयार हो गया है। अब आप कढ़ाई में तेल गरम करिए, फिर मैदे और चीज के मिश्रण को एक छोटे चम्मच से गिराते जाइए, ठीक है, और पकौड़िया सुनहरे रंग की तल लीजिए। निकालने के बाद ऊपर से कसा हुआ चीज बुरक दीजिए और गरमा गरम पेश करिए। तो ये बन गई चीज की पकौड़िया। फिर से दोहरा रही हूँ विधि को, ध्यान से सुनिएगा। पानी में मक्खन डाल दीजिए और पकने के लिए रख दीजिए। जैसे ही उबाला आने लगे एकदम से सारा मैदा डाल दीजिए और लगातार घुमाते जाइए, जब तक कि बिल्कुल बराबर मुलायम न हो जाए तब तक इसको हिलाते रहना है। फिर गैस बंद करके इसको ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने तो देना है लेकिन फिर भी लगातार हिलाते रहना है और एक एक करके कसा हुआ चीज और नमक मिर्च मैदा सब इसमें मिला दीजिए। ठीक है, मैदा तो ऑलरेडी हम इसमें गरम कर चुके हैं और अब आप सभी अच्छा मिश्रण ये तैयार हो गया, मसाला इसमें डाल दिया नमक मिर्च वगैरह, तो फिर आप कढ़ाई में तेल गरम करिए। तेल गरम हो जाए तो मैदे और चीज के मिश्रण को एक छोटे चम्मच से पकौड़े की तरह डालिए, अगर हाथ से पसंद करते हो तो हाथ से डालिए। तो पकौड़िया सुनहरे रंग की तल लीजिए और निकाल दीजिए। निकालने के बाद ऊपर से और भी आप किसा हुआ चीज बुरक सकते हैं। तो ये बन गई गर्मा गर्म पकौड़िया। तरह तरह के स्वाद की अलग अलग प्रकार की पकौड़िया आपको सिखाते रहते हैं, तो चीज की पकौड़ी भी आप बना करके जरूर खाइएगा, बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट है। तो चलिए, इमरती और पकौड़िया तैयार है, तो देर किस बात की, लीजिए एक स्वच्छ थाली। थाली में आप ये एक प्लेट में इमरती रखिए, एक प्लेट में चीज पकौड़ी रखिए और जो भी कुछ आपने बनाया है रखिए। तुलसी पत्र और जल की स्वच्छ ग्लास पर के भी रखिएगा। ऊपर से थाल पोश ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए और भोग लगाने के बाद अब आप पूरे परिवार सहित आनंद ले सकते हो चीज पकौड़िया का। ठीक है, और आज का प्रश्न बड़ा सुंदर था, लेकिन हमारे श्रोता बंधु लगते हैं कि या तो शरद पूर्णिमा की तैयारी कर रहे हैं या फिर दीपावली की साफ सफाई में खोए हुए हैं। इसलिए देखे, हमारी बहनें तो जुड़ ही नहीं पाती है क्योंकि वो साफ सफाई कर रही है घर की। चलिए, वो भी बहुत जरूरी है। प्रश्न था कि चूंडावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो क्षत्राणी। ये राजस्थान का बहुत अच्छा इतिहास है, बहुत बड़ा इतिहास है। बहुत ही बड़ी बात है कि चूंडावत ने जब सेनानी के तौर पर, निशानी के तौर पर अपनी पत्नी से मांगा, युद्ध में जा रहे थे और युद्ध में जाते जाते याद आ गई पत्नी की, तो फिर से लौट आए और लौट करके पत्नी से निशानी मांगी। और पत्नी ने सोचा कि अगर ये मेरे ही याद में खोए रहेंगे तो युद्ध को क्या खाक जीत पाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि न रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, और उन्होंने अपना सिर काट करके दे दिया। ऐसी क्षत्राणी का नाम है हाड़ी रानी, जो आप सभी ने सही जवाब दिया है। सिर्फ एक भूरी लाल जी का जवाब गलत है, उन्होंने पद्मावती कहा है। पद्मावती ने जौहर किया है, उन्होंने शीश को नहीं काटा है, ये हाड़ी रानी ने करके दिखाया है। तो सबसे पहले जवाब दिया है सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, फिर सुरेश भाई झोटाना से और फिर कुपाराम जी ने। आप सभी ने सही जवाब दिया है, बोरीलाल जी का जवाब गलत है। तो आप सभी के लिए, जिन्होंने सही जवाब दिया है, आप सभी के लिए ढेर सारी तालियां। और अब मैं दहेज प्रथा पर एक सुंदर कविता सुनाऊंगी, आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के

लिए सुनते रहो, मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन। नारी का न करो व्यापार, नारी का न करो व्यापार, स्वयं जिसे कहते तुम लक्ष्मी, क्यों कर रहे फिर उस पर तुम अत्याचार। स्वयं जिसे कहते तुम लक्ष्मी, क्यों कर रहे फिर उस पर तुम अत्याचार। दौलत के तराजू पर तोल के, दौलत के तराजू पर तोल के, छीना तुमने उसका अधिकार। नारी बिन जीवन है सुना, नारी बिन जीवन है सुना, थोड़ा तो करो विचार। कभी संगनी कभी भगिनी बन, उसने लुटाया तुम पर प्यार। कभी संगनी कभी भगिनी बन, उसने लुटाया तुम पर प्यार। दौलत के नशे में डूबे ए मानव, लूट लिया तुमने उसकी खुशियों का संसार। अब भी समय शेष है देखो, अब भी समय शेष है देखो, करो स्वयं में जागरूकता का संचार। कुरुतियों से ग्रसित समाज का, कुरुतियों से ग्रसित समाज का तुम करो अब बहिष्कार। त्यागो कुंठित सोच को अपनी ए मानव, त्यागो कुंठित सोच को अपनी ए मानव, करो परिवर्तित अपना व्यवहार। हो सके जिससे समाज में, हो सके जिससे समाज में स्वस्थ मानसिकता का निर्माण। बंद करो दहेज प्रथा, नारी का न करो व्यापार। बंद करो दहेज प्रथा, नारी का न करो व्यापार। स्वयं जिसे कहते तुम लक्ष्मी, स्वयं जिसे कहते तुम लक्ष्मी, क्यों कर रहे फिर उस पर अत्याचार। क्यों कर रहे फिर उस पर तुम अत्याचार।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत। जागृति इस कार्यक्रम में महिलाओं को जागरूक करने का एक कार्यक्रम, जहां पर हम अलग अलग विषयों के विशेषज्ञों को लेके आते हैं और उनसे महिलाओं के संबंधित जानकारियां हम लेते हैं और कुछ नई बातें भी सीखते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम बातचीत कर रहे हैं महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। आज हम सभी को जानकारियां देने के लिए, और मानसिक स्वास्थ्य क्यों जरूरी है और मानसिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं, इस विषय के ऊपर आज चर्चा करेंगे और हमें जानकारियां देंगे। हमारे साथ है वीरेंद्र जी। आप पिछले 10 सालों से एक मानसिक रोग विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और हमारे साथ एक और एक्सपर्ट है आज, हर्षिता सेतिया जी। आप एक साइकोलॉजिस्ट है, यानी मनोरोग विशेषज्ञ हैं। आप दोनों हरियाणा से हैं और हैदराबादी जनरल हॉस्पिटल में आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो चलिए हम बातचीत करते हैं और जानते हैं, खास करके जब महिलाओं की बातचीत हम कर रहे हैं तो उनके लिए मानसिक स्वास्थ्य क्या है और उनके मानसिक स्वास्थ्य क्यों अच्छा रखना बहुत जरूरी है। अगर जब कुछ ऐसी बातें होती हैं तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि इनकी मानसिक असंतुलन हो रही है। तो हम सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे दोनों आज के इस विशेषज्ञों को, हर्षिता जी और वीरेंद्र जी। आज के इस कार्यक्रम जागृति में और रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बातचीत करते हैं तो अभी तो हम काउंसलर एक शब्द से बहुत परिचित हैं, लेकिन जैसे आप दोनों की थोड़े डिफरेंसेस है प्रोफेशन में, लेकिन डील करते हैं वही मानसिक रोग के लिए। तो काउंसलिंग तो वही है, लेकिन जैसे हर्षिता जी आप कहते हैं कि आप मनोरोग विशेषज्ञ हैं और वीरेंद्र जी मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, तो ये डिफरेंस क्या है?
2: बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो मानसिक रोग विशेषज्ञ या फिर जिसको हम साइकियाट्रिस्ट भी कहते हैं, उनकी एक प्रॉपर डॉक्टर हैं वो, जिन्होंने पहले MBBS किया है, उसके बाद वो एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में गए हैं जो कि साइकियाट्री है। तो वो एक आपको प्रॉपर डॉक्टर हैं जिनसे आप जाकर अपने मानसिक रोग के बारे में बातचीत कर सकते हैं। और दूसरा, जब हम मनोरोग विशेषज्ञ के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए आप BA या BSc, MSc या MA करके फिर आप PhD करते हैं या MPhil करते हैं। आप दवाइयां नहीं लिख सकते, लेकिन जो साइकियाट्रिस्ट हैं, जो मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, वो बेसिकली आपको दवाइयों से, उनके द्वारा आपको ठीक किया जाता है। लेकिन मनोरोग विशेषज्ञ का जो बेसिक काम है, जिसको हम काउंसलर बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, वो आपको थेरेपी के थ्रू ट्रीट करते हैं। तो ये दोनों में बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है।
0: बहुत सुंदर। मतलब जब हमारी मानसिक बीमारियां बढ़ जाती हैं, तो उस समय जब उस तीव्रता को कंट्रोल करना है, जहां पर मेडिसिंस की भी आवश्यकता होती है, तो फिर वो साइकियाट्रिस्ट डील करते हैं उनको। और जो छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं, एक लंबे अरसे की लाइफस्टाइल के कारण कुछ आदतें ऐसी हो जाती जिससे खुद भी डिस्टर्ब रहते हैं और दूसरे भी उनसे डिस्टर्ब होते हैं, तो फिर वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जो इमोशंस को डील करने के जो तरीके हैं, वो एक काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट से हम सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं। बहुत सुंदर। तो हम जिनसे बातचीत कर रहे हैं, आपकी स्पेशलिटीज और आपकी एक्सपर्टीज को तो हम समझे हैं, तो हम आगे बढ़ते हुए ये जानना चाहते हैं, अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। तो मेंटल हेल्थ या फिर मानसिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं, और अगर हम महिलाओं के पर्सपेक्टिव्स में देखें तो वो क्या पैरामीटर्स होते हैं जिसे हम समझे कि हाँ, ये चीज़ें अगर संतुलन में हैं तो हाँ, हम मेंटली फिट हैं।
2: आपने जो अभी क्वेश्चन पूछा है कि महिलाओं के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, आज का जो हमारी श्रृंखला है वो महिलाओं के बारे में है, हम कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आज अपने आप से जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्या क्या मुझ में या मेरे आसपास जो लोग हैं और महिलाएं हैं उनमें ऐसा हम क्या देखें जो हमें पता लगे कि हाँ मुझे कुछ चीजें हैं कि मुझे दिखाने की जरूरत है या फिर मुझे ये देखने की जरूरत है कि मेरे आसपास भी कोई इन चीजों से तो नहीं जूझ रहा। अगर हम कहते हैं कि हमारा मन बहुत लंबे समय से उदास चल रहा है, हम खुशी लोग खुश हैं, मेरे आसपास ऐसा कुछ नहीं चल रहा, सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, मुझे खुशी नहीं फील होती है, तो ये सबसे बड़ा कारण है कि आपको यहाँ पे कि आपका पॉइंट है, एक इंडिकेटर है, एक रेड फ्लैग है कि आपको रुक के अपने आप को देख लेना चाहिए कि अब 15 दिन या 20 दिन से ऊपर हो गया है तो आपको कहीं ना कहीं अब एक रेड फ्लैग आ गया कि आपको चेक करने की जरूरत है। और जो हम अगर दूसरे इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं कि आपको कहीं ना कहीं सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं कि क्या करना है जी के, कुछ भी तो नहीं अच्छा लग रहा, किसके लिए जीना है मुझे, मेरे साथ तो ऐसा ही होता रहता है, मेरा तो परिवार ही ऐसा है, सारा दिन तो मैं बच्चों की करती रहती हूँ, फिर भी मेरे को इन रिटर्न तो कुछ नहीं मिलता ना ज्यादा से ज्यादा, तो मेरे अंदर अगर ये थॉट्स आ रहे हैं जो कि एक पैटर्न बन के लीड कर रहा है कि मुझे सुसाइडल थॉट्स पे अगर मैं पहुंच गई हूँ तो आपके लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि अब ये आपके लिए इंडिकेटर है, आपको जान जाना चाहिए कि अब मुझे कहीं ना कहीं सहायता की, मदद की जरूरत है। तीसरा, आपकी नींद डिस्टर्ब होने लग जाती है, या तो आप बहुत ज्यादा सो रहे हैं, आपको अकेलापन बहुत ज्यादा अच्छा लगने लग गया है, अगेन एक इंडिकेटर है कि आपको दिखाना चाहिए। दूसरा, नींद बहुत कम आने लग गई, आपका स्लीपिंग पैटर्न बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया है, आपको बिना दवाई के नींद नहीं आती है, अगेन एक इंडिकेटर है कि आपको दिखा लेना चाहिए। ये 3 से 4 इंडिकेटर मेजर है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे साथ या मेरे आसपास ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको इस समय साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को जरूर चले जाना चाहिए और दिखाना चाहिए।
0: ये पैरामीटर्स है जहाँ पे हम बीमार हैं, लेकिन एक स्वस्थ मन या एक अच्छा हेल्दी माइंडसेट हम किसे कहते हैं, क्योंकि आज की डेट में तो हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। महिलाओं को अगर देखते हैं तो कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जहाँ पे वो डांट नहीं खाती है, कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा कि वो परेशान नहीं है, तो फिर ऐसे में फिटनेस क्या है?
1: देखिए, स्वास्थ्य की जो WHO की डेफिनेशन है उसके अंदर में 2 भाग आते हैं कि आप अपने शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हैं, तभी आप उसको हेल्थ की डेफिनेशन जो WHO की है उसमें ये बोलते हैं इट्स अ कंप्लीट वेलबींग बोथ फिजिकली एंड मेंटली। इसका अर्थ यह है कि आप अपने मानसिक तौर पर भी अपना 100% अपना 100% दे पा रहे हैं। स्ट्रेस सबकी जिंदगी में आते हैं, मानसिक स्वास्थ्य ये चीज दिखाता है कि आप उस स्ट्रेस को कितना अच्छा हैंडल कर पा रहे हैं, कितना अच्छा कोप कर पा रहे हैं। कोई चीज खराब हुई, आपको किसी ने डांटा, आपके साथ कुछ बुरा हुआ, आप उससे कितना जल्दी निकल पा रहे हैं, वो आपका मानसिक स्वास्थ्य को दिखाता है। जैसे अगर आप इन्फेक्शन फैल रहा है, बाहर बुखार हो रहा है, पर फिर भी आपको बुखार नहीं हुआ तो आप शारीरिक रूप से स्वस्थ चल रहे हैं, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य भी वैसा ही है कि जब चीजें ठीक नहीं हो रही आपके आसपास में, आपका पूरा दिन खराब निकल रहा है, फिर भी आपका दिमाग उससे कोप अप कर पा रहा है, उन चीजों से आपको निकाल पा रहा है और आपको इतना एनर्जेटिक रख पा रहा है कि आप अपने काम पे ध्यान रख पा रहे हैं और जो आप काम कर रहे हैं उसमें अपना 100% दे पा रहे हैं मानसिक तौर पर, तो वो मानसिक स्वास्थ्य की निशानी है। और जब भी आपको लग रहा है कि आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं किसी काम के अंदर में, इसका मतलब कि चीजें ठीक नहीं रह रही हैं, मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ा रहा है और हमें ध्यान देने की जरूरत है।
0: जी, तो वीरेंद्र जी, जैसे आपने कहा कि कोई डगमग हो रहा है तो फिर हमें अटेंशन देने की जरूरत है और स्ट्रेस को हैंडल करना आना चाहिए। आमतौर पे ये बताते हैं कि थोड़ी सी तो बात है, अभी घर में बड़े हैं तो थोड़ा सा तो बोलेंगे, अभी इतना भी आप सुन नहीं सकते, सहन नहीं कर सकते, तो फिर एक द्वंद्व चलता है इंसान के माइंड में, मैंने गलत किया मुझे बोला तो फिर भी समझ सकते हैं, जहाँ पे मेरी गलती नहीं है तो मैं क्यों सुनूं। और एक जमाना था जहाँ पे महिलाएं सुनते सुनते सुनते आदी हो चुकी थी, फिर उनके दिमाग में कभी ये नहीं आता था कि मुझे उल्टा जवाब देना है या मुझे घर छोड़ना है या उन चीज़ों से परेशान होना है ऐसा। लेकिन अभी की जनरेशन में हम ये देखते हैं कि एक रेबेलियसनेस है, जिससे कभी कभी अगर वो उसको रेस्पॉन्स करती है या फिर उसको समाधान या जवाब देती है तो फिर उनको अलग रीति से लोग ट्रीट करते हैं, तो फिर वो जो छोटी सी बात जहाँ पे वो रोकने के लिए कोशिश करती, वो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी या फिर अपने डिग्निटी को बचाने की कोशिश करती है, तो फिर वो बात बढ़ जाती है। तो फिर ऐसे में वो कैसे हैंडल करे कि उसके साथ जो गलत हो रहा है, भले वो लगता है कि बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन वो छोटी सी चीज़ एक शुरुआत होती है। अभी वो एक छोटी सी चीज़ को अलाउ करती है लोग उनको बोलने में, या फिर पहली वो थप्पड़ है या पहली वो डांट है या एलिगेशन है या कोई भी चीज़, जिसे जो शुरुआत होती है इन चीज़ों की परंपरा की, तो वो कैसे रोके उस चीज़ को?
1: देखिए, सबसे पहले तो जैसे जैसे ज़माना बदला है, समय बदला है, औरतें इंडिपेंडेंट होने लगी हैं, काम करने लगी हैं, बाहर निकलने लगी हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने लगी हैं, तो उसके बाद में समाज में बहुत सारे परिवर्तन आए। हमारा समाज जो है बहुत वेस्टर्नाइज्ड हो रहा है, और जो गलत नहीं है बहुत हद तक ठीक भी है। हर चीज़ के अपने फ़ायदे और अपने नुकसान हैं, तो औरतों का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। जब वो इंडिपेंडेंट हो रही हैं, तब वो ये एहसास कर पा रही हैं कि हमारे साथ जो कुछ गलत हो रहा है उस चीज़ को समझ पा रही हैं। इससे पहले की जो सोसाइटी थी, उस समय अगर गलत हो रहा था औरतों के साथ में, तो उनके पास में ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वो इस चीज़ों से निकल पाएं या इस चीज़ से लड़ पाएं। जैसे कि आपने बोला कि जब पहला थप्पड़ पड़ रहा है, तो अगर औरत इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है या वर्किंग है या थोड़ा हिम्मत वाली है, तो उस थप्पड़ का मुकाबला कर सकती है, उसका जवाब दे सकती है या उस थप्पड़ को उठते समय रोक सकती है, बाउंड्री सेट कर सकती है कि ऐसा आप नहीं कर सकते। पर जो आज से पुराने का जमाना था, जिस समय औरतों के पास ये इंडिपेंडेंस नहीं थी, तो सिखाया भी ऐसा जाता था, माँ बेटी को आगे यही सिखा के भेज रही है कि जो भी होगा तुझे यहीं पे रहना है, घर से निकल गई तो डोली जा रही है, वहां से बर्थी ही निकलेगी, तेरा और कोई देखने वाला नहीं है, तू अलग नहीं हो सकती, तो हंसकर रोकर मार खाकर जैसा भी रहना है तुझे वहीं पर रहना है। अब ये मेंटेलिटी चेंज हो रही है, इसमें इंटरनेट का बहुत योगदान है, लोग पढ़ाई का बहुत योगदान है, लड़कियां पढ़ रही हैं अब, मैं समझता हूँ पढ़ाई का सबसे अधिक योगदान है। पढ़ने से ही, एजुकेशन के साथ में ही आदमी का दिमाग खुलता है, उनको एहसास होता है कि उनके राइट्स क्या हैं, उनके अधिकार क्या हैं और कहाँ उनके अधिकार खाए जा रहे हैं। और देखिए, अधिकार जहाँ तक खाने की बात है, या अधिकारों में जब भी चोट लग रही है, तो आपको पहली चोट के साथ ही जवाब देना होता है। आप अगर ट्रैफिक का कोई नियम कोई तोड़ रहा है, तो आप हमेशा पहली बार तोड़ते हो, तभी आपको अगर पुलिस ने देख लिया, आपको उसी समय फाइन करते हैं। ये नहीं कहते कि आपको पहली बार नियम तोड़ते हुए छोड़ दिया जाए। तो जब भी आपके अधिकारों को नुकसान पहुंच रहा है, जब भी वो पहला थप्पड़ या पहली गाली उठ रही है, आपको उसी समय जवाब देना चाहिए। तो उसके लिए मानसिक बल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शारीरिक बल की बात यहां हो नहीं रही, झगड़ने की बात नहीं हो रही, हमें उनको रोकना है, तो उसके लिए मानसिक बल होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए मानसिक रूप से आपको स्वस्थ होना बहुत जरूरी है।
0: तो वो मानसिक स्वस्थता को कैसे कायम रखें? और जैसे हम बहुत सारी चीज़ें तो सीखते हैं फिजिकली फिट रहने के लिए, फ्रूट्स खाना है, वेजिटेबल खाना है, रा खाना है, उससे आपकी बॉडी हेल्दी रहती है इस तरीके से, लेकिन मेंटल फिटनेस के लिए, मेंटली हम स्ट्रांग

0: रहने के लिए और जिस तरीके की आपने बात कही कि मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, तो उसकी उस चीज की ट्रेनिंग तो इंटेंशनली या कॉन्शियसली बचपन से तो किया नहीं जाता है। और जैसे आपने कहा कि अभी यहाँ से डोली उठी तो फिर उधर से अर्थी उतर दी, यही साइकोलॉजिकली फिट करके भेजते हैं महिलाओं को। तो वो कितनी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, सक्षम है, कुछ भी है, लेकिन वो जो सोच है वो सोच उसको वहां पे रोक देती है। तो फिर यहाँ पे फिटनेस या स्ट्रेंथ क्या है जिससे वो अपने आप को मोल्ड करे या फिर उससे बाहर आ सकती है?
1: देखिए, सबसे पहले तो हमें जो एक लूप या साइकिल चल रहा है इसको ब्रेक करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी औरतों की है, उन्हें अपनी बेटियों को जो सदियों से उन्हें शिक्षा मिलती आ रही है उसको अब रोकना होगा। तभी बेटियां मानसिक रूप से स्वस्थ और मानसिक बलवान हो पाएंगी, जब उन्हें समय रहे, जब उन्हें पता रहेगा कि उनके अधिकार क्या है और उनको कहाँ रोकना है, और जब उन्हें वो डर नहीं होगा कि अगर मैंने इन्हें रोका या कुछ किया उसके जो अंजाम होंगे उसमें मुझे सिर्फ मुझे ही भुगतना पड़ेगा, किसी और को कुछ नहीं भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आज भी हमारे समाज में डाइवोर्स या फिर तलाक जैसे जो शब्द हैं वो औरतों के लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक माने जाते हैं कंपेयर टू मर्द। और वो उसके पीछे कारण ये है कि पीछे से एक पीढ़ी के पीढ़ी इधर पीढ़ी सेम ही बात सिखाई जा रही है। तो उसको रोकने की जिम्मेवारी औरतों की होगी, क्योंकि बेटियां ये शिक्षा अपनी माँ से ही लेती हैं और कहीं से नहीं मिलती। कोई भाई बाप ये सिर्फ शिक्षा नहीं देता, माँ के साथ सबसे अधिक समय बिताती हैं। तो माँ को वो साइकिल ब्रेक करनी पड़ेगी। तो एक बेटी के मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में उसकी माँ का बहुत बड़ा योगदान है। और जहां तक आपने बोला कि कैसे मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त किया जाए, तो दो चीजें हैं इसमें, आप मानसिक रोगी हुए या नहीं हुए। तो जब तक आप नहीं हुए, उससे पहले वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं प्रिवेंशन, कि आप मानसिक रोगों से अपने आप को कैसे बचा पाए। तो उसके अंदर में बहुत सारी चीजें हैं, उसमें जैसे जो जो चीजें शारीरिक हिस्से में काम करती हैं वैसे वैसे चीजें मानसिक रूप में भी काम करती हैं। इसमें योग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मेडिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप सैर करती हैं, आप पॉजिटिव चीजों को देखती हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ में रहती हैं, और सबसे बड़ी बात चीजों को वेंट आउट मतलब चीजों को बाहर निकालती हैं, तब आप मानसिक रूप से स्वस्थ रह जाते हैं। चीजों को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। आपके मन में कोई भी कुंठा हो रही है, कोई भी बात हो रही है, जब तक आप उसको बाहर नहीं निकालेंगी तब तक आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रह सकती। तो आई थिंक वेंटिंग आउट सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जिसके अंदर में आपको अपना कोई ऐसा साथी, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या कोई ऐसा दोस्त ढूंढना पड़ता है जहां से, जहां में आपके अंदर जो भी द्वंद चल रहे हैं आप उसको बाहर निकाल पाए।
0: जी, सो अगर हम पॉइंट आउट करें, हमको हमेशा हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमारे साथ सकारात्मक बातचीत करते रहे, और जो हम मीडिया में, यूट्यूब में या कहीं पे भी जो इंटरनेट पे चीज़ें देख रहे हैं उसमें हम कॉन्शियसली फिल्टर्स लगाएं कि हम सिर्फ पॉजिटिव कंटेंट को ही देखें। और तीसरा, पेरेंट्स का सबसे बड़ा जिम्मेवारी है कि वो लड़कियों को ये चीज़ें ना सिखाए, तुमको दब के रहना है, तुमको सहन करना है, लेकिन जहाँ पे गलत हो रहा है वहाँ पे हिम्मत से खुद के लिए खड़ा होना भी हमें सिखाना है, और उसके साथ साथ लड़कों को भी कुछ सिखाना है, वो भी तो माँ बाप की जिम्मेवारी।
1: बिल्कुल, लड़कों भी को भी सिखाना है, लड़कों को सिखाना है, लड़कों को उनकी बाउंड्रीज सिखानी है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। जो चीज आपको बुरी लगती है वो सामने वाले को भी बुरी लगती है। किसी का सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो जेंडर देखकर नहीं आती, दोनों की होती है, लड़कों और लड़कियों दोनों की होती है। तो हाथ उठाना, गाली गलौज करना, बल का प्रयोग करना, ये आप अपने बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी। मैंने वही आपको बोला कि लड़कियों की हमें शिक्षा रोकनी पड़ेगी, कुछ चीजें रोकनी पड़ेंगी कि ये चीजें नहीं सीखनी है आपको जो पीछे चलता रहा था, और लड़कों को सिखाना है आपको ऐसे बनकर रहना है, सामने वाले को सम्मान देना है, जितनी आपकी सम्मान है उतना ही सामने वाले की भी इज्जत है। तो ये चीजें अपने लड़कों को तो सिखानी ही पड़ेंगी।
0: जी, तो जब घर में माँ बाप या बहन भाई, वो बचपन से जिन भी रिलेशंस के साथ वो रहते हैं, वो हर किसी को अगर रेस्पेक्ट करना सीखते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली एक उम्र के बाद उनके जीवन में जब नए रिश्ते आते हैं तो फिर उनको भी वो उसी तरीके से सम्मान करना वो सीख पाते हैं।
1: बिल्कुल, जब आप स्त्री का सम्मान करना सीख जाएंगे तो फिर आप हर रिश्ते में करेंगे उसको। सिर्फ ये नहीं होगा कि सिर्फ माँ का सम्मान कर रहे हैं और बीवी का नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होगा, फिर आप हर जगह सम्मान कर पाएंगे।
0: जी, सो वीरेंद्र जी, बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिल रहे हैं कि मेंटल हेल्थ क्या है, उसको कैसे हम मेजर कर सकते हैं, और मेंटली फिट होने के लिए हमें क्या क्या करना है? जैसे आपने योग और मेडिटेशन दो चीजों का कॉन्वर्सेशन में जो जिक्र किया है, मेडिटेशन तो हमको समझ में आता है कि हमें ध्यान करना है, केंद्रित करना है। हर किसी का एक अलग तरीका होता है मेडिटेशन करने का, लेकिन ये योग और मेडिटेशन का जो डिफरेंस और योग से हमारी मानसिक संतुलन में कैसे प्रभाव पड़ता है?
1: आई थिंक डॉक्टर हर्षिता इसमें ज्यादा अच्छा जवाब दे पाएंगी।
2: जब हम बात करते हैं योग या मेडिटेशन की, दोनों में एक बहुत कॉमन सी चीज है कि आप जो कर रहे हैं अभी कर रहे हैं, माइंडफुल होके कर रहे हैं। इसमें जो माइंडफुलनेस है वो बहुत बड़ा पावरफुल टूल है जो काम में आता है। मैं जो हूँ यही हूँ अभी हूँ, ना तो मैं कुछ पास्ट का देख रहा हूँ, ना तो मैं कुछ फ्यूचर के लिए सोच रहा हूँ। अगर अभी मुझे माइंडफुलनेस का अर्थ ही यही है टू लिव इन प्रेजेंट, अभी यहीं पर, ना तो इससे कम ना तो इससे ज्यादा। जब हम बात करते हैं मेडिटेशन की, बहुत सारे स्कूल्स हैं इंडिया में जो मेडिटेशन सिखाते हैं, अपने अपने तरीके से सिखाते हैं। बेसिकली वो आपको काम डाउन ही करवा रहे हैं और इससे ज्यादा वो आपको कुछ नहीं कराना चाह रहे। जब हम कामनेस चाहते हैं, क्या वो कामनेस मैं अपनी लाइफ में चाहता हूँ? आंसर यस है। क्या वो कामनेस, वो शांति मैं अपने रिश्तों में चाहता हूँ? बिल्कुल इसका आंसर यस है। वही शांति मुझे अपने घर में चाहिए? बिल्कुल चाहिए। फिर हम कहते हैं कि मेडिटेशन आपको करना है, आपको एक जगह बैठ के मेडिटेशन करना है इज नॉट अ मेडिटेशन। आप चलते फिरते घूमते फिरते आप प्रेजेंट में रहें, यहीं रहें, बिना मतलब आप पास्ट में ना जाएं। उसने मेरे साथ ये किया था, 3 साल पहले उसने मेरे को ये बात बोली थी, अब मेरे अंदर एक ग्रज बैठ गया उसके लिए। हम फॉरगेटफुल और फॉरगिवनेस अगर नहीं लाते हैं, वो चीजें फिर ऐसे ही कॉन्टिन्यू चलती रहती हैं। कहाँ से माइंडफुलनेस को हम एक्सपेक्ट करते हैं? मेरे लिए फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे बेटर चीजें हो जानी चाहिए। एक हद तक थिंक करना इज गुड, बट देन अगेन ओवर थिंकिंग आ जाना इज बैड। ओवर थिंकिंग होना, चाहे वो फ्यूचर की है या वो पास्ट की है, वो आपको कभी मेडिटेशन में लिंक नहीं करवा पाएगी। इसलिए आप जो कर रहे हैं यही है, अभी हूँ और यही इंजॉय कर रहा हूँ। अब जब हम बात कर रहे हैं कि हम योगा जब अगर करते हैं तो मेरा इससे मेंटल हेल्थ पे कैसे इम्पैक्ट आता है? अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो ही हमारा मानसिक, जो मेरी मेंटल हेल्थ है, वो मैं अच्छा हूँ। मेरी हेल्थ तभी अच्छी कैसे हो सकती है? अगर मैं बेड पे बैठा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्या वो खुशी बहुत देर तक चलेगी? अगर मैं 2 दिन लगातार बेड पे बैठूँ तो नहीं चलेगी। फिजिकली मैं एक्टिव नहीं हुआ, मैं उठ के नहीं चला। सेम जैसे खाने के लिए, शरीर के लिए खाना जरूरी है, वैसे ही मेंटल हेल्थ के लिए कुछ कुछ चीजें हैं। बाहर जाओ, योगा करो, जिम करो, वॉकिंग करो, सैर करो, इट इज इंटर रिलेटेड। ये चीजें करेंगे तो हमारे जो केमिकल लेवल्स हैं अंदर जो बनते हैं खुश रहने के हॉर्मोन्स हैं, वो डेवलप होते हैं। इसलिए हमें प्रैक्टिकल योगा है, आप जरूरी नहीं आपको योगा ही करना, आप सैर पर जाएं, आप जॉगिंग पे चले जाएं, अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आप जिम के लिए जाएं, बट थोड़ा टाइम आपको अपने लिए बाहर निकालना जरूरी है। उस रूम से बाहर निकलें, उस स्पेस से बाहर निकलें, बाहर जाएं, गार्डन में जाएं, ग्रीनरी देखें, लोगों से बात करें। ये डायरेक्टली आपके मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट डालता है।
0: मतलब कुल मिलाकर के हमारी लाइफस्टाइल में एक ऐसी आदत हो जिसमें हम हमारी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ की बैलेंस लेकर के चले, और हमारी लाइफस्टाइल में हमारी खाने पीने पे अटेंशन हो, और हमारी जो फिजिकल हेल्थ के हिसाब से, जैसे आपने कहा कि वॉकिंग करना है, जॉगिंग करना है, या प्राणायाम, योगा, जो भी कर सकते हैं, जिससे एक रिफ्रेशमेंट होती है, एक रिजुविनेशन होता है, और जब प्रकृति के साथ वक्त बिताते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वेंट आउट हो जाते हैं। कुछ चीज़ें बोल के वेंट आउट होते हैं, कुछ चीज़ें बिना बोल के भी वेंट आउट हो जाते हैं। और मेंटली हम एड ऑन करने के लिए मेडिटेशन करें, जिसमें हम अपने विचारों को देखें और सकारात्मकता की ओर हम अपनी विचारों को डाइवर्ट करें या डायरेक्शन दें। सो थैंक यू सो मच आज की इस ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन के लिए। बहुत ही इंसाइटफुल और बहुत ही सीख वाली बातचीत आप दोनों ने की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और उम्मीद करते हैं कि हमको आपसे और भी बहुत सारी विषयों के ऊपर, महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में जानकारियां प्राप्त करेंगे। लेकिन आज के लिए, आज के इस कार्यक्रम का समय की सीमा को देखते हुए हम आपसे विदाई लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद
0: दोस्तों। ये था आज का जागृत कार्यक्रम, जहां पर हमने मानसिक स्वास्थ्य, खास करके महिलाओं की मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हर्षिता जी और वीरेंद्र जी, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट हैं, आप दोनों से हमने चर्चा की है। हम फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग राजस्थान, गुड इवनिंग गुजरात, गुड इवनिंग आप सभी को जो इस वक्त रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं। आइए 21 मई की बात करते हैं। आज चित्रा नक्षत्र है, शरद जोशी, सर सुंदरलाल, इन दोनों का जन्मदिन है। और इसके साथ ही राजीव गांधी, मामा पहलवान, सुंदरलाल बहुगुणा, जानकी देवी बजाज, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए कुछ खास बातें आपसे शेयर करूंगा और साथ ही साथ आप भी अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ मैसेज के जरिए पहुंचा सकते हैं 94-14-15-14-15 इस नंबर पर। तो चलिए, कुपराम जी, सुरेश जी जोटना, सुरेश जी पिंडवाड़ा, भूपत सिंह जी और हमारे मदन लाल जी और फिरोज जी और सुभाष जी जलगांव से आप सभी को याद, और साथ में हर्षिता जी और अंजू जी और अंजिता जी, इन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो सभी लोग मैसेज करते रहते हैं, हमें अच्छा लगता है। उमेश सिंह जी भी कभी कभी बड़े प्यार से याद करते हैं कार्यक्रम, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। तो सभी जो भी हमारे श्रोता मित्र हैं जो सुन रहे हैं, जिनका नाम नहीं लिया, ऐसा नहीं है कि आपका नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन कभी कभी याद कम आती है। तो सभी जिनका भी आप जो भी रेडियो मधुबन सुन रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आइए एक बहुत ही खूबसूरत विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि अन्न के कण और आनंद के क्षण कभी व्यर्थ न जाने दे, दोनों अमूल्य है ना। कमाल की बात कही है, जिसने भी कही है बहुत बहुत साधुवाद उनको भी। और आप सभी फिर से एक बार सुन लीजिए, अन्न के कण और आनंद के क्षण कभी व्यर्थ न जाने दे, दोनों अमूल्य है। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर इस कार्यक्रम को। तो आइए एक बहुत ही खूबसूरत गीत की तरफ आपको ले चलता हूँ कार्यक्रम की शुरुआत में, ढेर सारी खुशियों के साथ। आइए सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत आपके नाम, सिर्फ और सिर्फ सुनते रहो।

0: रुपए रुपए रुका। हाँ जी, थोड़ा अपना प्यारा सा मुखड़ा दिखाना शीशे के बाहर झांक के। हैं
1: जी, कहिए। अरे ये क्या कर रहे हो?
0: और मेरे भाई, और जिस चीज का कोई फायदा नहीं उसको रखने का फायदा क्या? तो तेरे पास चश्मा होते हुए तेरे को रेड लाइट नहीं दिखती तो फायदा की?
1: पर रोड तो खाली थी, कोई था ही नहीं।
0: ये क्या बात हुई भाई, है? इसका मतलब तो ये है कि दुकान पर अगर मालिक नहीं होगा तो तुम बिना पूछे उसका सामान उठाओगे? कोई बॉस नहीं होगा ऑफिस में तो तुम उसकी कुर्सी पे सो जाओगे? और रोड पे कोई हो न हो, सड़क के नियम कायदे कानून कभी नहीं टूटेंगे। और वैसे भी ये तो है मेरी सड़क, और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: रेड लाइट होने पर हमें अपनी गाड़ी रोक लेनी चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा न करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए बात करते हैं एक विशेष साहित्यकार के बारे में जिनका जन्मदिन आज है। जी हाँ, और इसके साथ में हम एक ऐसे बिजनेसमैन के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए, आज साहित्यकार शरद जोशी की अगर बात करें तो वो अपने समय के अनूठे व्यंग्यकार रचनाकार थे। अपने वक्त की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को उन्होंने अत्यंत पौनी निगाह से देखा और अपनी पौनी कलम से बड़ी सफगोई के साथ उन्हें सटीक शब्दों में व्यक्त किया। और शरद जोशी पहले व्यंग नहीं लिखते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी आलोचना से किन्न होकर व्यंग लिखना शुरू कर दिया। वो भारत के पहले व्यंग्यकार थे जिन्होंने पहली बार मुंबई में चकलस के मंच पर 1968 में गद्य पढ़ा और किसी कवि से अधिक लोकप्रिय हुए। तो आइए इनके बारे में जानते हैं, शरद जोशी के बारे में। जी हाँ, इनका जन्म आज ही के दिन 21 मई 1931 को जून उज्जैन में हुआ। और सीधी छोटी सी बात, सांच को आज नहीं गो धूली और उत्सव फिल्म में लिखने वाले शरद जोशी ने 25 साल तक कविता के मंच से गद्य पाठ किया और बिहारी के दोहे की तरफ शरद अपने व्यंग का विस्तार पाठक पर छोड़ देते हैं। एक बार शरद जोशी ने लिखा था, लिखना मेरे लिए जीवन जीने की तरकीब है। इतना लिख लेने के बाद मैंने अपने लिखे को देखा, मैं सिर्फ यही कह पाता हूँ कि चलो इतना बरस जी लिया, ये ना होता तो इसका क्या विकल्प होता। अब सोचना कठिन है, लेकिन मेरा निजी उद्देश्य है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इनकी लोकप्रियता और इनकी किताबों के बारे में कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा। गाने को मिले हुए सम्मान के बारे में आपको कुछ बातें शेयर करने वाला हूं, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफर, इस कार्यक्रम को सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: प्यार से काम करना और प्यार से काम करवाना, क्योंकि आई बिलीव एट लीस्ट कि अगर काम प्यार से नहीं हो सकता तो डांट कर जबरदस्ती करवाने का उसमें बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। यू नो योर रिलेशनशिप इज ब्रेकिंग डाउन एंड मोर इम्पोर्टेंट इज रिलेशनशिप नॉट द वर्क। लेकिन फिर भी अगर काम करवाने के लिए आपको वो असर्टिवनेस का आधार लेना है तो इनर बिल्कुल एंगर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप उसको असर्टिवनेस नहीं कह सकते। से आई एम एंग्री, डोंट से आई एम नॉट एंग्री, आई एम जस्ट बींग असर्टिव, ये चीटिंग है अपने आप से दूसरे से भी। तो आप पहले तो अंदर बिल्कुल स्टेबल है और फिर आपको जो कुछ कहना है उसको अथॉरिटी से और बहुत डिसिप्लिन्ड एंड असर्टिव। डजेंट हैव टू बी लाउड, यू नो इट डजेंट हैव टू बी लाउड। हम सोचते हैं जोर से बोल दिया तो दैट इज असर्टिव, दैट इज अ ट्रेस ऑफ एंगर। आपका वॉल्यूम बढ़ ही नहीं सकता है जब तक वो एनर्जी अक्यूमुलेट नहीं हुई है अंदर। तो इवन जब हमारा वॉल्यूम इस तरह से जोर से बढ़ जाता है, दैट एनर्जी हैज बीन क्रिएटेड इनसाइड। बहुत आराम से, स्टेबिलिटी मीन्स स्टेबिलिटी एवरीवेयर, यू नो थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शंस। तो अंदर वो स्टेबिलिटी होगी वो बाहर अपने आप आएगी, वी विल नॉट हैव टू डू इट। एंड फिर डिसिप्लिन करने के लिए आपको जो डायरेक्शन देना है उसको आप देते हैं, तो आई थिंक एनर्जी एक्सचेंज विल बी वेरी कम्फर्टेबल बिटवीन द टू पीपल।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। शरद जोशी के बारे में बातें चल रही थी और निजी तौर पे उस व्यक्तित्व के बारे में मैंने तो बता दिया, और शरद जोशी के व्यंग में हास्य, कड़वाहट, मनोविनोद और चुटीलापन दिखाई देता है जो उन्हें जनप्रिय और लोकप्रिय बनाता है। और टेलीविजन के लिए ये जो है जिंदगी, विक्रम बेताल, सिंहासन बत्तीसी, वाह जनाब, देवी जी, प्याले में तूफान, दाने अनार के और ये दुनिया गजब की आदि धारावाहिक इन्होंने लिखे। इन दिनों सब चैनल पर उनकी कहानियों और व्यंग पर आधारित लापतागन शरद जोशी की कहानियों का पता बहुत पसंद किया जा रहा है, तो ये एक अपने आप में यूनिक है। आप समझ गए होंगे कि अब इनकी लोकप्रियता को सुनकर आप समझ गए होंगे शरद जोशी किस तरह के लेखक होंगे, है ना। लापतागंज आपने देखा ही होगा, है ना, और ये तो ये जो है जिंदगी, जो कॉमेडी, विक्रम बेताल आपने नहीं देखा क्या? बिल्कुल देखा होगा। और चलिए, देवी जी, वाह जनाब, सियासन बत्तीसी, ये भी टीवी चैनल आपने देखा होगा सीरियल। तो आइए इनके कुछ किताबों के बारे में अगर मैं कहूँ, नाटक में इन्होंने दो किताबें इनकी छपी हैं, अंधों का हाथी, एक गदा उर्फ अदादत खा, और लेखन जो है फिल्म लिखी इन्होंने सतीश, छोटी सी बात, सांच को आज नहीं, गोदूली और उत्सव, ये फिल्म इन्होंने लिखे। व्यंग इन्होंने किया परिक्रमा, किसी बहाने, तिलिस्मा, रह किनारे बैठ, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं, दूसरी सता, हम ब्रस्टन के ब्रस्ट हमारे, यथासंभव जीप पर सवार झलिया, जीप पर सवार इलिया, और इसके साथ में दूरदर्शन धारावाहिकों के नाम तो मैंने बता ही दिया, फिर भी एक बार वापस सुना देता हूँ। ये जो है जिंदगी, विक्रम बेताल, सिंहासन बत्तीसी, वहाँ जनाब, देवी जी, प्याले में तूफान, दाने अनार के, ये दुनिया गजब की, इस तरह के 8 सीरियल इन्होंने लिखे। अब इनकी लेखनी और इनके कार्य को देख कर चकलस पुरस्कार तो इनको शुरुआत में ही मिला मुंबई में, और उसके बाद काका हसरती पुरस्कार इनको मिला, और श्री महाभारत हिंदी साहित्य समिति इंदौर द्वारा सरस्वती मार्तंडे के उपाधि परिवार पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया, और 1990 में भारत सरकार भी इन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया। तो आइए, ऐसे विशेष व्यक्ति का जिंदगी से जाना हमारे लिए एक जो है बहुत बड़ा क्षति हो सकता है। तो 5 सितंबर 1991 में मुंबई में उनका निधन हुआ। इन दिनों जब सब चैनल पर उनकी कहानियां और व्यंग पर आधारित सिटकॉम लापतागंज पसंद किया जा रहा है, उन्होंने लिखा था, अब जीवन का विश्लेषण करना मुझे अजीब लगता है, बढ़ चढ़ कर ये कहना कि जीवन संघर्षमय रहा, लेकिन होने के कारण मैंने दुखी जीवन जिया, कहना फिजूल है, जीवन होता ही संघर्षमय है, किसी का नहीं होता, लिखने वाले का तो होता है, लिखने वाले का होता है तो क्या अजब होता है। तो चलिए, बहुत ही खूबसूरत लाइनें आपने सुनी। आशा करूंगा आपको उनकी बातें सुनकर कहीं ना कहीं उनके प्रति बहुत प्यार और सम्मान जगा होगा। तो चलिए, ऐसे विशेष लेखक शरद जोशी के लिए ढेर सारी श्रद्धा सुमन करते हैं, और जहां भी रहें खुश रहें ऐसी शुभ आशा के साथ। आइए एक बहुत ही खूबसूरत गीत आपके नाम सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का ढेरों शुभकामनाओं के साथ फिर से एक बार स्वागत है। और बड़ा अच्छा जो है, आपने शरण जोशी के बारे में सुना और उनकी टीवी सीरियलों की बात जब याद आती है तो हंसी छूटे बिना रह नहीं जाती है। लापचागंज आदि आदि जो है, विक्रम बेताल और ये जो है जिंदगी, अगर आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं, अब यूट्यूब पे आप इन चीजों को देख सकते हैं। एक बार देख लीजिए, बेहद आपको आनंद आएगा। और कहीं ना कहीं जीवन के कुछ चुनिंदा जो अनुभव है, जो हमारी जीवन से जुड़ी बातें हैं, उसे भी व्यंगात्मक तरीके से और शिक्षाप्रद तरीके से शरद जोशी ने कैसे उन चीजों को लिखा है, ये समझ में आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक और बिजनेसमैन के बारे में बात करते हैं, राइटर के बाद सर सुंदर लाल के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, बहुत ही पॉपुलर विधिवेता और सार्वजनिक कार्यकर्ता के रूप में देश के विकास के लिए, औद्योगिक और शिक्षा प्रसार की उन्नति के लिए आवश्यक जो समझते थे वो करते थे, उनका नाम है सर सुंदर लाल। जी हाँ, इनके बारे में बात करते हैं। सर सुंदर लाल का नाम, जो जन्म है वो उत्तरांचल के नैनीताल जिले में जासपुरा नामक स्थान पर हुआ, 21 मई 1857 को। और उनका नगर ब्राह्मण परिवार गुजरात से आकर यही बस गया था। और उन्होंने पहले वकालत की परीक्षा पास की और फिर बाद में कोलकाता विश्वविद्यालय से डिग्री बनाने के बाद वकालत करने लगे। और अपनी प्रतिभा के बल पर उन्होंने इस क्षेत्र में शीघ्र ही बड़ी सफलता अर्जित की और सरकार ने उन्हें सर की उपाधि से नवाजा। सर सुंदरलाल उच्च पदों पर आसीन रहे और वे अवध के जुडिशियल कमिश्नर और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज भी बने। तीन बार वे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के और 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पहले वाइस चांसलर बने। और इस विश्वविद्यालय की स्थापना में वे मालवीय जी के बड़े सहायक बने। है ना कमाल की बात। तो आइए, कभी कभी किसी व्यक्ति के जीवन में चीजें बड़ी आसान और सरल रूप से आ जाती हैं, तो इसी तरह पढ़ाई के साथ साथ व्यवसायीकरण भी इन्होंने बड़ी अच्छी तरह से किया है। तो इनके बारे में और थोड़ी बातें थोड़ी देर में, लेकिन अभी एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपके लिए खास। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, मैं हूँ हरमीत सिंह, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड. और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ. देखा जाए तो साथियों, जीवन बड़ा सरल है. ईश्वर ने सब कुछ दे के बनाया. अगर ईश्वर की रचना हम उस पर विश्वास करेंगे तो फिर आपको कोई जगह पे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. उस पर नाम लिए, उनका नाम ले और काम करते जाए, है ना. जब ईश्वर ने बनाया होगा तो आपके लिए अच्छा ही बनाया होगा, है ना. आप ईश्वर की सुंदर रचना हो, अर्थात ईश्वर आपके पिता, आप उनके बच्चे हो. तो जब इस नाते से कोई भी बाप अपने बच्चे के लिए ऐसी कोई दुनिया या ऐसी कोई सिचुएशन नहीं डालेगा कि उसको तकलीफ हो, है ना. अगर उसने सोच के हमें अगर इस संसार में भेजा है तो उन्होंने बड़े प्यार से और बहुत ही सुचारू रूप से हमारे जीवन को डेकोरेट करके ही भेजा था, और उन सारे शक्तियों को, सामर्थ्यता को हमारे अंदर भर के भेजा है. तो बस हमें गहरी शांति में उनका धन्यवाद करते हुए अपने कार्य को करते जाना है. अपेक्षा कहीं से या इच्छाएं कहीं रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं रखेंगे तो अच्छा है, रखेंगे तो दिक्कतें आ सकती हैं. इसलिए निस्वार्थ भाव से परमात्मा पे 100% निश्चय, 100% परमात्मा पे विश्वास करते हुए कार्य करते जाएं. देखिए, आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा. तो आइए बात करते हैं सर सुंदर लाल जी के बारे में. सुंदर लाल के विचार इस संबंध में गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते जुलते रहे हैं, और हिंदू आचार विचार में निष्ठा रखने वाले सर सुंदर लाल संवैधानिक तरीकों से देश की आजादी के समर्थक रहे, और वे देश की समृद्धि के लिए औद्योगिकरण को आवश्यक मानते थे और शिक्षा प्रसार को उन्नति का साधन समझते थे. सर सुंदर लाल का विशेष राजनीति से उनकी जो है स्थापना के समय से ही संबंध रहा है, और मोतीलाल नेहरू, मालवीय जी, एनी बेसेंट आदि इनके अच्छे मित्र और सहयोगी थे. इलाहाबाद अधिवेशन 1910 की स्वागत समिति के भी वे अध्यक्ष थे, और इस तरह से विश्वविद्यालय एजुकेशन में लोगों को हेल्प करने के लिए काफ़ी काम उन्होंने किया. और गोपाल कृष्ण गोखले के मित्र होने के नाते उनके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत भी की है. तो ऐसे विशेष व्यक्ति 1918 को इलाहाबाद में अपने ही घर पर 13 फरवरी के दिन इनका निधन हुआ. प्रसिद्ध विधिवेता और सार्वजनिक कार्यकर्ता सर सुंदर लाल जी 13 फरवरी को इस दुनिया को अलविदा कहे 1918 में. और आइए आगे बढ़ते हैं, आप सभी को ले चलता हूँ एक और गीत की तरफ. आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर. सुनते रहो, मस्कराते रहो.

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पे असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रहे, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

मनुष्य को ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा अनमोल उपहार है। जी हाँ, इसलिए प्यार और सम्मान खुद के लिए भी रखें और दूसरों के भी रखें। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ खुशियों भरा बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए और खुशी अपने साथ रखिए। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

मैं कमलेश माउंट आबू ढूंढई गाँव रहने वाली भूसा और मैं सुन रही हूँ रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनता रहो और मुस्कुराता रहो।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ डांस, डांस विद जॉय एंड एंथुसियाज्म, अर्थात ये जीवन को हमेशा उमंग और उत्साह के साथ जियो। दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। इंग्लिश में एक बहुत अच्छा स्लोगन है जिसे हमको प्रेरणा मिलती है कि हर पल हर क्षण हमें उमंग उत्साह में रहना है। और वो बहुत सुंदर स्लोगन है, आई ऑलवेज कंप्लेन दैट आई हैड नो शूज अंटिल आई सॉ अ मैन हु हैड नो फीट। मैंने हमेशा कंप्लेन की कि मेरे पास जूते नहीं है, जब तक मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके पैर ही नहीं थे। तो देखो, हमें अपने भाग्य पर कितना नशा होना चाहिए, कितना नाज होना चाहिए कि ईश्वर ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है। तो क्या हमें दुखी होना चाहिए क्या? नहीं, हर पल हर क्षण वी हैव टू डांस विद जॉय एंड एंथुसियाज्म। तो आज मैं आपको एक बहुत सुंदर डांस सिखाने वाला हूँ। सभी करेंगे डांस। इसको कहते हैं पीकॉक डांस। पीकॉक जब खुशी में होता है ना तो कितना वंडरफुल डांस करते हैं, वही डांस मैं आपको भी सिखाता हूँ। और वो कैसे करना है, वाह मेरा जीवन वाह। जब आप ये डांस करते हो तो एक तो इट पंप्स इन अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन टू योर लंग्स, और दूसरा मन में भी जो आपको विचार मिलते हैं वो बहुत एंथुसियास्टिक और मोटिवेटिंग होते हैं। तो मैं आपको एक एक बोलता रहूंगा, वैसे आप करते रहना, ठीक है? करेंगे सभी? ओके, चलिए। वाह ईश्वर वाह, वाह मेरा जीवन वाह, वाह मेरे फैमिली मेंबर्स वाह, वाह मेरे मम्मी डैडी वाह, वाह मेरे ब्रदर्स सिस्टर्स वाह, वाह मेरा ऑर्गेनाइजेशन वाह। स्टूडेंट्स बहुत खुशी से कह सकते हैं वाह एग्जाम्स वाह, वाह मेरी पढ़ाई वाह, वाह ये दिन वाह, वाह वाह वाह। तालियां बजाइए। तो हर दिन सुबह उठकर ये पीकॉक डांस जरूर जरूर करना।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन ना खींचें। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स। क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: अभी बजे हैं रात के 1, याद दिलाइए स्वयं को, मेरा तो परमपिता परमात्मा एक।

0: मेरे सभी प्यारे श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त और आपका आपका हमेशा का साथी शरद, और हमारा ओल्ड इज गोल्ड प्रोग्राम मन की आंखों से। मन की आंखों में मैं आपने बहुत सारे व्यक्तियों को देखा जिनकी आंखों में कुछ समस्या है, कोई बीमारी हो गई है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। और रिहैबिलिटेशन जिसे कहते हैं, बीमारी का इलाज संभव नहीं है परंतु इंसान का पुनर्वास संभव है। तो इलाज से ज्यादा महत्वपूर्ण है पुनर्वास। जब हमें कोई दिव्यांगता होती है तो पुनर्वास के बारे में हमें पहला काम या पहला कदम जितना जल्दी हो सके आगे बढ़ा देना चाहिए। तो इन सारी बातों को लेकर हमारे साथ एक विषय विशेषज्ञ हैं, उनसे पहले बात करें तो वही बात आ गई फिर से कि मन की आंखों में आपने बहुत सारे नेत्रहीन व्यक्तियों से, ब्लाइंड व्यक्तियों की बातें सुनी, उनके जीवन के संघर्षों को सुना, परंतु पुनर्वास कैसे हो सकता है और कैसे एक दृष्टिबाधित व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है, उन सारी बातों को पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं आज विशेष विशेषज्ञ, जो कि डायरेक्टर हैं सीआरसी जयपुर, और आपका नाम है श्री नीरज मधुकर जी। नीरज जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में।
1: थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमको ये अवसर देने के लिए कि
0: जी
1: आपके दर्शकों के साथ, आपके श्रोताओं के साथ मैं मुखातिब हो सकूं और उनके साथ अपने मन की बात कर सकूं, दिव्यांग जनों के मन की बात कर सकूं और सीआरसी के तरफ से जो सुविधाएं हैं, सेवाएं हैं, उनको लोगों तक पहुंचा सकूं। ईश्वर ने जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जो जिम्मेवारी दी है आम जनमानस के प्रति, जो जनरल ह्यूमैनिटी है उसके प्रति, उसको पूरा कर सकूं।
0: जी हाँ नीरज जी, हमारे कार्यक्रम का विषय आज है दृष्टिबाधिता और उसका निदान और उन चुनौतियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो शुरुआत बस यहीं से होती है कि दृष्टिबाधिता क्या है, उसके क्या कानूनी पक्ष है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और अंधता या जिसे कहते हैं ब्लाइंडनेस और लो विजन यानी कि अल्प दृष्टि, इनके बीच में बारीक समझ क्या है।
1: दृष्टि बाधिता को इस रूप में देखा जाए कि जैसे हम लोग कुछ भी बाहर से सीखते हैं, वातावरण से अगर सीखते हैं, तो उसमें हमको मारिया मोंटेसरी का नाम हमेशा याद आता है। जब हम सेंसेज की बात करते हैं तो सेंसरी चैनल्स की बात करते हैं तो मारिया मोंटेसरी को भूला नहीं जा सकता। वो
0: जी
1: हमेशा कहती थी सेंसेज आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। हम
0: जी
1: वातावरण से कुछ भी सीखते हैं तो उसमें हमारे सेंसरी चैनल का बहुत महत्व होता है। और कुछ भी सीखने के लिए हम या तो देख करके सीखते हैं या सुन करके सीखते हैं, या किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है तो हम उसको चख करके उसके बारे में टेस्ट पता करते हैं, या बाकी चीजों के बारे में, या टच करके उसको पता करते हैं, या ऑल्फैक्टरी गस्टेटरी सेंस जो हमारा घ्राण इंद्रिय है और टेस्ट इंद्रिय है, उन दोनों के माध्यम से हम वातावरण से चीजों के बारे में पता करते हैं,
0: जी
1: इंफॉर्मेशन लेते हैं।
0: जी
1: अब इसके अलावा भी ये जो पांच सेंसरी चैनल हैं, इनके बारे में तो सबको पता है शरद सर, लेकिन
0: जी
1: कुछ नई जानकारी जो हमारे गुरुओं के माध्यम से, कल शिक्षक दिवस था तो मैं गुरु को भी नमन करना चाहूंगा, समस्त देश के गुरुजनों को,
0: जी
1: और मैं बतलाना चाहूंगा कि मेरे गुरु जब हमको शिक्षण कर रहे थे, हमारा शिक्षण कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने पांच सेंसरी चैनल के अलावा भी तीन सेंसरी चैनल और है ऐसा करके उन्होंने हमें बताया था।
0: जी
1: और बजबता उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया कि क्यों तीन सेंसरी चैनल और हैं और कौन से हैं वो, और उसके बारे
0: जी
1: में उन्होंने बताया था कि जब हम कुछ भी सीखते हैं या कुछ भी करते हैं, कोई एक्टिविटी होती है शरीर में या वातावरण में, कोई हलचल होती है, तो ब्रेन को जो इंफॉर्मेशन जाता है वो
0: जी
1: केवल इस माध्यम से जाता है कि सेंसरी चैनल जब तक ब्रेन को ना पहुंचाए, ब्रेन तक हमारे सिग्नल्स को ना पहुंचाए, तब तक ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाएगा ही नहीं। लेकिन
0: जी
1: उन्होंने बतलाया कि आप आंख को बंद कर लीजिए और अपने हाथ को साइड में करके मूवमेंट कीजिए, आपको बिना देखे हुए, बिना सुने हुए, बिना टेस्ट किए हुए, बिना सूंघे हुए और बिना टच किए हुए आपको पता चलता है कि आपके हाथ में मूवमेंट हो रहा है। लेकिन
0: जी
1: इसके अलावा एक और चीज है कि वो मूवमेंट धीमा हो रहा है कि तेज हो रहा है, ये दोनों अलग अलग सेंसरी चैनल से, जिसकी वजह से ये पता चल पाता है मूवमेंट हो रहा है। ये काइनेस्थेटिक सेंस बताता है कितना तेजी से मूवमेंट हो रहा है, ये प्रोप्रायोसेप्टिव सेंस बताता है।
0: जी
1: मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे हम में से बहुत सारे साथी जो लोग भी इसको सुन पा रहे हैं, मेला जब लगता है तो बच्चों के साथ हम लोग बड़ा वाला झूला झूलने के लिए जाते हैं, 100 मीटर का झूला, 200 मीटर का झूला। और उसमें हम प्रायः देखते हैं कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं या ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो एक अजीब सी फीलिंग आती है, एक अजीब सा सेंसेशन आता है हमारे शरीर में और लगता है कि हम नीचे की तरफ लगातार गिरे जा रहे हैं। सो ग्रेविटी के पक्ष में या ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर हमारा मूवमेंट होता है तो ऐसी परिस्थिति में एक अलग से अनुभूति होती है और ब्रेन को इंफॉर्मेशन जाता है, वो प्रोप्रायोसेप्टिव सेंस की वजह से जाता है।
0: जी।
1: सो दो सेंसरी चैनल्स तो हमारे पास और पता चल गए, एक तो काइनेस्थेटिक सेंस और दूसरा प्रोप्रायोसेप्टिव सेंस, जिसकी वजह से ब्रेन को इंफॉर्मेशन जा रहा है।
0: जी।
1: तीसरा एक और जो मैसेंजर है, तीसरा एक और जो खबरी है जो ब्रेन को इंफॉर्मेशन पहुंचाता है अपने वातावरण और शरीर शारीरिक गतिविधियों के बारे में, वो है वेस्टिबुलर सेंस। वेस्टिबुलर सेंस को हिंदी में संतुलन इंद्रिय भी कह सकते हैं। जैसे देखिए, अभी तक के हम लोग केवल इतना ही जानते हैं कि कान का काम सुनने का होता है, लेकिन जब विस्तृत जानकारी उसके बारे में प्राप्त करेंगे और पढ़ेंगे तो कान का जो तीसरा वाला अंदर वाला भाग है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर, मैं टेक्निकल चीजों को आज अवॉइड करना चाहूंगा क्योंकि ये आम जनमानस के लिए रिकॉर्डिंग है, तो मैं उनसे ये बतलाना चाहूंगा कि कान का जो सबसे अंदर वाला पार्ट है उसका दो काम है, सुनने में भी मदद करना और दूसरा जो उसका पार्ट है कान के अंदर का, उसका बैलेंस कंट्रोल करना। सो बैलेंसिंग सेंस वहां पे होता है जिसको वेस्टिबुलर सेंस के नाम से भी जानते हैं हम, और वो हमारे शरीर का रक्षण अनुरक्षण करने में मदद करता है, सेंसेशन को ले जाने में मदद करता है।
0: जी।
1: तो कुल मिलाकर के हमारे शरीर में जो सेंसरी चैनल्स हैं वो 8 हो गए बजाय 5 के। तो एक तो ये नई जानकारी थी लोगों के लिए, बहुत सारे मित्र हमारे जानते नहीं होंगे इसके बारे में या जानते भी होंगे तो मैं उनको अपडेट कर दिया।
0: जी।
1: तो दूसरी कंडीशन ये है कि हमारा अगर सेंसरी चैनल ये 8 है तो उसमें से अगर दो पार्ट में हम बांटे कि नियर सेंसेज और फार सेंसेज, तो जो नियर सेंसेज है उसमें से तो ये गस्टेटरी सेंस है, ऑल्फैक्टरी सेंस है, वेस्टिबुलर सेंस है, काइनेस्थेटिक सेंस है, टच सेंस है, ये जो बाकी के सेंसेज के बारे में हमने चर्चा करी, जो नजदीक से इंफॉर्मेशन लेता है हमारे आसपास के वातावरण से, नजदीक से इंफॉर्मेशन लेता है, वातावरण से संवेदनाओं को ग्रहण करता है और ब्रेन तक पहुंचाता है, तो एक तो ये हो गया कि नियर सेंसेज है। दूसरा है फार सेंसेज, जैसे आप कहीं खड़े होते हैं और दूर 500 मीटर दूर कोई अगर धुआं उठ रही है, कोई आवाज आती है, तो आप विजन सेंस के थ्रू या ऑडिटरी सेंस के थ्रू उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और ये जो दोनों सेंसेज है वो आपके वातावरण को नियंत्रित करने में और उस वातावरण में आपको स्थापित करने में, व्यक्ति को स्थापित करने में और उनकी भूमिकाओं के निर्वहन में मदद करता है, क्योंकि ब्रेन को इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो, तो सीखने में भी मदद करता है वो, और नई चीजें हम उसकी वजह से सीख पाते हैं। अब ये जो दोनों कंडीशन आ गई तो इसमें जो फार सेंसेज हमारे हैं, हियरिंग सेंस और विजन सेंस, ये दोनों को समझना, ये दोनों की इम्पोर्टेंस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन है, मीन्स उसका अप्रोक्सीमेट 83-84% का जो सेंसरी चैनल है, जो सेंसेशन लेने की प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, वो उसमें बाधा डालेगी अगर विजन इम्पेयरमेंट हो गया तो। हियरिंग इम्पेयरमेंट अगर कंडीशन आती है तो एक रिसर्च कहता है कि अप्रोक्सीमेट 11-12% के आसपास का इंफॉर्मेशन जो हम वातावरण से ग्रहण करते हैं वो अपने हियरिंग सेंस की वजह से करते हैं। सो कुल मिलाकर के अगर देखेंगे तो 83-84% विजन से और 11% करीब करीब हियरिंग से। सो डेफ ब्लाइंडनेस की कंडीशन अगर आती है, कोई एसोसिएटिव कंडीशन आती है, तो 95% तक हमको सेंसेशन वातावरण से ले ही हम नहीं पा रहे हैं, ब्रेन तक पहुंच नहीं पा रहा है, वो हैम्पर्ड हो गया, और वो डिपेंड करेगा कि परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, सीवियरिटी क्या है। सो एक तो ये चीज की कई बार जब आप सर्टिफिकेशन के लिए जाते हैं, हमारे दिव्यांग साथी जाते हैं और उनसे कहा जाता है हमारे पास हियरिंग का डॉक्टर आज नहीं आया है, आप विजन का सर्टिफिकेट बनाना चाहो विजुअल लॉस का, तो वो बन जाएगा, लेकिन ये ऑप्शनल नहीं है। और ये हियरिंग इम्पेयरमेंट और विजुअल इम्पेयरमेंट का जस्ट एक कॉम्बिनेशन नहीं है, इसका मल्टीपल इम्पैक्ट पड़ता है रोजमर्रा की जिंदगी में और लर्निंग प्रोसेस में, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट के प्रोसेस में, व्यक्तित्व के विकास में ओवरऑल। सो हम इसको अलग करके नहीं देख सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, अब मैं विजुअल इम्पेयरमेंट के ऊपर फोकस होऊंगा, सो विजुअल इम्पेयरमेंट का जो पहले डेफिनेशन दिया गया था, जो लीगल डेफिनेशन की बात आपने करी कि लीगल पर्सपेक्टिव क्या है उसका, तो मैं आपको बताऊं कि विजुअल इम्पेयरमेंट एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर दो अलग अलग तरह की डिसेबिलिटी शामिल है, एक तो ब्लाइंडनेस और दूसरा लो विजन। और ब्लाइंडनेस की जो डेफिनेशन दी गई थी उसको दो आधारों पे उसमें देखा गया। एक तो होता है, मैं थोड़ा सा टेक्निकली इसको समझाना चाहूंगा, कि एक तो होता है विजुअल एक्विटी और दूसरा होता है विजुअल फील्ड। विजुअल एक्विटी माने दृष्टि तीक्ष्णता, माने कितने फॉन्ट को आप कितने नजदीक से देख पा रहे हो। सपोज अगर हम कोई किताब पढ़ते हैं और किताब पढ़ते हैं तो उसका अक्षर छोटा है तो हम कितनी दूरी से पढ़ पा रहे, किसी चीज को कितने नजदीक से या कितने दूर से हम स्पष्ट रूप से बिना किसी चीज के सहायता के अगर पढ़ पाते हैं, तो ये जो मेजरमेंट है ये दृष्टि तीक्ष्णता के अंतर्गत आती है। जनरली चश्मा की दुकान पे आप देखे होंगे कि वहां पे एक स्नेलन चार्ट लगा हुआ रहता है, उल्टे सीधे अक्षर लिखे रहते हैं और उसको पढ़ने के लिए डॉक्टर बोलता है या जो स्पेशलिस्ट है वो बोलते हैं, रिफ्रेक्शनिस्ट जो होते हैं वो बोलते हैं आप इसको पढ़ो, और उसमें ऊपर से नीचे के तरफ पढ़ने के लिए दिया जाता है। सबसे ऊपर में बड़ा वाला अक्षर होता है, मोटा अक्षर, और वहां से नीचे के तरफ आते हैं किस लाइन तक वो पढ़ पा रहा है, उसके बगल में मेजरमेंट दिया हुआ रहता है कि कितना बाई कितना का विजन है। सो उस कंडीशन में जब 1995 का पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट था तो उसमें ब्लाइंडनेस की तीन कैटेगरी दी गई थी, और उसमें सबसे पहली कंडीशन तो थी ये कि टोटल एब्सेंस ऑफ साइट अगर किसी व्यक्ति में होगा तो उसको ब्लाइंड माना जाएगा, जब दृष्टि बाधा पूरी तरह से हो। दूसरी कंडीशन उसमें रखा गया था कि विजुअल एक्विटी जो है वो 6/60 से कम नहीं होना चाहिए। 6/60 का मतलब होता है 6 मीटर की दूरी से वो स्नेलन चार्ट पे 60 के फॉन्ट में लिखा हुआ फॉन्ट अगर पढ़ पाता है तो उससे नीचे के फॉन्ट अगर पढ़ने में सक्षम है तो वो ब्लाइंडनेस में नहीं आएगा, वो लो विजन में आएगा। अगर वहां तक के 6/60 या उससे भी बर्स्ट विजन उसका है, वो 6/60 को भी नहीं पढ़ पा रहा है, तो उस कंडीशन में उसको ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में रखा जाएगा। ये 1995 का डेफिनेशन था, लेकिन जब अभी नया 2016 का डेफिनेशन आया तो उसमें ये जो 6/60 था कि 6 मीटर से 60 फीट के 60 फॉन्ट के नहीं समझ है, नहीं पढ़ पा रहा है, इसको घटा करके कर दिया 6 मीटर नहीं, 3 मीटर की दूरी से अगर नहीं पढ़ पाएगा तो हम उसको रखेंगे ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में, अदरवाइज वो लो विजन हो जाएगा। सो टेक्निकल, थोड़ा सा टेक्निकल चेंज करके कि 6/60 और 3/60, ये टेक्निकल चेंज करके बहुत सारे लोग जो ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में आते हैं वो आज के डेट में लो विजन की कैटेगरी में आ जाएंगे, और दोनों के लिए जो प्रोविजन है वो अलग अलग है। जबकि 3/60 वाले की जो समस्या होगी वो तो बहुत ज्यादा है, 6/60 वाले की समस्या भी उससे कम नहीं है, लेकिन उसको लो विजन की कैटेगरी में रखा गया, डेफिनेशन उसको उस हिसाब से डाला गया। तीसरी कंडीशन रखा गया कि फील्ड ऑफ विजन क्या होगा। अब ये फील्ड ऑफ विजन में बतलाया कि 10 डिग्री की कंडीशन रहेगी। पहले ये 10 डिग्री फ्रॉम पॉइंट ऑफ फिक्सेशन था, मतलब दोनों साइड में 10-10 डिग्री, टोटल 20 डिग्री। अभी की कंडीशन में इसको 10 डिग्री तक के लाया गया। सो ये तीन कंडीशन अगर होगी तो ब्लाइंडनेस माना जाएगा। किसी का जो विजन है वो 10 डिग्री तक के निश्चित हो जाए, 10 डिग्री से ज्यादा उसका फील्ड ऑफ विजन ना हो। हमारा टोटल फील्ड ऑफ विजन 180 डिग्री होता है, 180-170 डिग्री, उसमें केवल 10 डिग्री का विजन बचा, मतलब टनल विजन हो गया। अब ये टनल विजन हो गया या टॉर्च विजन बोल सकते हैं उसको, कि बिल्कुल जैसे टॉर्च की लाइट सामने जाती है वैसा सामने केवल दिखता है, साइड वाला पेरिफेरल विजन उसका नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उसको ब्लाइंडनेस की कंडीशन में रखेंगे। दूसरी कंडीशन अब लो विजन की आ गई, जिसमें 3/6/18 से लेकर के 3/60 जो ऊपर का जो एक लेवल रखा गया था ब्लाइंडनेस का, सो 6/18 से लेकर के अगर किसी व्यक्ति का स्नेलन चार्ट पे विजन की जो एक्विटी है वो 3/60 के बीच में है तो उस कंडीशन में उसको लो विजन की कंडीशन में रखा जाएगा। और उसमें एक और कंडीशन दिया हुआ है कि जो लिमिटेशन होगा फील्ड ऑफ विजन का वो 40 डिग्री तक के सीमित होगा, 10 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक। अगर 10 डिग्री या उससे ज्यादा खराब विजन हो गया तब तो ब्लाइंडनेस में चला जाएगा, लेकिन 10 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक का अगर विजन उसका फील्ड ऑफ विजन है तो ऐसी कंडीशन में उसको लो विजन में रखा जाएगा। अच्छा शरद सर, मैं यहाँ पे एक चीज और बतलाना चाहूंगा।
0: जी
1: मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये जो रिकॉर्डिंग है ये केवल एजुकेशनल और अवेयरनेस पर्पज से हो रहा है, क्योंकि मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूं,
0: जी
1: मैं एजुकेशनल एक्सपर्ट हूं। और सामान्य जनमानस को केवल अवेयर करने के माध्यम से, अवेयर करने के विचार से इस पूरे रिकॉर्डिंग को किया जा रहा है, ताकि जैसे हमने जब कान के बारे में बताया था तो हमने बोला था बहता कान सावधान, और ये बहता कान सावधान जो है वो हमारा टाइटल नहीं है, वो हमारा थीम नहीं है दिया हुआ। ये अली अवर जंग राष्ट्रीय श्रवण दिव्यांगजन संस्थान जो है वहां का ये टैगलाइन है, बहता कान सावधान। सो
0: जी
1: ऐसी परिस्थिति में लोगों को सावधान करने के लिए कि आपका बच्चा अगर क्लमजी चल रहा हो, उसका गेट पैटर्न जो चलने का तरीका है वो ऑकवर्ड हो रहा है, बार बार सिर के पीछे शिकायत करता है वो दर्द का, बार बार आंखों से पानी आता है, बार बार आंख लाल हो जाते हैं उसके, और इस तरह की कंडीशन आती है अगर, या आंखों में कोई स्पष्ट दिखने वाली कोई समस्या ऐसी आ जाए कि देख करके ही पता चल रहा है कि आंख नॉर्मल नहीं है,
0: जी
1: आंखें जरूरत से बहुत ज्यादा छोटी हो गई या बहुत बाहर के तरफ निकली हुई है, तो ऐसी परिस्थिति अगर होती है तो चुप नहीं बैठने का है। ऐसी परिस्थिति अगर होती है कि बच्चा चल रहा है और सामने रखी हुई बड़ी से बड़ी वस्तु भी उसको दिख नहीं रही है, वो टकरा रहा है, मतलब कहीं विजन खराब तो नहीं है।
0: जी
1: तो शुरुआत में कई सारी चीजें ऐसी होती है जो अगर डिजीज होगा या कुछ ऐसी कंडीशन होगी तो हमारे पास एक लंबी फहरिस्त है डॉक्टर्स की जो उसको ठीक कर सकते हैं। बड़े बड़े अस्पताल हैं, आज टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी आसमान छू रहा है, तो उस परिस्थिति में जितना अर्ली आइडेंटिफाइड इसको कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा।
0: जी
1: ये चीजों को केवल अवेयर करने के लिए इस पर्पज से ये जो आज का रिकॉर्डिंग है इसको बनाया जा रहा है, और उसका दूसरा कोई मेडिकल लीगल पर्पज नहीं है।
0: निश्चित रूप से श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से, जो कि हमारे फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन पर उपलब्ध है 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारे साथ हैं नीरज मधुकर जी। बिल्कुल नीरज जी, हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो एक मेडिकल या कहें कि हमको किसी मेडिकल लीगल या मेडिकल विषय से हमारा कोई संबंध नहीं है। हम सिर्फ दिव्यांगता और पुनर्वास के विषय में बात कर सकते हैं, और वही हमारी चर्चा का आज विषय भी। तो दृष्टिबाधित व्यक्ति अगर हो जाता है तो उसका पुनर्वास कैसे किया जा सकता है, और दिव्यांग दृष्टिबाधित व्यक्ति किसको माना गया है, वो हमने एक लीगल परिभाषा आपने जैसा कि विस्तार से बताया। तो अब अगला विषय मेरा ये है कि जब एक बार किसी व्यक्ति को, जो आपने परिभाषाएं बताई कि ये इन पैरामीटर्स पे वो अगर स्थापित हो जाता है कि वो एक दृष्टिबाधित व्यक्ति है, तो उसके जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या टीचिंग मेथड्स अवेलेबल हैं, क्या ऑपरेटर्स अवेलेबल है उसके पास, और क्या उसको बदलाव अपने जीवन में करने हैं जिससे कि वो वापस से पुनर्वास करके मुख्य धारा में आ सके। जी नीरज जी।
1: उससे पहले मैं एक चीज और चर्चा करना चाहूंगा शरद सर, आपने जो प्रश्न पूछा है उस पर तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन
0: जी
1: पहले दृष्टि बाधिता का कारण क्या हो सकता है उसके ऊपर जानना जरूरी है, क्योंकि
0: जी
1: अभी हम लोगों ने देखा कि दृष्टि बाधिता में दो अलग अलग टाइप हो सकते हैं, एक पूर्णतः दृष्टि बाधित और एक अल्प दृष्टि बाधा। लेकिन
0: जी
1: पूर्णतः दृष्टि बाधा अगर होगी तो उसके अपने कंडीशंस होंगे, अपने उसके इम्प्लीकेशंस होंगे, उसके अपने प्रभाव होंगे, और अगर अल्प दृष्टि बाधा होती है तो उसके अपने प्रभाव होंगे। दोनों के कारणों को भी एक बार थोड़ा सा जानना जरूरी है।
0: जी बिल्कुल
1: सो इसमें जो कारण है उसको दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो कंडीशन होती है सिंड्रोमिक रीजन और दूसरा होता है एसिंड्रोमिक रीजन। अब आम आदमी के लिए सिंड्रोमिक रीजन थोड़ा सा टेक्निकल है, तो मैं उसको और सरल भाषा में समझाऊं। कोई
0: जी
1: बच्चे का अगर जन्म होता है और बच्चे के जन्म के समय में एक ही बच्चे में कई सारे रोगों का लक्षण एक साथ दिखता है, कई
0: जी
1: सारी डिफॉर्मिटी, कई सारी जन्मजात विकृति अगर एक साथ दिखती है तो ऐसी कंडीशन को सिंड्रोम कहा जाता है। अब जैसे सिंड्रोम का नाम अगर लेते हैं तो उसमें असर सिंड्रोम हो सकता है, चाद सिंड्रोम हो सकता है, रेट सिंड्रोम हो सकता है, वार्डनबर्ग सिंड्रोम हो सकता है, बहुत सारे ऐसे सिंड्रोम है जो अध्ययन का विषय है, लोग उसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो एक सिंड्रोम के ऊपर चलेंगे तो फिर और एक अलग से चर्चा बन जाएगी। तो
0: जी
1: सिंड्रोमिक रीजन का मतलब कोई भी ऐसा बच्चा या व्यक्ति जिसमें जन्म के साथ बहुत सारी विकृतियां एक साथ हो,
0: जी
1: विजन का इम्पेयरमेंट नहीं हो सकता है, कि उसकी बुद्धि का भी विकास बराबर नहीं हो रहा है, हो सकता है उसका स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है, उसमें वाणी और भाषा का विकास नहीं हो पा रहा है, पूरी तरह से व्यक्तित्व प्रभावित हो रहा है उसका इन सब चीजों की वजह से। सो सिंड्रोमिक कंडीशन के अलावा जो ए सिंड्रोमिक कंडीशन है उसमें कुछ नेत्र संबंधी विकार हो सकते हैं या कुछ डिजीज आ सकते हैं। हम दोनों पर बारी बारी से विचार करेंगे, दोनों पर चर्चा करेंगे और लोगों को कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की। मैं पहले बताऊं कि जो सिंड्रोमिक कंडीशन है लो विजन का या ब्लाइंडनेस का, सिंड्रोमिक कंडीशन में एक आता है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म आपने देखा होगा शरद सर, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पूरा शरीर से पिगमेंट गायब हो जाता है
0: जी।
1: अब पिगमेंट की वजह से हमारे शरीर का ये टोन जो कलर है ना, ये स्किन का कलर या बालों का कलर या ये जो आईलिड्स हैं, आईब्रोज हैं, इन सब का कलर जो है वो पिगमेंट की वजह से ही निर्धारित होता है। जिसमें पिगमेंट कम हो गया वो थोड़ा ज्यादा गोरा हो जाता है, और पिगमेंट अगर ज्यादा हो गया तो मेलानिन की मात्रा बढ़ जाती है और वो थोड़ा हमारे जैसा सांवला हो जाता है। तो ये जो परिस्थितियां आती है, और मैं एक जोक्स अपार्ट बट एक चीज बताऊं कि यही पिगमेंटेशन करोड़ों रुपए का लोगों को बिजनेस दे रहा है, फेयर एंड लवली और पता नहीं कितने अलग अलग तरीके की चीजें लेकर के लोग काला से गोरा बनने में लगे रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो सारा खेल केवल पिगमेंट का है। जोक्स अपार्ट बट एक चीज बताऊं, ये एल्बिनिज्म की कंडीशन में बच्चे के या व्यक्ति के जो स्किन है उसमें से मेलानिन की मात्रा जो है, पिगमेंट्स की मात्रा जो है वो कम हो जाती है, और इतनी कम हो जाती है कि वो बिल्कुल शरीर ऐसा वाइट हो जाता है। और वाइट होने के साथ साथ उसको कुछ जो व्यवहारिक जो समस्याएं आती है, जो आंख में देखने को समस्या मिलती है, वो हो जाता है कि उनकी उसकी वजह से फोटोफोबिया की कंडीशन आ जाएगी। अब फोटोफोबिया का मतलब क्या हुआ, धूप में जब निकलेंगे तो उनकी आंखें ऐसे चौंधिया जाएगी, वो आंख खोल नहीं पाएंगे। क्यों होता है ये, चूंकि हमारा आंख में अगर सामने की तरफ देखेंगे तो ये जो ब्लैक दिखता है बड़ा सा, वो ब्लैक के बीच में भी एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको प्यूपिल बोलते हैं, वो आंख के आर पार बिल्कुल छेद है। अगर ऊपर से कॉर्निया का लेयर ना हो तो ये सामने सामने बिल्कुल दिखेगा। उसके अंदर में लेंस है, लेंस के अंदर में फिर जाकर के अंदर के जो कंडीशंस है उसमें विट्रस जेली वगैरह जो अंदर का स्ट्रक्चर जो पूरा आंख का बनाता है वो चीजें हैं। लेकिन मैं उसमें बताऊं कि फोटोफोबिया की कंडीशन क्यों होगी, बिकॉज ये जो हमारा आंख का काला वाला पोर्शन सामने दिखता है, ये वाले पोर्शन में इसमें मेलानिन की मात्रा है उसमें, जिसकी वजह से उसका रंग है। और जब इस वाले में पिगमेंटेशन गायब हो जाएगा, ये पिगमेंटेशन गायब होने पे आयरिस का जो कलर है वो कलर ब्लैक ना हो करके वो वहां पे बिल्कुल खरगोश के आंख की तरह ऐसा गुलाबी हो जाता है। और उस कंडीशन में बाहर से जो लाइट जाने के लिए ये एक सिक्योरिटी गार्ड है बैठा हुआ जो आंख में लाइट को ज्यादा जाने से रोकता है, वो कंडीशन में कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगा ये पूरा का पूरा हमारा जो सिस्टम बना हुआ है। और लाइट ज्यादा अंदर जाने लगेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, आंख की जो पुतली है जिसको आयरिस बोल सकते हैं कि आयरिस के पास में एक डायल्यूटर स्फिंक्टर करके मसल होता है, वो मसल्स जो है वो एकोमोडेट करता है कि कितना लाइट अंदर जाना है या नहीं जाना है। जब आप तेज लाइट से सिनेमा हॉल में जाते हैं, कम लाइट में जाते हैं, तो वहां पे ये डाइल्यूट हो जाता है, थोड़ा फैल जाता है, और जब ज्यादा लाइट में अचानक आते हैं तो ये स्फिंक्टर मसल काम करता है और ये धीरे धीरे धीरे धीरे करके कम हो जाता है, सिकुड़ने लगता है। तो ये आपस का समन्वय, ईश्वर बहुत बड़ा बायोमैकेनिकल इंजीनियर है, उसने सारी व्यवस्था बना रखी है। तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि ये डाइल्यूटर और स्फिंक्टर तय करते हैं कि बाहर से लाइट कितनी जानी है, और चूंकि आयरिस का पिगमेंटेशन चला गया इसलिए ज्यादा मात्रा में लाइट अंदर जाती है तो बच्चे को आंख खोल करके रखने में दिक्कत आती है, चौंधिया जाती है आंखें ज्यादा लाइट में। हम उसके लिए व्यवस्था क्या कर सकते हैं, उसको क्लासरूम एडेप्टेशन कर सकते हैं कि खिड़की वाली जगह पे हम ना बैठाएं, ज्यादा तेज रोशनी उसके आंख पे ना पड़े, उसको क्लास के बीच में बैठाना या ऐसी जगह पे बैठाना जहां पे लाइट डायरेक्ट उसके आंख पे नहीं पड़ रही हो, या किताब जो होती है उसमें भी कई बार क्या होता है लाइट रिफ्लेक्ट होता है, तो उन सबसे उसको परेशानी होगी। टीचर को एकोमोडेट करना है कि हम किस तरीके से इसके लिए स्पेशल एडेप्टेशन कर सकते हैं, एनवायरमेंटल एडेप्टेशन। दूसरा, अगर वो बच्चा ब्लैक चश्मा लगाता है तो भी उसको ज्यादा लाइट से बचाया जा सकता है। सो जो हमारा पिगमेंटेशन का काम था वो चश्मा कर देगा। तो उसकी वजह से ये छोटे छोटे एडेप्टेशन है जिनकी वजह से उसको फायदा मिल सकता है। धूप में जाने से बच्चा इसी की वजह से डरता है और उसको लो विजन की कंडीशन आएगी। दूसरी कंडीशन है असर सिंड्रोम। असर सिंड्रोम में क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस की कंडीशन आ जाती है और नाइट ब्लाइंडनेस की कंडीशन आने की वजह से दिन में उसको देखने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन रात में होती है दिक्कत। पर दिन में भी जो देखना है, मैं उसका थोड़ा टेक्निकल पार्ट और थोड़ा सा समझाऊं। हमारा जो रेटिना है, जो सबसे पीछे की दीवार होती है रेटिना, जिसके ऊपर पर्दा, जिसको आंख का पर्दा बोलते हैं अंदर का, वो रेटिना की दीवार के ऊपर पिगमेंट बनना शुरू हो जाता है, छोटे छोटे पिगमेंट बनने शुरू हो जाते हैं, स्पॉटिंग शुरू हो जाता है वहां, और वो पेरिफेरल से सेंट्रल के तरफ आता है, यानी किनारे से परिधीय दृष्टि से लेकर के धीरे धीरे सेंट्रल विजन के तरफ आता है वो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, पहले उसका पेरिफेरल विजन लॉस होगा, बाद में धीरे धीरे करके बिल्कुल ऐसा टनल होते होते होते होते पूरी तरह से ब्लाइंडनेस की कंडीशन आ सकती है। सेम कंडीशन डेफनेस में भी होगा, हो सकता है बाय बर्थ डेफनेस हो सकता है कि जन्मजात विजुअल इंपेयरमेंट था, बाद में डेफनेस की कंडीशन आई। और एक कंडीशन इसमें और होता है कि कई बार बैलेंसिंग का भी इशू देखने को मिलता है। सो असर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये तीनों तरह की कंडीशन इसमें मिलती है, जिसमें विजन के साथ साथ हियरिंग और बैलेंस भी प्रभावित हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे में हो, पर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। तीसरी कंडीशन जो है वो डाउन सिंड्रोम की आती है, और डाउन सिंड्रोम की कंडीशन जब आएगी तो बच्चों में कई बार देखने को मिलता है, सभी बच्चों में नहीं होता ये लक्षण, लेकिन कुछ बच्चों में मोतियाबिंद की कंडीशन आ सकती है, या रिफ्रेक्टिव एरर आ सकता है उसमें, या भेंगापन की जो समस्या आती है, एस्ट्रैबिस्मस जिसको टेक्निकली बोलते हैं, वो एस्ट्रैबिस्मस की कंडीशन आ सकती है, और इसकी वजह से लो विजन की कंडीशन उसमें देखने को मिलती है। या एक मार्फन सिंड्रोम करके आता है सर, मार्फन सिंड्रोम में जो डिसलोकेशन ऑफ लेंस की कंडीशन आती है, हमारा जो लेंस है उसका एक निश्चित जगह बना हुआ है, एक निश्चित कर्वेचर बना हुआ है, कर्व जो होता है उसका बना हुआ, अब वो लेंस अगर ओपेक हो गया, धुंधला हो गया, या लेंस अपनी जगह से हट गया, वो हटेगा कैसे, आयरिस उसको दोनों साइड से पकड़ करके रखता है, और ये आयरिस के मसल्स अगर कमजोर पड़ जाएंगे तो लेंस अपनी जगह से हट सकता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये हो सकता है कि आंख के अंदर का जो एक्वस ह्यूमर है, जो नेत्र जल बोलते हैं, उसका प्रेशर अगर बढ़ गया अंदर से बाहर के तरफ, एंटीरियर पोस्टीरियर चैम्बर से अंदर से बाहर के तरफ बढ़ेगा तो बाहर के तरफ डिसलोकेट होगा, और अगर बाहर से जो ग्लोकोमा की कंडीशन जब आती है, बाहर से अंदर के तरफ अगर बढ़ेगा प्रेशर तो इंट्रा ऑकुलर प्रेशर उसको बोलते हैं सर, आंख के अंदर का नेत्र जल का दबाव बढ़ जाना। तो जब वो ड्रेनेज सिस्टम अगर बराबर काम नहीं करता कि जितना मात्रा में नेत्र जल बन रहा है उतना मात्रा में उसको फ्रेश नेत्र जल बनना और पुराने वाले का ड्रेनेज होना, क्योंकि ये नेत्र जल जो होता है जिसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, इसमें सोडियम है, पोटेशियम है, ये सारी चीजें होती है, और ये लेंस को पोषण देता है, हमारा बिल्कुल फ्रेश बना हुआ रहता है। अगर हमारे इसमें केमिकल इम्बेलेंस हुआ तो हमारा लेंस का प्रॉब्लम आएगी। और दूसरी कंडीशन की अगर मसल्स में प्रॉब्लम हुई, या इंटरनल ऑक्युलर प्रेशर जो है, इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर जो है, वो अगर बढ़ गया, अंदर से प्रेशर ज्यादा हो गया, तो उस कंडीशन में लेंस का डिसलोकेशन हो जाएगा और उसकी वजह से लो विजन की कंडीशन आएगी। बिकॉज रेटिना के पास में तो फोकल लेंस फिक्स है, और जब लेंस का फोकल लेंथ जो है वो चेंज होगा तो रेटिना के आगे या रेटिना के पीछे पिक्चर बनना शुरू हो जाएगा। ये थोड़ा सा फिजिक्स समझना जरूरी है, लेकिन जब इसमें डिसलोकेशन ऑफ लेंस की कंडीशन आएगी, लेंस अपनी जगह से हटता है, तो रेटिना के ऊपर पिक्चर नहीं बन पाएगा और उसकी वजह से उसकी विजन जो है वो धुंधली हो जाएगी। ये तो हो गई इसकी कंडीशन। अब जो चार्ज सिंड्रोम की हमने बात कही थी कि चार्ज सिंड्रोम एक कंडीशन है, एक कई सारे विकृतियों का समूह है, जिसमें सबसे पहले चार्ज एक एब्रिविएशन है, CHARGE। ये हमारे जो इस क्षेत्र के पुनर्वास व्यवसायिक बनने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं, या जो पुनर्वास व्यवसायिक हैं, या जिनके बच्चे में हियरिंग, विजन, ये सब तरह की प्रॉब्लम है, उनके लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक कंडीशन तो होती है चार्ज में कि उसका आंख में प्रॉब्लम आएगी, आंख में ये जो सामने से प्यूपिल होता है जिसमें जो छोटा वाला छिद्र दिखता है सामने से बिल्कुल ऐसे काले वाले के बीच में भी मसूर के दाने के समान बिल्कुल छोटा सा, तो वो की होल शेप जैसा हो जाता है, जैसे ताले में चाबी डालने के लिए शेप बना रहता है ना कि ऊपर से गोल है नीचे से कट है, उस टाइप का की होल शेप जैसा बन जाता है वो, और उसकी वजह से लाइट का कंट्रोल कम हो जाता है कि लाइट अंदर कितना जाना है वो कंट्रोलिंग खत्म हो जाती है। सो लो विजन की कंडीशन उसमें आ सकती है। दूसरी कंडीशन है उस तरह के बच्चे में जो चार्ज से प्रभावित है, हृदय रोग की भी समस्या देखने को मिलती है। हो सकता है कि जो हमारा सांस लेने की नली है, ये जिसको कोयना बोलते हैं, वो सांस लेने की नली जो है वो चोक हो जाए, वो उसमें एट्रेसिया की कंडीशन सकरापन हो जाता है, वो पतला हो जाता है, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में तकलीफ होगी। और जब सांस लेने में तकलीफ होगी तो हमारा ऑक्सीजन का लेवल घटेगा, तो फिर आप समझ सकते हैं उसका कॉम्प्लिकेशन कितना होगा। जब ऑक्सीजन नहीं जाएगा अंदर, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जाता है अंदर, ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो ब्रेन को पोषण नहीं मिलेगा, तो किस एरिया को हिट करेगा ब्रेन के किस एरिया को, उससे जुड़ा हुआ जो तंत्र है हमारा पूरा शरीर का, क्योंकि ब्रेन ही सबको कंट्रोल करता है और वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, लेकिन जब वो ही प्रभावित हो जाएगा तो शरीर का वो तंत्र काम करना बंद कर देगा। तीसरी कंडीशन उसमें होती है रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ, हमारा विकास है शरीर का, वो शरीर का सम्यक विकास नहीं हो पाता है, उम्र के अनुसार विकास नहीं हो पाता है, उसको बोलते हैं रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ। चार्ज में जो जी है, जी का मतलब होता है जेनिटल एबनॉर्मलिटीज, चार्ज से ग्रसित जो लोग हैं उनका जो जेनिटल ऑर्गन्स भी सम्यक विकास नहीं होगा और उसमें डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी और उसका एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल लेवल पे उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। लास्ट है ई, ई का मतलब होता है उसमें ईयर एबनॉर्मलिटी है, जिसमें हियरिंग लॉस आ सकता है और इसमें जनरली सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस आता है, मतलब कान का नर्व भी प्रभावित हो सकता है और इनर ईयर प्रभावित हो सकता है। इनर ईयर प्रभावित है तब तो कॉकलियर इम्प्लांटेशन से काम चल जाएगा, लेकिन अगर नर्व प्रभावित हो गया तो फिर बहुत मुश्किल है, फिर तो उसको साइन लैंग्वेज की तरफ ले जाने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है, और ऐसी कंडीशन में जितना अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा वो फायदेमंद होगा। दूसरी कंडीशन अब ए सिंड्रोमिक कंडीशन की तरफ हम बढ़ेंगे। सो इसमें कैटरेक्ट है, हो सकता है कॉन्जेनाइटल कैटरेक्ट हो, बचपन से ही उसमें कैटरेक्ट की कंडीशन आ सकती है। और जनरली जो MMR है, तीन घातक बीमारियां हैं जो जिससे प्रभावित होते हैं लोग, मम्स, मिजल्स और रूबेला। ये जो रूबेला की वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है इसमें, और कंजेनेटल कैटरेक्ट की कंडीशन आएगी। माँ को अगर रूबेला की कंडीशन रही तो उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर, गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर इस तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसमें जनरली विजन जो है वो लो विजन की कंडीशन आ जाएगी, धुंधली दृष्टि उसकी आ सकती है। निस्टैग्मस की समस्या, निस्टैग्मस का मतलब क्या होता है, ये जो हमारा आईबॉल है, आंख का जो नेत्र गोलक है, उसमें ये कंप्लीटली शेकिंग मोड में रहेगा। निस्टैग्मस का मतलब है कि एक जगह पे, उसको हिंदी में बोलते हैं अविंदुकता, और उस कंडीशन में अगर ऐसी कंडीशन होती है तो उसमें एक जगह पे न रह करके वो अविंदुकता की कंडीशन आती है, और उसमें बच्चे को फोकस करना बहुत मुश्किल होता है। शरद सर, मैं देखा हूं ऐसे बच्चों के साथ काम किया हूं, और उसको एक लाइन पे अगर फोकस करने के लिए कहिए कि किताब की एक लाइन के ऊपर फोकस करके उसको पढ़ाई करो, तो ये बहुत मुश्किल होता है उसके लिए। और उसके लिए हमको अलग तरह के उपकरण बनाने की जरूरत पड़ती है, और उसके माध्यम से हम फिर केवल एक लाइन जो उसको पढ़ना है उतना को ही सामने रखते हैं, बाकी को कवर कर लेते हैं। तो ये एक कंडीशन आती है उसमें। नेक्स्ट कंडीशन जो है वो ग्लोकोमा की कंडीशन है, जिसमें हमने बताया अभी कि आंख का प्रेशर बढ़ जाता है, उसकी वजह से ये समस्या आती है। और उसमें भी कॉर्नियल ओबेसिटी की कंडीशन आ सकती है, या कॉर्निया जो है उसका धुंधलापन आ सकता है, आंख से लगातार आंसू आना, ये सब कंडीशन आती है। और ज्यादा रोशनी से हमेशा परेशानी होती है बच्चों को, इस तरह की कंडीशन देखने को मिलेगी। अब उसका प्रभाव क्या पड़ता है, ये जो कंजेनेटल ग्लोकोमा जो होगा उसका प्रभाव क्या होगा, कि वो हो सकता है कि उसका नर्व डैमेज हो जाए। नर्व अगर डैमेज हो जाएगा, ऑप्टिक नर्व जो होता है, सेकंड क्रैनियल नर्व, वो अगर नर्व डैमेज हो जाएगा तो फिर उसके लिए परेशानी बहुत बढ़ जाएगी, और इसका फिर दूसरा कोई उपाय नहीं होता उस नर्व को ठीक करने का। सो कई बार लेजर सर्जरी से वो ठीक हो भी सकता है, उसका है थोड़ा उपाय, दवाइयों के द्वारा भी थोड़ा ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन बहुत लिमिटेड उसका इलाज है। अगर नर्व प्रॉब्लम आ गई है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। कई गांव में लोग बोलते हैं उसको कि नस सूख गया। सूख गया मतलब डिजेनरेट हो गया। अब उससे इंफॉर्मेशन जो है वो पास ऑन नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेज जो है वो पास नहीं हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर हम केवल रिहैबिलिटेशन की तरफ बढ़ते हैं कि ऐसी कंडीशन में उसको ब्रेल की तरफ ले जाना या प्री ब्रेल स्किल्स उसके अंदर डेवलप करना, इस तरफ लेकर के जाना और उसको ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी की ट्रेनिंग देना। ये सब कंडीशन उसके लिए आती है। पढ़ने में भी अलग से अडेप्टेशन करने की जरूरत है। आपको पता है बाकी के एग्जामिनेशन में उसको जो रीडर क्या व्यवस्था करना, स्क्राइब की व्यवस्था करना, ये व्यवस्थाएं हैं। और हमने पिछले रिकॉर्डिंग में भी इस पर काफी सारी चर्चाएं की है कि किस तरीके से भारत सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जा रही है। एक कंडीशन है कॉर्नियल ओबेसिटी। कॉर्नियल ओपेसिटी, ओपेसिटी माने धुंधलापन, ओपेक हो जाना। तो कॉर्निया अगर ओपेक कंडीशन आ जाती है उसकी, तो ऐसी कंडीशन में कॉर्नियल ओपेसिटी में दृष्टि जो है वो पूरी तरह से धुंधली हो जाए। और वो संक्रमण की वजह से होता है। वो हर्प्स का संक्रमण हो सकता है, केराटाइटिस की कंडीशन इसमें आ सकती है या ट्रैकोमा की कंडीशन हो सकती है। तो ये अलग अलग डिजीज है, अलग अलग बीमारियां हैं जिसकी वजह से इस तरह की समस्या आ सकती है कॉर्नियल ओपेसिटी की। और कई बार बर्न हो जाता है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। आंखों में जलन हो गई या किसी चीज से जल गई आंखें, तो ऐसी कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। विटामिन ए की डिफिशियंसी अगर हो जाती है तो उसमें भी इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। और इसीलिए भारत सरकार के तरफ से विटामिन ए का खुराक, एक्स्ट्रा खुराक जो है वो खास करके छोटे बच्चों को जरूर दिया जाता है ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। जी, रेटिनल डिजीज भी होता है कि रेटिना हमारा प्रभावित हो गया और उसकी वजह से रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की कंडीशन एक आती है, जिसके बारे में हमने जब असर सिंड्रोम के बारे में चर्चा मैंने किया था तो उसमें चर्चा की थी कि रेटिना के ऊपर पिगमेंट इकट्ठा हो जाना, दैट इज कॉल्ड रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। जहां टीआईएस लगा है, रेटिनाइटिस मतलब टीआईएस लास्ट में लगा है, टीआईएस कहीं भी रहेगा तो इट मीन्स इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन है। जलन वहां पे हो रही है, इन्फ्लेमेशन है और साथ साथ इसमें इन्फेक्शन की कंडीशन किसी भी वजह से हो, तो ये कंडीशन आती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। तो एक और कारण है जिसको बोलते हैं रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी। आपने सुना होगा सर, किसी भी बच्चे का जन्म अगर 7 महीने में हो गया, 7.5 महीने में हो गया, पहले तो ये बच्चे बच ही नहीं पाते थे, लेकिन वर्तमान समय में मेडिकल डेवलपमेंट हमारा इतना ज्यादा, मेडिकल साइंस डेवलप हो गया है कि बच्चे को बचा तो लेता है, लेकिन बचा लेने के बाद उसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनसे पूरा जीवन भर बच्चा वो परेशान रहता है, जीवन भर वो स्ट्रगल करना पड़ता है उसको, सो डिसेबिलिटी के साथ उसको जीना पड़ता है। अब ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि जब बच्चा 7 महीने, 7.5 महीने की अवस्था में जन्म ले लिया, तो जो रेटिना है वो रेटिना में, चूंकि नाम से ही जैसा कि पता है रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी, सो प्री मैच्योरिटी बर्थ अगर होगा तो रेटिना जो है पीछे दीवार के साथ चिपकता नहीं है। अभी आप देखिए, रेटिना को पीछे के दीवार के साथ चिपकना जरूरी है, तभी उसकी स्टेबिलिटी बनेगी, तब उस पर्दे पे क्लियर पिक्चर बनेगा। लेकिन जब रेटिना पीछे के दीवार से नहीं चिपका, समय से पहले बच्चे का जन्म हो गया और उस समय रेटिना उसका जो है वो अटैच नहीं है, वो पूरी तरह से डिटैच्ड है, तो डिटैच्ड होने की वजह से फोकल पॉइंट चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो रेटिना अभी दीवार से पहले है और रेटिना के ऊपर पिक्चर बनेगा तो वो पिक्चर बनना चाहिए था तब जब दीवार के ऊपर चिपका रहता। सो रेटिना पहले हो जाने की वजह से अगेन पिक्चर जो बन रहा है वो दीवार पे बनेगी और रेटिना पहले है तो रेटिना के ऊपर जब पिक्चर बनने की बारी आएगी वो धुंधली बनेगी, बिकॉज ऑफ फोकल लेंथ चेंज हो गया। अब जब फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा और पिक्चर धुंधली बनेगी तो लो विजन होगा, क्योंकि हमको दिखाई ही तब पड़ती है कोई वस्तु जब हमारे रेटिना के ऊपर उसका पिक्चर बनता है और वही फोटो सेंसेशन हमारे ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर पिक्चर क्लियर नहीं बन पा रहा है रेटिना के ऊपर, तो जैसे आप, एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ, बहुत सारे श्रोता, बहुत सारे हमारे दर्शक जो आज हैं जुड़े हुए, वो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे और कई जगह देखे होंगे कि जब हम प्रोजेक्टर के माध्यम से कंप्यूटर पे चल रही चीजों को दीवार पे या स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करते हैं, उसमें लेंस को थोड़ा सा आगे पीछे कीजिए उसको मूव करके, तो पिक्चर की क्वालिटी खराब हो जाती है। वो लेंस को जब हम मूव करते हैं तो वो आगे की तरफ जाता है या पीछे की तरफ आता है। सो डिसलोकेशन ऑफ लेंस को समझने के लिए इससे बेहतर उदाहरण कुछ नहीं हो सकता कि आप उसको बिल्कुल लाइव देख रहे हैं कि कैसे लेंस को हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया तो पिक्चर की क्वालिटी खराब हो गई, थोड़ा सा पीछे कर दिया तो पिक्चर की क्वालिटी खराब है, एक निश्चित जगह पर रखते हैं तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर आता है। सेम कंडीशन है कि अगर आपने लेंस को तो नहीं छेड़ा लेकिन जो रेटिना का काम वहां पे स्क्रीन कर रहा है, सो स्क्रीन को अगर आप आगे कर लेंगे तो वो पिक्चर बनेगा ही नहीं क्लियर उस पर और वो धुंधला दिखेगा। तो हमारा हर चीज को ईश्वर ने फिक्स कर रखा है कि कहां पे लेंस होना है, कहां पे कॉर्निया होना है, कॉर्निया का जो आगे से कर्वेचर है वो कैसा होना है, कर्व जो बनता है जो शंकु उसमें आकार जो उसकी आकृति बनती है अर्ध गोलाकार, तो वो सारी चीजें उसमें फिक्स है। और उसके कर्वेचर का बिगड़ना, उसके प्लेस का डिसलोकेट हो जाना या उसमें प्रेशर का बढ़ जाना, ये कुछ भी अगर होगा तो वो विजन को प्रभावित कर देगा और उसकी वजह से दिक्कत आती है। एक है उसमें कंडीशन मैकुलर डिजनरेशन की कंडीशन, मैकुलर फोबिया जो होता है वो हमारे विजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, रेटिना के ऊपर ही बना हुआ रहता है ये, और वो केंद्रीय दृष्टि के लिए बहुत जरूरी है। हमारा जो सेंट्रल विजन है, पेरिफेरल विजन में उसका रोल नहीं होता पर सेंट्रल विजन में उसका बहुत रोल है, रंगों की पहचान करने में उसका बहुत रोल है, क्योंकि वहां पे कोन सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट पहचानने के लिए है पर कोन सेल्स से हम कलर पहचानते हैं, डेप्थ परसेप्शन होता है, तो ये चीजों में बहुत दिक्कत आती है। और उसका ऑब्वियस है कि जो लर्निंग है वो प्रभावित होगा, रीडिंग राइटिंग प्रभावित हो जाएगा अगर ये सब चीजों में दिक्कत आएगी तो, रोजमर्रा का जीवन में खेलने कूदने में उसको दिक्कत होगी, शाम के टाइम में उसको देखने में दिक्कत होगी, तो ये सब समस्याएं आती है। आप देखिए कौन सेल्स हमेशा दिन में काम करता है लेकिन रॉड सेल्स जो है दिन में भी काम करता है और रात में भी काम करता है, यही रीजन है कि रात में कलर को पहचानने में बड़ा गड़बड़ हो जाता है। शरद सर अगर कपड़ा खरीदने के लिए गए और प्रॉपर लाइट नहीं है तो खरीदना था ब्लू कलर का, खरीदाते हैं ग्रीन कलर का, वो कलर का पता नहीं चलता कि उस समय हमारा कौन सेल्स काम नहीं कर रहा होता है। बाद में आते हैं कि अरे इसका कलर तो हमने दूसरा चुना था, ये तो दूसरे कलर का है, तो वो सारा खेल जो है वो केवल कौन सेल्स का है। वो अगर डैमेज हो गया तो कलर का परसेप्शन नहीं होगा, सीढ़ी पे चढ़ने उतरने में दिक्कत होगी, डेप्थ परसेप्शन नहीं होगा बच्चे को या व्यक्ति को, तो वो सब चीजों का बहुत असर पड़ता है। तो अभी हम लोग ऑप्टिक एट्रोफी के ऊपर चर्चा कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने बताया था कि ये जन्मजात हो सकता है और इसमें किसी भी तरह का मेंटल ट्रॉमा अगर होता है या ग्लोकोमा की कंडीशन होती है या इसमें मेनिनजाइटिस एन्सेफेलाइटिस की कंडीशन अगर व्यक्ति में होता है तो ये ऑप्टिक एट्रोफी की कंडीशन आ सकती है और इसकी वजह से कॉर्टिकल विजुअल इम्पेयरमेंट जैसी कंडीशन आती है, विजुअल कॉर्टेक्स में प्रॉब्लम होगी, ब्रेन तक के विजुअल सिग्नल नहीं पहुंचेगा, तो ऐसी परिस्थिति में प्रॉब्लम आ सकती है। और कई बार ऐसा देखने को लगेगा कि आंख की स्थिति बिल्कुल सही है, बाहर से लोगों को देख करके भरोसा तक नहीं होगा कि वो व्यक्ति में विजन का प्रॉब्लम हो सकता है। सो बाहर से देखने में व्यक्ति बिल्कुल सामान्य होगा, अपीयरेंस वाइज उसमें कोई इशू नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर में ऑप्टिक नर्व में प्रॉब्लम होने की वजह से सेंसेशन को ब्रेन में पहुंचने में और उसका प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम आती है, ये दिक्कतें होती है। इसके अलावा जो दो रिफ्रेक्टिव एरर्स हैं उसके बारे में भी मैं बतलाना चाहूंगा कि दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, ये दोनों तरह की समस्याएं आती है और मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं कि ये केवल इसलिए आती है कि हमारा या तो कॉर्निया का लेंस में कर्वेचर में बिगड़ गया या डिसलोकेशन ऑफ लेंस हो गया, तो इन सब चीजों की वजह से प्रॉब्लम आती है कि जहां पे फोकल पॉइंट होना चाहिए, रेटिना के ऊपर पिक्चर बनना चाहिए, वो रेटिना के पहले या रेटिना के पीछे उसका अगर फोकल पॉइंट चेंज होकर के चला जाता है तो ऐसी कंडीशन में निकट की वस्तु देखने में दिक्कत हो सकती है या दूर की वस्तु देखने में दिक्कत हो सकती है, रिफ्रैक्टिव एरर में रिफ्रैक्शन में प्रॉब्लम होएगी इसमें और उसकी वजह से विजन का इशू आएगा। लेकिन पहले तो ये कंडीशन थी कि केवल बुजुर्गों में ही आती थी लेकिन अभी किसी भी एज में ये देखने को मिल रहा है सर
0: जी।
1: साथ साथ जो कंडीशन है कुछ सामान्य कंडीशन है जैसे पोषण की कमी की वजह से विजन का इशू आ जाना, आप देखते होंगे सर मैक्सिमम जो पूरे वर्ल्ड का जो डेटा है डिसेबिलिटी का उसमें अप्रोक्सीमेट 60% का जो डेटा है 60-65% का डेटा जो है वो हमारा विकासात्मक जो कंडीशन है विकासशील जो देश है उसमें है, डेवलपिंग कंट्रीज में, और जो डेवलपिंग कंट्रीज में डिसेबिलिटी का परसेंटेज मैक्सिमम है, तो उसके पीछे रीजन है उनका रहन सहन का स्तर, उनका भोजन का स्तर, वहां का मेडिकल ट्रीटमेंट का सुविधा कितना अवेलेबल है, इन सब चीजों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और जो मातृत्व के समय का जो देख रेख है, 9 महीने का जो गर्भावस्था के दौरान का देख रेख है, माँ को कितना बढ़िया भोजन मिल पा रहा है, कितना पौष्टिक भोजन मिल पा रहा है। कुछ स्थिति इस समय का वेस्टर्न कल्चर जो हमारा हमारे ऊपर हावी हुआ है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। ये जो पिज्जा बर्गर फास्ट फूड खाने के उसमें रहते हैं, उससे पेट तो भर जाता है लेकिन पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता। तो अगर विटामिन ए डिफिशियंसी हो गई, उनको पोषण बराबर नहीं मिल पाया, उसकी वजह से ये समस्याएं आती है। और उसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हरी पत्तेदार सब्जियां वगैरह खाना या बाकी और जो फल वगैरह है, दूध है, इन सब चीजों का प्रॉपर पोषण अपना लेते रहे ताकि दिक्कत ना हो।
0: जी
1: एक कंडीशन आती है सर, प्रेस बायोपिया की। प्रेस बायोपिया का मतलब होता है बुजुर्ग हो जाने के बाद जब जेरियट्रिक कंडीशन जब आती है, तो उसमें आंखों की जो मसल्स हैं वो शिथिल होने लग जाते हैं और पूरा शरीर ही जो है धीरे धीरे धीरे धीरे करके उसमें शिथिल होने लगता है और उसका प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। सो बुजुर्ग की होने की वजह से अगर देखने में दिक्कत आती है, उसको प्रेस बायोपिया के नाम से जानते हैं। और
0: जी
1: जितने भी भारत सरकार के राष्ट्रीय संस्थान हैं, सीआरसीज हैं या प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र है, यहाँ पे मैंने पिछले चर्चा में भी बतलाया था और आज मैं फिर से बतलाना चाहूंगा,
0: जी
1: 60 साल का कोई भी व्यक्ति जिनको ऐसी कंडीशन आती है, एज इंड्यूस्ड अगर हियरिंग लॉस है या एज इंड्यूस्ड विजन लॉस है, एज इंड्यूस्ड अगर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी आ रही है, तो उनके लिए सरकार ने वयोश्री योजना, राष्ट्रीय वयोश्री योजना शुरुआत की है। और वो उसके माध्यम से कोई भी 60 साल से ऊपर का व्यक्ति सहायक उपकरण प्राप्त कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। यदि उसमें क्राइटेरिया केवल दो है, 60 साल से ऊपर का होना चाहिए और 15,000 रुपए का मासिक आमदनी होनी चाहिए, उससे नीचे।
0: जी
1: अगर 15,000 से ज्यादा किसी व्यक्ति की मासिक आमदनी है, तो सरकार के नजर में यह आती है कि वो उस सामान को परचेज कर सकते हैं, उनके जो खरीदने की क्रय क्षमता जो है वो इतनी है कि अपने जरूरत का सामान वो खरीद सकते हैं।
0: जी
1: सो इनकम बेस्ड वो क्राइटेरिया रखा गया है। अब दूसरी और भी चीजें हैं बहुत सारी जो प्रिवेंशन का पार्ट है कि हम प्रिवेंट कैसे करें। आपने बताया था कि आंखों के कारणों के बारे में, आंखों के दृष्टि बाधिता है उसके कारणों के बारे में चर्चा करें, और आपका जो दूसरा प्रश्न था हम उस पर अभी चल रहे हैं कि प्रिवेंशन का क्या पार्ट हो सकता है, हम अपने
0: जी
1: आंखों की जो रोशनी है उसको बचाने के लिए क्या करें। तो मेरा ये सलाह होगा कि कम से कम साल भर में 1 से 2 बार कम से कम नेत्र विशेषज्ञ के पास जरूर जाएं, और उसको सामान्य कंडीशन ना माने कि अगर कोई बच्चा उनका है, मैं पहले भी इस पर चर्चा किया आज शुरुआती दौर में, कि बच्चा बार बार सिर के पीछे दर्द की शिकायत करता है, ये सामान्य नहीं हो सकता। बार बार आंखों से पानी चलता है उसका, आंख से कीचड़ निकलता है, गंदगी निकलती है, या आंख में स्वेलिंग रहता है, या आंखें लाल रहती है, तो ऐसी परिस्थिति में शांत नहीं बैठना है। पेरेंट्स के कान खड़क जाने चाहिए और उनको किसी भी लोकल जो पास में जो भी नेत्र विशेषज्ञ हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, उनको जा करके जरूर नियमित रूप से आंख की जांच करानी चाहिए। अगर किसी को ग्लोकोमा की कंडीशन है या डायबिटिक रेटिनोपैथी की कंडीशन है, डायबिटिक रेटिनोपैथी का मतलब अगर कोई मधुमेह के मरीज है, तो उनको अपने आंखों के ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर रेटिनोपैथी की कंडीशन इसमें आ गई, रेटिना में अगर इसका प्रभाव पड़ा, तो कई बार क्या होता है, रेटिना के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें वो फटने का, रैप्चर होने का डर रहता है, और उसकी वजह से जब विट्रस जेली में जब खून का पार्ट जाएगा, तो वो उसका जो पारदर्शिता है वो कम होगी और उसकी वजह से रेटिना पर क्लियर पिक्चर नहीं बन पाता है, तो लो विजन की कंडीशन आ सकती है। और फिर अगर खून बाहर आया, इंटरनल ब्लीडिंग हुई, तो फिर तो कई तरह की समस्याएं आ सकती है। सो कई बार ब्लड प्रेशर बढ़ जाने की वजह से इस तरह के रैप्चर होने की संभावना रहती है। दूसरी कंडीशन है कि अगर कोई बच्चा जन्म लिया है, तो उसको 6 महीने में एक बार और कुछ दिन के बाद जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो कम से कम 3 वर्ष की उम्र में, 5 वर्ष की उम्र में ऐसा एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पे उनको आंख की जांच सामान्य तौर पर भी करवा लेना चाहिए और उसका फायदा उनको मिलता है। खाने पीने के जो सामान है उसमें विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई, जिंक और ओमेगा थ्री। ओमेगा थ्री का अभी तो कैप्सूल भी बनना शुरू हो गया है, अदरवाइज जो अलसी होती है गांव में अभी भी मिल जाएगा, वो अलसी बहुत फायदेमंद होता है कई सारी चीजों में। सर वो हम लोगों के लिए भी फायदेमंद है, न केवल आंख के लिए बल्कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। तो ये सारी चीजों को भरपूर मात्रा में भोजन में ले, साथ साथ गाजर है, पालक है, शकरकंद है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, मछली है, जो लोग मछली नहीं खाते हैं उनके लिए खट्टे फल है या जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, उन सब चीजों से इसका फायदा मिल सकता है, वो ले सकते हैं। अब आंखों की सुरक्षा करने के लिए सर इस समय जब बाहर निकलते हैं तेज धूप में तो अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाने के लिए हमको चश्मा का प्रयोग करना चाहिए उसमें, और अगर तेज धूप में निकल रहे हैं तो ब्लैक चश्मा का भी उपयोग किया जा सकता है उसमें। फोटोक्रोमिक ग्लासेज अभी बहुत तरह के आने लग गए हैं तो उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आज के हमारा वर्किंग कल्चर को लेकर के है, आंखों पे जो प्रभाव पड़ रहा है शरद सर, मैं देख पा रहा हूं कि मैक्सिमम लोगों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। स्क्रीन टाइम बढ़ना इतना खतरनाक है, हमारे छोटे बच्चे मोबाइल को लेकर के गेम खेलने में और बाकी यूट्यूब पे अपने छोटे छोटे कार्यक्रमों को देखने के

0: दूरी पर रखी हुई चीज को 20 सेकंड तक के उसको देखिए, और उसको देखने से आपका ये जो लंबे टाइम पे स्क्रीन पे काम करने की वजह से आंखों में जो थकान होती है वो उसका एक्सरसाइज हो जाता है। दूसरा, लंबे टाइम तक देखने के बजाय आप थोड़ा बीच बीच में उठ जाया करें, अपनी जगह से थोड़ा एक बार चक्कर लगा करके आ जाए, या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लें, योगा का थोड़ा अगर कमरे के अंदर थोड़ा अगर एक्सरसाइज कर सकते हैं तो वो कर लें, तो ये सब चीजों से बहुत फायदा मिल सकता है। धूम्रपान है, शराब है, इन सब चीजों से बहुत दूर रहने की जरूरत है, नहीं तो ये मोतियाबिंद मैकुलर डिजेनरेशन जैसी कंडीशन को पैदा कर सकते हैं।
1: जी
0: ये बेसिक चीजें हैं जो आपसे चर्चा करनी थी सर। अगर और कुछ लोगों तक पहुंचाना चाहे तो मैं उसके लिए तैयार हूं, अगर अगला प्रश्न कोई पूछना चाहे प्लीज।
1: जी हम लोगों का आज का जो विषय है, हमने जो कि नेत्र सुरक्षा के बारे में, नेत्रों के हमारे स्वास्थ्य के बारे में और डिसेबिलिटीज से बचाव और कारण निवारण सब हमने डिस्कस किया कर लिया है। लेकिन
0: जी
1: हमारी आगे की बातचीत है पुनर्वास आधारित जो हमारा विषय है। आपने कहीं ना कहीं सीआरसी की बेनिफिट्स के बारे में भी बता दिया है अपनी बातचीत में, लेकिन
0: जी
1: जो टीचिंग लर्निंग जो एपरेटस हमें बनाने की जरूरत है और दिव्यांग और नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए सीआरसी पर क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, विशेष सुविधाएं उनके लिए, ये जो
0: अच्छा
1: इन विषयों का आपके विचार अभी जानने हैं।
0: जी, बहुत बढ़िया आपने सवाल रखा है, और मैं अपने सभी श्रोताओं को ये बतलाना चाहूंगा कि जितने भी राष्ट्रीय संस्थान हैं या समेकित क्षेत्रीय केंद्र है या एलिम्को है, वहां पे उपकरण के हिसाब से अगर देखें तो छोटे बच्चों के लिए मोबिलिटी का इशू है, ब्रेल सिखाना है, या जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो आप एक्सपेंडेड कोर करिकुलम एक्टिविटीज के नाम से जानते हैं, उसको
1: जी
0: ध्यान में रख करके पूरा एक किट बनाया गया है, और उस किट को प्रोवाइड करते हैं जो छोटे बच्चे हमारे पढ़ने के लिए एज में है उनको, और 9वीं क्लास से नीचे तक के उन बच्चों के लिए पढ़ने के लिए व्यवस्था बनाई गई। दूसरा, ब्रेल की पुस्तकें राज्य सरकार के तरफ से, केंद्र सरकार के तरफ से, वो नियमित रूप से अलग अलग कक्षाओं में उनको निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है, हमारा सेंट्रल ब्रेल प्रेस है जिसके माध्यम से। तीसरी कंडीशन है किताबों को ई पब के तौर पर डेवलप करना, ताकि एक्सेसिबल फॉर्मेट में उनको मिल सके, इसके
1: जी
0: लिए हम लोग काम कर रहे हैं। चौथी जो कंडीशन है कि अगर बच्चा 9वीं क्लास से ऊपर का हो गया और वो पढ़ने के लिए जा रहा है किसी स्कूल में कॉलेज में, तो उस कंडीशन में मोबाइल फोन उनको दिया जा सकता है जिसमें एक्सेसिबिलिटी फीचर होता है, वो सॉफ्टवेयर डला हुआ रहता है उसमें, तो उसके माध्यम से वो अपनी पढ़ाई, अपना रिकॉर्डिंग, वो सारी चीजें कर सकते हैं, और उसको एक चलता फिरता लाइब्रेरी बना सकते हैं चिप उसमें डाल करके, और वो कभी भी उसको सुन सकते हैं, रिपीटेटिव मोड में उसको सुन सकते हैं। सो ये बेसिक चीजें हैं। बाद में अगर कोई व्यक्ति 18 साल के आसपास हो गया या उससे ज्यादा उम्र का है, तो उसके लिए स्किल डेवलपमेंट का काम सीआरसी के तरफ से किया जाता है, ताकि उनके अंदर हुनर डेवलप किया जा सके और वो अपनी आजीविका का निर्वहन कर सके, आजीविका थोड़ा कमा सके, ताकि समाज का प्रोडक्टिव मेंबर बने। उसके लिए भारत सरकार का पीएम दक्ष जो पोर्टल है उसके माध्यम से लोगों को एनरोल कराना, और SCPWD जो है, स्किल काउंसिल फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, वो कंटिन्यूअस इसके लिए अलग अलग सिलेबस तैयार कर रही है, जॉब रोल्स तैयार कर रही है, और कहीं ना कहीं वो समाज के अलग अलग जो सेक्टर्स हैं, खास करके जो इंडस्ट्री सेक्टर्स हैं, उनके साथ मिलकर के जॉब रोल्स तैयार करना, ताकि यहाँ से जो हमारे ट्रेंड मैन पावर होंगे, ब्लाइंड पर्सन हो वो भी ट्रेंड मैन पावर को तुरंत ट्रेनिंग खत्म होते ही, प्रशिक्षण खत्म होते ही, वही के वही एनरोल कर दिया जाए और उनका सिलेक्शन हो जाए। सो इन चीजों पे लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, साथ साथ पेरेंटल ट्रेनिंग के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि हम अकेले सीआरसी या एनआई कुछ नहीं कर सकते। सो हमारी जिम्मेवारी है
1: जी
0: पेरेंट्स को, सिबलिंग्स को, समाज के अलग अलग स्टेक होल्डर्स को उसके लिए ट्रेंड करना, प्रशिक्षण देना, और उसमें सीआरसी जयपुर के साथ साथ देश के जो अलग अलग क्षेत्रों में 27 सीआरसीज हैं, वो सब अपने अपने स्तर पर भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं सर, और हम एलिम्को के माध्यम से सहायक उपकरण भी प्रदान करने में लगे हुए हैं। जी सर,
1: जी आप डेफिनेटली आप बहुत सारी सुविधाएं हमारे श्रोताओं उपलब्ध हैं सीआरसी जयपुर में। आप सीआरसी जयपुर संपर्क कर सकते हैं किसी भी वर्किंग डे के दिन। अंत में चलते चलते कुछ ऐसी बातें कि भाई पुनर्वास को लेकर मैंने देखा है कि कई बार लोग इलाज इलाज चिकित्सक के पास भटकते रहते हैं, बाबाओं के पास चले जाते हैं और नीम हकीमों के चक्कर में आ जाते हैं। जबकि महत्वपूर्ण यह है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कि सही समय पर एक वैध चिकित्सक का इलाज और साथ में पुनर्वास की प्रक्रिया अगर

हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए। रेडियो मधुबन 90.4।

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूंगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतजार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

ओम शांति। आज 22 मई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है कि बाबा कहते, मैं इस मनुष्य सृष्टि का उल्टा वृक्ष का बीज रूप हूं और मुझे ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। मैं ही तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूं और मास्टर ज्ञान का सागर बनाता हूं। तुम इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझते हो। बाबा कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति कहे कि ब्रह्मा को भी यह ज्ञान कोई शास्त्र से मिला या कोई गुरु से मिला, शास्त्र में होता तो औरों के पास भी होता, अगर गुरु के पास मिला होता तो उस गुरु के और शिष्य भी होते, सारी दुनिया में चक्कर लगा के आओ, ऐसा ज्ञान और कहीं है? ये ज्ञान का सागर परमात्मा ही दे सकते हैं। और एक बाप से जो सच्ची प्रीत रख सच्चा सच्चा पांडव बनते हैं। मौत सामने खड़ा है, इसलिए पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक जरूर बनना है। काम महाशत्रु है जो आदि मध्य अंत सबको दुख देता है। बाबा के इस पर जीत प्राप्त कर पावन बनना है। याद से ही विकारों की खाद निकाल आत्मा को गोल्डन एजेड बनाना है। तो इसलिए सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम। अर्थात जो देवी देवता धर्म के हैं, शिव के व देवताओं के पुजारी है, उन्हें पहले पहले ज्ञान दो। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते हैं और क्यों? उत्तर है, सारे विश्व में शांति स्थापन करने का कर्तव्य एक बाप का है। मनुष्य विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकते क्योंकि सब विकारी है। शांति की स्थापना तब हो जब बाप को जाने और पवित्र बने। बाप को न जानने के कारण निधन के बन गए हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, मरना तेरी गली में जीना तेरी गली में। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ भी घड़ी घड़ी बताना पड़े। क्यों? क्योंकि ओम शांति का अर्थ कोई भी नहीं जानते। जैसे घड़ी घड़ी बोलना पड़ता है मन मना भव, जैसे घड़ी घड़ी बाबा को बोलना पड़ता है मन मना भव, अर्थात बेहद के बाप को याद करो। ऐसे ही बाबा कहे ओम शांति का अर्थ भी बाबा समझाते हैं। ओम का अर्थ कह देते हैं ओम माना भगवान। दुनिया में तो लोग यही कहते ओम माना भगवान, और बाप कहते ओम अर्थात मैं आत्मा, यह मेरा शरीर। परमपिता परमात्मा भी कहते हैं ओम, मैं भी आत्मा हूं, परमधाम में रहने वाला हूं। तुम आत्माएं जन्म मरण के फेरे में आती हो, मैं नहीं आता हूं। हाँ, मैं साकार में आता हूं जरूर। बाबा कहते हाँ मैं साकार में आता हूं जरूर, तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्यंत का सार समझाने, कोई और ये समझा न सके। अगर निश्चय नहीं तो सारी दुनिया में भटकना चाहिए, ढूंढना चाहिए। और कोई है जो अपना और सृष्टि के आदि मध्यंत का नॉलेज देते हैं? परमपिता परमात्मा के बिगर सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज कोई बता न सके, कोई राजयोग सिखा न सके, पतितों को पावन बना नहीं सकते। ये तीन कार्य परमात्मा के हैं, आदि मध्य अंत का राज बताना, राजयोग सिखाना और पतित से पावन बनना। तो बाबा कहते पहले पहले जो भी देवी देवताओं के पुजारी है उन्हों पर पुरुषार्थ करो समझाने का।
आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, वही अच्छी रीति समझ सकेंगे, बाद में आने वाले 84 जन्म ले न सके। ये सुनेंगे भी वह, ये ज्ञान सुनेंगे भी वह जो देवताओं के पुजारी होंगे और जो गीता पढ़ने वाले होंगे। गीता में सिर्फ ये भूल कर दी है, कौन सी? गीता में सिर्फ ये भूल की है कि भगवान के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो गीता पढ़ने वालों को समझाना चाहिए, पूछना चाहिए, परमपिता परमात्मा शिव से आपका क्या संबंध है? उनको भगवान कहेंगे? पूछो, परमात्मा शिव से आपका क्या संबंध है, उनको भगवान कहेंगे? श्री कृष्ण तो दैवी गुण वाले हैं, उनको दैवी राजधानी थी, उनको दैवी राजधानी थी, उनमें सब दैवी गुण वाले थे, उस राजधानी में सब दैवी गुण वाले थे। अब वही पूज्य से पुजारी बन गए हैं, तो कोशिश कर पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों को उठाना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो शिव के जो पुजारी हो, बाबा कहे चैरिटी बिगिंस एट होम, जो शिव के पुजारी हो, क्यों बाबा ने कहा चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात जो शिव के पुजारी, उनको भी समझाना पड़े। शिव आता जरूर है, तब तो उनकी जयंती मनाते हैं, वैसे समझाना है वो भी बाबा सिखाते। शिव आते हैं तब तो उनकी जयंती मनाते हैं, वो परम पिता परमात्मा है, जरूर आकर राजयोग सिखाते होंगे, और कोई मनुष्य मात्र सिखा न सके। श्री कृष्ण को व ब्रह्मा को भगवान नहीं कहा जा सकता, जबकि सर्व का सदगति दाता बाप एक ही है। ब्रह्मा जो सृष्टि का सृजनहार है, उसको ही नहीं कह सकते हैं भगवान, तो आप तो किसको कहेंगे? इसलिए बाबा कहे भगवान उसको कहेंगे सर्व का सदगति दाता बाप एक ही है। वह ज्ञान का सागर होने के कारण सबका शिक्षक भी है। सृष्टि के आदि मध्यंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी दूसरा कोई जानते नहीं। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान का सागर चैतन्य बीज रूप भी कहते हैं। ये महिमा सिर्फ शिव की है। यह जो उल्टा झाड़ है, उनके आदि मध्यंत का ज्ञान उस बीज के पास ही होगा, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं। अथॉरिटी किस चीज की है? ज्ञान की। और उस ज्ञान से ही सर्व शक्तियों की अथॉरिटी भी आती है। अथॉरिटी क्या है? सभी वेदों शास्त्र ग्रंथों आदि सबको जानते हैं। तुम बच्चों को समझा रहे हैं, वह शास्त्र सुनाने वाले कहते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष है, परंतु वह तो हो नहीं सकता। यह वैरायटी धर्मों का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, उनकी आयु भागवत में लंबी चौड़ी कर दी है। बाबा कहे भागवत में उसमें लंबी चौड़ी कर दी है। अब भागवत कोई धर्म शास्त्र तो नहीं है, गीता धर्म शास्त्र है, उनसे देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। बाकी भागवत महाभारत आदि, उनसे कोई धर्म नहीं स्थापन होता। कितना बाबा एक एक सूक्ष्म बातों के ऊपर भी हमारा अटेंशन खिंचवाते हैं। ये वेदों पुराणों उपनिषदों भागवत महाभारत, इसको धर्म शास्त्र नहीं कहेंगे, क्योंकि धर्म शास्त्र वह है जिससे धर्म की स्थापना हो। तो गीता को धर्म शास्त्र कहेंगे, क्योंकि उससे आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई, अधर्म का नाश हुआ, इसलिए वो धर्म शास्त्र है। तो बाबा कहे भागवत महाभारत आदि, उनसे कोई धर्म नहीं स्थापन होता है, वह तो श्री कृष्ण की हिस्ट्री लिखी है। बाप समझाते हैं बच्चे
तुम देवी देवता धर्म वालों को समझाओ कि तुमने 84 जन्म लिए हैं, सतयुग में सिर्फ भारत ही था और कोई धर्म नहीं था, भारत ही स्वर्ग था, भारत ही ऊंचते ऊंच गाया जाता है। और फिर परमपिता परमात्मा शिव का बर्थ प्लेस है जो आकर पतितों को पावन बनाता है। हा? भारत ही परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है जो आकर पतितों को पावन बनाते हैं। शिव की पूजा भी यहाँ होती है, जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। जरूर पतित दुनिया में ही आया होगा, पुकारते भी सब है पतित पावन आओ, पुकारते भी सब है पतित पावन आओ। भारत पावन था, फिर 84 जन्मों का चक्र लगाया है। जो पावन स्वर्गवासी थे अब वह नरकवासी पतित बने हैं। पावन बनाया शिव बाबा ने, पतित बनाया रावण ने। इस समय है ये रावण का राज्य। हर नर नारी में 5 विकार है, सतयुग में विकार थे ही नहीं, निर्विकारी थे। अब पतित है तब तो बुलाते हैं, आओ आकर हमको फिर से पावन बनाओ। सतयुग में हम 100 पावन थे, 21 जन्म राम राज्य में थे। अब तो है रावण राज्य, सब विकारी है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, ये आदि मध्य अंत दुख देते हैं। अब इन पर विजय पाए पावन बनो, अब इस काम महाशत्रु पर जीत पाए पावन बनो। तुमने जन्म जन्मांतर पाप किए हैं, इसी विकार के कारण जन्म जन्मांतर पाप किए हैं। सबसे तमो प्रधान बने हो, आत्मा में खाद पड़ती गई इस विकार के कारण। पहले तो गोल्डन एजेड थे, फिर सिल्वर एजेड, फिर कॉपर एजेड, खाद पड़ते पड़ते सीढ़ी उतरते आए। भारत की ही बात है, सतयुग में 8 जन्म, फिर त्रेता में 12 जन्म, फिर वही भारतवासी चंद्रवंशी वैश्यवंशी बनते हैं, आत्मा इम्प्योर बनती है। बाप कहते हैं मैं आकर कल्प कल्प भारत को स्वर्ग बनाता हूं, फिर रावण नरक बनाते हैं, ये ड्रामा बना हुआ है। अब बाप समझाते हैं ज्ञान सागर तो शिव बाबा है ना, ऊंचते ऊंच शिव है सबका पूज्य। पहले पहले उनकी पूजा होती है, द्वापर से सबसे प्रथम पूजा शिव की आरंभ हुई। वह है बेहद का बाप, जरूर उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारतवासी भूल गए हैं भगवान एक निराकार को ही कहा जाता है, उनको मनुष्य याद भी करते हैं। ऐसे नहीं कि सब भगवान ही भगवान है, एक तरफ भगवान को याद भी करते हैं फिर ग्लानि भी करते हैं, एक तरफ कहते हैं सर्वव्यापी है और फिर कहते हैं पतित पावन आओ। बाप आकर ब्रह्मा तन से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही समझाते हैं, अभी तुम ब्राह्मण चोटी हो, ब्राह्मणों के ऊपर ठहरा शिव, ब्राह्मणों के ऊपर है शिव बाबा। विराट रूप में देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं, ब्राह्मणों का नाम ही नहीं है, क्योंकि देखते हैं ब्राह्मण तो है विकारी, फिर देवताओं से उत्तम कैसे कहे। बाप समझाते हैं, वह भी गाते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः। एक्यूरेट कोई जानता ही नहीं, एक्यूरेट कोई जानता ही नहीं है किनों का राज्य कब था, स्वर्ग कहां से आया। अब तुम समझते हो बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, शंकर द्वारा नरक का विनाश कराते हैं। महाभारत की लड़ाई भी लगी थी ना, जिससे स्वर्ग के गेट्स खुले थे। गाते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं है, यह भी दिखाते हैं कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। बरोबर अभी वही पाठ चल रहा है, 5000 वर्ष पहले भी लड़ाई लगी थी, तब पतित दुनिया विनाश हुई थी। गीता का ज्ञान जब सुनाते हैं
तो कहते हैं तीन सेनाएं थी, यादव सेना, कौरव सेना, पांडव सेना। यूरोपवासी यादव सेना जिन्होंने साइंस से मुसल इन्वेंट किए, गीता के पूरे 5000 वर्ष हुए, 5000 वर्ष हुए। बाप समझाते हैं ये तीन सेनाएं अभी भी है, गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात परम पिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि है। जानते नहीं सिवाय तुम्हारे कोई की प्रीत नहीं है, सबकी विनाश काले विपरीत बुद्धि है, बाकी तुम पांडवों की है प्रीत बुद्धि। तुम शिव बाबा को ही याद करते हो, जानते हो शिव बाबा हमको 21 जन्म का वर्षा देने आए हैं, तुम्हारी प्रीत बुद्धि है शिव बाबा के साथ, बाकी तो कोई बाप को जानते ही नहीं। तो तीन सेनाएं हुई ना, प्रीत बुद्धि पांडवों की, कौरवों की विपरीत बुद्धि विनश्यंती, और यूरोपवासी यादव सेना। तुम हो पांडव सेना, विनाश काल तो है ही, तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है। शिव बाबा कहते हैं तुम पवित्र बनेंगे तो नई दुनिया का मालिक बनेंगे। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था, अभी और सब धर्म है, बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। अपने को देवी देवता समझते ही नहीं है, कहते ही हम तो पतित है, देवताओं के आगे महिमा गाते हैं। तुम सर्वगुण संपन्न सोले कला संपूर्ण हो, अपने को कहते हम विकारी है, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण ना है। बाप को याद करते हैं, तुमको भी एक बाप को ही याद करना है। बाप को याद करने बिगर पावन नहीं बनेंगे तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। अपवित्र दुनिया का जब विनाश हो तभी दुनिया में शांति हो। मनुष्य कोशिश करते हैं भारत में और दुनिया में शांति हो, परंतु वह तो एक बाप का ही काम है, मनुष्य तो है ही विकारी, वह शांति कैसे स्थापन कर सकते हैं। घर घर में ही झगड़ा है, बाप को न जानने के कारण बिल्कुल ही निधन के बन पड़े हैं। सतयुग में बिल्कुल ही पवित्रता सुख शांति थी, अभी फिर बाप वह पवित्रता सुख शांति स्थापन कर रहे हैं, अभी फिर बाप वह पवित्रता सुख शांति स्थापन कर रहे हैं, और कोई कर न सके। हाँ, पवित्रता सुख शांति का राज्य और कोई स्थापन कर न सके। भारतवासी अब नर्कवासी है, स्वर्ग में जब थे तो पुनर्जन्म भी स्वर्ग में लेते थे, अब पतित है, इसलिए पतित पावन बाप को याद करते हैं। अभी तो बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे, लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है, पारलौकिक बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो। ये समझने की बातें हैं, ये कोई सत्संग नहीं है, बाबा के ज्ञान की बातें हैं, उसको समझना होता है, सत्संग नहीं है। हाँ जी करते चले, वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, सत्संग में सतवचन महाराज, सतवचन महाराज समझते थोड़ी है कि क्या बोल रहे हैं। बाबा कहे ये तो समझने की बातें, ज्ञान है, उसको समझना होता है और समझने के बाद उसको धारण करना होता है। तुमको खुशी होती है बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं, जो कल्प पहले स्वर्गवासी बने हैं वही अब बनेंगे। ब्राह्मण बनने बिगर देवता कभी बन नहीं सकेंगे, ये समझने की बातें है ना। अभी तो भारत में कोई कला नहीं रही है, किसको भी पता नहीं पड़ता है, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। तुमको बाप ने अभी जगाया है, तुम यहां आए हो स्वर्गवासी बनने, सिवाय बाप के और कोई बना नहीं सकते हैं। स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को, स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को, नर्क कहा जाता है कलयुग को।
यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब नरकवासी है। अभी सब विकार से पैदा होते हैं, देवताएं कभी विकार से पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। बच्चे अभी बाप से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन लेकिन क्या होता है, चलते चलते हार खा लेते हैं, फिर की कमाई चट हो जाती है, बड़े जोर से चोट लगती है, आश्चर्यवत सुनंती कथंती फिर भागंती हो जाते हैं। बल साक्षात्कार भी करते हैं, परंतु साक्षात्कार में माया का प्रवेश बहुत होता है। जैसे रेडियो में एक दो की बात सुन नहीं सकते, हाँ बीच बीच में गड़बड़ होती है तो एक दूसरे की बात सुन नहीं सकते, इसीलिए बीच में गड़बड़ कर देते हैं। ये भी ऐसे है, योग में माया विघ्न बहुत डालती है। मेहनत सारी है योग में ही, सारी मेहनत जो करनी है योग में, कि बुद्धि हमारी शांत और स्थिर एकाग्र हो। भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है, इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है। अच्छा,

मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, एक बाप से सच्ची प्रीत रख सच्चा सच्चा पांडव बनना है, मौत सामने खड़ा है इसीलिए पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। दूसरी पॉइंट, काम महाशत्रु जो आदि मध्यंत दुख देता है उस पर जीत प्राप्त कर पावन बनना है, याद से विकारों की खाद निकाल आत्मा को गोल्डन एजेड बनाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, मर जीवा जन्म की स्मृति द्वारा कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाले परोपकारी भव। मर जीवा जन्म की स्मृति द्वारा कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाले परोपकारी भव। लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मर जीवा जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा का संबंध का आधार है। बाबा कहे लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मर्जी व जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। कर्म बंधन नहीं सेवा का संबंध है। सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर चलेंगे तो बंधन में तंग नहीं होंगे, लेकिन अति पाप आत्मा अपकारी आत्मा से भी नफरत व घृणा के बजाय रहम दिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे तो नामी ग्रामी विश्व कल्याणी व परोपकारी गाए जाएंगे। आज का स्लोगन है, समय व परिस्थिति प्रमाण वैराग आया तो यह भी अल्पकाल का वैराग है, सदा काल के वैरागी बनो। समय व परिस्थिति प्रमाण वैराग्य आया तो यह भी अल्पकाल का वैराग्य है, तो बाबा कहे सदा काल के वैरागी बनो। आज का व्यक्ति इशारा है, सदा अचल अडोल एकर स्थिति का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते किसी भी प्रकार का विघ्न व समस्या अथवा माया का वार नहीं है, लेकिन खेल के समान अनुभव हो तो खेल समझने से खुशी खुशी पार कर लेंगे और अवस्था एक रस रहेगी, लेकिन अगर इसे वार समझेंगे तो घबराएंगे भी और हलचल में भी आएंगे। इसलिए वार नहीं समझो, खेल समझो। माया का काम है आना और आपका काम है विजयी अन्ना। अच्छा,